0: देखिए, आपने दुनिया देखी है और आप अभी भी लगातार बिजी हैं, लगातार प्रोडक्टिव कामों में लगे हुए हैं, तो कुछ तो समझा है आपने, ऐसी बात तो नहीं है। तो आध्यात्म आपकी निगाहों में क्या चीज है?
1: मेरे हिसाब से जो भी काम हो, ना छोटा होता है ना बड़ा होता है, जिस काम को हम लगन से, दिल से, मेहनत से करें, मेरे ख्याल से उससे ज्यादा वर्शिप, जिसको हम कहते हैं, नहीं हो सकता। हाँ, हम मंदिर में जाएं, पूजा पाठ करें, चांटिंग करें, वो सब बातें अलग है, लेकिन अपने कर्म को ही धर्म समझना मेरे हिसाब से सबसे बड़ी स्पिरिचुअलिटी वही है। मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। मैं एक समय था जब मैं चेंबूर में रहा करती थी और वहां गोवंडी स्टेशन एक था, छोटा सा, और वहां से मुझे ट्रेन पकड़कर बीटी जाना पड़ता था क्योंकि मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में काम करती थी। तभी वहां पे लेडीज का फर्स्ट क्लास जो आता था उसके सामने एक मोची बैठा करता था, ठीक है,
0: कॉबलर,
1: हाँ जी, कॉबलर,
0: राइट।
1: और मैं सच बताऊं, जब भी जल्दी पहुंचती ना, मेरी निगाह उससे हटती नहीं थी, इसलिए कि वो उसकी नजर हर एक के पैरों की तरफ ही रहती थी, कभी उसने ऊपर ताक के मेरी तरफ देखा नहीं है। मैं बहुतों दिन उनके पास खड़ी होकर उनको देखा करती थी, और जिस लगन से, जिस आई वुड से पैशन, यू नो, जैसे एक स्कल्प्टर होता है, एक आर्टिस्ट होता है, उस तरह से वो हर जूती को पॉलिश कर रहे हो या तो फिर उसमें कोई सिलाई कर रहे हो, इतने प्रेम से वो करते थे ना, मेरे ख्याल से उनके लिए वही श्रद्धा थी, वही पूजा थी, और उनसे मैंने बहुत सीखा। ऐसी बात है कि द मेन थिंग इज, एज अ जर्नलिस्ट, एज अ राइटर, आपकी निगाह हर तरफ होनी चाहिए। यू शुड बी एबल टू ऑब्जर्व द स्पिरिचुअल इन द रियल, इन द नॉर्मल। स्पिरिचुअल एक कुछ अलग, समथिंग स्पेक्टेक्युलर, समथिंग डिफरेंट नहीं है। अपनी जिंदगी को ढंग से जीना इज द बिगेस्ट स्पिरिचुअलिटी अकॉर्डिंग टू मी। एक्सेप्टिंग वेयर यू आर, गिविंग इट योर बेस्ट एंड नॉट लूजिंग फेथ एंड होप दैट टुमारो विल बी बिगर, ब्राइटर, बेटर।
0: राइट, ब्यूटिफुल। दोस्तों, आपने गौर किया किस तरीके से गांगुली मैम ने एक एग्जाम्पल लेके, कॉबलर का, एक मोची का एग्जाम्पल लेके हमें समझाया है अध्यात्म क्या होता है। इससे ज्यादा रिलेटेबल, इससे ज्यादा समझा के बताने की भाषा शायद मुश्किल से मिलेगी। बहुत खूब गांगुली मैम, बहुत बहुत आभार है आपका। चलिए, इस बारे में जब तक हमारे मित्र, हमारे दोस्त सुनने वाले विचार करें कि क्या कहा आपने, क्या उनकी भी जिंदगी में कुछ इस तरीके के व्यक्ति दिखाई दिए थे, तब तक हम एक प्यारा सा भजन सुनते हैं और फिर हम वापस आते हैं।

0: बहुत सुंदर भजन। और गांगुली मैम, आगे बढ़कर पूछना चाहूंगा, ये बात आध्यात्म की हो गई, धर्म क्या होता है आपकी निगाह में, हमें समझाइए।
1: देखिए, धर्म जो चीज है इज पार्ट ऑफ योर वैल्यू सिस्टम, इन द सेंस कि आप बचपन में माँ बाप से या तो घर में रहने वाले बुजुर्गों से जो सीख लेकर आगे बढ़ते हो, इसी छोटे छोटे नियम में धर्म छुपा रहता है। जैसे कि हम जब छोटे थे, नियम ये था कि आप घर आओ तो पहले हाथ पैर धो लो, उसके बाद भगवान के वहां दिया जला हुआ रहता था, वहां खड़े होकर छोटी सी प्रार्थना जो भी है वो करो। और हमेशा मुझे ये बात अच्छी लगी कि उस प्रार्थना में सिर्फ स्वार्थ नहीं था, मतलब दो तीन श्लोक हम बोला करते थे। एक तो शाम का आगमन हुआ है तो शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपं ज्योतिर नमोस्तुते। शत्रु बुद्धि विनाशाय, मेरे अंदर जो भी किसी के प्रति कटु भाव हो, दुश्मनी हो, उसका विनाश करने के लिए मेरे घर में दीप जलता है। अब देखिए, छोटी सी प्रार्थना है लेकिन उसमें कितनी बड़ी समझ छिपी हुई है। उसी तरह से हमेशा सबके कल्याण के लिए एक श्लोक हम छोटे से बचपन से ही बोलते आए हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखम् आप्नुयात्। सब अच्छा ही देखें, सब विपद से बीमारी से मुक्त हों, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा किसी को कोई किसी प्रकार का दुख ना आए। इस तरह से जब हम जुड़ते हैं धर्म से, मतलब के समाज में जितने लोग हैं अच्छे बुरे सब रहते हैं, लेकिन हर एक की तरफ हमारी नजर में कटुता न हो, दुश्मनी न, हम उन्हें समझने की कोशिश करें। जैसे कि जर्नलिज्म में द फर्स्ट थिंग वी हैड टू लर्न ऑन जॉब वाज टू बी एबल टू वॉक अक्रॉस द फ्लोर, स्टैंड इन द अदर पर्सन शूज एंड सी द वर्ल्ड फ्रॉम हिज और हर पर्सपेक्टिव। अब एक भूखा बच्चा मिठाई के दुकान से मिठाई लेकर क्यों भागता है? भूख अगर आपने महसूस नहीं की हो, आप समझ भी नहीं पाओगे, है ना? ठीक उसी तरह से हर चीज को समझ के फिर आगे बढ़ना। मेरे ख्याल से संसारी रूप में धर्म वही है। देयर आर ऑफ कोर्स धर्म के मोर यू नो आई वुड से ऑर्गेनाइज्ड धर्म जो है, मतलब जो कि नित्य नेम होते हैं, सुप्रभात से लेकर मंगल गीत तक हर मंदिर में, हर मठ में, या तो घर में पूजा हवन होता है, वो एक अलग प्रकार की चीज है। लेकिन इवन इन दैट, जैसे एक पूजा जो है उसमें अगर आप ठीक तरह से देखो तो 16 उपचार होते हैं, 16 उपचार मिलाकर पूजा बनती है, एक पूजा का रिचुअल जिसको बोलते हैं। लेकिन हर रिचुअल में, हर उसमें, उसके हर प्रोसीजर में धर्म छिपा हुआ है। किस तरह से, मतलब के बहुत सुंदर सुंदर श्लोक हैं समझाने के लिए। जैसे कि आप जो दीप जलाते हो भगवान के सामने, उसमें तेल वैराग्य का हो, उसमें जो ज्योत जलती है वो श्रद्धा की हो, यू नो, इस तरह से मेरे हिसाब से आई ट्राई टू ब्रेक डाउन धर्म फ्रॉम द कॉम्प्लिकेटेड रिचुअल्स इनटू प्रिंसिपल्स विच इंप्रूव अवर वे ऑफ लुकिंग एट लाइफ एंड लिविंग इट टू अवर बेस्ट। मेरे लिए यही धर्म है।
0: वाओ, बहुत खूब, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गांगुली मैम। सिंपल भाषा में साधारणतया समझने वाली चीज शैलजा मैम ने हमें समझाई है, अध्यात्म क्या है, धर्म क्या है, एक नया पर्सपेक्टिव, एक नया तरीका।

0: जी, बहुत बहुत प्यारा सा भजन और बहुत सीधी सीधी सी बातें। शैलजा मैम, जो दिमाग में मेरे सवाल उठा था वो ये कि ये आध्यात्म हो गया, ये धर्म हो गया, और आपने एग्जाम्पल देकर हमें इस चीज को समझाया भी। फिर भी बहुत, क्योंकि ये बड़ा गूढ़ सब्जेक्ट है, ये इतना आराम से हमारे अस्तित्व में उतर जाने वाली चीज नहीं है, तो इसको एक बार फिर से रिपीट करने की कोशिश कर रहा हूं कि ये आध्यात्म और धर्म भला हम इंसानों को क्यों चाहिए? व्हाई डू वी नीड दिस? क्या जरूरत क्या है इसकी? चल तो रही है जिंदगी, बच्चे थे, बड़े हो गए, मर गए, ओवर एंड आउट, लेकिन क्यों ये आध्यात्म, ये धर्म, क्या करें हम इनका मैम?
1: देखिए, पूरे दिन सुबह से लेकर रात को आंखें सोने के लिए जब बंद होती हैं, तब तक अगर हम दुनियादारी में ही फंसे रहें, तो फिर हमारे अंदर हर तरह की कुबुद्धि, जिसको बोलते हैं ईर्ष्या, जो है या तो और पाने के लिए बहुत बहुत चाहत है, या तो जो हमें नहीं मिलना चाहिए हमारे बाउंड्री के बाहर हो, उसके लिए भी एक ग्रीड है, ऑल द षड रिपु जिसको बोलते हैं, यू नो, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये सब हमें गिरकर पकड़ के लेते हैं। लेकिन अगर इसके बीच थोड़ा सा समय हम एक ऐसी एक्टिविटी के लिए, एक ऐसे काम के लिए रखें जहां पर हम हमारे स्वार्थ को

0: हमारी जरूरतों को नहीं आने देते हों। जैसे कि मैं आपको बताऊं, हमारी परंपरा में, सनातन धर्म में चांटिंग जो है, इसी इष्ट देवता, जो देवता आपको पसंद है, गणपति है, कृष्ण है, राम है, जो भी है, उनके नाम का स्मरण करना, या तो फिर किसी तीर्थ क्षेत्र में जाना, क्षेत्र की अपनी महिमा होती है, वहां जाकर इंसान ज्यादातर अपनी वो छोटी छोटी जो मैं कहूँ ऑल द जंबल्स एंड मंबल्स दैट मेक अप द आई वुड से प्रॉब्लम्स ऑफ बीइंग स्टक इन सम काइंड ऑफ आइडेंटिटी, वो सब मिट जाते हैं। यू बिकम वन विथ द स्पिरिट ऑफ द प्लेस। वहां की जो शांति है, वहां की जो पूरी पवित्रता है, मंगलता है, उसमें खो जाने से मन को एक अनोखी शांति मिलती है, एक अनोखा सुकून मिलता है, जो कि जाति जिंदगी में कोई चीज बहुत बहुत चाहकर मिल जाने पर मिलता होगा, या बच्चे के अच्छे रिजल्ट्स पाने पर मिलता होगा, छोटी मोटी चीजों में मिलता है। लेकिन ये जो रहता है, ये जो शांति रहती है, वी कैन नॉट पिन इट टू एनी कॉज। इट इज द एटमोस्फियर दैट ब्रिंग्स यू दैट पीस विच यू डिजर्व। क्योंकि हर महात्मा ने यही कहा है कि आप वो नहीं हो जो आप अपने आप को समझते हो। यू आर नॉट दैट लिमिटेड पर्सन, यू आर अनलिमिटेड सत चित आनंद। यही आपका असली स्वरूप है, हमेशा खुश रहना, हमेशा इन द मोमेंट रहना, और हमेशा उस चेतना को लेकर रहना कि हम में और आप में कोई अंतर है ही नहीं, क्योंकि आप भी और हम भी उसी दिव्य शक्ति का एक छोटा सा पुतला है, मैनिफेस्टेशन। इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव सम एक्टिविटी जो आपके मन को एक तरह की लॉन्डरिंग करती है। जैसे कि हम मंदिर जाते हैं तो बाहर हमारे स्लिपर्स शूज रखते हैं, उससे ही एक तरह से देयर इज अ फिजिकल गिविंग अप ऑफ द डर्ट विच अदरवाइज कोट्स अवर फुटवेयर। उसी तरह से अंदर जाते हैं, वहां खो जाते हैं उस पूजा पाठ में, उस इंसेंस, द ब्यूटिफुल मूर्तिज, द मार्बल, द प्रसाद, ऑल दैट क्रिएट्स अ सर्टन क्वाइट इन यू, एक स्थिरता, एक शांति। ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू गेट बैक अवर पॉइज, अवर कंपोजर। क्योंकि जब तक मन स्थिर नहीं होता, तब तक हमारी सोच स्थिर नहीं होगी, सही नहीं होगी, ये मेरा मानना है। इसीलिए ऑल दीज थिंग्स आर इम्पोर्टेंट। और एक इन अ स्मॉलर वे, घर में भी आपको जो अच्छा लगे, विच एवर गॉड यू लाइक, ऐसा नहीं है कि सनातन धर्मी होना चाहिए। मैंने अभी अभी जीवनी लिखी है हरिओम शरण महर्षि, भजन महर्षि कहा करते थे उनको, आप यूट्यूब पर देखिएगा, उनके हजारों भजन मिलेंगे विद मिलियन मिलियन व्यूज। तो उनका एक बहुत सुंदर भजन है जिसके बोल ऐसे हैं कि तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ, तू ही वाहे गुरु, तू यसु मसीह, हर नाम में तू समा रहा। नाम कोई भी हो, आपकी पूजा पाठ की जगह कोई भी हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, गिरजाघर हो, जो भी हो, श्रद्धा भक्ति एक है, देयर इज नो डिफरेंस। अब किसी को एक्सीडेंट के बाद एक रेयर ब्लड ग्रुप की जरूरत हो तो वो उसके जो रिलेटिव्स हैं वो नहीं देखेंगे कि ये हिंदू का है या मुसलमान का है या क्रिश्चियन का है,
1: right.
0: वो देखेंगे ब्लड ग्रुप सही है क्या नहीं। इस तरह से अल्टीमेटली इट इज इम्पॉर्टेंट टू हैव दैट कंपोजर फॉर सम टाइम इन द डे, और उसके लिए इट इज वेरी इम्पॉर्टेंट टू हैव अ सर्टन काइंड ऑफ ऑर्गेनाइज्ड प्रैक्टिस, जो मेडिटेशन हो, पूजा हो, पाठ हो, चांटिंग हो, जो भी हो, इट हैज टू बी पार्ट ऑफ द डे सो दैट यू डोंट गेट पोल्यूटेड ओनली बाय योर मटेरियल नीड्स।
1: राइट, सिंपल सी बात है, बहुत ज्यादा गहराई में, बहुत ज्यादा डूबने की आवश्यकता नहीं दोस्तों, साफ साफ दिखाई देता है, धुंध छट जाती है, फॉग हट जाता है, क्रिस्टल क्लियर। थैंक यू सो मच। चलिए मैम आगे बढ़ते हुए एक प्यारा से भजन का आनंद उठाएं, थोड़ा सा मेडिटेट करें और वापस आएं।
0: जी जी

0: बहुत सुंदर, बात आध्यात्म की हो गई, बात धर्म की हो गई और बात हमारी जरूरत की हो गई। व्हाई नॉट, धर्म और आध्यात्म हमारे लिए क्यों है, क्यों नहीं है। अब एक और इसी से जुड़ी हुई श्रृंखला है जिसके बारे में समझ लेते हैं, जब हम आध्यात्म की प्रैक्टिस करने बैठते हैं। अब चलिए, आध्यात्म किसी किताब में कहीं लिखा हुआ कोई चैप्टर नहीं है, धर्म भी किसी किताब में कोई चैप्टर नहीं है, एक बड़ी चीज है, इट्स मच मच बिगर देन ऑल ऑफ अस। लेकिन इसको कैसे करें, प्रैक्टिस कैसे करें, क्या करें, मतलब जी चलो मैं, मेरे को लगा शैलजा मैम ने आज समझाया और जी मैं आध्यात्मिक होना चाहता हूं आज से, और धर्म भी धर्म का पालन भी करूंगा। वेरी नाइस। सो अब मैं तो बड़ा समझदार हूं ना, तो शर्म आती है शैलजा मैम से पूछने में। तो मैंने अपने मन में डिसाइड किया कि मैं कुछ करता हूं। कुछ करने में सबसे सिंपल तरीका है, प्रार्थना करने बैठ गया और ध्यान लगा लिया। तो मैम जरा प्रार्थना को और ध्यान को भी समझाइए। अब सच्चाई यह है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, व्हाट शुड आई डू, क्या करूं, कैसे लगाऊं ध्यान और प्रार्थना।
1: देखिए, सबसे पहले इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम एक ऐसा वक्त निकालें, चाहे हम 10 मिनट से शुरू करें, लेकिन ऐसा वक्त निकालें जब हमारे ऊपर बाहर की चीजों का, बाहर के लोगों का कोई दबाव ना हो। आई एम नॉट गोइंग टू बी इंटरप्टेड। ये सबसे पहला रूल मेरे हिसाब से, इफ यू वॉन्ट टू एंटर इन टू योर ओन इनर वर्ल्ड। ओके, तो सबसे पहले आई विल डिसाइड कि हाँ, मेरी दिनचर्या में सुबह सबके आगे, अगर हम औरों के साथ रहते हों तो सबसे आगे मैं आधा घंटा आगे उठ के थोड़ा साफ सफाई कर ले, और चाय पीनी है तो एक कप चाय भी पी लीजिए, और फिर 10-15 मिनट यू आर नॉट गोइंग टू बी इंटरप्टेड, ऐसा पहले समय का एक स्लाइस मैं कहूंगी, एक छोटी सी यू नो क्वांटिटी आप अपने लिए संभाल के निकाल लें, और धीरे धीरे सबको समझ आएगी कि अगर कोई और उठे भी कि दिस टाइम इज नॉट फॉर डिस्टर्बिंग दिस पर्सन, यू कैन नॉट इंटरप्ट, यू कैन नॉट ट्रेसपास। तो पहले समय निकाल लिया, फिर मुझे बैठना कहाँ है, ये जगह भी आप खुद ठीक करें, इट कैन बी अ कॉर्नर ऑफ योर रूम, पर उस जगह को आप साफ रखना अपनी जिम्मेदारी समझें। वहां पे आप जिस देवता का मतलब रूप आपको अच्छा लगे, उसी को इष्ट देवता कहते हैं, जिसका रूप जिसका नाम आपके मन को भाता है उसी को इष्ट देवता कहते हैं। तो आपके इष्ट देवता जो भी हो, उनकी एक तस्वीर या मूर्ति वहां पर रखें, एक थोड़ा अगरबत्ती या तो इंसेंस, धूप जिसको बोलते हैं
0: जी,
1: उसको जलाने के लिए व्यवस्था करें, जब भी हो सके थोड़े फूल लाकर वहां रखें। इस तरह से आप एक अपने लिए छोटा सा, उसको आप अपना मंदिर ही समझ लें, एक्सक्लूसिव जगह जहां पर जिसके पास जाते जाते ही आप देखेंगे कि आपके मन की अवस्था बदल जाएगी, क्योंकि आप उस तरफ जा रहे हो जहां आपके इष्ट देवता हैं, आप अपने ही देवता के निकट जा रहे हो, तो आपको लगने लगेगा उस टाइम पर उन 15 मिनटों में कि बाकी सब जो भी चीजें हैं वो दुनियादारी के हैं, वो आई विल मैनेज, पहले मैं यहां से शक्ति बटोर लूं। ये हुई दूसरी बात। तीसरी बात, आजकल तो यूट्यूब के जरिए, गूगल जी के जरिए जितने श्लोक, छोटी बड़ी प्रार्थनाएं आपको मिल जाएंगी, आपके अपने इष्ट देवता के जो भी आपको या तो याद होगा, या तो किसी पंडित जी से, या तो फिर अपने ही बुजुर्गों से, या तो फिर मंदिर से, या तो फिर गूगल से, यूट्यूब से, आपको मिल ही जाएगा एक छोटी सी प्रार्थना। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा, एक प्रार्थना सबके कल्याण के लिए हो, इससे क्या होता है, मन थोड़ा खुल जाता है। क्योंकि मैं आपको बताऊं, स्पिरिचुअल होने का जो आप पूछ रहे थे कि मुझे कुछ करना है, सभी महात्माओं ने कहा है कि स्पिरिचुअल होने के तीन मेजर कंपोनेंट्स हैं। एक हुआ सुमिरन, जो मैंने जिसका मैंने तरीका आपको बताया कि उन पंद्रह मिनटों में मैं सुमिरन करूं, धीरे धीरे उन प्रार्थनाओं को मैं समझूं, धीरे धीरे उनका पाठ मैं अपने आप बिना पुस्तक की ओर देखे कर पाऊं, धीरे धीरे मेरी उस तरफ श्रद्धा, उस तरफ लगन बढ़ने लगेगी ऑटोमेटिकली। लेकिन इसके लिए द डिसिप्लिन ऑफ रेगुलरिटी, एंड बिकॉज इट इज योर ओन, सो ओनली यू कैन गिव इट दैट इम्पोर्टेंस। कोई और आपको नहीं बोलने वाला, अरे 5:30 बज गए, आप अभी तक यहाँ पर हो, अपने मंदिर पर नहीं गए, इस तरफ कोई नहीं पूछने वाला। ये जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि आपने निर्णय लिया है कि आई वॉन्ट टू डू समथिंग। तो ये हुई, सो सुमिरन एक हुआ, साधना उसके बाद में आती है, क्योंकि ये मेडिटेशन, द वर्ड हैज बीन टोटली अब्यूज्ड एंड ओवरयूज्ड, इतना आसान नहीं है। मेडिटेशन करना इज टू मेक योर माइंड फ्री ऑफ ऑल थॉट्स। आप एक एक्सपेरिमेंट हिसाब से, आप कहीं सफर कर रहे हो, आंख बंद करके देखिए फॉर हाउ लॉन्ग योर माइंड रिमेन्स लाइक अ ब्लैक बोर्ड, नॉट इवन अ माइक्रोसेकेंड। अरे वो करना भूल गए, अरे इसको फोन करना था, उसकी चिट्ठी आनी थी, उसको मेल भेजना, ये सब एक के बाद एक आते रहेंगे। सो फर्स्ट वो स्थिरता, एक जगह जाके 15 मिनट विदाउट मूविंग बैठना, वहां के वो नियमित रिचुअल्स छोटे छोटे अपने आप बनाए हुए करना, वो प्रार्थना करना, और फिर वहां बैठ के अपने ही देवता से कहना कि अभी मुझे जरा स्थिर होकर आपके ही विचार में खोने की क्षमता दो
0: जी।
1: तब जाकर शायद 1 मिनट के लिए ऐसा होगा कि आप और कुछ नहीं सोच रहे हो, और एक तरह से फिजिकली, जैसे टीचर डस्टर लेकर ब्लैक बोर्ड साफ किया करते थे, उस तरह से आपको सोचना है कि मेरा मन एक ब्लैक बोर्ड है, जो विचार यहाँ पे जगह उनकी नहीं है, अगर आते हैं तो मैं उनको इमेजिनरी विजुअल, यू विजुअलाइजेशन इज अ वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लर्निंग टू मेडिटेट, तो विजुअलाइजेशन करके मैं हाथ में एक डस्टर लेके उस विचार को निकाल देता हूँ दरवाजे के बाहर, आप वहां रुको, मैं जब बाहर आऊंगा या आऊंगी तब आई विल डील विथ यू। इस तरह से धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, और तीसरा सुमिरन हुआ, साधना या मेडिटेशन कम्स लेटर, सुमिरन से शुरुआत, और वेरी इंपॉर्टेंट इज सेवा। सो द 3 S's, यू नो, सेवा, सुमिरन, साधना। सेवा मतलब क्या, आप कहीं भी किसी भी संस्था से, इट कैन बी एन ऑर्फनेज, इट कैन बी एन ओल्ड एज होम, इट कैन बी अ पीडियाट्रिक वार्ड ऑफ कैंसर चिल्ड्रन एफ्लिक्टेड विद कैंसर, कहीं भी आप वॉलंटियरिंग करना शुरू करो, महीने में एक बार करो, लेकिन शुरू करो कि 1 घंटा आप ऐसे लोगों को दे रहे हो जिनकी बेबसी आपसे कई गुण ज्यादा है। एक बार वो करने लगो तो धीरे धीरे आपको ही लगेगा कि मेरे प्रॉब्लम इतने बड़े तो नहीं है, दुनिया में कितना कष्ट है, कितना दुख है। दिस सेवा इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने गुरुद्वारा में तो देखा ही होगा
0: जी हाँ, जी
1: किस तरह से लोग करते हैं, और हमारे हमारे बहुत सारे मठों में भी चप्पल स्टैंड मैनेज करना, फॉर एग्जांपल, दूसरों के जूते एक सही जगह पर रखना, उनको वापस, इसमें जो अंदर से एक तरह की ह्यूमिलिटी आती है ना, वो बहुत जरूरी है। क्योंकि टुडे with fewer children, more money in hand, the ego has a free walk, you know, और उससे क्या होता है, अध्यात्म में इंटरेस्ट या तो होता ही नहीं, और जो भी रहता है छोटे बचपन में सीखा हुआ वो सब हट जाता है। That is not going to help you, क्योंकि एक प्रमोशन नहीं मिला, एक जगह से नौकरी से आप ले ऑफ हो गए, आपको लगेगा मैं छत से कूदूं. सुइसाइड्स आर अ रिजल्ट ऑफ दीज थिंग्स, द डेस्परेशन दैट कम्स वेर यू फील यू डोंट बिलोंग एनीवेयर. लेकिन अगर आप अध्यात्म से जुड़े रहते हो, आपको पता है कि जो भी हो अच्छे के लिए हो रहा है, इसके आगे सकारात्मक मैं क्या सोचूं, तब जाकर आपको उसके भीतर से निकलने की राह मिलेगी. सो सेवा, साधना, सुमिरन, इस इन तीनों को अपनी जिंदगी में जगह देने पर यू कैन मूव अहेड इन योर डिसीशन टू मैं कुछ करना चाहता हूं.
0: राइट मैम, बहुत ही प्यारे ढंग से सरल भाषा में डिटेल में एक्सप्लेनेशन शैलजा मैम ने हमें दिया है. दोस्तों विचार कीजिए, एक मनन कीजिए, बैठ जाइए, थोड़ी देर अपने आप को स्थिर कीजिए. जैसा उन्होंने कहा ना, जो भी आपके इष्ट देव हैं उनके उस एरिया में जाइए जहां पर पहुंचकर आपको लगे कि आप उनके पास पहुंच गए. विचार कीजिए, तब तक हम पेश करते हैं ये प्यारा सा भजन और फिर हम वापस आते हैं.

0: बहुत सुंदर। शैलजा मैम, ये बातें बहुत क्लियर हो गई अध्यात्म के बारे में, धर्म के बारे में, मेडिटेशन के बारे में, और क्या करना चाहिए, क्या प्रैक्टिसेस होनी चाहिए, उनके बारे में भी बहुत क्लियर हो गया। अगर अब आज की बात हो रही है और मेरे को ऐसा लगता है कि हमें सब लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि इन सारी बातों को हम आज की जनरेशन के साथ कनेक्ट करें, वरना ये सब हम मतलब बड़े बूढ़ों की बात होकर रह जाएगी क्या? लेकिन ये तो पूरे संसार की बात है। तो मैम, इसको मॉडर्नाइज्ड तरीके से ढाल के, उस लैंग्वेज में बता के आज की यंग जनरेशन के लिए एक संदेश दीजिए कि क्या धर्म, क्या अध्यात्म, क्या मेडिटेशन, क्या प्रैक्टिसेस उनको देंगी, जिससे कि वो उनकी जिंदगी बहुत बहुत खूबसूरत, क्योंकि वो लोग बेनिफिट में इंटरेस्टेड है ना, तो उनको उनका बेनिफिट दे दीजिए मैम, जिससे कि उनको लगे ऑल राइट, चल जाए, मैम ने कहा कि ये चीज हमको बेनिफिट करने वाली है, तो लेट्स डू इट। तो बस चलते चलते हमारे प्रोग्राम का जो तात्पर्य है, जो पर्पस है, वो यही है कि लोगों तक बात पहुंच जाए। तो बस मैम, यंग जनरेशन तक बात पहुंचा दीजिए।
1: मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं दक्षिण के श्री चित्रापुर मठ से जुड़ी हुई
0: हूँ। ऑल राइट।
1: और हाँ, उसकी 350 साल की गुरु परंपरा रही है। और अब हाँ जी, अभी जो एकादश गुरु उनके हमारे मठ के हैं, वो जीवित हैं, और उन्होंने क्या किया है, ही बिलीव्स इन बॉडी माइंड स्पिरिट सिंक्रोनाइजेशन, यानी के दे से ना कि अ हेल्दी माइंड इन अ हेल्दी बॉडी। तो सबसे पहले हमें हमारे युवा लोगों को, जो कि मतलब अनफॉर्चुनेटली जंक फूड, कोलाज, इन सब के आदि हो चुके हैं बिकॉज ऑफ सर्कमस्टेंस, उनको सबसे पहले दे हैव टू बिकम मोर केयरफुल अबाउट फिजिकल फिटनेस। इट इज ओनली व्हेन यू आर फिजिकली फिट दैट योर माइंड विल बी मोर अलर्ट एंड अवेक एंड विलिंग टू लर्न समथिंग न्यू। ये दिस इज समथिंग, इसके लिए हमारे मठ में इट इज अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ यंग पीपल 16 ऑनवर्ड्स, दिस ग्रुप इज कॉल्ड युवाधारा। युवाधारा के लिए अध्यात्म तो लाइक आई सेड कम्स इन ग्रेजुअली, उनके लिए उनकी पसंदीदा जो चीजें हैं, मतलब के देर आर इंस्ट्रक्टर्स हु कम एंड टीच देम फिजिकल फिटनेस, हाउ टू फाइट अनप्लेजेंट, मतलब के रेगुलर प्रोफेशनल मेथड्स, वर्ल्ड चैंपियंस को बुलाया जाता है इन बच्चों को सिखाने को, हाउ टू लर्न टू रिपेल एनी फॉर्म ऑफ अनप्लेजेंट फिजिकल अटैक, हाउ टू फिजिकली डू ट्रेकिंग, रॉक क्लाइंबिंग, कनोइंग, ऑल द एक्टिविटीज दैट bring about a, see, when you are physically fit, your mind and spirit feel lighter. So we have gadgets, we have rebounders, we have gym balls in every branch of our mutt.
0: Wow.
1: Because Swamiji is very particular ki aap mandir mein nahi jude ho, to wahan jaake aap thoda exercise kar lo.
0: Haan,
1: haan. Because it makes you feel good. Hmm. You will see, elderly women also in salwar kameezes dancing on the rebounders. Wow. You understand? Hmm. So yuva ke liye particularly, all these activities are the physical part of it. Okay. Iske baad, specialists from different fields who have, reached top levels are invited to give lectures on different things like IT ho, architecture ho, startups ho, jo bhi ho subject, so that the children are made to understand the importance of giving direction to their intelligence. And then they are also taught सुबह में जो सुप्रभात के लिए ठाकुर देवता को जगाने के लिए जो मंत्र पढ़े जाते हैं उनका मायने, व्हाट इज द गायत्री मंत्र, व्हाट इज द मीनिंग। क्योंकि क्या होता है, ये मंत्र पढ़ना, आप देखोगे ज्यादातर पूजा पाठ हो रहा है और यहाँ पे बातचीत चल रही है, या तो बच्चे तो बाहर अपनी मौज मना रहे हैं। वंस दे अंडरस्टैंड द मीनिंग दे गेट इन्वॉल्व, सो दैट इज अनदर पार्ट ऑफ इट। सो आफ्टर बीइंग एक्सपोज टू ऑल दीज एक्टिविटीज, जैसे कि हमारा फार्म है जहां पे द प्रोड्यूस फॉर द किचन इज क्रिएटेड, फार्म में काम करना, गौशाला में काम करना, ये भी उनके आइटिनरी, जो कि जब उनके लिए शिविर बनते हैं, तो ऑल दीज एक्टिविटीज आर इंक्लूडेड। दिस इज वन पार्ट ऑफ इट। आजकल आपने देखा सुना होगा कि सडनली बिकॉज ऑफ द हरे कृष्णा मूवमेंट ही बोलिए, या तो चैतन्य महाप्रभु का जो नगर संकीर्तन हुआ करता था, इसकी महिमा ही बोलिए, समहाउ द यंगस्टर्स हैव बिकम अवेयर दैट देर इज सम पावर रिजल्ट इन द चांटिंग ऑफ द डिवाइन नेम, एंड उससे उनके अंदर जो उनको एक अलग तरह की शांति मिलती है। मे बी इट इज डन इन अ रिदम जस्ट लाइक रॉक एंड पॉप म्यूजिक, बट भजन पॉप म्यूजिक, भजन रॉक म्यूजिक अभी बहुत चल रहा है इन अ लॉट ऑफ प्लेसेस, लाइक इवन इन बॉम्बे इन द बाबुलनाथ मंदिर के कॉम्प्लेक्स में हुआ, ऐसे कई जगह पर। एंड इन फैक्ट हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात में इस बारे में जिक्र भी किया था कि इट इज अ वेरी गुड थिंग कि द युवा पीढ़ी में भी इन चीजों में दिलचस्पी आ रही है। तो बात यह है कि हर घर में बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर फैमिली संस्कार कम इसलिए होते जा रहे हैं कि किसी को समय ही नहीं है टू अंडरस्टैंड इट्स इम्पोर्टेंस और टू पास ऑन द राइट थिंग्स। पहले के जमाने में एक दादी माँ नानी माँ दादाजी नाना जी रहा करते थे जिनके पास से बच्चों को अनायास ये शिक्षा मिलती थी, आजकल नहीं मिलती है। इसके लिए आई डेफिनेटली फील कि देर शुड बी अ कंपोनेंट, नॉट एनी पर्टिकुलर फेथ बेस्ड बट मॉरल साइंस जैसे हमारे जमाने में हुआ करता था। द इम्पोर्टेंस ऑफ सिंपल हैबिट्स, जैसे कि हमारे भगवद गीता के 12वें अध्याय में भगवान जी ने अर्जुन को बताया है कि सबसे प्यारा भक्त उनका कौन सा है, और उसमें एफिशिएंसी इन व्हाट यू डू इज वन थिंग, क्लेनलीनेस इज वन थिंग, बीइंग अ लिटिल डिटैच्ड फ्रॉम व्हाट एवर यू आर डूइंग एंड इट्स आउटकम इज वन थिंग। ये सब छोटी छोटी चीजें वंस द चिल्ड्रन लर्न एंड दे नो द सोर्सेज, व्हाट दे थॉट वाज दिस इज फॉर माय ओल्ड एज नॉट फॉर नाउ, व्हेन दे रियलाइज दैट द नॉलेज गिवन इवन इन स्क्रिप्चर्स इज वेरी टाइमली, फिर ये समझाने के लिए ऐसे ब्रिजेस, ऐसे लोगों की जरूरत है जैसे आप आज कर रहे हो थ्रू पॉपुलर मीडिया टू मेक चिल्ड्रन अंडरस्टैंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट फॉर देम टू डिस्कवर द अमाउंट ऑफ इनर स्ट्रेंथ, आत्मबल जिसको बोलते हैं, विच कम्स फ्रॉम द स्टडी, फ्रॉम द चांटिंग और फ्रॉम दिस एक्टिविटी, और विच इज नॉट कनेक्टेड विद टुमोरोज टेस्ट और इंक्रीजिंग माई पे बैक। तो ये धीरे धीरे हो रहा है और भी हो, ये मेरी इच्छा रही।
0: बहुत खूब। ऑफ कोर्स, ये मैसेज गांगुली मैम का हमारी यंग जनरेशन के लिए है। यंग जनरेशन बहुत एंग्शियस होती है, जल्दी में होती है, थोड़ा सा ठहर कर ये बात को समझना जरूरी है, लेकिन वी आर होपफुल और लाइट दिख रही है कि लोगों को समझ में आ रहा है, यंग जनरेशन को भी अब ये चीज समझ में आ रही है। बहुत खूब गांगुली मैम, आपका बहुत बहुत आभार है, आपने वक्त निकाला, हमसे बातचीत की, लोगों को आध्यात्म के बारे में, अपनी जिंदगी को सही ढंग से जीने के बारे में हमें बताया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।
1: थैंक यू फॉर कॉलिंग मी, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी, एंड आई होप दैट At least one or two life lessons have been shared through this program. मैं यही चाहती हूँ कि please learn to enjoy the present moment. गिव योर बेस्ट टू द प्रेजेंट मोमेंट. द पास्ट इज ओवर, द फ्यूचर इज येट टू कम. गिव योर बेस्ट टू द प्रेजेंट मोमेंट एंड भविष्य आपका ऑटोमेटिकली सुधर जाएगा. थैंक यू सो मच. नमस्कार.
0: नमस्ते मैम.
2: ओम भास्कराय नमः.
0: दोस्तों, इसी संदेश के साथ आज के कार्यक्रम दिव्य दर्शन को यहीं विराम देते हैं. आशा है कि ये कुछ पल आपके मन को सुकून और दिन को सकारात्मक दिशा देंगे. मुस्कान के साथ दिन की शुरुआत करें, अच्छे विचारों को साथ रखें और शांति को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं. मैं हूं आपका रेडियो दोस्त समीर.

Hello, hello, hello. Mic check, 1, 2, 3. Energy check. Chai ready? Dil ready? मैं हूँ तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट शो बातें इधर की उधर की, जहाँ बातें सिर्फ होती नहीं, घुमा फिरा कर दिल तक पहुँचती हैं। यहाँ हम गॉसिप नहीं करते, हम हिस्ट्री को थोड़ा सा फन बना देते हैं। यहाँ फैक्ट्स बोर नहीं करते, वो डांस करते हुए आते हैं। कभी किसी चाय की कहानी में दुनिया देख लेते हैं, और कभी किसी सिंपल इंसान की स्टोरी में रेवोल्यूशन पकड़ लेते हैं। तो वॉल्यूम थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, स्माइल थोड़ी सी और वाइड कर दीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट में आपकी सोच थोड़ी सी अपग्रेड जरूर होने वाली है। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि ये है बातें इधर की उधर की, ओनली ऑन SN रेडियो एंड रेडियो तात्या भील 90.8 FM। नमस्कार दोस्तों, आज एक और बात बताऊंगी, सवाल नहीं पूछूंगी, एक हिस्ट्री का खूबसूरत किस्सा। आपने अपनी लाइफ की सबसे अच्छी किताब कहाँ खरीदी थी, याद है आपको? बुक स्टोर से ली थी, ऑनलाइन ली थी, या किसी दोस्त ने यूं ही गिफ्ट की थी? जरा सोचिए, अगर मैं कहूं कि दुनिया की सबसे मशहूर पब्लिशिंग कंपनीज में से एक की शुरुआत किसी बड़े ऑफिस में नहीं, बल्कि एक रेलवे प्लेटफॉर्म पर हुई थी, तो क्या सोचेंगे आप? जी हाँ, बिल्कुल, एक प्लेटफॉर्म, एक आदमी, और एक उसकी छोटी सी फ्रस्ट्रेशन, और वही फ्रस्ट्रेशन बदल गई लाखों लोगों की पढ़ने की आदत में। चलिए शुरू करते हैं आज की बातें इधर की उधर की में, और सुनते हैं एक बहुत ही दिलचस्प कहानी। साल था 1934, इंग्लैंड का एक शहर एक्सेटर। एक पब्लिशर थे, एलन लेन। एक वीकेंड वो मशहूर मिस्ट्री राइटर अगाथा क्रिस्टी के घर से उन्हें मिलकर लौट रहे थे। अब ट्रेन आने में थोड़ा वक्त था, उन्होंने सोचा चलो कोई अच्छी सी किताब ले लेता हूँ, सफर कट जाएगा। जी हाँ, पहले ऐसे ही होता था, दोस गोल्डन डेज। एनीवे, लेकिन जब वो स्टेशन के बुक स्टॉल पर गए तो क्या मिला आप जानते हैं? सस्ती मैगजीन्स, हल्के फुल्के पल्प नॉवेल्स, लेकिन कोई ऐसी किताब नहीं जिसे पढ़कर लगे कि सफर यादगार हो गया। ना कोई सीरियस लिटरेचर, ना कोई अच्छे नॉवलिस्ट, ना कोई ऐसी किताब जो दिमाग को भी खुराक दे। और सोचिए, ये प्रॉब्लम किसी आम मुसाफिर को नहीं, एक पब्लिशर को हो रही थी। एलन लेन ने किताब वापस रखी और ट्रेन का इंतजार करते हुए बस एक बात सोचते रहे, अच्छी किताबें सिर्फ अमीर लोगों के लिए ही क्यों होती हैं? उस जमाने में हार्ड बाउंड बुक्स बहुत महंगी हुआ करती थी, आज भी होती हैं। आम आदमी के लिए किताब खरीदना मान लीजिए एक लग्जरी ही थी। फैक्ट्री में काम करने वाला, ऑफिस क्लर्क, स्टूडेंट या ट्रेन से रोज सफर करने वाला आदमी, उनके लिए एक अच्छी किताब खरीदना आसान नहीं था। तब एलन लेन के दिमाग में एक आइडिया आया, एक सिंपल सा आइडिया, लेकिन हर बड़ी क्रांति की तरह ये भी सिंपल ही था। उन्होंने सोचा, अगर अच्छी किताब की कीमत सिर्फ 2 पैकेट सिगरेट जितनी हो तो? सोचिए, लिटरेचर हर किसी की जेब में आ सकता था, किताब सिर्फ लाइब्रेरी की शेल्फ पर नहीं, कोट की पॉकेट में आ सकती थी। अब जब एलन लेन ये आइडिया लेकर अपनी कंपनी के डायरेक्टर्स के पास गए, तो जवाब बहुत एक्सपेक्टेड था, किसी भी नई आइडिया को यही मिलता है, इम्पॉसिबल, कोई नहीं खरीदेगा, नुकसान हो जाएगा, अच्छी लिटरेचर सस्ती बेची ही नहीं जा सकती, दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। लेकिन एलन लेन ने हार नहीं मानी, उन्होंने अपनी जेब से पैसे लगाए और 30th जुलाई 1935 को सिर्फ 10 पेपरबैक बुक्स के साथ एक नई पब्लिशिंग कंपनी शुरू कर दी,
सोचिए, किताबों के कवर बहुत सिंपल रखें, ऑरेंज फिक्शन के लिए, ग्रीन क्राइम स्टोरीज के लिए, ब्लू बायोग्राफीज के लिए, सीधा साफ बिना किसी चमक धमक के। अब एक और प्रॉब्लम आई, कंपनी का नाम क्या रखें? मीटिंग में किसी ने कहा, किसी जानवर का नाम रखते हैं। सबने सोचा शेर, बाज, हाथी, लेकिन एलन लेन को कुछ अलग चाहिए था। एक कॉलीग को लंदन जू भेजा गया, इमेजिन, और वहां से जो जानवर चुना गया वो ना जंगल का राजा था ना सबसे ताकतवर, वो था पेंगुइन। जी हाँ, सीधा प्यारा याद रहने वाला एक पेंगुइन। और दोस्तों, इसी तरह जन्म हुआ पेंगुइन बुक्स का। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब सवाल था, किताबें बिकेंगी कैसे? तब इंग्लैंड की एक बड़ी रिटेल चेन वूलवर्थ्स ने एक साथ 63,000 बुक्स का ऑर्डर दे दिया। बस ये बन गया गेम चेंजर। सिर्फ 10 महीने के अंदर 10 लाख पेपरबैक बुक्स छप चुकी थी। सोचिए, एक रेलवे प्लेटफॉर्म पर पैदा हुआ आइडिया अब पूरी दुनिया में सफर कर रहा था। आज अगर हम एयरपोर्ट पर, रेलवे स्टेशन पर या किसी छोटी सी दुकान पर पेपरबैक बुक्स देखते हैं, तो उसके पीछे एलन लेन का एक विजन था। उन्होंने सिर्फ किताब नहीं बेची, उन्होंने पढ़ने को आम आदमी तक पहुंचाया, नॉलेज को इलीट क्लब से निकालकर हर हाथ तक ला दिया। और दोस्तों, इस कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा क्या है आप जानते हैं? कभी कभी दुनिया बदलने के लिए कोई बहुत बड़ा इन्वेंशन नहीं चाहिए, एक सवाल चाहिए, ये चीज ऐसी क्यों है, और बस उसके बाद थोड़ी सी हिम्मत चाहिए। हम सब रोज कंप्लेन करते हैं, कंप्लेन मोड में ही रहते हैं, ट्रैफिक है, सिस्टम खराब है, ऑफिस नहीं जाना, ऑफिस में ये इश्यूज हैं, मोबाइल नेटवर्क चला गया, लाइनें बहुत लंबी हैं, ये नहीं वो नहीं, उफ तौबा। लेकिन बहुत कम लोग उस कंप्लेंट को आइडिया में बदल देते हैं। एलन लेन ने बदला, और इसीलिए आज उनका नाम पब्लिशिंग की हिस्ट्री में हमेशा गोल्डन वर्ड से लिखा गया। चलिए, आज जाने से पहले एक छोटा सा सवाल पूछती हूँ। अगर आपको दुनिया की किसी एक प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालना हो, प्रॉब्लम नहीं सल्यूशन, तो वो क्या प्रॉब्लम होगी? हो सकता है आपका जवाब कल किसी बड़ी कहानी की शुरुआत बन जाए। इसी उम्मीद के साथ, इसी ख्वाहिश के साथ मैं लेती हूँ आपसे इजाजत, आपकी तनुषा, आपकी आरजे होस्ट, आपके तरानों की हमसफर। आप सुन रहे थे बातें इधर की उधर की, जहां हर रोज एक छोटी सी बात जिंदगी की बड़ी सीख बन जाती है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक पढ़ते रहिए, सोचते रहिए और मुस्कुराते तो जरूर रहिए। नमस्कार।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: एक बार किसी शहर में किसी से मिलने जा रहा था मैं। आधे रास्ते में मुझे टैक्सी में याद आया कि चश्मा तो होटल में ही छूट गया और जिसे मिलने जा रहा था उसके पति की डायरी भी वहीं छूट गई। अब सड़क का नाम तो याद आ गया लेकिन मकान का नंबर याद नहीं आ रहा था। बस मैंने ड्राइवर से कहा कि एक टेलीफोन बूथ के पास रोक दे, टैक्सी रुकवाई, शायद टेलीफोन डायरेक्टरी में मकान का नंबर मिल जाए, ऐसा सोचा। अब चश्मा ना होने की वजह से मुझे डायरेक्टरी आंखों से दूर काफी फासले पर पकड़नी पड़ रही थी। अचानक से किसी ने कांच के दरवाजे पर खटखट की तो देखा कि टैक्सी ड्राइवर साहब खड़े हैं, बहुत ही प्यार से मुस्कुरा रहे थे। आंखें मिलते ही उन्होंने पूछा, सर कुछ मदद करूं? लगता है आपकी बाहें कुछ छोटी पड़ रही हैं।

0: क्या हम जिंदगी को आउटसोर्स कर रहे हैं?
1: जी हाँ, क्या हम जिंदगी को भी आउटसोर्स कर रहे हैं?
0: नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं बातें इधर की उधर की। आज की कहानी की शुरुआत भी एक छोटे से सवाल से करते हैं। आपने आज सुबह अपना फोन कितनी बार देखा? सच बताना, नो चीटिंग।
1: एक और सवाल, आज सुबह आसमान कितनी बार देखा?
0: चक्कर में पड़ गए ना? जवाब शायद थोड़ा मुश्किल हो,

बर्थडे पर्सन के सामने हाजिर है और लगता है अब तो धीरे धीरे हम खुद भी सिर्फ घर पर ही होके रह गए हैं। दोस्तों, सुविधा बिल्कुल बुरी बात नहीं है, बिल्कुल नहीं, लेकिन एक सवाल खुद से जरूर पूछना चाहिए, क्या हम सिर्फ काम आउटसोर्स कर रहे हैं या हमारी पूरी जिंदगी। एक दिन सुबह मैंने एक छोटा सा बच्चा देखा, स्कूल की गाड़ी में पीछे की सीट पर वो सो रहा था बड़े आराम से। ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, साथ में मेड बैठी थी। हो सकता है मम्मी पापा ऑफिस के लिए निकल गए हों, कोई बड़ी बात नहीं। हो सकता है दोनों बहुत व्यस्त हों और इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन मुझे एक बात सोचने पर मजबूर कर गई। आखिरी बार हमने किसी बच्चे का हाथ पकड़कर स्कूल कब छोड़ा था? स्कूल छोड़ना सिर्फ एक काम नहीं होता था पेरेंट्स के लिए, वो एक रास्ते का समय होता था। रास्ते में उस बच्चे से पूछना, होमवर्क कंप्लीट है ना, या आज टेस्ट है ना, डरना मत, अच्छे से करके आना, या फिर एक छोटा सा जोक सुना देना और उसकी हंसी देख लेना। ये सब यादें होती थी, मोमेंट्स होते थे और इन्हीं मोमेंट्स में सीख छुपी होती थी जीवन की। यादें कभी ऑनलाइन ऑर्डर नहीं कर सकते। वैसे ही एक और बात, आजकल कॉलोनी में सुबह सुबह एक अंकल दिखते हैं, 7-8 कुत्ते एक साथ घुमा रहे होते हैं। पहले मुझे लगा वाह बड़े डॉग लवर हैं, फिर पता चला ये सब अलग अलग घरों के डॉग्स हैं, उन्हें घुमाने का काम दिया गया है। और फिर एक और सवाल मेरे दिमाग में आने लगा, कुत्ता घुमाना सिर्फ उनकी एक्सरसाइज है या हमारी भी? कभी किसी पेट ओनर से जाके पूछे, डॉग वॉक पर सिर्फ डॉग खुश नहीं होता, इंसान भी हल्का हो जाता है, थोड़ी हवा खा लेता है, थोड़ी धूप खा लेता है, दो लोगों से नमस्ते कर लेता है और दिन की शुरुआत कितनी अच्छी हो जाती है, कितनी फ्रेश। अब एक छोटा सा मजाक, आजकल हम इतने बिजी हैं कि फिटनेस बोलता है सर थोड़ा चल भी लीजिए, मैं भी बोर हो गया हूं। और फोन का स्टेप काउंटर रोज शिकायत करता होगा, मैं नौकरी छोड़ रहा हूं भाई, मेरी कोई जरूरत नहीं है, प्लीज ले मी ऑफ। दोस्तों, दुनिया के कई देशों में लोग अपना खाना खुद बनाते हैं, जी हां खुद, चाहे वो किसी भी तबके के हों, किसी भी स्तर के हों। अपने बच्चों को स्कूल छोड़ते हैं, अपने घर की सफाई खुद करते हैं, डॉग्स को खुद घुमाते हैं, इसीलिए नहीं कि उनके पास पैसे नहीं होते, शायद हमसे कुछ ज्यादा ही होते हैं, बल्कि इसीलिए क्योंकि उनके लिए ये काम नहीं है, ये उनकी जिंदगी का हिस्सा है, वो आत्मनिर्भर हैं, सच में आत्मनिर्भर हैं। हमारे यहाँ कभी कभी सफलता का मतलब ये बन जाता है कि मुझे कुछ भी खुद नहीं करना पड़े, मतलब मैं बड़ा आदमी बन गया। लेकिन सोचिए, अगर इंसान कभी बाजार ही ना जाए, कभी सब्जी अपने हाथ से ही ना खरीदे, कभी अपने हाथ से एक कप चाय ना बनाए, कभी लाइन में खड़ा ही ना हो, तो वो जिंदगी के कितने रंग देख पाएगा। सब्जी खरीदने में भी तो मजा है, दो बातें हो जाती हैं, टमाटर वाले से मोल भाव हो जाता है, धनिया फ्री मिलेगा या नहीं इस पे बातचीत हो जाती है, और घर आकर ये प्राउडली बोलना, देखो आज सस्ता ले आया। वैसे सच बताइए, धनिया फ्री मिलने की खुशी होती है या नहीं? शायद सैलरी क्रेडिट होने से थोड़ी कम होती होगी, बट होती जरूर है। एक और बात, मम्मी के हाथ की चाय का टेस्ट किसी ऐप पर अवेलेबल नहीं है, नहीं हो सकता, कभी नहीं। पापा के साथ बाजार जाना किसी वेबसाइट पर ऑर्डर नहीं हो सकता। बच्चों के साथ स्कूल तक चलना किसी डिलीवरी पार्टनर से नहीं करवाया जा सकता। कुछ चीजें सिर्फ खुद करने की होती हैं, खुद महसूस करने की होती हैं, और वही उनकी एक्चुअल खूबसूरती होती है।
टेक्नोलॉजी हमें सुविधा

दे बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर सुविधा हमें अपनों से दूर कर दे, हमें हैंडीकैप बना दे, हमें इतना निर्भर बना दे कि हमारे पास खुद कुछ करने का मौका ही ना बचे, तो फिर थोड़ा रुक कर सोचना चाहिए। जिंदगी सिर्फ बड़े बड़े पलों से नहीं बनती, छोटी छोटी आदतों से बनती है, एक्सपीरियंसेस से बनती है। सबके साथ चाय पीना, रात को खाना बनाना, सुबह कॉलोनी में थोड़ा चल लेना, बच्चे की बात ध्यान से सुनना, डॉग्स के साथ पार्क में बैठ जाना, ये सब काम नहीं, यही तो असली जिंदगी के पल हैं। तो आज का सवाल आपसे सिर्फ इतना है, आपने आखिरी बार कौन सा ऐसा छोटा काम किया था जो सिर्फ खुद किया, और खुद सिर्फ इसलिए किया क्योंकि उसमें खुशी थी, ना कि कोई मजबूरी। इस बारे में सोचिएगा जरूर, क्योंकि सुविधा जरूरी है, लेकिन सुविधा के बदले अगर हम एक याद खो देना तो सौदा थोड़ा महंगा पड़ सकता है। सोच के देखिए। मैं हूं आरजे तनुषा और आप सुन रहे थे बातें इधर की उधर की। मिलते हैं फिर एक और कहानी के साथ, तब तक थोड़ा कम ऑर्डर करिए और जिंदगी थोड़ी खुद जी लीजिए। नमस्कार।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: पत्नी ने पूछा, क्या तुम मुझे याद कर रहे हो? पति ने बोला, अरे पगली, अगर कुछ याद करना इतना आसान होता मेरे लिए तो 10वीं में टॉप ना कर जाता मैं।

नमस्कार दोस्तों, आज की बात शुरू करते हैं एक और छोटे से सवाल से। आप बताइए, अगर आपको पहले से पता हो कि आज किसी अपने से आपकी आखिरी मुलाकात है, तो क्या आप उस मुलाकात में मोबाइल देखते रहेंगे या फिर उस पल को दिल से जिएंगे? सोचिए। हम अक्सर कहते हैं ना, कल मिल लेंगे, बाद में देख लेंगे, बाद में बात कर लेंगे यार, नेक्स्ट वीकेंड चलते हैं यार। लेकिन जिंदगी की डिक्शनरी में एक वर्ड है जो गारंटी से कभी नहीं मिलता, और आप जानते हैं वो क्या है? वो है कल। तभी कहते हैं ना, कल हो ना हो। जी हाँ, ये सच है, कल हो ना हो। जापान की कई खूबसूरत फिलोसफीज में से एक और खूबसूरत फिलोसफी है इचिगो इची। इसका मतलब है वन टाइम वन मीटिंग वंस इन अ लाइफ टाइम, यानी हर मुलाकात हर लम्हा सिर्फ एक ही बार होता है, वो बिल्कुल उसी तरह दोबारा नहीं आता, कभी नहीं। अब आप कहेंगे, अरे हम तो रोज ऑफिस जाते हैं, रोज वही लोग मिलते हैं, रोज वही रास्ते से जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लोग शायद वही होते हैं, लेकिन वो दिन, वो घड़ी, वो लम्हा, वो कभी वही नहीं होता दोस्तों। आज जो चाय आप दोस्त के साथ पी रहे हैं, कल शायद वो दोस्त किसी और शहर में हो। आज जो बच्चा स्कूल जाते वक्त आपसे हग करता है, कुछ साल बाद वही बच्चा बोलेगा, पापा मैं खुद चला जाऊंगा, आप रहने दो। और फिर आप सोचेंगे कि काश काश थोड़ी देर और उसके साथ चल लेता। दोस्तों, प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमारे पास वक्त कम है, वक्त है। प्रॉब्लम ये है कि हम सोचते हैं वक्त बहुत है, जो बिल्कुल गलत है। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देखिए। आज घर जाकर जब मम्मी या पापा कुछ बोल रहे हो, तो बस 2 मिनट के लिए मोबाइल साइड में रख दीजिएगा, सिर्फ उनकी आंखों में देखकर बात कीजिएगा, उनकी बात सुनिएगा। हो सकता है उन 2 मिनट में जो सुकून मिले, वो पूरी जिंदगी भर स्क्रोलिंग करके भी ना मिले दोस्तों। वैसे भी फोन की बैटरी लो हो जाए तो हम तुरंत चार्जर लगा देते हैं, ढूंढते हैं, भागते हैं, परेशान हो जाते हैं। पर रिश्तों की बैटरी अगर डाउन हो जाए तो हम कहते हैं, देखेंगे यार, कल मनाते हैं, मान जाएगा, टाइम देते हैं, वक्त देते हैं। एक और सवाल, कब आखिरी बार बारिश को सिर्फ देखा था आपने? फोटो खींचने के लिए नहीं, स्टेटस लगाने के लिए नहीं, कोई सॉन्ग ढूंढ के उसके ऊपर गाने के लिए नहीं, बस उस बारिश को महसूस करने के लिए। कब आखिरी बार चाय पीते हुए उसकी खुशबू पर ध्यान दिया था? उफ, वो खुशबू। कब आखिरी बार किसी दोस्त की बात बीच में काटे बिना बस सुनी थी, बस सुनी? हम प्रेजेंट में कम, नोटिफिकेशंस में ज्यादा जी रहे हैं, हम पास हो रहे हैं, जी नहीं रहे, बस गुजर रहे हैं। आजकल डिनर टेबल पर 4 लोग होते हैं और 5वां मेहमान होता है मोबाइल फोन। सब साथ बैठे होते हैं लेकिन सब अपनी ही दुनिया में लगे होते हैं। इचिगो इची कहता है, जिस इंसान के साथ हो उसी के साथ रहो ना, थोड़ी देर तो बिताओ उसके साथ। सिर्फ बॉडी से नहीं, माइंड भी वही होना चाहिए। एक और मजेदार बात बताती हूं, हम जानते सब हैं लेकिन मैं बस याद दिला रही हूं। वेकेशन पे जब हम जाते हैं तो 100 फोटोज तो कम से कम ले लेते हैं, फिर घर आकर याद ही नहीं रहता कि उस जगह की हवा कैसी थी, वहां की खुशबू कैसी थी, टेक्सचर कैसा था, लोग कैसे मुस्कुराते थे।
बस याद ये रहता है कि फोटो में कौन सा फिल्टर लगाया था और कौन से फिल्टर में सबसे अच्छी फोटो आई थी, तो उसको सेव कर दे नेक्स्ट टाइम के लिए। ऐसा करते हैं या नहीं, खुद से जरूर पूछेगा। कभी कभी लगता है कि हम यादें कम बना रहे हैं और प्रूफ ज्यादा कलेक्ट कर रहे हैं कि भाई हम गए थे, हमारा स्टैम्प है, ये देखो यहाँ की फोटो, वहां की फोटो, इधर की फोटो, उधर की फोटो। दोस्तों, जिंदगी अटेंडेंस शीट नहीं है, एक एक्सपीरियंस है भाई, एक अनुभव है। और एक्सपीरियंस प्रेजेंट में मिलता है। एक छोटी सी आदत बना लीजिए मेरे कहने से, जब भी किसी अपने से मिले आज के बाद, तो दिल में बस एक बार सोचिएगा, ये पल, यस यही वाला, ये दोबारा बिल्कुल नहीं आएगा, और ऐसा तो बिल्कुल नहीं आएगा। बस आपका पूरा बिहेवियर ना बदल जाए तो मेरा नाम बदल देना। आप धीरे बोलेंगे, ज्यादा सुनेंगे, कम जज करेंगे और थोड़ा ज्यादा अप्रिसिएट करेंगे। इसी फिलॉसफी की शुरुआत जापान की ट्रेडिशनल टी सेरेमनी से हुई थी, जहां हर मेहमान और हर चाय की बैठक को एक अनोखा, दोबारा कभी ना दोहराए जाने वाला एक अनुभव माना जाता था। जाते जाते आज का होमवर्क भी देखे जा रही हूं, करिएगा जरूर, कल चेक करूंगी। मजाक कर रही हूं, बस खुद के लिए कीजिए, होमवर्क के जैसे नहीं। आज किसी इंसान के साथ 10 मिनट बैठेगा, बिना फोन के, बिना टीवी के, बिना सोशल मीडिया के, बिना किसी स्क्रीन के, सिर्फ एक ही स्क्रीन हो बीच में, आप और आपका वो इंसान और उसकी आंखें शायद, सिर्फ बात कीजिए, मुस्कुराइए और उस इंसान को देखिए। हो सकता है सालों बाद आपको उस कॉन्वर्जेशन के एग्जैक्ट वर्ड्स याद ना रहे, लेकिन उस पल की जो फीलिंग है वो जरूर याद रहेगी। क्योंकि दोस्तों, जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी बड़े बड़े मोमेंट्स में नहीं, उन छोटे छोटे लम्हों में छुपे होते हैं, जिन्हें हम अक्सर बाद में कहते कहते खो जाते हैं। तो अगली बार जब किसी अपने के साथ चाय पीने बैठे, या दोस्त के साथ हंस रहे हो, या माँ आपको बस यूं ही आवाज दे दे, एक बार दिल से जरूर कहना, इचिगो इची, ये पल सिर्फ एक बार आएगा, सिर्फ एक बार मिला है, और शायद इसीलिए ये इतना खूबसूरत है। मुस्कुराते रहिए, अपनों के साथ वक्त बिताइए, और मुझसे फिर मिलिए कल की बातें इधर की उधर की में। नमस्कार।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: पत्नी ने बोला, अच्छा तुम मुझे ऐसी दो बातें बताओ जिनमें से एक को सुनकर तो मैं बहुत खुश हो जाऊं और दूसरे को सुनकर नाराज हो जाऊं। पति बोला, देखो पहली बात तुम मेरी जिंदगी हो और दूसरी बात लानत है ऐसी जिंदगी पर।

दोस्तों, आज की बात ने आपको थोड़ा सा इंस्पायर जरूर किया होगा, थोड़ी सी स्माइल जरूर दी होगी, या थोड़ा सा सोचने पर मजबूर तो जरूर किया होगा। मेरा मिशन तो अकम्प्लिश्ड है। मैं हूँ आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और ये था आपका शो बातें इधर की उधर की, सिर्फ SN रेडियो और रेडियो तात्या भील 90.8 FM पे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, थोड़ा यूमर, थोड़ा हार्ट और थोड़ा हटके लेकर एंगल। तब तक के लिए याद रखिए, स्टोरीज हर जगह होती हैं, बस उन्हें सुनाने का नजरिया चाहिए। स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी एंड स्टे क्यूरियस। बाय।

दोस्तों, एक नए दिन की शुरुआत के लिए जोशो खरोश से भरे हुए मैं और आप ये दिन शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। आइए, आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में। बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में भी हम जानेंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जिया और दूसरों के लिए उन्होंने मिसालें कायम की। इन्हीं लोगों से प्रेरणा लेते हैं और ऐसे बहुत सारे गीत सुनते हैं जो हमें बस खुश कर देंगे, पूरे दिन के लिए तैयार कर देंगे, जोश से भर देंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को जोशो खरोश के साथ। इंसान और हिमालय में बहुत सारी समानताएं हैं। सबसे बड़ी समानता तो यही है कि दोनों सबसे ऊपर पहुंचना चाहते हैं और बस इसी की जद्दोजहद में इनके जीवन में तमाम तरह की उथल पुथल लगी ही रहती है। फिर भी दोनों रुकते नहीं हैं। दोनों की यही खूबी इन्हें एक दूसरे के करीब भी ले आती है और जोड़ भी देती है। जैसे ही आप हिमालय के नजदीक पहुंचेंगे, वैसे ही इस धरती के सबसे युवा प्राणी यानी कि आप और सबसे युवा पर्वत श्रृंखला हिमालय के बीच एक रोमायनी शुरुआत हो जाएगी। दोनों ही अभी विकसित होने की प्रक्रिया में हैं, इसलिए दोनों ही अब भी बढ़ रहे हैं। अपने चरम को पाने की कोशिश में दोनों की यात्रा जारी है और वो चक्र कभी थमेगा नहीं। हालांकि हिमालय के लिए अपनी चोटी या चरम को छूना आसान नहीं है। अपने विकास के इस प्रयास में वो विशाल पर्वत रोज टूटता है और इससे बड़े बड़े हिमस्खलन होते हैं। हिमनद बनते हैं, टूटते हैं, लेकिन इन तमाम घटनाओं और अवरोधों के बाद इसकी यात्रा में कभी ठहराव नहीं आता। साफ तौर से दिखने वाली ये सारी अफरा तफरी इस पर्वत श्रृंखला के बढ़ने और अपने चरम को छूने की कोशिश का ही एक नतीजा है। यही बात मनुष्य के साथ भी देखने को मिलती है। जब भी कोई आदमी आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो उसके जीवन में मुश्किलें तो देखो दोस्तों आती ही हैं। ये बेहद सांकेतिक है। पर्वत श्रृंखला के बढ़ने से हर रोज भूचाल, भूस्खलन और अन्य प्राकृतिक घटनाएं देखने को मिलती हैं। ठीक ऐसा ही हाल इंसान के जीवन का भी तो है। जब आप आगे बढ़ना चाहेंगे तो आपके जीवन में भूचाल आएंगे, मुश्किलें आएंगी और वो सारी मुश्किलें आपका पीछा करेंगी। तो जो लोग निष्क्रिय होते हैं, बस यूं ही आलस में पड़े रहते हैं और बढ़ना नहीं चाहते, उनके जीवन में ठहराव होता है। वैसे तो देखने को उनका जीवन औरों से बेहतर नजर आता है, लेकिन सच्चाई तो देखिए दोस्तों कुछ और ही है। बेकार बैठे रहने से या कुछ नहीं करने की ललक से जीवन को नीरस बना ही दिया जाता है। जीवन बहुत बोरिंग हो जाता है, बहुत सुस्त हो जाता है, जीवन बेजान सा हो जाता है। जो लोग अपने विकास के लिए निरंतर कोशिश करते हैं, उनके जीवन में तो देखो उथल पुथल होगी ही ना, और ऐसा होना जरूरी भी है, तभी इंसान विकास के लिए आगे बढ़ेगा। हिमालय में सबसे बड़ा हिमस्खलन कोई 5 करोड़ साल पहले हुआ था। तब से अब तक ये 5 मिलीमीटर की रफ्तार से धीरे धीरे हर साल ऊपर उठ रहा है। हालांकि महाद्वीप पर इसका विस्तार चौड़ाई में भले ही 5 सेंटीमीटर हर साल हो रहा हो, लेकिन ऊंचाई के मामले में ये 5 मिलीमीटर की सालाना दर से बढ़ रहा है। जीवन के साथ भी हमेशा यही होता है दोस्तों। आप धरातल पर कितना भी कुछ कर लीजिए, लेकिन इससे ऊंचाई तो थोड़ी सी ही बढ़ती है। ये सिद्धांत सब पर लागू है। फिर चाहे आप भौतिक सुख या कल्याण की खोज में जुटे हों या फिर आध्यात्म की तरफ घूम गए हों।

जिंदगी की तपिश को सहन कीजिए जनाब। अक्सर वो पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश छाया में होती है।

0: दोस्तों, रेडियो सुनना इतना जरूरी क्यों है, आइए बताता हूं। प्रकृति ने हमें बनाया ही ऐसा है। जब हम कुछ सुनते हैं तो उसकी छवि, उसकी पिक्चर अपने दिमाग में बनाते हैं। तो रेडियो सुनने से हम तमाम क्रिएटिविटी को, अपनी रचनात्मकता को मजबूत करते हैं, अपने दिमाग में पिक्चर्स बनाते हैं, छवियां बनाते हैं और खुश होते हैं। तो इसलिए दोस्तों, रेडियो सुनते रहिए।
1: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
2: देखो भैया, इश्क होने लगे तो पूजा पाठ कर लेना, मोहब्बत होगी तो मिल जाएगी, बला होगी तो टल जाएगी।

रेडियो टांटिया भील आपके झाबुआ की आवाज। एक मूर्तिकार बहुत ही खूबसूरत मूर्तियां बनाता था। वो उन्हें बेचकर अच्छा पैसा कमा लेता था। जब मूर्तिकार का बेटा बड़ा हुआ तो वो भी मूर्तियां बनाने लगा। लोग उसकी मूर्तियों को बहुत पसंद करते, लेकिन जब भी वो कोई मूर्ति बनाता उसका पिता कोई ना कोई कमी निकाल देता। वो खुशी खुशी अपने पिता की सलाह पर अमल कर लेता। इस तरह लगातार सुधार से बेटे की मूर्तियां अपने पिता से भी ज्यादा अच्छी बनने लगी। मूर्तिकार कभी कभी अपने बेटे की मूर्तियों में कमियां निकाल ही देता था फिर भी, लेकिन उसके बेटे को ये अब अच्छा नहीं लगता था। एक दिन उसके सब्र ने जवाब दे दिया। वो बोला, पिताजी आप तो ऐसे कहते हैं जैसे आप बहुत बड़े मूर्तिकार हो। अगर आपको इतनी ही समझ होती तो आपकी मूर्तियां इतने कम दामों में ना बिकती। मुझे अब आपकी सलाह की कोई जरूरत नहीं है, मेरी मूर्तियां बिल्कुल ठीक हैं। इसके बाद पिता ने कमियां निकालना बंद कर दिया। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि लोग अब उसकी मूर्तियों की इतनी तारीफ नहीं करते जितनी पहले किया करते थे। उसकी मूर्तियों के दाम बढ़ने के बजाय कम होने लग गए और बिक्री भी बहुत घट गई। शुरू शुरू में उसको कुछ समझ नहीं आया। फिर वो अपने पिताजी के पास गया और उन्हें सारी बात बताई। उसके पिता ने कहा, बेटा मैं जानता हूं कि तुम्हारी जैसी मूर्तियां मैं नहीं बना सकता। ऐसा भी नहीं है कि मेरी सलाह की वजह से कभी तुम्हारी मूर्तियां बेहतर बनी हों, लेकिन जब मैं तुम्हारी मूर्तियों में कमियां दिखाता था तब तुम उसमें बेहतरी लाने की कोशिश करने लगते थे। बेटे वही कोशिश तुम्हारे कामयाब होने का बहुत बड़ा कारण थी, लेकिन जिस दिन तुम अपने काम से संतुष्ट हो गए बस तुम्हारी कामयाबी रुक गई। दोस्तों ठीक इसी तरह संसार में कोई भी इंसान किसी भी काम में 100% उत्तम तो हो ही नहीं सकता। हर इंसान में कुछ ना कुछ कमी रह ही जाती है। बस हमें उस कमी को ही तो तलाशना है और उसे ठीक करने की कोशिश करनी है। इसी कमी की तलाश करने के लिए हमें असंतुष्ट होना सीखना होगा, तभी हम इस जीवन में आगे बढ़ पाएंगे।

दोस्तों, जिस तरह हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अच्छे भोजन की जरूरत होती है, अच्छे पौष्टिक तत्वों की जरूरत होती है, उसी तरह से हमारे दिमाग को, हमारे मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए अच्छे विचारों की जरूरत होती है। इसलिए कहा भी गया है कि लगातार अच्छे विचारों को, अच्छे संगीत को सुनते रहिए, और जब आप सुनेंगे तो उनकी अच्छी पॉजिटिव सकारात्मक छवियां बनाएंगे अपने दिमाग में। तो दिमाग मेहनत करेगा, दिमाग की एक्सरसाइज होगी, व्यायाम होगा और वो स्वस्थ रहेगा। इसलिए दोस्तों, रेडियो सुनते रहिए, ये चीज आपको किसी और माध्यम में नहीं मिलेगी। आइए दोस्तों, आज आपको मिलवाते हैं धीरेन सोलंकी से, जो एक युवा हैं और पशु पालक किसान हैं। दोस्तों, कुदरत ने इस धरती पर जितने भी जीव पैदा किए हैं, उसने उनमें कुछ ना कुछ उपयोगिता डाली। ये हम इंसानों की प्रॉब्लम है, हम इंसानों की कमी है, जो उनकी अहमियत को नहीं देख पाते और किसी जीव को पूजने लगते हैं, किसी से नाराज हो जाते हैं और किसी का मजाक उड़ाते हैं। कम से कम उत्तर भारत में तो गधों को इज्जत की निगाह से तो नहीं देखा जाता। क्यों दोस्तों, गधे ही तो गधे ही होते हैं, है ना, ऐसा कहा जाता है। और तो और, किसी की बेइज्जती करनी हो तो उसे गधा कह दिया जाता है। अब भला गधे जैसे जीव का इसमें क्या दोष है? यूं देखा जाए तो गधों से काम भी जम के लिया जाता है, लेकिन उन्हीं पर मजाक करते हुए मुहावरे भी बना दिए जाते हैं। लेकिन गुजरात के धीरेन सोलंकी के लिए गधी किसी नेमत से कम नहीं। इस जानवर ने महज 22 साल की उम्र में ही इन्हें करोड़पति बना दिया। जी हां, सुन के अजीब सा लगा होगा आपको, तो लीजिए सुनिए। धीरेन की इस कामयाबी ने यह साबित किया कि यदि आपके पास नया आइडिया हो, धैर्य हो और आगे बढ़ने का जज्बा हो, तो गधी जैसा जानवर भी आपको मालामाल कर सकती है। आपको सुनकर हंसी आ रही होगी दोस्तों। गुजरात के पाटन जिले के मनुंद गांव में पैदा हुए धीरेन सोलंकी का सपना किसी निम्न मध्य वर्गीय परिवार से कुछ ज्यादा नहीं था। पिता अरविंद भाई सोलंकी चाहते थे कि बेटा पढ़ लिख कर किसी सरकारी स्कूल में मास्टर बन जाए तो परिवार की कुछ आर्थिक मदद हो जाएगी। धीरेन अपने परिवार और पिता की अपेक्षाएं समझते थे, उन्होंने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखी। विज्ञान संकाय से स्कूली पढ़ाई पूरी की, फिर उन्होंने प्राइमरी शिक्षक प्रमाण पत्र लिया, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा पास की और केंद्रीय विद्यालय संगठन इस तरह की सभी परीक्षाएं पास कर ली, लेकिन कोई स्थायी नियुक्ति, कोई नौकरी नहीं मिली। छोटी मोटी नौकरियां की, लेकिन उनसे क्या होता। साल 2020 में पड़ोस के प्रदेशों में आयोजित शिक्षक बहाली परीक्षाओं में भी बैठे वो, लेकिन हर जगह एक लंबा इंतजार था। करीब 6 महीने तक परिणामों का इंतजार करते करते उन्हें निराशा घेरने लगी। बेटे की चिंता पिता को भी परेशान करने लगी। अब जाहिर है, कारोबारी बनने का गुजराती जज्बा जाग उठा। धीरेन के पिता ने कहीं पढ़ा कि केरल और कर्नाटक में गधी पालन कारोबार भी होता है। देश में गधी के दूध की मांग या उसके उपयोग के बारे में उतनी जानकारी तो किसी को नहीं थी, लेकिन मलेशिया

रशिया, चीन और तुर्की जैसे देशों में इसकी बड़ी भारी मांग थी। अरे वाह, अरविंद भाई सोलंकी ने यह बात अपने बेटे को बताई। धीरेन तो इस आइडिया से चौंक गए। उन्होंने शिक्षक बनने के सारे सपने छोड़कर ऑनलाइन इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर दिया। अब तक उन्हें यह भी पता नहीं था कि भला इस दूध का क्या क्या उपयोग होता होगा। यहां तो भैंस गाय के दूध के 60 रुपए लीटर होने पर इतना हंगामा हो जाता है, तो गधी के 1 लीटर दूध की कीमत 1000 रुपए जानकर तो वो हैरानी रह गए। दरअसल गधी के दूध में रोग प्रतिरोधी गुण बहुत होते हैं, लिहाजा कई दवाओं में इसका इस्तेमाल होता है। गाय के दूध से एलर्जी हो जाने वाले नवजातों के लिए भी ये किसी रामबाण से कम नहीं होता। फिर कई तरह के सौंदर्य उत्पादों में भी इसकी भारी मांग है। धीरेन के पास डंकी फार्म शुरू करने का कोई व्यवहारिक प्रशिक्षण भी नहीं था। सिर्फ पिता के हौसले और आत्मविश्वास की बदौलत उन्होंने साल 2022 में अपना डंकी फार्म शुरू किया। इसके लिए उन्होंने करीब 40 लाख रुपए का कर्ज उठाया। इस रकम से उन्होंने 20 गधी खरीदी और एक 30x40 फीट का शेड बनाकर तैयार किया, जहां इन पशुओं को रखा जा सके। धीरेन ने सोचा था कि आज गधी खरीदी और कल से उसके दूध की बिक्री शुरू हो जाएगी, लेकिन गुजरात में तो इसकी कोई मांग थी ही नहीं और विदेश में इसे पाउडर के शक्ल में भेजा जाना था। पहले साल तो उन्हें बहुत घाटा हुआ, क्योंकि दूध को सुरक्षित रखना और उसे पाउडर में बदलने की तकनीक उनके पास थी ही नहीं। इस काम को करने वाली कंपनियों से करार करते करते और तालमेल बैठाते बैठाते साल भर निकल गया। उन्हें पहला ऑर्डर 50 किलोग्राम पाउडर का मिला। अमूमन 1 किलो पाउडर तैयार करने में 16 से 17 लीटर दूध लग जाता है। संजोग से उस वक्त उन्होंने 200 किलो पाउडर का भंडारण कर रखा था। 63,000 रुपए प्रति किलो के हिसाब से उन्हें भुगतान मिला। काम बस चल निकला। अब पीछे मुड़कर देखने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। ई कॉमर्स ने उन्हें ग्राहकों का एक विशाल फलक मुहैया करा दिया। आज उनके पास हलारी नस्ल की करीब 40 गधी हैं, जिनके दूध से धीरेन 3 लाख रुपए महीने की कमाई कर रहे हैं। उन्होंने मवेशियों की देखभाल के लिए 3 से 4 लोग भी रखे हुए हैं और अपने पिता के साथ खुद भी पूरी तरह जुटे रहते हैं। धीरेन की यह यात्रा उन हजारों लाखों नौजवानों को रास्ता दिखाती है जो अपना बेशकीमत वक्त तंत्र और शासन को कोसने में लगा रहे हैं। धीरेन अगर सोचते ही रहते कि गधी के दूध का कारोबार करने पर समाज उनकी क्या खिल्ली उड़ाएगा, तो वो आज जिस जगह हैं वहां कभी नहीं पहुंचते। खुद के रोजगार को अंतिम विकल्प के तौर पर देखने का नजरिया बदलने की जरूरत है दोस्तों, क्योंकि इससे सिर्फ अपनी भलाई नहीं होती, बल्कि आप उसके विस्तार के साथ समाज और देश का भी भला करते हैं। बतौर शिक्षक बच्चों को शिक्षित करने का सुख धीरेन को अवश्य मिलता, मगर वो 4 लोगों को रोजगार नहीं दे पाते। आज वो एक शिक्षक के औसत तनख्वाह से कई गुना ज्यादा कमा रहे हैं। धीरेन सोलंकी की तरह जो भी अनूठी योजना के साथ आगे कदम बढ़ाएगा, कामयाबी तो दोस्तों उसे मिलेगी ही।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: जेलर ने पूछा, सुनो कल तुम्हें फांसी होगी, बताओ आखिरी इच्छा है कुछ? कैदी ने कहा, जी मैं तरबूज खाना चाहता हूँ। जेलर ने कहा, लेकिन ये तरबूज का तो मौसम ही नहीं है। कैदी ने कहा, कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर लूंगा। रेडियो टांटिया भील, आपके झाबुआ की आवाज।
2: जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख, कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख।

दोस्तों, जिस तरह हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अच्छे भोजन की जरूरत होती है, अच्छे पौष्टिक तत्वों की जरूरत होती है, उसी तरह से हमारे दिमाग को, हमारे मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए अच्छे विचारों की जरूरत होती है। इसलिए कहा भी गया है कि लगातार अच्छे विचारों को, अच्छे संगीत को सुनते रहिए, और जब आप सुनेंगे तो उनकी अच्छी पॉजिटिव सकारात्मक छवियां बनाएंगे अपने दिमाग में। तो दिमाग मेहनत करेगा, दिमाग की एक्सरसाइज होगी, व्यायाम होगा और वो स्वस्थ रहेगा। इसलिए दोस्तों, रेडियो सुनते रहिए, ये चीज आपको किसी और माध्यम में नहीं मिलेगी। ऐसा लिखा गया है कि सुदामा जी जब भगवान के यहां से चले तो भगवान ने उन्हें कुछ नहीं दिया। सम्मान तो किया लेकिन दिया कुछ नहीं। अब दूसरा कोई होता तो नाराज हो जाता कि मैं आपके यहां अब कभी नहीं आऊंगा। आप किस तरह के दोस्त हो? मैं तो गरीब ब्राह्मण हूं और मुझे कुछ भी नहीं दिया। मगर जैसे भगवान हैं, वैसे ही सुदामा भी भगवान हो गए, भले ही वो महल में नहीं रहते थे। ऐसा लिखा गया है कि ईश्वर को जानने वाला ईश्वर ही हो जाता है। सुदामा ब्रह्म को पहचानने वाले संत हैं, वो ब्रह्म के समान हो गए। उन्हें वही आनंद चित्त की अवस्था मिल गई, वही श्रद्धा की अवस्था मिल गई जो भगवान को मिली हुई है। तो सुदामा जी ने मांगा कुछ भी नहीं। आज का कोई होता तो हंगामा कर देता, खरी खोटी सुनाता, अनशन पर भी शायद बैठ जाता। सुदामा जी ने भी विचार तो किया कि भगवान ने कुछ दिया नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि भगवान गरीब हो गए हों। वैसे भगवान तो कभी गरीब नहीं हो सकते ना। संपूर्णता में जिनको सब कुछ मिल गया हो उन्हें ही तो भगवान कहा जाता है। भग का मतलब होता है पूरा ऐश्वर्य, पूरी अमीरी, धर्म संपूर्ण, वैराग्य संपूर्ण, ज्ञान संपूर्ण, सभी कुछ तो होता है भग का मतलब। भगवान को गरीबी कैसे आएगी? वो तो समग्र धर्मशाली, धनशाली हैं। क्यों? ऐसा तो नहीं कि कंजूस हो गए भगवान। फिर सुदामा जी ने सोचा कि ऐसा क्यों सोचें? भगवान तो परम उदार भी हैं, कल्याणकारी गुणों के समुद्र हैं, प्रेम, लगाव और शक्ति के समुद्र हैं। भगवान कभी पाप तो करते नहीं। जितने दुर्भाव हमारे मन में आते हैं दोस्तों, उनका मूल कारण पाप ही है। चाहे गुस्सा हो, लालच हो, द्वेष हो, सबके मूल में बैठा है क्या? पाप। सुदामा जी ने समाधान निकाला। अद्भुत भगवान की कृपा है। भगवान ने हमारे परित्याग को, हमारे को जो दिया, रोम रोम से बाहर से भीतर तक हमारा समुदाय की सेवा के लिए जीवन दिया, उससे कहीं हम अलग ना हो जाएं, यही विचार किया होगा। कहीं हम भोगी ना हो जाएं, कहीं हम संतुष्ट ना हो जाएं, कहीं हमारा भजन छूट ना जाए, इसलिए भगवान ने नहीं दिया। कहीं हमारी विशिष्टता लुप्त ना हो जाए, गायब ना हो जाए, कहीं हम समाज के लिए जीना छोड़कर अपने लिए जीना शुरू कर दें, इसलिए भगवान ने हमें कोई भौतिक संसाधन नहीं दिया। अब ये विचारों की महान अवस्था है मित्रों, इससे बड़ा व्यवहार भला क्या होगा। सुदामा जी ने कितना बड़ा समाधान निकाल लिया। अब तो लोग कर्जा लेकर व्यक्तिगत संपत्ति बना लेते हैं, फिर दिवालिया घोषित करके गायब हो जाते हैं। बड़े बड़े शहरों में हजारों लोग पूर्ण संपत्तिवान होकर भी अपना दिवाला निकाल रहे हैं। ऐसे लोगों को कब और कैसे सुकून मिलेगा, कैसे शांति मिलेगी? कभी नहीं मिलेगी।

दोस्तों, रेडियो सुनने का एक और फायदा बताता हूं। रेडियो अच्छे सकारात्मक गीत, संगीत और विचारों के साथ आपके दिमाग की, आपके मस्तिष्क की व्यायाम शाला है। आप रेडियो बिना उसकी तरफ देखे हुए सुन सकते हैं। अपने काम करते रहिए और रेडियो सुनते रहिए, है ना मजेदार। रेडियो के साथ बड़े बड़े लक्ष्य हासिल करने के लिए बड़ी कोशिशें जरूरी होती हैं। क्यों, आप कोई भी एक भारी भरकम लड़ाई एक सुई की मदद से कर सकते हैं क्या? तलवार तो चाहिए ही होगी ना। हफ्तों, महीनों और सालों की मेहनत की भी जरूरत हो सकती है। क्यों, आपको क्या लगता है, कोई 3 साल का, 4 साल का बच्चा नर्सरी क्लास छोड़कर सीधे पीएचडी कर सकता है क्या? साल दर साल मेहनत करते हुए आगे बढ़ता है वो, तब शायद 25-30 साल में वो पीएचडी तक पहुंचता है। क्या ये सालों की मेहनत नहीं हुई उस बच्चे की? इतने सालों के बाद जाकर उसे मुकाम हासिल होता है, बढ़िया नौकरी मिलती है या कोई अच्छा व्यवसाय चालू होता है और वो समाज में सफल कहलाता है। कई बार लोग ऐसे लक्ष्य तय कर लेते हैं जो उनकी क्षमता से बहुत ज्यादा होते हैं। देखिए, बुरा ना मानिएगा, कोई भी व्यक्ति कमजोर नहीं होता, लेकिन कोई बहुत ज्यादा पतला दुबला सा व्यक्ति अगर सोचने लगे कि मैं बॉडी बिल्डर बनूंगा, बनने को बन भी सकता है, लेकिन फिर भी हमें ये तो सोचना ही चाहिए ना कि हमारी क्षमता क्या है। हम गलत तरीके से कहीं अपनी क्षमता से ज्यादा का टारगेट तो नहीं ले बैठे। हम अपने लक्ष्यों पर कुछ समय तो मेहनत करते हैं, फिर कोशिशें छोड़ देते हैं क्योंकि वो हमारी क्षमता से परे हैं। जरूरी यह है कि आप सकारात्मक मानसिक नजरिया बनाएं और उसे कायम रखें।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: लड़की ने पूछा, सुनो ये गूगल मेल होता है या फीमेल? लड़का बोला, बेबी हर हालत में फीमेल होता है। लड़की बोली, क्यों? लड़के ने कहा, क्योंकि देखो अपना सेंटेंस पूरा करने से पहले ही वो उसका सजेशन और सब कुछ देना शुरू कर देता है।
2: दुख हो या सुख, जब सदा संग रहे ना कोई।

0: तो दोस्तों, इस जोश को, इस उत्साह को, इस खुशी को बनाए रखिएगा पूरे दिन। कल सुबह हम लोग फिर मुलाकात करेंगे एक नए जोश के साथ, नए उत्साह के साथ जिंदगी को जीने के लिए। मैं आपका दोस्त हूं समीर, कल मिलते हैं।
1: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM झाबुआ की आवाज।
2: हमारे जल संसाधन।
3: पानी या जल प्रकृति की अनमोल देन है। जीवन और उसके अस्तित्व के लिए यह इतना जरूरी है कि इसके बिना तो जीवन ही असंभव है। जैसा कि किसी ने ठीक ही कहा है, ना होता जल तो जग जाता जल। वास्तव में जीवन की उत्पत्ति जल से ही प्रारंभ हुई है। हमारे शरीर का लगभग 65% भाग पानी ही है। दैनिक जीवन की प्रत्येक घरेलू प्रक्रिया में, जैसे खाना बनाने से लेकर पीने के पानी तक, नहाने से लेकर कपड़े धोने तक, शॉर्ट से लेकर सफाई तक, प्रतिदिन एक व्यक्ति लगभग 120 लीटर पानी खर्च करता है, जिसमें औसतन 2 लीटर पानी पीने के लिए ही चाहिए।
4: हमारे देश में पानी का सबसे अधिक उपयोग कृषि में फसलों की सिंचाई के लिए होता है। मवेशियों को भी काफी मात्रा में पानी चाहिए। इसी प्रकार विभिन्न उद्योगों में भी इसकी जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये एक अच्छा घोलक, शीतक और सफाई का माध्यम है। बिजली बनाने का एक मुख्य साधन पानी ही है, जिसे जल विद्युत या पन बिजली कहते हैं। आज भी परिवहन का सबसे सस्ता साधन नदियों में चलने वाली नौकाएं या समुद्री जहाज ही हैं।
3: काफी हद तक मौसम भी तो पानी और उसकी मात्रा पर निर्भर करता है। जलाशय और खासकर विशाल सागर, जो ऊष्मा ऊर्जा के बैंक का कार्य करते हैं, जो ऊष्मा को अवशोषित करते हैं और उसे छोड़ते हैं। इस कारण समुद्र तट के क्षेत्रों की जलवायु समुद्र से दूर के क्षेत्रों से भिन्न होती है। समुद्र तट के इलाकों में न तो सर्दी में ज्यादा सर्दी और न ही गर्मियों में ज्यादा गर्मी ही पड़ती है।
4: मगर ये पानी आता कहाँ से है, यानी इसके मुख्य स्रोत क्या क्या हैं?
3: आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि पृथ्वी पर कुल पानी का लगभग 97% महासागरों और समुद्रों में है, जो कि धरती की 3/4 सतह पर फैले हुए हैं। समुद्र का पानी खारा होता है, इसका उपयोग सीधे तौर पर नहीं किया जा सकता। शेष 3% ताजे जल के रूप में उपलब्ध है। इस 3% में से 2% जल हमारी पहुंच के बाहर है, क्योंकि ये जमा हुआ है। हिम के रूप में पहाड़ों की चोटियों पर, या ग्लेशियरों के रूप में, या फिर अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और ध्रुवों पर बर्फ की विशाल और मोटी चादर के रूप में, जहां पेंगुइन और सील रहते हैं। इस प्रकार सिर्फ 1% जल ही नदियों और झीलों में है, या फिर भूमिगत जल जो हम कुओं और नलकूपों के द्वारा निकालते हैं, और कुछ हवा में नमी और बादलों के रूप में। इसे यूं समझें कि अगर धरती पर 9 चम्मच पानी जमी हुई बर्फ के रूप में है, तो नदियों में बहता पानी 1 बूंद के बराबर है।
4: सच कहा जाए तो पानी हमारे आसपास चारों तरफ है। यहाँ तक कि रेगिस्तान की सूखी हवा में भी पानी की आर्द्रता अवश्य होती है। हमारे पैरों के नीचे की मिट्टी में कुछ न कुछ मात्रा में पानी मौजूद रहता है और उसके नीचे भूमिगत जल।
3: आपने सही बताया, मगर पानी तो वर्षा से भी आता है।
4: हमारे खेतों की फसलों के लिए और पीने का पानी काफी मात्रा में वर्षा से ही आता है। इस विषय पर आप कुछ और बताना चाहेंगे?
3: हाँ, क्यों नहीं। हमारे देश में जलवायु की विविधताएं हैं। कहीं थार जैसे रेगिस्तान हैं, तो कहीं हिमालय जैसे बर्फ से ढके हुए पहाड़। इसलिए वर्षा में काफी असंतुलन और असमानता है। जैसे राजस्थान के जैसलमेर में 20 सेंटीमीटर के लगभग वर्षा प्रतिवर्ष होती है, तो आसाम के चेरापूंजी में लगभग 1100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इसी तरह मुंबई और पुणे के बीच सिर्फ 160 किलोमीटर की दूरी पर भौगोलिक कारणों से मुंबई में मानसून के समय लगभग 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है और इतने ही समय में पुणे में लगभग 75 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तभी तो किसी कवि ने कहा है, भारत तेरी अजब कहानी, दो कोस पर बदले पानी और 100 कोस पर वाणी।
4: फिर भी हम वर्षा के मामले में भाग्यशाली हैं। कुल मिलाकर हमारे देश में औसत प्रतिवर्ष 115 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जो विश्व के अन्य भागों की तुलना में बहुत अधिक है। भारत सबसे अधिक वर्षा के क्षेत्र में ब्राजील के बाद दूसरे स्थान पर आता है। कई कारणों से कुल वार्षिक वर्षा का 10वां भाग ही हम उपयोग में ला पाते हैं। एक अनुमान के अनुसार अगर स्थितियां बदली नहीं तो आज से 40 वर्ष बाद भी 1/4 से ज्यादा पानी हम उपयोग में नहीं ला सकेंगे।
3: हमारे देश में व्यापक जल स्रोतों का प्राकृतिक खजाना है। कहीं विशाल नदियां, तो कहीं आभूषणों जैसी झिलमिलाती झीलें, कहीं झरझर करते जलप्रपात। और तीन तरफ फैला लंबा समुद्री किनारा। इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारे देश में पानी की कोई कमी नहीं है।
4: पानी तो एक मुख्य समाचार बन जाता है जब देश के किसी भाग में सूखा पड़ जाता है,

या किसी प्रदेश में बाढ़ आ जाती है। या कई मौतें जल प्रदूषण से हो जाती हैं।

0: या गर्मियों में महानगरों में पानी का अभाव हो जाता है, जीवन के लिए कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं।
1: हमारे देश में पानी की प्रत्यक्ष अधिकता भ्रामक है और हम ऐसा मान लेते हैं कि हमें पानी का अभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन इस सच्चाई से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि पानी का हम दुरुपयोग भी करते हैं और कभी कभी अधिक और अनुचित उपयोग भी करते हैं। परिणाम स्वरूप पानी की गंभीर कमी की परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं।
0: हमारे देश में हर एक को आवश्यकता अनुसार पानी क्यों नहीं मिल पाता है, इसके क्या कारण हैं?
1: पानी की कमी के कई कारण हैं। इनमें प्रमुख हैं बढ़ती हुई आबादी की बढ़ती हुई पानी की आवश्यकताएं, पीने के पानी का मुख्य स्रोत भूमिगत जल है। अधिक जरूरतों को पूरा करने के लिए ये संसाधन तीव्र गति से कम हो रहा है। कई प्रदेशों में भूमिगत जल का बहुत उपयोग होने लगा है। भूमि के नीचे से जल निकालने की दर भूमि में जल रिसने की दर से अधिक है। परिणाम स्वरूप भूमिगत जल स्तर यानी वाटर लेवल बहुत नीचे चला गया है।
0: देखिए, बरसात तो सिर्फ वर्षा ऋतु में होती है ना, इसलिए दूसरे समय के लिए पानी का संचय करना पड़ता है, और पानी का संचय करना कोई आसान काम नहीं है।
1: पानी को जमा करके रखने का एक मुख्य तरीका है बांध बनाना। पानी को बड़े पैमाने पर बांध बनाकर उसे एक जगह पर विशेष उद्देश्यों के लिए रोक लिया जाता है। बांध के जल का उपयोग कृषि में सिंचाई के लिए नहरों के माध्यम से किया जाता है और सूखे में पानी की कमी से बचा जा सकता है। भारत में भाखड़ा बांध, टिहरी बांध, हीराकुंड बांध, रिहंद बांध, मिस्र में अश्वान बांध और पाकिस्तान में तरबेला बांध और अमेरिका में कूली और हैवर बहुउद्देश्य परियोजनाओं के उदाहरण हैं। वर्षा के पानी को जमा करके खेती के लिए और यहाँ तक कि घरेलू जरूरतों के लिए भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है। सावधानी से जमा किया हुआ पानी साफ होता है और सुरक्षित भी।

0: रेडियो टंट्या भील 90.8 एफएम जाबवा की आवाज।
1: वन में मेरा मन है। पेड़ों की हरियाली, ठंडी ताजी हवा एक नई ऊर्जा का एहसास दिलाती है। सच में वन एक बहुत उपयोगी प्राकृतिक संपदा है, फिर भी पता नहीं क्यों हम अपनी जरूरतों को पूरा करते करते ये भूल जाते हैं कि इनकी देखभाल और सुरक्षा हमारी ही जिम्मेदारी है। अरे ये आवाज कैसे सुनाई दे रही है इधर से? लगता है कोई गा रहा है, जरा सुना जाए।

0: देखो वनों के होते हैं कितने प्रकार, कुछ वन पर्वतीय, कुछ पतझड़ीय, तो कुछ सदाबहार।
1: कहीं तेंदू तो कहीं महुआ, कहीं साल तो कहीं पलाश, बचाएं इनको हमें कहीं करनी न पड़े फिर तलाश।

0: अरे वाह, कितना सुंदर संदेश था। सच ही तो कहा है, वन से ही जीवन है। वन है तभी तो हम हैं। तो क्यों ना हम सभी अपनी रोजमर्रा की छोटी छोटी गतिविधियों में सावधानी बरतकर अपने हिस्से की जिम्मेदारी पूरी करें और वनों के संरक्षण में अपना योगदान दें। जैसे वनों से मिलने वाली चीजों, कागज लकड़ी का समुचित उपयोग, पेड़ों की कटाई को रोकना, नए पेड़ लगाना और भी बहुत कुछ। आप भी सोचिए और अपनी भागीदारी सुनिश्चित कीजिए।
1: वन बचाएं। अमित बेटा।
2: जी माँ।
1: मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ, तुम दादाजी और सोनिया दीदी के पास जाकर बैठो।
2: ठीक है माँ।
1: और हाँ, देखो उन्हें तंग मत करना।
2: अच्छा माँ, मगर तुम जल्दी आना।
1: हाँ मैं जल्दी आ जाऊंगी, तुम जाकर खेलो।
2: अच्छा माँ।

0: सोनू दीदी
1: बोलो।
0: ये देखो मैंने शेर का चित्र बनाया है।
1: अरे वाह इतना सुंदर।
2: अरे वाह भाई वाह अमित, अरे तुमने तो शेर का चित्र बहुत अच्छा बनाया है।
1: शेर तो जंगल का राजा होता है, पर अमित तुमने जंगल तो बनाया ही नहीं।
0: अरे हाँ सुनू दीदी।
1: हाँ
0: ये जंगल कैसा होता है?
1: जंगल
2: जंगल हमारे गांव के पास ही है बेटे।
1: बिल्कुल ठीक।
2: देखो जंगल का मतलब दूर दूर मीलों तक घने पेड़ पौधे झाड़ियाँ, समझे?
1: हाँ।
2: इसमें ढेर सारे जंगली जीव जंतु जैसे बाघ, शेर, हिरण, हाथी, हाँ, सांप, बिच्छू, कीड़े मकोड़े आदि रहते हैं।
1: और जंगल इन सभी जीवों का घर होता है ना दादाजी?
2: बिल्कुल सही सोनिया बेटी। दरअसल जंगल यानी वन हमेशा हमारे लिए वरदान रहे हैं।
1: अच्छा
2: समझे? हाँ ये प्रकृति का उपहार है। आज बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण के कारण वनों का महत्व और भी बढ़ गया है।
1: अच्छा दादाजी।
2: हाँ भाई अगर वन न हो तो हम सब पर संकट छा जाएगा। हाँ और पर्यावरण प्रदूषण बढ़ता ही चला जाएगा।
1: पर्यावरण प्रदूषण ये क्या होता है दादाजी?
2: अरे बेटा पर्यावरण हमारे आसपास के वातावरण को कहते हैं, समझे? जैसे हवा, पानी, मिट्टी, पहाड़, पेड़, पौधे, ये सब कुछ। अगर ये प्रदूषित हो जाएं, यानी गंदे हो जाएं, तो उसे पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं, समझे? हमारे ऊपर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है।
1: अच्छा वो कैसे दादाजी?
2: भाई जैसे गंदा पानी पीने से अनेक बीमारियां होती हैं, वैसे ही प्रदूषित वायु में सांस लेने से सांस संबंधी बीमारी हो जाती है।
1: अच्छा।
2: और बेटे अगर वन न हो तो सभी जीवों का जीना दूभर हो सकता है।
1: वो कैसे दादाजी?
2: सुनो वन वातावरण प्रदूषित होने से बचाते हैं और हमें शुद्ध हवा देते हैं।
1: अच्छा।
2: हाँ पेड़ पौधों के अंदर जो नमी होती है वो वर्षा कराने में सहायक होती है।
1: अच्छा।
2: भाई इन सब के अलावा वनों से हमें ढेरों कीमती सामान भी मिलते हैं। जैसे अनेक जड़ी बूटियां, फल, लकड़ी, रबर, गोंद और पत्तियां और पेड़ों की छालें जिनका उपयोग हम दवा, फर्नीचर, खाद्य पदार्थ आदि के रूप में करते हैं।
1: अच्छा दादाजी। वन इतने उपयोगी हैं, फिर इनका विनाश क्यों हो रहा है?
2: अरे बेटे इसके बहुत से कारण हैं, जैसे हमारे देश में जनसंख्या ज्यादा हो गई है।
1: अच्छा।
2: लोगों के पास रहने की जगह कम पड़ने लगी है। और भाई लोगों को रहने के लिए जगह तो चाहिए, इसलिए लोग वनों को काट कर अपने रहने की जगह बना रहे हैं।
1: अच्छा।
2: हाँ बड़े बड़े कारखानों के लिए भी जगह की जरूरत है।
1: अच्छा।
2: इसके लिए भी वन काटे जाते हैं।
1: अच्छा।
2: और पेड़ों की लकड़ियाँ प्रमुख साधन है। इसके अलावा झूम खेती से भी वनों का विनाश हो रहा है।
1: अच्छा दादाजी। दादाजी ये झूम खेती क्या है?
2: देखो बेटा झूम खेती हमारे देश के उत्तर पूर्वी राज्यों तथा अन्य पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है, समझे? भाई इस प्रकार की कृषि में लोग भूमि के एक टुकड़े पर कुछ दिन खेती करने के बाद दूसरी जगह वनों को साफ कर खेती करना शुरू कर देते हैं।
1: अच्छा ऐसा करते हैं?
2: हाँ इसके कारण नागालैंड, असम, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम जैसे राज्यों में वन लगातार कम होते जा रहे हैं।
1: दादाजी, इन वनों को बचाया कैसे जाए?
2: अरे बेटा, वनों को तो हम कई तरीकों से बचा सकते हैं।
1: वो कैसे?
2: जैसे ईंधन के लिए लकड़ी का प्रयोग न कर कोई अन्य वस्तु, जैसे गोबर गैस, प्राकृतिक गैस और सौर ऊर्जा का उपयोग करें।
1: अच्छा।
2: हाँ, और इमारत और फर्नीचर में लकड़ी का उपयोग न करके फाइबर, शीशे, लोहे का उपयोग कर सकते हैं।
1: दादाजी,
2: बोलो बेटे।
1: हम पेड़ काटने से पहले पेड़ लगा भी तो सकते हैं।
2: अरे वाह वाह अमित भाई, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो बेटे। सोनिया बेटी।
1: हाँ जी।
2: देखो जरा कौन आया है।
1: हाँ दादाजी, मैं अभी देखती हूँ।

0: रेंजर चाचा आप? हाय ये नमस्ते।
1: नमस्ते बेटी नमस्ते। काका नमस्ते।
2: अरे भाई रेंजर आओ।

0: अखबारों में वनों के महत्व पर लेख लिखकर और पोस्टर बैनर के जरिए वन बचाने का संदेश देकर।
1: अच्छा चाचा जी, वनों को बचाने के लिए क्या क्या किया जा रहा है?
0: बच्चों, पेड़ों को बचाने के लिए अनेक आंदोलन हुए हैं।
1: अच्छा,
0: वर्षों पहले उत्तराखंड के लोगों ने चिपको आंदोलन की शुरुआत की। इसमें गांव के सभी लोगों ने पेड़ों से चिपक कर उन्हें कटने से बचाया।
2: देखा बच्चों?
1: हां जी।
0: ठीक इसी प्रकार कर्नाटक के सिरसी जिले के सालकड़ी गांव के निकट एक जंगल में अप्पिको आंदोलन शुरू हुआ। वहां वन विभाग ने जब पेड़ काटने शुरू किए तो गांव के स्त्री पुरुष और बच्चे पेड़ों से चिपक गए।
1: अच्छा,
0: इससे मजबूर होकर पेड़ काटने का काम रोकना पड़ा।
2: देखा?
0: इसी तरह राजस्थान के खेड़जली गांव और उत्तरकाशी क्षेत्र के तिलाड़ी गांव के लोगों ने वनों को बचाने के लिए बहुत संघर्ष किया है।
2: अच्छा भाई रेंजर, ये बताओ कि इस विषय में हमारी सरकार क्या कर रही है?
0: काका, हमारी सरकार ने भी वनों को बचाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं।
1: वो कौन सी कदम है चाचा जी?
0: जैसे बिना इजाजत पेड़ काटने वालों को जुर्माना और सजा भुगतनी पड़ती है।
1: अच्छा।
0: प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड वनों की कटाई पर नजर रखता है और इसके अलावा सरकार ने सामाजिक वानिकी नाम की एक योजना भी बनाई है जो अब कई जगह चल रही है। इस योजना के तहत लोगों को ये बताया गया है कि गांव के लोग खुद पेड़ लगाएं।
1: अच्छा।
0: और वन काटने के बजाय इन्हीं पेड़ों से अपनी जरूरतों को पूरा करें।
1: अच्छा।
0: और झूम खेती करने वालों के लिए सरकार ने एक स्थायी कृषि प्रणाली बनाई है ताकि लोग झूम खेती छोड़ दें।
1: अच्छा।
0: इन सब के अलावा जंगलों की रक्षा से संबंधित शिक्षा एवं प्रशिक्षण के लिए हमारी सरकार ने अनेक शिक्षण संस्थान भी खोले हैं।
1: अच्छा।
0: जैसे वन अनुसंधान संस्थान, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी।
1: चाचा जी।
0: हाँ बेटा।
1: फिर तो मैं अपने सारे दोस्तों को बताऊंगा कि वन कितने जरूरी हैं।
0: शाबाश।
1: हाँ, और मैं भी अपने हर एक जन्मदिन पर एक पेड़ लगाऊंगी और अपने सभी साथियों को भी पेड़ लगाने को कहूंगी।
0: बहुत अच्छे।
2: अरे वाह भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो बगीचे में चलकर इसकी शुरुआत आज ही से करें।
1: चलो, चलो।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो टंट्या भील 90.8 FM जाबुआ की आवाज।
1: दो गौरैया।
2: इस घर में हम तीन लोग रहते हैं, माँ, पिताजी और मैं। आंगन में आम का पेड़ है और तरह तरह के पक्षी उस पर डेरा डाले रहते हैं। तोते, कौवे और गोरैयों से पेड़ आबाद रहता है। सुबह होते ही कबूतरों का गुटरगू संगीत सुनाई देने लगता है। अब एक दिन अचानक क्या हुआ कि दो गोरैया सीधी घर में घुस आई और बिना किसी से पूछे उड़ उड़ कर मकान देखने लगी। मैंने पिताजी को आवाज लगाई, पिताजी देखिए ना, गोरैया घर में क्या ढूंढ रही है।
3: ये मकान का निरीक्षण कर रही हैं कि रहने योग्य है भी या नहीं।
2: अच्छा,
3: देखो देखो, कभी खिड़की पर बैठ रही हैं तो कभी रोशनदान पर।
2: हाँ, अरे हाँ हाँ पिताजी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप।
4: दो तीन दिन बाद क्या देखते हैं कि गौरैया के जोड़े ने बैठक की छत में लगे पंखे के गोले में तिनके और घास फूस से घोंसला तैयार कर लिया है और मजे में चहचहा रही है। माँ और पिताजी सोफे पर बैठे उन्हें ताक रहे हैं।
3: अब ये देखो, इन्होंने तो डेरा ही जमा लिया, उड़ाना पड़ेगा इन्हें यहाँ से।
5: अब तो ये नहीं उड़ेंगी, इन्हें पहले उड़ा देते तो उड़ जाती, अब तो इन्होंने यहाँ पर घोंसला बना लिया है।
3: अरे ऐसे कैसे नहीं उड़ेंगी, देखता हूँ यहाँ रहती कैसे है। गोरैया मेरे आगे चीज क्या है, मैं अभी निकाल कर बाहर करता हूँ।
5: छोड़ो जी, चूहों को तो निकाल नहीं पाए, अब चिड़ियों को क्या निकालोगे।
3: ये बात है, देखो अभी कैसे उड़ाता हूँ। चल उड़ उड़। तो यहाँ से इसमें हंसने की क्या बात है।
5: चिड़िया एक दूसरे से पूछ रही है कि ये आदमी कौन है और ये नाच क्यों रहा है।
3: देखो मुझे गुस्सा ना दिलाओ, बस देखती जाओ।
5: ठीक है,
3: चल चल चल, हट हट।
5: ये अब नहीं निकलेंगी।
3: निकलेंगी कैसे नहीं, अभी डंडा लेकर आता हूँ।
4: मैं इस खेल का खूब मजा ले रहा था। पिताजी डंडा लेकर पंखा ठकोरते तो गौरैया उड़कर कभी पर्दे के डंडे पर जा बैठती तो कभी किचन के दरवाजे पर, उधर माँ को चिठोली सूझती।
5: तुम भी बड़े समझदार हो जी, सभी दरवाजे खुले हैं और तुम गौरैया को बाहर निकाल रहे हो। एक दरवाजा खुला छोड़ो और बाकी सारे बंद करो, तभी ये निकलेंगे। हाँ
3: ठीक है ठीक है। अरे अब तू खड़ा क्या देख रहा है
2: जी,
3: जल्दी से दोनों दरवाजे बंद कर दे
2: जी,
3: वो सिर्फ किचन वाला दरवाजा खुला रख
2: जी। अच्छा पिताजी।
3: हट हट।
4: अब पिताजी लाठी उठाकर फिर गौरैया से लोहा लेने को लपके। एक बार तो लाठी माँ के सर पर लगते लगते बची।
5: अरे अरे,
3: अरे
5: क्या करते हो जी,
3: गलती से लग गया।
5: आराम से।
4: गौरैया चीची करती, कभी एक तो कभी दूसरी जगह जा बैठती। आखिरकार दोनों किचन की तरफ खुलने वाले दरवाजे से बाहर निकल गए।
5: मजा आ गया, आखिर तुमने कर ही दिखाया।
4: माँ तालियां बजाने लगे और पिताजी लाठी दीवार के साथ टिकाकर छाती फैलाए कुर्सी पर आ बैठे और दरवाजा बंद रखने का हुक्म दे डाला।
3: एक दिन अंदर नहीं घुस पाएंगी तो घर छोड़ देंगी अपने आप।
4: सभी इत्मीनान से बैठे ही थे कि पंखे के ऊपर से ची ची की आवाज सुनाई पड़ी। माँ खिलखिलाकर हंस दी।
3: अरे
5: वो देखो, फिर से आ गई घर में।
4: दोनों गौरैया फिर से अपने घोंसले में मौजूद थी। गौरैया दरवाजे के नीचे की खाली जगह से फिर अंदर घुस आई थी। माँ की हंसी रुक नहीं रही थी और पिताजी का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ता जा रहा था।
5: अरे सुनो सुनो, देखो जी इन चिड़ियों को बाहर मत निकालो, अब तक तो इन्होंने अंडे भी दे दिए होंगे।
3: बाहर मत निकालो, तो क्या मैं इन्हें कालीन बर्बाद करने दूं और खुद तमाशा देखता रहूं?
5: सुनो तो, रुक जाओ।
4: उन्होंने दरवाजों के नीचे कपड़े ठूस दिए और लाठी झुलाते हुए चिड़ियों पर टूट पड़े और उन्हें बाहर खदेड़ दिया।
3: गई।
4: दोनों पिछले आंगन के दीवार पर जा बैठे। दूसरे दिन रविवार की छुट्टी थी। हम लोग बैठक में आए तो देखते क्या है कि गोरैया फिर से पंखे पर बैठी मल्हार गा रही है। अब तो ये रोज का खेल हो गया।
6: मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो, अभी चूर कर ये।
4: दिन में गोरैया बाहर निकाल दी जाती और रात होते ही वो न जाने कहां से अंदर आ जाती। पिताजी की सहनशीलता भी अब जवाब दे चुकी थी। वो लाठी और स्टूल उठा कर ले आए और घोंसला ही निकालने का फरमान सुना दिया। पहले प्रयास में दो तीन तिनके बाहर आ गिरे। माँ हंस दी।
5: तुम्हारे बस की नहीं है।
3: फिर कोशिश करता।
4: तभी मेरी नजर बाहर बैठी गोरैया पर पड़ी। वो कुछ कुछ दुबला गई थी और कुछ कुछ काली भी पड़ गई थी। अब वो पहले की तरह चहक भी नहीं रही थी।
3: अब देखो,
4: घोंसला लाठी के साथ खिंचता चला आने लगा। सहसा ची ची का शोर सुनाई दिया। पिताजी ठिठके। बाहर देखा तो दोनों गोरैया वहीं बैठी थी। फिर ये आवाज अंदर कैसे आई?
3: पिताजी देखो देखो देखो, ऊपर देखो माँ। पिताजी
5: हाँ?
3: वो देखो गोरैया के छोटे छोटे बच्चे।
5: अरे हाँ बेटी।
4: अरे पिताजी चौंक कर स्टूल से उतरे। हम सभी आश्चर्यचकित से देख रहे थे। गोरैया के नन्हे नन्हे बच्चे चोंच खोले अपने आगमन की सूचना दे रहे थे। ची ची करते हुए मानो कह रहे हो कि हमारे माँ बाप कहाँ है, कहाँ है हमारे माँ बाप। माँ कुर्सी से उठी और सभी दरवाजे खोल दिए।
5: ये लो, ये दरवाजा भी खोल दिया। आ जाओ गोरैया।
4: और तभी गोरैया झट से उठकर अंदर आ गई और ची ची करते अपने बच्चों से जा मिली।
3: अरे
4: वो उनकी नन्हे नन्हे चोंचों में चुग्गा डाल रही थी। हम इस दृश्य को देखते ही रह गए। कमरा पक्षियों के कोलाहल से गुंजायमान था। अब पिताजी उनकी तरफ देख देख कर मुस्कुरा रहे थे।
3: सच में
7: छोटे और बड़े।
8: अरे छोटे बड़े।
9: जी दादाजी।
8: मैंने तुम्हारे लिए एक जगह बना दी है ताकि तुम यहाँ आराम से रह सको।
9: जी दादाजी।
8: यहाँ जगह भी अच्छी है और खाने को भी कितना कुछ है। जाओ बेटा अब तुम खेलो।
9: पंच पंच खेलेंगे।
8: हाँ जाओ बेटा
9: खेलेंगे।
10: ओ भाई छोटे।
11: हाँ भाई बड़े।
10: आज हम पार्टी करते हैं।
11: हाँ हाँ भाई क्यों नहीं, लेकिन पार्टी किस खुशी में?
10: हम यहाँ इतने दिनों से रह रहे हैं बिना किसी परेशानी के।
11: हाँ भाई बड़े ये तो तुमने सही कहा, यहाँ हमें कोई परेशानी नहीं। हमें तो यहाँ खाना भी कितना अच्छा मिलता है और हमारी तो रहने की जगह भी बढ़ती जा रही है।
10: सही कहा भाई तुमने, अब हम अपने और दोस्तों को भी यहाँ रहने के लिए बुला सकते हैं।
11: हाँ भाई बड़े मैं भी अपने सारे दोस्तों को बुला लूँगा।
10: सभी मिलजुल कर रहेंगे, रोज पार्टी करेंगे।
11: हाँ हाँ हम सब खेलेंगे और खूब पार्टी करेंगे।
1: इस तरह छोटे और बड़े वहाँ बड़े आराम से रहने लगे। क्या आप जानते हो वो छोटे और बड़े कौन थे और वो कहाँ रहने लगे? सोचो। सोचो सोचो। नहीं समझ आया तो चलिए मैं ही आपको बता देती हूँ। वो छोटे और बड़े कोई और नहीं बल्कि चीनू के दांत में रहने वाले कीटाणु थे और चीनू चॉकलेट खाकर बिना ब्रश किए जो सो गई थी। इसलिए आज छोटे और बड़े अपने और दोस्तों के साथ पार्टी मना रहे थे।

0: मेरे को तो चॉकलेट और मिठाई मिली,
1: तो रोटी और चावल मिले,
0: बहुत स्वादिष्ट है।
2: छोटे?
1: हाँ भाई बड़े।
2: चलो और कुरेदते हैं दांतों में।
1: हाँ लगता है कुछ और खाने को मिले।
3: कीटाणुओं के शोर करने से चीनू के दांत में दर्द हो जाता है और उसकी नींद टूट जाती है और वो इसकी शिकायत अपनी मम्मी से जाकर करती है।
4: आ, आ, आ, मम्मा मेरे दांत में बहुत तेज दर्द हो रहा है।
5: क्या दांत में दर्द? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है ना रोजाना ब्रश किया करो।
4: मम्मा मैं तो रोज ब्रश करती हूँ।
5: तुम सिर्फ सुबह ब्रश करती हो ना, रात को तुमने चॉकलेट खाई थी तब किया था ब्रश?
4: नहीं मम्मी।
5: देखा अब दिखाओ जरा कहाँ हो रहा है दर्द। मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मैं डॉक्टर के पास लेके चलती हूँ तुम्हें। परेशान मत हो, दर्द ठीक हो जाएगा, बस जल्दी से ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा बेटा।
3: चीनू की माँ और चीनू डॉक्टर के पास जाते हैं।
5: नमस्ते डॉक्टर साहब।
6: अरे नमस्ते नमस्ते कमला जी, आइए आइए।
5: देखिए ना डॉक्टर साहब, इसके दांत में दर्द हो गया है।
6: बस बस घबराओ मत बेटा, सब ठीक हो जाएगा। नाम क्या है तुम्हारा?
4: चीनू।
6: चीनू, लगता है चीनी ज्यादा खाती हो हैं? कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। अच्छा मुंह खोलो मुंह खोलो। हाँ थोड़ा सा और। एक सेकंड बस, ये लो इस पे दवा लगा देता हूँ। हाँ इसे खा के कुल्ला करो, बस अब कुछ दर्द कम हुआ बेटा? हुआ ना? हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। देखो बेटा ये जो तुम्हारा दर्द है ना, ये कीटाणु की वजह से है, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में कीड़ा लगना कहते हैं। और ये इसलिए लगता है क्योंकि आप समय से दो बार ब्रश नहीं करते होंगे, क्यों है ना कमला जी?
5: जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप।
6: देखो बेटा कभी भी लापरवाही मत करना, क्योंकि दांत जो है हमारी सुंदरता का प्रतीक है, है ना? कितने अच्छे लगते हैं दांत, तो इसीलिए हमेशा दो बार, एक तो हमें सोकर उठने के बाद ब्रश करना चाहिए और उसके बाद सोने से पहले यानी रात को भी ब्रश करना चाहिए। और हमें कैसे करना चाहिए, सही तरीका क्या पता है? ऊपर नीचे ब्रश को ऊपर नीचे करना चाहिए, ठीक है, जिससे कि खाने का कोई भी अंश दांतों में फंसा ना रह जाए, समझे? और हाँ समय समय पर डॉक्टर से दांतों की जांच भी करवानी चाहिए। कमला जी आगे से आप भी ध्यान रखिएगा।
5: जी बिल्कुल।
6: है ना
4: डॉक्टर साहब, क्या मैं कभी चॉकलेट नहीं खा सकती? कभी नहीं मीठा खाऊंगी मैं।
5: डॉक्टर साहब इसको मीठा बहुत पसंद है, ये मीठा के बगैर नहीं रह सकती।
6: समझ गया। देखो बेटा ऐसी बात नहीं है कि तुम मीठा नहीं खा सकती, तुम मीठा बिल्कुल खा सकती हो, चॉकलेट भी खा सकती हो, मिठाई भी खा सकती हो, लेकिन हाँ खाने के बाद हमेशा कुल्ला करना और दांत अच्छे से साफ करके सोना, जैसे मैंने बताया दो बार ब्रश, समझ गए ना? और एक बात और, अगली बार जब आओगी ना तो हमारे लिए भी चॉकलेट लेकर आओगी? लाओगी चॉकलेट? ये हुई ना बात। शाबाश, जाओ शाबाश।
3: ये सारी बातें सुनकर चीनू के दांत के कीटाणु परेशान हो जाते हैं और आपस में बातें करते हैं।
0: अरे भाई छोटे।
1: हाँ भाई बड़े।
0: आप तो हमारे आराम के दिन गए।
1: हाँ
0: हम तो अब भूखे ही रह जाएंगे।
1: हाँ, चलो दादाजी से चलकर।
0: हाँ चलो चलो, दादाजी दादाजी दादा भूख लगी है, बहुत भूख लगी है,
1: भूख लगी है।
7: हाँ बेटा मैं समझता हूँ। बेटा ये जगह अब बिल्कुल साफ सुथरी हो गई है और यहाँ खाने को भी अब कुछ नहीं रहा। चलो हम किसी और दांत में चलकर वहाँ जगह बनाते हैं। चलो
0: चलो
7: आओ,
0: चलो
1: चलो
3: चलो। इस तरह सारे कीटाणु चीनू का दांत छोड़कर नए घर की तलाश में निकल जाते हैं। चीनू भी अब रोज रात को ब्रश किए बिना नहीं सोती। बच्चों, अगर आप नहीं चाहते जो कीटाणु अभी अभी बेघर हुए हैं वो आपके दांत में आकर अपना घर बना लें, तो आप भी चीनू की तरह रोज रात को ब्रश करने की आदत डाल लें।

0: बीमारियों पर कम करेंगे खर्चा, हम करेंगे सेहत और स्वास्थ्य पर चर्चा।
1: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं झाबुआ की आवाज पर रेडियो टंट्या भील 90.8 FM, आप ही के रेडियो साथी आरजे राकेश के साथ। तो दोस्तों, आज के इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे फाइलेरिया रोग के बारे में। फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है, इसे हाथी पांव बीमारी भी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं फाइलेरिया बीमारी के बारे में विशेष और महत्वपूर्ण जानकारी।
0: बीमारियों पर कम करेंगे खर्चा, हम करेंगे सेहत और स्वास्थ्य पर चर्चा।
2: हमारे आज के कार्यक्रम का विषय है फाइलेरिया। फाइलेरिया एक ऐसा रोग है जिसके संक्रमण होने के बाद उसके लक्षणों का पता कभी कभी 10 से 12 वर्षों में चलता है। इस बीमारी से बचाव ही इसका इलाज है। और वो आसान सा बचाव क्या है? साल में एक बार खाई जाने वाली फाइलेरिया से बचाव की गोली। और इस विषय पर हमें आज जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आई हुई हैं डॉक्टर सारिका सिंह। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब तकनीकी सलाहकार हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश से। और डॉक्टर साहब, हम फाइलेरिया विषय पर बात कर रहे हैं, तो हम चाहेंगे सबसे पहले आपको बताएं कि ऐसे कौन से लक्षण हैं जिनसे पता चल सकता है कि कोई व्यक्ति फाइलेरिया से संक्रमित है।
3: जी, फाइलेरिया रोग जो है वह परजीवी कृमि से होता के फैलने से होता है। इसके जो मुख्यतः लक्षण होते हैं वह शरीर में, मनुष्य के शरीर में, शरीर के कुछ अंगों में जैसे कि पैर है, हाथ है, उनके अंडकोश हैं, उसमें सूजन आने लगती है। वह सूजन इस प्रकार होती है कि हाथी के पाँव के समान लगती है, इसलिए उसको हाथी पाँव भी कहा जाता है। इसमें शरीर में लालपन भी आ जाता है, इसमें फीवर आ जाता है, बुखार आता है और त्वचा भी निकलने लगती है शरीर से।
2: जी, तो ये सारे तमाम सारे लक्षण हैं और जैसा कि आपने बताया इसे बोलचाल की भाषा में हाथी पाव भी कहते हैं। डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहेंगे कि फाइलेरिया रोग कैसे होता है और उसके बाद ये फैलता कैसे है।
3: जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह परजीवी कृमि से होता है। जो फाइलेरिया के कीटाणु हैं वह संक्रमित मनुष्य को, अगर कोई मच्छर क्यूलेक्स होता है, अगर काटता है तो वह उसको संक्रमित करता है। फिर उस संक्रमित मच्छर अगर फिर से वह किसी मनुष्य को काटता है तो वह उनको संक्रमित करता है। इस प्रकार से यह चक्र चलता रहता है।
2: यानी कि आपके कहने के आधार पे क्यूलेक्स नाम का जो मच्छर है वो इस बीमारी का वाहक है। डॉक्टर साहब, ऐसा कहा जाता है कि जो विसंगतियां हमारे शरीर में आ जाती हैं फाइलेरिया रोग की वजह से, हाथों पैरों में या शरीर के किसी अंग में सूजन, क्या वो कभी ठीक हो पाती हैं?
3: एक बार जब विसंगति आ जाती है, जैसे कि शरीर में सूजन आ जाती है हाथ या पैर हो, तो वह पूरी तरीके से नहीं सही हो सकती है। इसलिए इसका बचाव ही एकमात्र उपाय है।
2: जी जी जी, जान लेना चाहिए कि जो फाइलेरिया से बचाव की गोली इस उन्मूलन अभियान में खिलाई जाती है उसका जरूर सेवन करें। और जी बताइए
3: आकांक्षा जी, जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये अभी जड़ से नहीं खत्म कर सकते हैं, इसका बचाव ही एकमात्र उपाय है। तो इसको, लेकिन अगर ये एक बार फाइलेरिया ये हो गया है किसी को, तो वह चिकित्सा परामर्श लेके, इसके लिए हमारे पास दवाइयां उपलब्ध हैं सरकारी अस्पताल में, उनसे वो चिकित्सा उपचार लेके वह दवाइयां खा सकते हैं। साथ में ये हमारी सरकार जो है यहाँ पे हाइड्रोसिल के ऑपरेशंस भी होते हैं जिनसे कि वह दूरी दूर होता है उससे। जी
2: डॉक्टर साहब, फाइलेरिया उन्मूलन का जो अभियान चलाया जाता है हमारे प्रदेश में, हमारे दर्शकों को बताइए कि वो कब से कब तक चलाया जाता है और इसके अंतर्गत जो गोली खिलाई जाती है क्या वो किसी एक निश्चित स्थान पर खिलाई जाती है?
3: हमारा जो ये फाइलेरिया अभियान होता है, उन्मूलन अभियान होता है, इसको मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन भी कहते हैं। हमारे यहाँ प्रदेश में यह दो चरणों में चलता है, एक फरवरी में और एक नवंबर में। ये दो तो हमारे खत्म हो चुके हैं लेकिन अगले वर्ष फिर से यह शुरू होगा। इसमें स्वास्थ्य कर्मी सभी ग्रामीण और शहरी इलाकों में घर घर जाकर फाइलेरिया की गोली निःशुल्क देते हैं और अपने सामने खिलाते हैं। यह एक साथ खिलाया जाता है, सार्वजनिक रूप से खिलाया जाता है, इसलिए इसका उन्मूलन के लिए यही प्रयास है।
2: जी बिल्कुल, और हमारे कार्यक्रम के माध्यम से हम चाहेंगे कि जब भी उनके घर पे उन्मूलन के लिए गोलियां खिलाने के लिए कार्यकर्ता पहुंचे वो इस गोली का सेवन जरूर करें। डॉक्टर साहब के मन में जरूर एक बात आ रही होगी कि यदि किसी को बुखार है या कोई और छोटी मोटी सीजनल परेशानियां चल रही हैं तो क्या तब भी वो इस गोली का सेवन कर सकते हैं?
3: जी, ये दो वर्ष से कम बच्चों को नहीं दिया जाता है, गर्भवती महिलाओं को नहीं दिया जाता है और अगर वह किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त ग्रसित हैं तो उनको नहीं दिया जाता है। बाकी ये सभी प्रकार के व्यक्ति खाना चाहिए, सभी उम्र के व्यक्तियों को खाना चाहिए।
4: जी मेरा प्रश्न ये है कि जो फाइलेरिया से बचाव की गोली है ये क्या फाइलेरिया ग्रसित व्यक्ति खा सकता है या स्वस्थ व्यक्ति को भी खानी चाहिए?
2: जी बताइए
3: ये संक्रमित और असंक्रमित दोनों प्रकार के व्यक्ति खा सकते हैं और इनको साल भर में एक बार अवश्य सेवन करना चाहिए।
2: जी डॉक्टर साहब की तरफ से ये भी हमारे कार्यक्रम की तरफ से आपको जरूर जाननी चाहिए कि यदि फाइलेरिया हो चुका है तो दवाओं के माध्यम से इसे उसी स्टेज पर रोका जा सकता है, इसलिए बचाव की खोली खानी जरूरी है आप सभी के लिए। और डॉक्टर साहब इसी के साथ साथ हम ये भी जानना चाहेंगे कि क्या फाइलेरिया से बचाव की गोली जब भी हमें किसी को संक्रमित व्यक्ति है वो भी खा ले या सिर्फ जो स्वस्थ व्यक्ति हैं वही खाएं, दोनों के लिए कितनी फायदेमंद है ये?
3: ये दोनों के लिए फायदेमंद है। अगर कोई संक्रमित है इससे तो वह उसी स्थान पे उसको दूरगामी प्रभावों से रोका जा सकता है और इसको नहीं है उसको उसके बचाव के लिए ये उपाय है हमारे लिए,
2: तो दोनों को ही खानी चाहिए।
3: और अगर किसी को गंभीर बीमारी है, अगर उनको कोई भी शक है कि हम ये खाएं या ना खाएं, तो वह हमारे निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पर जाके वहां पे उनके चिकित्सा उपचार ले सकते हैं और उनसे परामर्श ले सकते हैं,
2: अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं।
3: जी
2: और डॉक्टर साहब एक
5: क्या फाइलेरिया की
2: बचा जा सकता है?
3: जी नितिन जी, ये एक बार अगर आप सेवन इसका कर लीजिए तो इनके दूरगामी प्रभावों से बचा जा सकता है।
2: आज हम बात कर रहे हैं फाइलेरिया विषय पर और हमारे साथ हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की तकनीकी सलाहकार डॉक्टर सारिका सिंह जी। और डॉक्टर साहब हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो उन्मूलन का अभियान है इसमें जन सामान्य से किस तरह के सहयोग की अपेक्षा हम कर सकते हैं?
3: ये जब अभियान चलता है हम सभी यही बोलेंगे कि आप कृपया उनका सेवन अवश्य करें, जब हमारे स्वास्थ्यकर्मी उनके घर जाते हैं तो उनका सहयोग उनमें सहयोग प्रदान करें और अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करें, इसका सेवन करना बहुत आवश्यक है जिससे हम इनका उन्मूलन कर सकें।
2: जी और डॉक्टर साहब एक चीज और बहुत जरूरी जानकारी है जो इस रिलेटेड हमारे दर्शकों को जरूर मिलनी चाहिए कि क्या फाइलेरिया रोग किसी खास वातावरण, मौसम या उम्र में ही होता है?
3: नहीं, इसके फाइलेरिया के जो कीटाणु है वह किसी उम्र या वातावरण से संबंधित नहीं है या किसी भी समय और किसी भी मौसम में हो सकता है और किसी भी उम्र के लोगों को हो सकता है। यह विशेषता इसके जो कीटाणु है वह शरीर में जो रक्त प्रवाह है उसमें वह रात में 10 बजे से लेके 2 बजे तक ज्यादा परिलक्षित होते हैं।
2: अच्छा।
3: तो जब किसी का कोई भी अगर किसी को जांच करानी होती है तो वह उनका जो ब्लड का सैंपल है वह रात में ही लिया जाता है।
2: अच्छा, जी रात के 10 बजे से 2 बजे तक दवा ज्यादा
3: वह सबसे ज्यादा दिखते हैं। जी
2: जी
5: मेरा डॉक्टर साहब से ये सवाल है कि क्या फाइलेरिया की कोई होम्योपैथिक दवा भी है?
2: जी बताइए।
3: इसके लिए मैं आपसे यही आग्रह करूंगी कि आप अपने निकट के चिकित्सा स्वास्थ्य केंद्र पर जाइए और वहां पे आप चिकित्सकीय सलाह लीजिए।
2: जी
1: श्रोताओं, आज के इस विशेष कार्यक्रम में हमने फाइलेरिया रोग के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी को प्राप्त किया। श्रोताओं, हमने जाना है फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है, इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। हमें हमारे नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर इसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहिए और इसकी गोली को अवश्य खाना चाहिए। तो श्रोताओं, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनते रहिए रेडियो टंट्या भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज़ पर।
0: बीमारियों पर कम करेंगे खर्चा, हम करेंगे सेहत और स्वास्थ्य पर चर्चा।
6: रेडियो स्टेशन 90.8 FM टंट्या भील रोज हांजे 6 થી 8 વાગે આપણી સમસ્યા અને આપણો સમાધાન આપુ રોજ કરું વાતે ખેતીના બારામાં અને કમાઈના બારામાં એત્રે હમળતા રહેજો ટાંટિયા ભીલનો રેડિયો સ્ટેશન 90.8 FM।
7: किसान भाइयों, एक बारी फिर था बहुत बहुत स्वागत करिए से तमार सबूनो रेडियो टंट्या भील 90.8 FM पर। किसान भाइयों, आप जानिए है रेडियो टंट्या भील 90.8 FM नो यू खेतीवाड़ी कार्यक्रम हमूने खेतीवाड़ी थी जोड़ेली घनी खरी महत्वपूर्ण जानकारियों आले है। किसान भाइयों ने रेडियो टंट्या भील 90.8 FM नो योस प्रयास है कि आप जो भी किसान भाई है तिना तक ખેતીવાડી થી જોડાયેલી મહત્વપૂર્ણ જાણકારીઓને તીન તક પુગાડવાનો યો એક પ્રયાસ છે, તાકે અમારો જો કિસાન ભાઈ હે તેઓ આપણી આજીવિકાને મજબૂત કરી શકે, આપણી આજીવિકાને ઓર સદૃઢ બનાવી શકે. તે કિસાન ભાઈઓ, હમણે આપણા કિસાનોને એના કાર્યક્રમની જરૂરત કેમ પડી? કિસાન ભાઈઓ, આપણું સબ જાણીએ હે કે આપણા જો પ્રકૃતિ હે, પ્રકૃતિ હર દન બદલતી જઈ રહી હૈ. હમણે જેમ કે આપણું આપણા પરદાદા જેમ ખેતી કરતેલા, હેમ હાવ આપણું હમણે તેની તરીકેથી હાવ આપણું ખેતી નહીં કરી રહ્યા હે. તે કિસાન ભાઈઓ, કંઈ ના કંઈ સમયને હિસાબથી, વાતાવરણને હિસાબથી અગર આપણું દેખી તે પર્યાવરણમાં જો બદલાવ આવી રહ્યા હે, તેને હિસાબથી આપણ કિસાન ભાઈઓને બી આ હરકી આપણ ખેતીમાં બદલાવ કરીને કૃષિ કરવાની જરૂરત હે. કિસાન ભાઈઓ, આપણું જાણીએ હે કે આજ અગર આપણું દેખીએ તે ખર્ચો જો હે, આપણાનો ખર્ચો બી, આપણા પરિવારને આપણો સલાડવા હારું જો ખર્ચો હે, તેઓ બી દને દન બઢતો જઈ રહ્યો હે. તે કિસાન ભાઈઓ, કંઈ ના કંઈ અગર આપણું આપણા કિસાન ભાઈ એની ખેતીને સમજીને અગર અસલ તરીકેથી ખેતી કરું, તે કંઈ ના કંઈ આપણ કમથી કમ લાગતમાં આપણું વધુથી વધુ ફસલ લઈ શકી. તો કિસાન ભાઈઓ, રેડિયો ટાંટિયા ભીલ 90.8 FM યોશ સંદેશ હે, યોશ તેનો પ્રયાસ હે કે અમારા કિસાન જો હે એના ખેતીવાડી કાર્યક્રમથી અલગ અલગ પ્રકારની ખેતી કરવાની જાણકારીને લે, અલગ અલગ પ્રકાર કરવાની ખેતી પદ્ધતિને સમજે, અને કંઈની કંઈની ખેતી હજુ આપણું કરી શકીએ એની આગળી વાતોને સમજે, જાણે, પરખે અને એની ખેતીમાં બી આપણો રૂખ કરે, યોશ અમારો પ્રયાસ હે. કિસાન ભાઈઓ, આજના એના કાર્યક્રમમાં આપણું ચર્ચા કરવાના હે આપણ દેશી ગાયની ઉપર. દેશી ગાય કેમ જરૂરત હે અને દેશી ગાયનો કેટલા ફાયદા હે અમારા કિસાન ભાઈ હંગલા કિસાન ભાઈ એકને એક આપણ પશુ આપણા ઘેરમાં રાખીએ છીએ આપણું, કેમ કે આપણ ઘેર જો કાચા મકાન હે તેના લીપવા હારું આપણું ગોબરનો પ્રયોગ કરીએ છીએ, આપણ આપણા સુલ્હા હળગાવીએ, આપણું સાણા બનાવીએ હે. તે અલગ અલગ પ્રકારથી આપણા કિસાન ભાઈ બહોત અસલ તરીકેથી જાણે હે કે ખેતરોમાં અને આપણે ખેતી હરું એક પશુની જરૂરત કેટલી માન્યતા હે, આપણા ખેતરોમાં કેટલી જરૂરત હે આપણા પશુની, તે વાત ભલી ભાતી અમારો કિસાન ભાઈ જાણે હે. તે કિસાન સાથીઓ, આજના એના કાર્યક્રમમાં આપણું દેશી ગાયના બારામાં જાણવું, દેશી ગાયની કેટલી નસલે હે, એનો દૂધનો શું ફાયદો હે અને કિકમ આપણી આમદનીને બઢાવવા હરું કે દેશી ગાય આપણ કંઈના કંઈના તરીકાથી આપણ ફાયદેમંદ થઈ શકે હે. તો કિસાન ભાઈઓ, આજના એના કાર્યક્રમની આપણું આથી શરૂઆત કરીએ હે અને જાણીએ આજના કાર્યક્રમમાં આ હજુ બી મહત્વપૂર્ણ જાણકારીઓને. સાથી કિસાન ભાઈઓ, અમુ આશા કરીએ હે કે આપણો જો બી કિસાન ભાઈએ જો બી એના કાર્યક્રમને સાંભળી રહ્યો હે, એના કાર્યક્રમથી આપણ જો બી શીખ મળે હે, તેની શીખને આપણું આપણી તકે સીમિત નહીં રાખવાની, તેની શીખને આપણું બાકી આપણા પડોશી કિસાન ભાઈઓ તક બી એની શીખને પુગાડવાની આપણું પ્રયાસ કરીએ, સાથે તીન બી આપણું બતાડી શકીએ કે આપણું એપ્લિકેશનના માધ્યમથી એના રેડિયો ટાંટા ભીલ 90.8 FM ખેતીવાડી કાર્યક્રમને આપણું સાંભળી શકી અને આપણા રેડિયો પર બી એના 90.8 FM પર બી આપણું એના ખેતીવાડી કાર્યક્રમને સાંજે 6 થી 8 વાગે તક સાંભળી શકી. તો કિસાન ભાઈઓ, યો બી આપણો એક અસલ પહેલ હે કે એની પહેલમાં તમે ભાગીદારી લો અને બીજા કિસાનો તક બી એની જાણકારી પુગાડો. તો કિસાન ભાઈઓ, તમારો વધુ સમય ન લેતે હુએ આજના એના કાર્યક્રમની આપણું શરૂઆત કરીએ હે.
6: રેડિયો સ્ટેશન 90.8 FM ટાંટિયા ભીલ, રોજ સાંજે 6 થી 8 વાગે આપણી સમસ્યા અને આપણો સમાધાન. આપું રોજ કરું વાતે ખેતીના બારામાં અને કમાઈના બારામાં. એત્રે હમળતા રહેજો ટાંટિયા ભીલ નો રેડિયો સ્ટેશન, રેડિયો સ્ટેશન 90.8 FM.
8: मैंने एक्सपेरिमेंट करवाए हैं, पालेकर जी ने भी करवाए हैं, माइक्रोबायोलॉजी के डॉक्टर ने महीनों इस पर रिसर्च करने के बाद पाया. उन्होंने भैंस का भी गोबर लिया, हॉस्टन फ्रीजन जर्सी गाय का भी गोबर लिया, बैल का भी लिया, लेकिन जो भारतीय नस्ल की देशी गाय है, ओनली देशी गाय, साहिवाल, थारपारकर, राठी, गिर, हरियाणवी, कांकरेज, ये जो गाय हैं पूरे भारतवर्ष में जो जिन प्रांतों में परंपरा से चली आ रही, उनके गोबर गोमूत्र में यही कमाल है, बाकी कहीं नहीं मिला. तो हमने देसी गाय के गोबर गोमूत्र की जब रिसर्च करवाई तो गोमूत्र तो खनिज का भंडार मिला, और देसी गाय के 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ से भी ज्यादा बैक्टीरिया जीवाणु पाए, जो अन्य किसी में इतने नहीं। तो हम क्या करते हैं जीवामृत बनाने के लिए, देसी गाय जो स्वस्थ है 24 घंटे में रात दिन में 8 से 10 किलो गोबर देती, 8 से 10 किलो गौमूत्र देती है। इस गोबर गौमूत्र को इस ड्रम में डाल दें पानी वाले में, और उसमें 1.5 से 2 किलो गुड़, 1.5 से 2 किलो किसी भी दाल का बेसन, और बड़े पेड़ के नीचे की 1 मुट्ठी मिट्टी, और इसको लकड़ी के डंडे से क्लॉकवाइज घड़ी की सुई की तरह 5 मिनट सवेरे 5 मिनट शाम, कुल 5 दिन घोलना है। छठे दिन 1 एकड़ का खाद तैयार।
9: अच्छा,
8: अब मिश्रा जी, दुनिया में 1 एकड़ का 6 दिन में खाद तैयार हो जाए कोई पद्धति नहीं। और हाँ, और इसमें साइंस क्या है वो सब किसान बंधुओं के लिए समझने की बात यह है कि देसी गाय के 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ जीवाणु हैं, तो 10 किलो गोबर में कितने होंगे? असंख्य होंगे,
9: बिल्कुल।
8: और मूत्र जो हो खनिजों का भंडार है, जो जमीन को तत्व चाहिए उनसे भरा पड़ा है। अब इन जीवाणुओं को खाने के लिए दाल का बेसन दे दिया हमने, वो प्रोटीन है
9: जी।
8: जब वो जीवाणु इस प्रोटीन को खाएंगे तो पुष्ट होंगे, बलवान होंगे, स्वस्थ होंगे, और गुड़ डालते हैं तो मल्टीप्लाई होंगे, उनकी संख्या बढ़ेगी, और जो मिट्टी के जीवाणु हैं वो उनमें मिलके वो असंख्य संख्या में बढ़ेंगे, उनकी कोई गिनती नहीं, इतनी मात्रा में बढ़ते। अब इस घोल को हम 6 दिन से 12 दिन के बीच में स्प्रिंकल के द्वारा और ड्रिप के द्वारा या खुले पानी में पानी के साथ इसको छोड़ दें, एक ड्रम को 1 एकड़ में
9: जी।
8: तो ये पूरे खेत में फैल जाएगा। जब ये खेत में जाएगा तो ये वहां जामुन का काम करेगा। जैसे 1 क्विंटल दूध में 1 चम्मच दही डाल दें तो सारा दूध दही में बदल जाता है, ऐसे ही ये जीवाणु जामुन का काम पूरे खेत में जाके करेंगे, और मिट्टी के जीवाणुओं से मिलके अनेक तरह के बैक्टीरिया वहां पैदा होंगे, अनेक प्रकार के, और ये बैक्टीरिया ही वो हैं जो 78% नाइट्रोजन आकाश में है उसको ये खींचेंगे और ये पौधे की जड़ को देंगे। इसके अतिरिक्त हमें नाइट्रोजन, यूरिया, डीएपी बाजार की जरूरत ही नहीं, नंबर एक। नंबर दो, हमारी धरती में फास्फोरस, पोटास, जिंक, मैग्नीशियम, ये तत्व पहले से ही विद्यमान होते हैं
9: जी।
8: लेकिन ये सारे तत्व धरती में होते हुए अपने आप पौधे के भोजन का निर्माण नहीं करते।
0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो, आपड़ी बातें।
8: उदाहरण के लिए, बहुत मोटा उदाहरण, हमारे घर में किचन रसोई है, सबके घर में रसोई में नमक भी है, तेल भी है, आटा भी है, दाल भी है, सब्जी भी है, सारी चीज हैं, लेकिन उससे अपने आप भोजन तो नहीं बनेगा।
9: अपने आप तो नहीं बन सकता जी,
8: सारी चीज है लेकिन भोजन नहीं बनेगा। भोजन कब बनेगा? जब हमारी माता बहन उठेगी, वो आटे को परात में डालेगी, पानी से गूंदेगी, चपाती बनाएगी, दाल उठाएगी, सब्जी काटेगी, छौंका लगाएगी, पकाएगी, तभी वो भोजन तैयार होगा खाने के लिए। बिल्कुल जो काम रसोई में हमारी माता बहन करती है वही काम किसान के खेत में जीवाणु करता है। जो तत्व धरती में है, फास्फोरस है, जिंक है, पोटास है, मैग्नीशियम आदि जो तत्व हैं, वो गांठ बनाए पड़े हैं, उनसे उनको तोड़ के भोजन बनाने का काम पौधे के लिए जीवाणु करता है
9: जी।
8: तो धरती में जितना जीवाणु बढ़ेगा उतना धरती का ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा, लेकिन जो रासायनिक खेती है वो इन जीवाणुओं को मारने का काम करती है। तो यदि लंबे समय आप रासायनिक खेती करते जाएंगे तो आने वाली पीढ़ियों को हम बंजर जमीन बना के देंगे, कुछ नहीं पैदा होगा एक समय के बाद, बिल्कुल कुछ नहीं पैदा होगा। और इसका मैं एक उदाहरण देता हूं आपको, जो मित्र कीट हैं खेती में, किसान के बहुत बड़े मित्र हैं, उनमें एक केचुआ है, अर्थवर्म जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, वो सबसे बड़ा मित्र है। और ऐसे और भी कीट हैं जो मित्र का काम करते हैं। वो मोटा उदाहरण, आप एक खेत से एक केचुए को पकड़ो और यहां उसको लेके आओ, रखो और उसके ऊपर यूरिया डीएपी डाल दो, जिएगा या मरेगा?
9: नहीं जिएगा।
8: सीधा, इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा
9: जी?
8: वो मरेगा। और उसी के ऊपर गाय का गोबर डाल दो तो वो परिवार बढ़ाएगा,
9: बिल्कुल
8: वो स्वस्थ होगा, उसका भोजन मिलेगा। अब इतना स्पष्ट है किसान बंधु के लिए कि हम रासायनिक खेती के द्वारा उन मित्रों को मारने का काम कर रहे हैं। तो बताइए धरती का ऑर्गेनिक कार्बन गुणवत्ता, उसकी फर्टिलिटी कैसे बढ़ेगी? और इस बात को साइंटिस्ट समझेंगे तभी बात बनेगी। और इसके मैं बड़े प्रबल उदाहरण दूंगा अपने खेत के, बिल्कुल प्रबल। इस समय भी हमारे ये मित्र कीट कुछ बचे हुए हैं और वो यूरिया डीएपी कीटनाशक से डरते हुए धरती में नीचे समाधि लिए बैठे हैं। यदि उनका भोजन उनको मिलेगा तो वो अब भी बेचारे अपना काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम नहीं संभले और यूं ही चलते रहे, उनका बीज ही नष्ट हो गया तो फिर जमीन बंजर बनेगी, विनाश का रास्ता दिखाई पड़ता है। एक मैं और मोटा उदाहरण आपको देता हूं, आप तो गांव में रहते हैं
9: जी।
8: मुझे अपार प्रसन्नता, और गांव के लोगों के लिए काम करते हैं, बहुत खुशी मेरे को हुई। जब किसान घर से अपनी गाय को खोलता है, खूंटे से गाय निकली घर से बाहर और कच्ची जगह पर वो चलती है, और चलते हुए एक गोबर यहाँ किया, एक यहाँ किया, एक यहाँ किया और चली गई, ऐसा होता है ना
9: जी? बिल्कुल।
8: आप अब गांव में जाके ये अनुभव करना, वो जो गाय ने गोबर किया है ना, आप 3 दिन के बाद उस गोबर को उलट के देखना,
9: अच्छा
8: उसके नीचे आपको 2-3 छेद मिलेंगे।
9: अच्छा,
8: उसके नीचे 2-3 छेद मिलेंगे। जो किसान बंधु सुन रहे हैं ना मेरे को, वो इस बात को एकदम स्वीकार करेंगे, ऐसा है। अब गाय ने जब गोबर किया तब छेद नहीं थे वहां, उस समय छेद नहीं था, लेकिन धरती में समाधि लिए जो मित्र जीव बैठे हैं उनको ऊपर उनका भोजन मिल गया। और उसकी गंध पा करके धरती को फोड़ के वो ऊपर भोजन लेने के लिए आ गए। ऐसे ही जब हम जीवामृत खेत में डालते हैं ना, जो मैंने बताया
9: जी।
8: और घन जीवामृत डालते हैं तो ये अर्थवर्म 10 से 12 दिन के अंदर अंदर अपना काम शुरू कर देगा, धरती को फोड़ के एकदम काम शुरू करेगा। और ये जो केचुआ है ये अपने जीवन में हजारों बच्चों को जन्म देता है, और जब मरता है तो पौधे को खाद दे करके जाता है और नया परिवार बढ़ा के जाता है। और भारतीय केचुए में विशेषता क्या है, वो जो हमारा वर्मी कंपोस्ट वाला केचुआ तो विदेशी है, वो तो गोबर ही खाता है, हमारा केचुआ मिट्टी भी खाता है और गोबर भी लेता है, ये दोनों करता है। और ये काम कैसे करता है, ये देखिए, यूं जाता है और दूसरे छेद से आता, इस छेद से जाता, इससे आता, इससे जाता, इससे आता, जिस छेद से जाता उसे वापस नहीं आता, नया छेद बना के आता है। और ये 8-10 फीट तक जमीन में छिद्र बनाते हुए, कैसे छिद्र बनाता है, जब ये नीचे जाता है तो वर्मी वो शरीर से छोड़कर छेद को लीपते हुए जाता है, वो छेद जल्दी बंद नहीं होता
9: जी।
8: और धरती में जो खनिज है उनको खाके पेट से निकाल के पौधे की जड़ को देता, जिसमें अनेक प्रकार के पोषक तत्व हैं जो जमीन की फर्टिलिटी बढ़ाते हैं और पौधे की खुराक देने का काम करते हैं। ये काम किस कर्तार्थ पर?
0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
8: अब जो छिद्र हैं उनसे ऑक्सीजन धरती को मिलता है, उसकी फर्टिलिटी बढ़ती है। और इसका कितना बड़ा काम ये करेगा कि जब आप प्राकृतिक खेती करेंगे, यूरिया डीएपी नहीं डालेंगे, कीटनाशक नहीं डालेंगे, तो ये अपना इतना परिवार बढ़ाएगा कि एक एकड़ में मेरा खेत जो है उसमें कई लाखों की संख्या में केचुआ काम करता, कई लाख, और रात दिन काम करता, बिना पैसे का मजदूर है
9: जी।
8: वो सारी जमीन को मुलायम बना देता है, नीचे की जमीन को उलट देता, खनिज को नीचे को ऊपर दे देता, ये काम करता है। और जब लाखों केचुआ यही काम करते हैं तो पूरी धरती में छिद्रों का भंडार बनता, ऑक्सीजन से फर्टिलिटी बढ़ेगी। और जब वर्षा आएगी और चारों तरफ मेड़ है खेत के, सारा पानी इन छिद्रों के द्वारा धरती माँ के पेट में चला जाएगा। वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के लिए करोड़ों रुपए जो सरकार खर्च करती है उसकी कोई जरूरत नहीं। यदि सारी धरती पे प्राकृतिक खेती होगी तो ये बाढ़ आने की नौबत ही नहीं आएगी। अब बाढ़ आती कैसे है? जमीन को यूरिया डीएपी ने पत्थर बना दिया, सख्त कर दिया, मित्र जीव बचे नहीं, छेद उसमें है नहीं। बारिश बरसती है, पानी तेजी से बह करके नदी नालों में जाके बाढ़ आ जाती है, धरती में जाने नहीं पाता, वाटर लेवल डे बाय डे डाउन आ रहा है।
9: बिल्कुल।
8: तो ये विनाश का रास्ता यूं चल रहा है। दूसरा मिश्रा जी, जब ये तो हुई वर्षा का इलाज, पानी जाएगा तो वाटर लेवल ऊपर आएगा, और ये पानी भी कैसा है, स्टीलाइज पवित्र वर्षा जल, धरती में जाएगा तो पीने के लिए भी काम आएगा, खेती के भी काम आएगा, हमारा भूगर्भ भंडार जल का भरेगा। जब अकाल पड़ेगा, जून का महीना होगा, लूएं चलेंगी, बारिश होगी नहीं, ऐसे समय पौधा कैसे बचेगा? तो ये जो छिद्र बनाए है ना, जब धरती तपेगी तो नीचे तो पानी है ना, उसमें वाष्प बनेगी
9: जी।
8: जब वाष्प बनेगी तो वो वाष्प इन्हीं छिद्रों से ऊपर आके पौधे की जड़ की सिंचाई करेगी। अकाल में भी पौधा नहीं सूखेगा। और इसका उदाहरण क्या है? जंगल में जो नियम काम करता वही मेरे खेत में करना चाहिए। जंगल के पेड़ को यूरिया कौन देता है, डीएपी कौन देता है, कीटनाशक कौन देता है, पानी कौन देता है, लेकिन समय पर आकर के वो पेड़ फलों से लद जाते हैं। आप जंगल के किसी पेड़ के पत्ते को तोड़ के लैब में ले जाओ और उसको टेस्ट कराओ, एक तत्व की भी कमी नहीं मिलेगी। जब वहां ये नियम काम करता तो वही नियम हमारे खेत में भी करना चाहिए। इसका नाम है प्राकृतिक खेती। प्रकृति जो काम जंगल में करती वही काम खेत में होना चाहिए, इसका नाम प्राकृतिक कृषि है। तो इसका ये इतना बड़ा लाभ है। इसमें दूसरा हम एक खाद बनाते हैं, ये तो जीवामृत है
9: जी।
8: एक है घन जीवामृत। वो क्या है? जब किसान के पास ज्यादा गोबर हो जाए, जीवामृत की जरूरत खेत में ना रहे, तो वो सूखी देसी गाय की एक क्विंटल गोबर की खाद धरती में थोड़ा उसको पीट के बारीक कर ले, उसमें यही चीजें डालनी जो आपने जीवामृत में डाली। उसमें 1.5 से 2 किलो गुड़, 1.5 से 2 किलो किसी दाल का बेसन, 1 मुट्ठी मिट्टी और 5-7 किलो गौमूत्र उसमें मिला के और पशुशाला के कोने पर रख दे, प्लास्टिक से ना ढके, जूट की बोरी से ढक दे। ये घन जीवामृत 6 महीने भी खराब नहीं होता।
9: अच्छा।
8: इसमें जीवाणुओं का भंडार बन जाएगा। जब किसान खेती बीजे तो उससे पहले डीएपी की तरह धरती में इसको डाल दे और उसके बाद बीजे। ये आप ज्यादा कम बढ़ा सकते हैं, कोई खतरा नहीं। 4 से 5 क्विंटल प्रति एकड़ डाल दें तो उत्पादन बहुत बढ़ेगा। और जीवामृत जो है, हर पानी जब देता किसान, हर पानी में जीवामृत छोड़ दे और 15-20 दिन में फसल के ऊपर 10 लीटर पानी में 2 लीटर जीवामृत डालकर उसका स्प्रे कर दे, तीसरे दिन फसल की रंगत बदलेगी। तो ये 2 तरह के हम खाद बनाते हैं। अब शुरू में जब हम रासायनिक से प्राकृतिक खेती में आएंगे तो धरती की ऑर्गेनिक कार्बन कम है, धरती बंजर कमजोर हो चुकी है, तो उसमें कीट पतंग आएंगे। उनके निदान के लिए मैंने एक पुस्तक लिखी, प्राकृतिक कृषि, इसमें पूरा विवरण मैंने दिया है। उसमें नीमास्त्र, सूंठास्त्र, ब्रह्मास्त्र, अग्निअस्त्र, ऐसे कुछ कीटनाशक बनाते हैं प्राकृतिक। गाय मूत्र में नीम, धतूरा, आग, चिरायता, गिलोय, ऐसी जड़ी बूटियों को पका के रख लेते हैं और उसको पानी में 2 लीटर डाल के, 15-20 लीटर पानी में 2 लीटर डाल के टंकी से छिड़काव करेंगे तो कीट का भी इलाज हो जाएगा। और उसमें जो फंगस वगैरह आती तो खट्टी छाछ, कई कई महीने पुरानी खट्टी छाछ, उसको भी हम पानी में मिलाकर स्प्रे करते हैं तो वो पौधे को ताकत भी देगी और रोगों से भी बचाएगी। इसमें कुछ भी पैसा खर्च नहीं होगा, दोनों घर में किसान बना सकता है। और जब आपकी जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ जाएगा, ताकत उसकी बढ़ जाएगी, तो बीमारी आनी खत्म हो जाएंगी। मेरे

0: मल्टी क्रॉप करते हैं, एक ही फसल नहीं बोते, एक साथ हम कई कई फसलें बीज देते हैं। गेहूं बोज दिया तो बीच में चना बो दो, चना उसमें नाइट्रोजन फिक्स करेगा। ऐसे हम एक समय पर अनेक तरह की फसल बोते हैं और वो एक अब आ गई, किसान को लाभ हो गया, मूल फसल बचत में और ये दूसरी फसल खर्चा निकाल देती है उसका, तो इससे किसान की आय भी बढ़ेगी। और जितना धरती को ढककर के हम रखेंगे उतना ही जमीन की और का ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा। अब ये जो मल्चिंग है वो क्या है, खेत का जो घास फूस है हम उसको आग लगाते हैं, बिल्कुल नहीं जलाना चाहिए, इसे प्रदूषण भी बढ़ेगा और हमारे जो जीवाणु वो भी मरेंगे, मित्र जीव भी मरेंगे। हम क्या करते हैं, जो भी अवशेष जमीन में से निकलते हैं उनको काट के जब फसल बो दी, फसल को छोड़ के बाकी खाली जगह है उस पे उसको बिछाओ, उसके कितने जबरदस्त लाभ हैं वो किसान बंधु सुनेंगे। नंबर एक, जब हम धरती को ढक देंगे तो साइंटिस्ट भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि जब धरती का तापमान 35 डिग्री से ऊपर होता है तो धरती का ऑर्गेनिक कार्बन उड़ना शुरू हो जाता है और वो आकाश में जाकर के वायु प्रदूषण ग्लोबल वार्मिंग को जन्म देता है। और हम उसे मल्चिंग करके ढकते हैं तो वो उड़ने नहीं पाता, जमीन की फर्टिलिटी को बढ़ाने का काम करता है। एक काम, नंबर दो इस मल्चिंग का लाभ है कि 50% पानी आपका बच जाएगा, 50% पानी सारे देश की धरती का निकलना बंद हो जाएगा। क्यों, जब हम इसको ढके रखेंगे तो ये जो मल्चिंग है ये आकाश में जो जलीय तत्व है उसको खींचती है और ये जमीन को देती है, तो जमीन की नमी जो है ना वो बनी रहती
1: है।
0: किसान बंधुओं से मेरा निवेदन है कि पौधे को पानी नहीं चाहिए, पौधे को नमी चाहिए, पौधे को पानी नहीं चाहिए, पौधे को नमी चाहिए। और इस मल्चिंग से वो नमी बनी रहेगी, कैसे बनी रहेगी वो किसान बंधु इसको भी समझेंगे। आप अपने खेत में कोई फसल काटते हैं और उसका एक गट्ठा बना करके खेत में डाल देते हैं, जून का महीना है, मई जून का महीना, लूएं चल रही हैं, चारों तरफ पानी कहीं है नहीं, तप रही है जमीन। ऐसे मौसम में जो गट्ठा आपका खेत में पड़ा हुआ है फसल का, भार जिसको बोलते हैं, गट्ठा बोलते हैं, वो उस भार को उलट के देखें, उसके नीचे नमी मिलेगी। सब किसान इसको स्वीकार, ये नमी कहां से आई जब चारों तरफ सूखा पड़ा है। ये जो मल्चिंग है, अवशेष हैं, ये आकाश के जलीय तत्व को खींच के जमीन को देते हैं। तो पानी की 50% 50% जरूरत ही कम हो जाएगी। दो लाभ हो गए। तीसरा लाभ,
2: किसान साथियों, हम लगातार खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को सुन रहे हैं। किसान साथियों, यहाँ पर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ रेडियो टाइंडाबिल 90.8 FM के साथ, छाबुआ की आवाज। रेडियो स्टेशन 90.8 FM टाइंडाबिल, रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान, आपू रोज करूं बातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा, एत्रे हमारता रेजो टांटिया भिलनो रेडियो स्टेशन 90.8 FM।

0: झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: तीसरा लाभ इसका यह है कि जो केचुआ है, अर्थवर्म है, वो रात में काम करता, दिन में नहीं करता। दिन में क्यों नहीं करता? जब वो बाहर आता तो उसे पक्षी उठा ले जाते हैं
2: जी,
1: उसको अपनी मौत का खतरा है। वो इसलिए अंधेरे में काम करेगा, प्रकाश होते ही वो अंदर चुप बैठ जाता है
2: जी।
1: यदि किसान मल्चिंग करता, जमीन को ढकता है, तो वो केचुआ जो है रात की तरह अनुभव करके मरने के भय उसका खत्म कर दिया, तो वो फिर रात और दिन काम करेगा।
2: डबल शिफ्ट,
1: वो डबल शिफ्ट पे आ जाएगा। डबल शिफ्ट करेगा और वो किसान की जमीन को ऑक्सीजन भी देगा, खाद भी तैयार करेगा, और वो वर्षा जल का नीचे जाने का भी प्रबंध करेगा, और गर्मी में पेड़ को सूखने भी नहीं देगा। ये अद्भुत काम वो करेगा। और चौथा इसका लाभ क्या होगा कि जो जीवाणु हैं, जो हमने गोबर से लिए थे, जिनको खाने के लिए हमने दाल का बेसन दिया था, अब धरती में वो आ गए तो क्या खाएंगे? उनको भोजन तो चाहिए। ये जो मल्चिंग है, घास फूस, ये उसका भोजन है। वो खाएंगे, ज्यादा काम करेंगे, पुष्ट रहेंगे, और इस सारी मल्चिंग को खा के खाद में बदल देंगे
2: जी।
1: इसको भी खाद में बदल देंगे। और अंतिम पांचवा इसका लाभ क्या है, जो किसान बहुत लेबर लगा करके घास निकालता खेत की, इसके बिछाने से खरपतवार पैदा ही नहीं होगा, क्योंकि उसको सूर्य की धूप नहीं मिलेगी
2: जी।
1: वो निकलेगा लेकिन पीला पड़ के वहीं खत्म हो जाएगा, उसका बीज ही नष्ट हो जाएगा।
2: अच्छा।
1: और ये खरपतवार की प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। तो ये प्राकृतिक खेती का दोनों तरफ से इस रूप में लाभ मिलता है। जब हम ये करेंगे तो इससे ऑर्गेनिक कार्बन, जो जमीन की फर्टिलिटी, वो बढ़ेगी। मैंने अपने खेत में, मेरे दो खेत थे, एक मैं 50, ये 100 एकड़ की मैंने जो बात की है
2: जी,
1: इसमें मैं प्राकृतिक खेती करता हूं। इसी के साथ बीच में एक पक्की सड़क से इधर हमारा 100 एकड़ का खेत था, जो मैंने भाड़े पे, लीज पे, ठेके पे किसानों को दिया हुआ था,
2: बटाई पे दिया था।
1: ये किसान बंधुओं के लिए बहुत बड़ा प्रमाण, इसे सुनना चाहिए और अनुभव करना चाहिए कि हम कहां जा रहे हैं। वो जो भाड़े पे, बटाई पे मैंने खेत दिया था, मतलब मैं इकट्ठा पैसा लेता था, बटाई पे नहीं कुछ लेता था मैं। मैंने फिक्स किया था कि मैं 30,000 रुपये पर एकड़ लूंगा, 40,000 रुपये पर एकड़ लूंगा, और मेरा खेत तुम्हारा हो गया। मिश्रा जी, अब से 3 बरस पहले वो सब किसान इकट्ठे होके आए मेरे पास और उन्होंने कहा, जी हम आपका खेत नहीं लेंगे।
2: अच्छा।
1: छोड़ रहे। क्यों छोड़ रहे भाई? के जी, इसमें कुछ नहीं पैदा होता, हमारा तो खर्चा भी नहीं निकलता, हम तो इसने कर्जा ही बना दिए। मैंने कहा क्यों? के जी, होता ही नहीं पैदा। मैंने कहा मेरे ये खेत और ये तो इकट्ठे हैं, और जब मैंने जमीन दी थी तब नहीं होता था कि, तब तो बहुत पैदा होता था, अब नहीं होता।
2: अच्छा।
1: मैंने गांव के और लोग बुलाए, भाई ये लोग सत बोलते हैं कि झूठ बोल रहे हैं? उन्होंने कहा जी बिल्कुल सच कह रहे, कुछ नहीं होता इनमें, खर्चा नहीं निकलता इनका। उन्होंने छोड़ दिए मेरे खेत। मैंने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के कुरुक्षेत्र में जो डॉक्टर हरिओम की चर्चा की, उनको मैंने बुलाया, मेरे परिचय में भी थे, डॉक्टर साहब किसानों ने मेरा खेत छोड़ दिया और ये कह करके छोड़ा, इसमें कुछ लाभ नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूं इसका? उन्होंने कहा जी ऐसे नहीं पता लगेगा, मैं इस पूरे खेत के मिट्टी के सैंपल लूंगा और इनको यूनिवर्सिटी की लैब में भेजूंगा
2: जी,
1: वहां से टेस्टिंग होने के बाद पता लगेगा भूमि की क्या स्थिति है। उन्होंने सैंपल ले लिए, सैकड़ों सैंपल लेकर भेज दिए। डेढ़ दो महीने बाद रिपोर्ट आई, उन्होंने कहा किसी जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन 0.3 पाया, किसी का 0.4 पाया, किसी का 0.5 से सब नीचे नीचे था
2: जी।
1: तो उन्होंने कहा जी ये किसान जो कह रहे बिल्कुल ठीक है, इस जमीन की फर्टिलिटी खत्म है, इसमें तो यूरिया डीएपी भरकम डालोगे तो कुछ होगा नहीं, कुछ नहीं होगा इसमें। मैंने कहा अब क्या करूं मैं, तो डॉक्टर हरिओम जी ने कागज पेन लेके लिखना शुरू किया, इतना यूरिया, इतना डीएपी, इतना पोटास, इतना जिंक, इतना फास्फोरस, ये और इसमें जो अवशेष होंगे फसल के वो इसी में काटने पड़ेंगे। जैसे धीरे धीरे सालों में ये बंजर हुई है, ऐसे कई सालों में जाके ये उपजाऊ बनेगी। मैंने कहा ये तो बड़ी चिंता का विषय, इतनी जमीन बर्बाद हो गई। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब ये तो बहुत लंबा रास्ता आपने बता दिया, मैं तो अपने ढंग से खेत करूंगा, आप क्या करोगे? मैं कहा ये जीव अमृत घनजीव अमृत डालूंगा। डॉक्टर हरिओम जी कहने लगे महाराज दुनिया बहुत आगे चली गई, साइंस का जमाना है, गोबर गोमूत्र से क्या बनेगा? साइंटिस्ट मैं हूं या आप हैं? जो मैं कहूं वो करो। मैंने कहा आप वाले कहने से तो ये बंजर हुई है जो इन लोगों ने किया है, तो आप क्या करेंगे? मैं कहा मैं यही करूंगा जो अपनी बाकी खेत में करता हूं, जीवामृत घनजीवामृत डालूंगा। वो कहने लगे इसे कुछ नहीं होगा, आपकी मर्जी, जमीन आपकी, मैंने अपना बता दिया राय, अब जो करना करिए, और वो चले गए।
0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM, आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: मिश्रा जी 3 साल पहले उस बंजर जमीन में मैंने 5-5 क्विंटल घनजीवामृत डलवाया पर एकड़, और उसमें धान की रोपाई की। जब भी पानी देता तो जीवामृत का उसमें घोल छोड़ देता, और 15 दिन बाद जीवामृत का मैंने 10 लीटर पानी में 2 लीटर जीवामृत डाल के उसका छिड़काव शुरू किया
2: जी।
1: फसल लहलाने लगी।
2: अच्छा,
1: इतना बढ़िया हरा भरा खेत। मैंने डॉक्टर साहब को बुलाया, मेरे जानकार थे वो, मैं कहा एक बार आओ आपको करिश्मा दिखाता हूं। तब उन्होंने 2-3 महीने के खेत को देखा तो उन्होंने कहा खेत तो वही है जिसे सैंपल लिए थे, लेकिन ये इतनी अच्छी फसल कैसे है? तुमने यूरिया डीएपी डाला होगा? मैं कहा ना, एक बूंद भी नहीं, यही डाला बस। तो उन्होंने कहा जब ये फसल कटे तो मेरे को तोल होगा तो मेरे को दिखाना
2: जी।
1: तो उस बंजर भूमि में पहले साल एवरेज 21 क्विंटल धान निकला मेरा पहले वर्ष।
2: अच्छा,
1: और उसी चीज को मैंने बराबर चलाए रखा। अगले वर्ष उसी जमीन में एक ही साल के अंतर से 28 क्विंटल प्रति एकड़ धान निकला अगले वर्ष
2: जी।
1: अब वो कहने लगा कि भाई ये हो नहीं सकता, ये तो करिश्मा है। तो उन्होंने एक वर्ष के बाद उस मिट्टी के दोबारा सैंपल लिए, उनकी उत्सुकता बढ़ गई। वो भले आदमी है, आध्यात्मिक आदमी है, वो जिद्दी नहीं है, और उन्होंने कहा भाई यदि ये है तो ये तो बहुत
2: कुछ क्रांतिकारी
1: काम
2: है जी, जी।
1: तो उन्होंने उस पूरी जमीन के दोबारा सैंपल लेके फिर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार को भेजे और एक दो जगह भेजे, और वहां से फिर रिपोर्ट आई जिस जमीन का एक साल पहले 0.3, 0.4, 0.5 से नीचे ऑर्गेनिक कार्बन था, उस जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन एक साल में 0.7, 0.8 हो गया।
2: अच्छा,
1: वो कहने लगा हमारी साइंस में तो हो ही नहीं सकता। कभी आज भी पूरे देश का एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के साइंटिस्ट इस बात को मानेंगे नहीं, और वो ठीक है। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि वो उनकी सिस्टम तो जीवाणु को मारने का काम करता है, उनका सिस्टम तो केचुए को मारने का काम करता है, मित्र कीट को मारने का काम करता है। जो जीव ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने का काम करते हैं, वो मार दिए तो ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा कैसे, वो तो ये काम करते हैं। अब हमने जब ये किया तो इससे तो ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने वाले जीव बढ़ गए, तो मेरा ऑर्गेनिक कार्बन एक ही साल में 0.3, 0.4, 0.5 से 0.7 और 8 पे गया। तो उसने कहा भाई कमाल हो गया, ये तो अजीब है। और आश्चर्य उनको तब हुआ जब तीसरे वर्ष उसी में 32 क्विंटल एवरेज से धान पैदा हुआ, 32 क्विंटल। और अभी एक महीना पहले ये अब की साल जो कटा है उन्हीं खेतों में 33 क्विंटल प्रति एकड़ पैदा हुआ। और अभी आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि हमारी गुजरात की 4 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं। जब हमारा धान खेत में खड़ा था, दूसरी फसलें खड़ी थी, चारों एग्रीकल्चर के वाइस चांसलर हमारे खेत में कुरुक्षेत्र गए।
2: अच्छा।
1: उन्होंने जाके देखा और ये अनुभव किया कि ऐसी फसल प्राकृतिक में हो सकती हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उन चारों ने स्वीकार किया। उसके बाद उन्होंने अपने और साइंटिस्ट वहां पर भेजे। तो अब मेरी जमीन का, अब उसी जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन अब करवाया है तो वो 0.8, 0.9 और 1 से भी ऊपर चला गया।
2: अच्छा।
1: 1 से भी ऊपर चला गया। अब स्थिति ये पूरे खेत की हो चुकी है अभी जो किया। इसका एक और अंतिम उदाहरण मैं देता हूं। अब इन साइंटिस्ट में ये देख के आश्चर्य हुआ कि भाई ये कैसे इतना ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ सकता है। जितना ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा उतनी जमीन की गुणवत्ता बढ़ेगी, फर्टिलिटी बढ़ेगी, उसमें रोग भी नहीं आएंगे, हमारी जमीन में खुशबू आना शुरू होगी। अभी पिछले दिनों वही डॉक्टर बलजीत सारन और उन लोगों की टीम ने एक एक्सपेरिमेंट नया किया। उन्होंने जिला कुरुक्षेत्र की अलग अलग तहसीलों में गए, वो उन तहसील के एक किसान के खेत से मिट्टी ली, दूसरे तहसील के किसान के मिट्टी ली, तीसरे से ली जो रासायनिक खेती करते थे
2: जी।
1: ऐसे 5 किसान उन्होंने लिए जो रासायनिक खेती करते थे, उनकी मिट्टी लेकर के वो आए और उन्होंने सारी 5 किसानों की मिट्टी को इकट्ठा मिला करके यू मिला लिया और लैब में लेकर रिसर्च किया उस पे, तो उसकी 1 ग्राम मिट्टी में 30,05,000 जीवाणु मिले रासायनिक खेती में। फिर उन्होंने हमारे गुरुकुल कुरुक्षेत्र की मिट्टी को लिया 5 जगह से ऐसे, फिर उसको यूं ही मिलाया और लैब में लेके गए तो उसमें 161 करोड़ जीवाणु मिले 1 ग्राम मिट्टी में। हमारी 1 ग्राम में 161 करोड़ और रासायनिक में 30,05,000। अब आप ये साइंटिफिक आधार इससे बड़ा क्या होगा? साइंटिस्ट इस बात को तो मानेंगे जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन जितना ज्यादा होगा तभी वो तो फसल बढ़िया देगी। और ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने का काम मित्र जीव करते हैं, जीवाणु करते हैं। अब रासायनिक तो उनको मारने का काम करती है और उसके बाद भी इस सिस्टम को जो ना माने तो ये तो किसान के साथ, बेचारे के साथ और लोगों के साथ बड़ी
2: बिल्कुल
1: नाइंसाफी है ना जी। तो ये इतने उदाहरण मोटे मोटे मैंने आपकी सेवा में दिए हैं, मोटी मोटी जानकारी दी है और इसका लाभ क्या होने वाला है जो मैं निवेदन करता हूं। कहने को ये प्राकृतिक खेती है लेकिन एक काम से अनेक लाभ और क्रांतिकारी काम क्या होगा, रासायनिक खेती ग्लोबल वार्मिंग को जन्म देती है और प्राकृतिक खेती ग्लोबल वार्मिंग को समाप्त करने का काम करती है। हवा हमारे अनुकूल बनेगी, पानी जल जीवन है, ये उसको वाटर लेवल को बढ़ाने का काम करेगी। और आज पानी पीने लायक नहीं बचा है, बोतल लिए घूमते हैं
2: जी जी।
1: प्राकृतिक खेती करेंगे तो उसमें जहर नहीं जाएगा तो हमारा पानी आने वाली पीढ़ियों को मिलेगा, स्वास्थ्य प्रदान करेगा। 2 लाभ। तीसरा, प्राकृतिक खेती से जमीन की फर्टिलिटी बढ़ेगी, आने वाली पीढ़ियों को उपजाऊ जमीन दे करके जाएंगे और रासायनिक से उनको बंजर जमीन देके जाएंगे। चौथा, जो भारतीय नस्ल की देसी गाय है इसका नस्ल सुधार किया जाए और ये गाय चलती फिरती जीवाणुओं की फैक्ट्री है, यदि ये बचेगी तो इसका A2 दूध वो तो मानव के कल्याण पीने के काम आएगा और इसका गोबर गोमूत्र कृषि को बचाएगा। इस समय भारत सरकार 225,000 करोड़ रुपया वार्षिक यूरिया DAP पे सब्सिडी देती है। इतना बड़ा धन यदि देश के विकास में लगे तो देश कहां जाएगा?
2: बिल्कुल।
1: और ये 225,000 करोड़ नहीं, फिर किसानी से खरीदता है, ये 200,000 करोड़ का मामला है और पेस्टिसाइड वो अलग है। कितना बड़ा एक चक्रव्यूह
2: बिल्कुल
1: चल रहा है, इससे निजात मिलेगी। और पांचवा इसका लाभ है कि जिस आहार को जहर वाले को खा के अस्पताल भरे पड़े, मैं सब बंधुओं से निवेदन करके पूछता हूं कि जब रासायनिक खेती नहीं थी 50-60 साल पहले, कोई कैंसर को जानता था? कोई डायबिटीज को जानता था? कोई हार्ट अटैक को जानता था? कोई हाइपरटेंशन को जानता था? ये इतने असाध्य रोग जिनके निदान के लिए अरबों रुपए के मेडिकल बनाए जा रहे हैं, इतना बड़ा सिस्टम खड़ा है,
2: जमीन पे
1: आदमी बीमार हो करके वहां पड़ेगा, काम नहीं कर पाएगा, परिवार दुखी पर बीमार दुखी, ये सारी से मुक्ति का रास्ता इसे मिलेगा। और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी किसानों की चिंता करें कि किसान खुशहाल हो, किसान उन्नत हो, उसकी आय बढ़नी चाहिए, ये वो विकल्प है जो किसान की आय बढ़ाने की दिशा में काम करेगा। और इसका एक प्रबल उदाहरण, मैं 4 वर्ष तक हिमाचल में भी गवर्नर रहा, अंतिम 2 साल में मैंने वहां प्राकृतिक खेती का अभियान शुरू किया। जब मेरे खेत में ये परिणाम आए तो मैंने सोचा इस राजभवन में बैठ के क्या करेगा, इन किसानों के लिए कुछ करना चाहिए, जब एक सिस्टम तूने प्रैक्टिकल कर लिया तो इनका भला होना चाहिए। मैं गांव में घूमना शुरू हुआ और मैंने किसानों को जोड़ना शुरू किया। अंत के 2 साल में मैंने 50,000 किसान प्राकृतिक खेती से जोड़ दिए।
2: अच्छा।
1: और इसको देख करके प्रदेश सरकार ने इसमें पूरी रुचि ली और उन्होंने एक अलग से विभाग स्थापित कर दिया, उसमें एक IAS अधिकारी रखे, एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लोन सोलन के डॉक्टर राजेश्वर चंदेल साइंटिस्ट इसमें रखे और उन लोगों ने समझ के, और मैं लगातार उनसे संपर्क में हूँ, मेरे आने के बाद 1,00,000 किसान नए जोड़ दिए उन्होंने। अब 1,50,000 किसान लगभग प्राकृतिक खेती करते हैं जहर मुक्त। और 12 अप्रैल को पिछली जो अप्रैल गई है इसमें चीफ सेक्रेटरी हिमाचल की अध्यक्षता में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अधिकारियों की बैठक हुई। उन्होंने पूछा भाई ये जो प्राकृतिक खेती आप करते हैं जो आचार्य देवव्रत चला के गए थे, इसका कोई लाभ हुआ या हानि हुई? तो उन्होंने आंकड़े प्रस्तुत किए।
2: अच्छा।
1: के इस खेती करने के बाद जो लोगों ने खेती की उनकी 27% इनकम बढ़ गई है और 56% खेती की लागत कम हो गई। वहां के अमर उजाला अखबार ने इस न्यूज को छापा।
0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM, आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: यानी के 27% तो आय बढ़ गई और 56% लागत कम हो गई,
2: वो भी आय बढ़ गई।
1: और माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं किसान की आय दुगनी करने का अभियान चलाया, तो यदि दोनों को जोड़ दें तो डबल की ओर बढ़ गई कि नहीं?
2: बिल्कुल।
1: तो इस खेती में प्राकृतिक में लागत शून्य के बराबर हो जाती और उत्पादन कम होता नहीं, उत्पादन बराबर चलेगा और लागत घट जाएगी तो किसान की आय वैसे ही बढ़ गई।
2: बिल्कुल।
1: अब अंतिम बात मैं करता हूं, अभी जो मेरे खेत में धान की बात मैं करता हूं, 33 क्विंटल एवरेज पैदा हुई है और जो रासायनिक खेती करते हैं उनकी 28 से 30 क्विंटल प्रति एकड़ हुई है। अब रासायनिक वाले ने पानी से भी उसको भर के रखा, मैं पानी भी 50% दिया, उसके 10 से 12 हजार रुपए प्रति एकड़ खर्चाया, मेरा 1,000 रुपए प्रति एकड़ खर्चाया, उसका उत्पादन 28 से 30 क्विंटल हुआ, मेरा उत्पादन 33 क्विंटल हुआ। अब और ये चीज जाके मेरे खेत में देख लो, आप वहां की मिट्टी टेस्ट कर दो, हमारी फसलों को जाके देख लो। और मजे की बात ये मिश्रा जी, आज कैंसर से कोई नहीं मरना चाहता, आज उपभोक्ता को ये पता लगे कि इस उत्पादन में जहर नहीं है तो वो उसे डबल कीमत पे भी लेने को तैयार है।
2: बिल्कुल।
1: और इस समय गुजरात सरकार, हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, आत्मा एग्रीकल्चर, हमारे मनीष भारद्वाज जी जो सचिव हैं, मुख्यमंत्री जी, सब लोग, पूरी प्रदेश सरकार पूरे मनोयोग से इस पद्धति को जनमानस तक किसानों में पहुंचाने का अभियान चलाया। अभी हमने डांग जिला है, इस 19 नवंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं, हमारे कृषि सचिव महोदय, आत्मा के डायरेक्टर महोदय सब ने उस जिले को प्राकृतिक जिला घोषित कर दिया। भारत का पहला प्राकृतिक जिला वो होगा,
2: यानी हर किसान प्राकृतिक खेती कर,
1: बिल्कुल, उसमें एक भी किसान नहीं बचेगा। वहां यूरिया, पेस्टिसाइड, डीएपी पे प्रतिबंध है और उसके लिए प्रदेश सरकार ने सहयोग दिया उनको, 1 हेक्टेयर के लिए 1,000 रुपया प्रति एकड़, वो 10,000 रुपया प्रति एकड़, हाँ, इतना सहयोग देंगे ताकि उनका मनोबल आए, उनको दिक्कत ना आए, और ये काम शुरू कर दिया। और प्रदेश सरकार ने जो किसान, यहाँ 2 लाख किसानों ने प्राकृतिक खेती शुरू की, और वो जो देसी गाय किसान घर में रखता उसको 900 रुपया महीना प्रदेश सरकार गाय के रख रखाव के लिए दे रही है। तो ये काम यहाँ शुरू होने से किसानों में एक जागृति आई है। अभी हमने 6 दिन का एक शिविर आज ही संपन्न किया है, इस दिसंबर मास में 3-4 शिविर और लगाने हम जा रहे हैं। तो पूरे प्रदेश में प्रदेश सरकार ने एक अभियान चलाया है और हम किसानों में ये विचार मजबूती से फैला रहे हैं, और हजारों लाखों जो किसान कर रहे हैं उनके जो अनुभव आने लगे बड़े संतोषजनक हैं और वो बड़े उत्साहित हैं। तो ये कृषि जो है हमारी, ये प्राकृतिक है, जैविक नहीं, रासायनिक नहीं है। इस समय हमारे एग्रीकल्चर से जुड़े साइंटिस्ट कहते हैं कि जी ये खेती साइंटिफिक नहीं है, इस पर वो नहीं हुए हैं शोध, तो हम उनसे आग्रह करते हैं आप शोध करिए, हम तो आपको आह्वान करते हैं। वो उदाहरण देते हैं, लंका ने इस काम को शुरू किया जैविक को, वहाँ बड़ा उत्पादन कम हो गया, दिक्कत आ गई, बिल्कुल ठीक किया उन्होंने, जैविक किया इसलिए उत्पादन कम हुआ, उन्होंने प्राकृतिक नहीं किया इसलिए फेल हुए। प्राकृतिक करें, हमारे टी विजय कुमार चीफ सेक्रेटरी आंध्र प्रदेश रहे, आईएएस अधिकारी, वो हिमाचल आंध्र प्रदेश में पिछले 5-7 साल से इस खेती को करवाते हैं, 5 लाख से ज्यादा किसान उनके साथ जुड़े हुए हैं, और उन्होंने जहां पानी भी नहीं है वहां 3-3 फसल किसानों की शुरू हो गई इस प्राकृतिक, इसी पद्धति से। यदि ये सफल नहीं होती तो 1.5 लाख किसान हिमाचल में क्यों जुड़ता,
2: बिल्कुल,
1: यदि ये ना होती तो हमारे गुजरात में क्यों जुड़ता। 7-8 साल से जो आंध्र प्रदेश में करते हैं वो क्यों जुड़ते। जैविक कृषि को 30 साल से हम करते आ रहे, उसे कोई नहीं जुड़ा, क्योंकि वो घाटे का सौदा है, उसमें उत्पादन पूरा होता नहीं, खर्चे कम होते नहीं। तो जैविक कृषि भिन्न है, प्राकृतिक कृषि भिन्न है, हम प्राकृतिक कृषि के अभियान को जनमानस तक पहुंचाने का अभियान चला रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी, केंद्र के कृषि मंत्री जी ने भी संकेत दिया है कि आने वाले समय में इस कृषि को हम बढ़ाकर देश के किसान को खुशहाल बनाना चाहते हैं और जमीन को फर्टिलिटी बचाना चाहते हैं, पर्यावरण बचे, पानी बचे, गाय बचे और किसान की आय बढ़े, लोगों को स्वास्थ्य मिले। धन्यवाद।
2: बहुत ही अद्भुत, बहुत अद्भुत। और मुझे लगता है कि
0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
2: मेरे मन में जो सवाल आ रहे थे आप स्वतः उनका जवाब देते चले जा रहे थे। मैं मन में मेरे श्रीलंका शब्द आया और आपने लंका कह दिया। तो इतने सरल तरीके से और इतने बहुत लूसिडली आपने बताया, बहुत धन्यवाद इसका। क्या जो भारत जैसे देश में जहाँ पर छोटी जोत के किसान हैं
1: जी,
2: उनके लिए भी इसका अर्थशास्त्र ठीक बैठता है?
1: इसमें मिश्रा जी, छोटे किसान के लिए तो ये वरदान है। कारण क्या है, छोटा किसान वो ट्रैक्टर रखेगा तो बड़ा उसको खर्चा बढ़ेगा। यदि वो गाय रखता है 2-2.5 acres का है तो बैल से करेगा तो मजबूत भी रहेगा, स्वस्थ भी रहेगा। और घर में गाय होगी तो बच्चे दूध पिएंगे। और एक देसी गाय से तो 18-20 acres से भी ज्यादा खेती हो सकती है। उदाहरण के लिए गाय दूध भले ही रोज ना दे, गोबर गोमूत्र तो प्रतिदिन देगी
2: जी।
1: और एक दिन के गोबर गोमूत्र से 1 acre का खा तैयार है तो 30 दिन के गोबर गोमूत्र से तो 30 acres का तैयार है।
2: बिल्कुल।
1: तो ये तो इतना बड़ा उपकारी जीव है कि इसका उपयोग किया जाए तो छोटे किसान मल्टी क्रॉप करेगा। 1 acre में जब 4-4, 5-5 तरह की फसल एक ही दम लेगा तो उससे उसकी इनकम बढ़ेगी।
2: बिल्कुल।
1: और ये जीवामृत घन जीवामृत जितना डालेगा इसका नुकसान ही कुछ नहीं है। इसका तो लाभ ही लाभ, फर्टिलिटी बढ़ती जाएगी। और आश्चर्य ये कि मेरे जो अपने खेत है इस साल उनमें केवल 1 बार जीवामृत देना पड़ा।
2: अच्छा।
1: 1 बार वो इतने बढ़ गए कि वो काटने पड़े हमें, पहले पशुओं को खिलाने पड़े। इतनी बढ़ गए वो, उनको खतरा था ये गिर जाएंगे और फल कमाएगा तो काटना पड़ा। इसलिए क्योंकि उस धरती का ऑर्गेनिक कार्बन 0.9 or 1 से ऊपर चला गया।
2: ऊपर चला गया जी।
1: बीमारी भी नहीं आनी आती क्योंकि वो बीमारी वहां आएगी जहां कमजोरी होगी। अब ये जो कोरोना आया है, एक्सपर्ट्स क्या बोलते हैं, जिस आदमी की इम्यूनिटी जितनी स्ट्रोंग होगी वो लड़ाई लड़ेगा, जो इम्यूनिटी कमजोर हो मर जाएगा। जब धरती का ऑर्गेनिक कार्बन है तो उसकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रोंग है तो उसको बीमारी आएगी नहीं। जी धरती में यूरिया DAP से उसकी जान निकाल दी, बीमारी तो उसमें आएगी। जो एंटीबायोटिक रोज खाएगा वो कैसे बीमारी से लड़ेगा। तो वही स्थिति भूमि के साथ।
2: बिल्कुल। और ये कैंसर जो वगैरह, ये आपने बिल्कुल सही कहा, एक इत्तेफाक नहीं है कि अचानक इतने सारे, हम में से हर इंसान अपने आसपास किसी ना किसी को जानता है जो इसे जूझ रहा हो या जूझ चुका हो। और ये पिछले 8-10 सालों 10-15 साल की ही
1: इसी की देन है।
2: तो बहुत जो आप बात कर रहे हैं वो एकदम जुड़ के सेंस उसका।
1: मिश्रा जी, पंजाब के किसान ने सबसे ज्यादा यूरिया DAP और पेस्टिसाइड का प्रयोग किया। वहाँ भटिंडा एक जिला है
2: जी,
1: वहां से कैंसर ट्रेन प्रतिदिन बीकानेर के लिए चलती है। उसका नाम ही कैंसर
2: एक्सप्रेस। जी।
1: यानी के पूरी भर के चलती, इतना कैंसर पहले कभी नहीं था। तो ये जो खानपान हमारा और स्लो पॉइजन पेस्टिसाइड यूरिया DAP जहर शरीर में जा रहा है उसके दुष्परिणाम।
2: और दूसरी तरफ जो कंज्यूमर है, जो उपभोक्ता है, ये तो किसान को फायदे हैं
1: जी।
2: और उपभोक्ता को
1: बहुत बड़ा। और इसी के लिए हमारे जो कृषि सचिव महोदय हैं, कृषि विभाग है, वो बराबर इस मिशन पे लगा है। अब हमने लगभग 100 FPO बनाए और एक FPO में 300 किसान जोड़ दिए। अब जो छोटा किसान है 2-2.5-4 acres का, वो अपना उत्पाद बेचने जाता, बड़ा उसको दिक्कत आती है। अब 300 किसान एक तरह की फसल इकट्ठी बेचेंगे तो उसका भाव उचित मिलेगा, उसकी जो पैसा मूल्य मिलेगा वो प्रॉपर मिलेगा। तो इस दिशा में भी लगातार प्रयास हैं, अनेक जगह संपर्क बनाते जा रहे हैं ताकि इसका किसानों को उचित दाम मिले और उनकी मार्केट की व्यवस्था बढ़िया बन सके। इसमें भी बराबर काम चल रहा है।
0: सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
3: किसान भाइयों, आज ना इना कार्यक्रम मा खेतीवाड़ी ना इना कार्यक्रम मा आपुए एक विस्तार रूप मा जानियो है कि कम जो आपड़ी खेती आपु करी रहा है। आपुए गाय ना गोबर थी लीन शुरुआत करेली अने हमने आपू सांभ्यू के जो रासायनिक खातर है यूरिया DAP वगैरह आप खेतरों में नाखी ने तीनों दुष्प्रभाव केवो पड़ो है तीनों उदाहरण भी आप जो कैंसर ट्रेन ना बारा में सांभ्यू। तो किसान भाइयों, कहीं ना कहीं इना कार्यक्रम थी आपने ये जो सीख मिली है, इनकी आशा करूँ है कि इना कार्यक्रम माध्यम थी आप जो भी सीख लेती है ते सीख आपूँ अपना पड़ोसी किसान भाई ने भी बताड़िए। सबसे जरूरी है कि आपू अपना जीवन में उतारी के ये जो समस्या आ रही है आवा वाला समय में जो समस्या हमने आपूए अधिकतर खात नाखी जो समस्या आपूए आर की मोटी कर नाखी है तीन समस्या नो निदान की कम थी सके है तीना बारा में भी आपूए आज ना कार्यक्रम में चर्चा करी है। तो किसान भाइयों, आर की जरूरत है हमून एक बदलाव नी। तो आशा करूँ है कि आजना इना कार्यक्रम ना माध्यम थी जो भी आपने शिक्षा ले दी है तीन आपू अपना खेतरों में जरूर तीनों प्रयोग करूँ अने बीजा किसान भाइयों ने भी इन बारा में बताड़ू। हमने समय थी गयो है तमारती विदा लेवानो, तमारती फेर काल मुलाकात था है इना समय पर। इतरे बनेला रहो हमारी हाथें रेडियो टांटा भील 90.8 FM नी हाथें झाबवानी आवाज़ पर।

0: जिंदगी के रंग गीतों के संग प्रोग्राम में दोस्तों आपका स्वागत है। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे आपके जैसे सज्जनों और महिलाओं से, जिनकी बातें सुनकर, जिनसे बातचीत करके आपको बड़ा मजा आएगा और उन्हीं के पसंद के गीत भी हम इस प्रोग्राम में सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को।
1: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जिंदगी के रंग गीतों के संग और आज का रंग है सेवा और अनुगी का सफेद रंग। मैं आपकी आवाज की दुनिया का दोस्त आलोक कुमार हमेशा की तरह आपसे मुखातिब हूं। दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम जहां हम मिलते हैं उन खास हस्तियों से जिन्होंने अपने काम, अपने विचार और अपने व्यक्तित्व से समाज में एक अलग पहचान बनाई है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है एक ऐसी ही शख्सियत जिन्होंने ग्लैमर और ग्रेस के साथ साथ सोशल सर्विस और वुमेन एम्पावरमेंट को भी अपनी पहचान बनाया है। वे पिछले लगभग 20 वर्षों से सामाजिक कार्यों से जुड़ी हैं, विभिन्न एनजीओ के साथ मिलकर जरूरतमंदों के लिए काम कर रही हैं। इसके साथ ही उन्होंने फैशन और ब्यूटी पेजेंट्स की दुनिया में भी अपनी शानदार पहचान बनाई है और मिसेज इंडिया वर्ल्ड 2025 का प्रतिष्ठित खिताब अपने नाम किया। ज्यूरी मेंबर, मॉडरेटर, गेस्ट ऑफ ऑनर और पब्लिक स्पीकर के रूप में भी उन्होंने कई मंचों पर अपनी प्रभावशाली उपस्थिति दर्ज कराई है। आइए जोरदार स्वागत करते हैं हमारी आज की विशेष अतिथि रेणु जिंदल जी का। रेणु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद आलोक जी, और सबसे पहले हमारे श्रोताओं को बहुत ही प्यार भरा और मुस्कुराहटों भरा जोरदार नमस्कार।
1: चलिए रेणु जी, आपकी तो आवाज ही सुन के मजा आ गया और आई एम श्योर के आज हमारी बातचीत बहुत बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। तो रेणु जी, शुरुआत करते हैं, चलिए शुरुआत से ही कर लेते हैं, आपके बचपन से शुरुआत कर लेते हैं। कुछ अपने बचपन के बारे में, परिवार के बारे में, एजुकेशन के बारे में बताइए। कहाँ आपकी पैदाइश हुई, कहाँ बड़ी हुई, कैसे रहा आपका बचपन?
2: जी आलोक जी, मेरा बचपन जो है बहुत ही सादगी और पारिवारिक मूल्यों के बीच में बीता। मैं एक बहुत छोटे से साधारण से परिवार से बिलोंग करती हूँ, जिस परिवार ने मुझे हमेशा संस्कार, मेहनत, मदद, अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचना, ये सब सिखाया। और वहीं से मेरा जो झुकाव है समाज और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की तरफ ज्यादा बढ़ा। मेरी शिक्षा जो है वो मैंने एम फार्मेसी बैकग्राउंड से हूँ मैं, वहां तक की है। एंड परिवार बहुत ही साधारण सा परिवार था, तो बहुत ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने का नहीं है, पर प्यार और सौहार्द से भरा हुआ परिवार था सर।
1: अरे आपने एम फार्मा की हुई है, ओके, अच्छा मुझे नहीं पता था। तो बी फार्मा आपने कहाँ से की थी?
2: जी, मेरी जो ग्रेजुएशन हुई है वो उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी से हुई है।
1: ओके ओके ओके ओके, अच्छा। तो रेणु जी, फिर ये बताइए कि ये बचपन से ही समाज सेवा की ओर आपका झुकाव था, या कोई ऐसा कोई ट्रिगर था, कोई विशेष घटना, कोई विशेष व्यक्ति ऐसा था जो आपकी इंस्पिरेशन बना, ये कैसे हुआ?
2: बेसिकली तो बचपन से ही मेरा एक झुकाव था। जब मैं अपने आसपास लोगों को जरूरत से ज्यादा मेहनत करते हुए देखती, छोटे छोटे बच्चों को लेकर भीख मांगते हुए देखती, तो मेरे अंदर उनके लिए हमेशा से एक करुणा का भाव उत्पन्न होता था। तो ये चीज मुझ में शुरू से ही थी। बाद में जब मैंने लोगों को छोटी छोटी, बड़े होने के बाद जब मुझे समझ आई, तो छोटी छोटी जरूरतों के लिए लोगों को जूझते देखा, शिक्षा की कमी, भोजन की कमी, रोटी कपड़ा और मकान जैसी मूलभूत चीजों के लिए संघर्ष करते देखा, तो मुझे लगा कि सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, अब आगे बढ़कर काम करने का वक्त आ गया है। और बस यहीं से मेरे जीवन में समाज सेवा ने पदार्पण किया।
1: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अभी बताइए, आप एक सरकारी विभाग में भी एक जिम्मेदारी का काम कर रही है, तो सोशल वर्क के लिए समय कैसे निकाल पाती है, ये इज इट ए चैलेंज? किस तरह से आप मैनेज करती है अपने दोनों रोल्स को?
2: हाँ, वैसे तो सर एक कॉमन सेइंग है, हम सब ने सुनी है कि वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। तो चुनौतियां तो बहुत रही सर, लेकिन जब होता है कि किसी काम के पीछे आपका जुनून हो, जब आपका वर्क ही आपका पैशन हो, तो रास्ते अपने आप बनते चले जाते हैं। मैंने समाज को, समाज में अपने टाइम को बैलेंस करना सीखा, अपने परिवार, प्रोफेशन और सोशल वर्क तीनों को साथ लेके चलना सीखा, अपनी प्रायोरिटीज डिसाइड की। और एट द एंड मैं बताऊं ना सर, जब हम वो मुस्कुराते हुए चेहरे देखते हैं ना मदद के बाद, उनसे सारी थकान मिट जाती है।
1: वंडरफुल, बहुत बढ़िया। तो चलिए इसी मुस्कुराते हुए चेहरों हम पे रुक कर हम एक गाने के लिए रुक जाते हैं और एक गाना सुनते हैं कोई अच्छा सा, जो जिंदगी में जिस तरह से आप बैलेंस करके अपनी जिंदगी को चलती है उसी से रिलेटेड कोई गाना सुनते हैं।

0: वेलकम बैक रेणु जी. आप करीब 20 वर्षों से आपकी सोशल सर्विस जर्नी है, तो इसकी शुरुआत कैसे हुई? क्या क्या पहली घटना कैसी हुई जिससे आप जुड़ी? किस तरह से ये शुरुआत हुई?
1: हाँ आलोक जी, मेरी जर्नी हाँ लगभग 20 साल से ज्यादा ही हो गए हैं अब तो. मैं जब क्लास 12th में थी तब मैंने पहली बार एक पहला कदम लिया था कि अपने आसपास के बच्चों को शिक्षा देना शुरू किया था, कि मुफ्त में उनको मैं पढ़ाती थी. वो बच्चे जो स्कूल नहीं जा पाते थे, मेरी कोशिश रहती थी कि स्कूल उन बच्चों तक पहुंचे. फिर धीरे धीरे मुझे समझ आया कि इनको सिर्फ हमें शिक्षा का दान या पैसे का दान ही जो है वो इनफ नहीं है, इनको देना होगा हमें एक आत्मसम्मान का जो परिचय है वो. क्योंकि हम मैं देखती थी कि आज भीख मांगने वाले बच्चों को मैंने खाना भी दे दिया और मैंने उन्हें शिक्षा भी दे दी, अगले दिन वही बच्चे मुझे फिर भीख मांगते दिख जाते थे. तो मैंने नोटिस किया कि हमें सिर्फ इनको खाना नहीं देना है, इनको सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब सिखाना है, ताकि ये मांगने से ऊपर बढ़कर लोगों में देना सीखें. तो बस यही एक अप्रोच थी मेरी, जो जहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई.
0: और ये जो महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर आपकी सोच कैसे बनी? क्या कोई ऐसा परिवार में या कहीं आसपास आपके ऐसी कोई बात आई जिसकी वजह से आप इससे जुड़ी?
1: देखो सर, बीइंग ए महिला, बीइंग ए फीमेल, मैंने बहुत बार खुद भी बहुत सारी चीजों में ये महसूस किया कि हम सेल्फ डाउट और सोशल प्रेशर प्रेशर में अवसरों की कमी से जूझते हैं. कई बार सोशल प्रेशर में हमें लगता है कि ये हम करें या नहीं करें, कई बार हमें सेल्फ डाउट हो जाता है क्योंकि आसपास के लोग हमें कैसे जज करेंगे. बाकी मेरे लिए जो विमेन एम्पावरमेंट का अर्थ है ना, वो हर महिला को अपने निर्णय लेने का आत्मविश्वास उसके अंदर जब आ जाएगा तो हम सही मामले में उसको एम्पावर्ड विमेन मान लेंगे. तो मुझे लगता है कि ये तभी हो पाएगा जब हम उनको शैक्षिक, आर्थिक और आत्मनिर्भर रूप से मजबूत बना पाएंगे. लेकिन लेकिन लेकिन मैं हमेशा से ये कहती आई हूँ कि ये सब हमें अपने परिवार के सहयोग से ही करना चाहिए. आजकल के जो कॉमन अभी जो ट्रेंड चल रहा है, उसमें महिलाओं को जिस तरह से हम आगे बढ़ने में ये देते हैं कि वो परिवार को पीछे छोड़ देती है, ये जो शिक्षा, ये जो संदेश है, ये गलत जा रहा है. हम आगे बढ़ें और अपने परिवार के सहयोग से आगे बढ़ें, इससे खूबसूरत बात कोई नहीं हो सकती.
0: थिंक बहुत खूबसूरत और बहुत गहरी बात आपने कही है कि वीमन एम्पावरमेंट का ये मतलब नहीं है कि वीमन सबको पीछे छोड़कर आगे एकला चलो आगे चल दें, अपने परिवार को वो साथ लेके आगे बढ़े, तो वो सशक्तिकरण का असली मतलब. बहुत बढ़िया. तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस, कोई यादगार अनुभव जिसने आपको अंदर तक उद्वेलित कर दिया और ये महसूस कराया कि आपका काम सचमुच बदलाव ला रहा है, कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जो आप शेयर करना चाहें?
1: जी आलोक जी, वैसे तो ऐसे बहुत सारे अनुभव हैं छोटे छोटे जो रोज बहुत ही खुशी देते हैं, पर कुछ एक दो चीजें हैं जो मेरे दिल को छू गई. जैसे एक बार दिवाली पे हमारे पास, जैसे मैं रॉबिन हुड आर्मी हूँ तो हमारा काम ये है, रॉबिन हुड आर्मी का काम ये है कि हम एक जगह से जहाँ पे भी अच्छा खाना बचा होता है वो लेके जरूरतमंदों तक बांटते हैं. तो दिवाली की काफी सारी मिठाइयाँ हम जब वितरित करने गए, बांटने गए, तो जो बस्ती के बच्चे थे वो बाहर आके चिल्लाने लगे कि अरे दिवाली परसों नहीं आज है. तो मतलब ये चीज मेरे दिल को बड़ा अंदर तक छू गई कि हमारा जाना, हमारी एक छोटी सी मदद कैसे किसी के एक साधारण से दिन को दिवाली में बदल सकता है. तो क्यों ही नहीं हम ऐसा कुछ काम करें कि लोगों के जीवन में खुशियां लेके आए. तो ये एक चीज है जो मेरे दिल के बड़ा करीब है. एक और इंसिडेंट, सॉरी मैं समय लेते हुए शेयर करना चाहूंगी. एक शाम बारिश हो रही थी और घर में मेरे पति और बच्चों ने कहा कि पकौड़े खाने हैं, और वो पकौड़े बनाते बनाते मेरे दिमाग में ख्याल आया कि वो जो बस्ती में बाहर खाना बना रहे होते हैं, आज उनके घर तो चूल्हे नहीं जले होंगे क्योंकि बाहर तो बारिश है. तो बस उनके इनके पकौड़े बनाने के बाद मैंने आसपास की दुकानों से सामान उठाया अपने जो टीम के साथ में मिलके, और जब हम बस्ती में पहुंचे ना तो वो सच में भूखे लोग बैठे थे. और जब हमने उनको खाना दिया तो जो उनके चेहरे पे आंसू और मुस्कुराहट एक साथ आई थी ना, वो चीजें दिल को छू जाती हैं. और यही लगता है कि ये आपका सबसे बड़ा मेहनताना है.
0: बहुत खूब, बहुत बहुत खूब, अमेजिंग. तो इसी जो मुस्कुराहट हम किसी के चेहरे पे लाते हैं, इसी बात पे रुक के हम एक गाना तो सुनते ही हैं। और जो रॉबिन हुड आर्मी का आपने जिक्र किया, इसके बारे में मैं थोड़ा सा डिटेल में आपसे जानना चाहूंगा, और उस बाद में हम रॉबिन हुड आर्मी के बारे में ही बात करेंगे। तो थोड़ा सा रुक जाते हैं और एक बढ़िया सा गाना सुनते हैं।

0: हाँ, वेलकम बैक रेनू जी। आप रॉबिनहुड आर्मी जयपुर की सिटी हेड हैं, तो पहले तो मुझे बताइए कि ये रॉबिनहुड आर्मी एक नाम ही अपने आप में कुछ बहुत इंटरेस्टिंग सा लग रहा है, तो ये नाम किस तरह से पड़ा, इसमें क्या करते हैं आप और इसका उद्देश्य क्या है जो आपने ये ग्रुप बनाया हुआ है या सोसाइटी बनाई हुई है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए।
1: जी, रॉबिनहुड आर्मी एक वॉलंटियर बेस्ड नॉन फंड रेजिंग ऑर्गेनाइजेशन है।

तक पहुंचाती है। इसके अलावा रॉबिनहुड आर्मी अब तो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा कर रहा है और इनका एक रॉबिनहुड आर्मी एकेडमी के नाम से पूरे देश में अलग अलग जगह वेंचर्स चलते हैं, जहां बच्चों को जो स्कूल तक नहीं जा पाते उनके लिए स्कूल उनके बस्ती में पहुंचाए जाते हैं। प्लस उनमें वो बच्चे जो वाकई में पढ़ना चाहते हैं और पढ़ने में अच्छे होते हैं उनको प्रेरित किया जाता है, स्कूलों में एडमिशन कराए जाते हैं। और एडमिशन तक ही ये प्रोसेस नहीं रुकता, उसके बाद हमारे

0: टीयर्स ही हैं। तो हर चैप्टर का अपना एक मैकेनिज्म है, एक इकोसिस्टम है जिस पे वो वर्क करते हैं। तो ये बहुत ही ट्रांसपेरेंट एंड ऑर्गेनाइज वे में वर्क होता है।
1: कोई पर्टिकुलर व्यक्ति जो इसके पीछे ड्राइविंग फोर्स था, यू वुड लाइक टू मेंशन,
0: जी सर,
1: आपके अलावा ऑफ
0: ये
1: कोर्स?
0: जो हमारे फाउंडर हैं रॉबिन हुड आर्मी के, ही इज नील घोष, जो कि मुंबई बेस्ड हैं।
1: ओके,
0: एंड पहली जो ड्राइव हुई थी वो दिल्ली की स्ट्रीट्स में हुई थी 2014 में।
1: अच्छा,
0: जी
1: 2014 तो पुराना बात नहीं है।
0: जी जी सर,
1: तो ये बहुत कम समय में काफी तरक्की कर ली।
0: बहुत अच्छा
1: चलिए
0: तरीके। जी
1: चलिए, हम गाना सुनने से पहले रॉबिन हुड आर्मी की इस खूबसूरत पहल के बारे में, गाना सुनने से पहले कोई ऐसा, कोई इस रॉबिन हुड आर्मी का कोई मेमोरेबल इंसिडेंट जो आपको याद हो या यू वुड लाइक टू शेयर,
0: जी जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगी। हम लोग सर्दियों में एक मिशन चलाते हैं हर सर्दियों में, जिसका नाम होता है ठंड सबको लगती है, जिसमें
1: बताइए।
0: हम वॉलेंटियर्स और हमारे जो कोलेबरेटर्स या स्पॉन्सर्स हमको सामान देते हैं। हम लोग क्योंकि फंड्स रेज नहीं करते, तो लोग हमें ब्लैंकेट्स, बेडशीट्स या विंटर्स के नाम पे वूलन क्लोथ्स, पुराने नए सब तरह के। तो इनके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक रात को हम निकले थे कि आज हम ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूट करके आएंगे। तो हमें एक ठिठुरते हुए ओल्ड कपल मिले। जब हमने उनको ब्लैंकेट उठाई तो वो अम्मा जी उठकर बोली कि मैं भगवान से बोल ही रही थी, भगवान के दूत आ गए। तो
1: अरे
0: वो चीज बड़ी दिल को छू गई, बड़ा करीब है वो। उन दिन जो उनकी आंखों में जो था वो अपने आप पे प्राउड फील करा देता है।
1: बहुत खूबसूरत, बहुत टचिंग मोमेंट है।
0: जी
1: तो चलिए इसी अम्मा जी की बात पे के भगवान के दूत आ गए, हम रुक के एक गाना सुन लेते हैं और फिर इस बातचीत को जारी रखते हैं।

0: हेलो, वेलकम बैक रेणु जी। अब आपके एक दूसरे रूप के बारे में बात करते हैं। आप सोशल वर्क के साथ साथ फैशन और ब्यूटी पेजेंट्स की दुनिया में कदम रखने का, अब ये विचार आपको कैसे आया और क्या हुआ जिसकी वजह से आप इस उससे भी जुड़ गई, कुछ इसके बारे में बताइए।
1: जी जी आलोक जी, विचार ऐसे शुरू से ही था मुझे कि मुझे कुछ अलग हटके भी करना है, कुछ ऐसा जिससे मैं समाज में अपना, अपने माता पिता का, अपने परिवार का नाम रोशन कर सकूं। और मुझे एक हमेशा से ये भी लगता था कि ब्यूटी जो है वो सिर्फ चेहरे से नहीं, आपके सोच और आपके व्यक्तित्व की भी होती है। तो बस मुझे एक ऐसा मंच चाहिए था जहां मैं अपनी आवाज, अपना कॉन्फिडेंस और अपना सोशल कॉज लोगों तक पहुंचा सकूं। तो बस यही एक रीजन था जो मुझे इस फील्ड में ले आया।
0: आपने मिसेज इंडिया वर्ल्ड 2025 का ताज है, कुछ बताइए इसके बारे में। ये पेजेंट कहाँ हुआ था, कितने राउंड थे, क्या हुआ, आप कैसे इसमें आप उसको एंट्री मिली, कुछ उसके बारे में बताएंगी।
1: जी जी सर, ये इंडो ब्रिटिश एक इनिशिएटिव था जिसका फाइनल जो है वो

0: लोगों के लिए एक आइडियल बन जाएगी। तो उसके बाद आपको इन सब चीजों पे भी ध्यान रखना है, ना कि सिर्फ अपनी अपीयरेंस पे।
1: ब्यूटीफुल, बहुत बढ़िया रेणु जी, मजा आ गया आपकी बात सुनकर। और आपने बहुत ही शॉर्ट में बहुत ही सारी बातें कह दी, क्योंकि बाद में जाके आपको एज ए कल्चरल एम्बेसडर या बहुत सारे काम करते हैं, जो मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स बनती है, मिस इंडिया बनती है,
0: जी।
1: तो मिस वर्ल्ड बनती है। तो अच्छा, चलिए मैं थोड़ा सा और आपसे एक सवाल करने की हिमाकत करता हूँ कि इसमें कभी आपको कभी ये लगता है फेवरेटिज्म है या मैनिपुलेशन है, ऐसा कुछ कभी लगता है? इस तरह के चार्जेस भी आते रहते हैं।
0: जी हाँ, कभी कभी सुनने में आती हैं इस तरह की भी बातें भी कि मैनिपुलेशन होता होगा, फेवरेटिज्म होता होगा। पर मैं दो पेजेंट्स में गई हूँ, दोनों में ही मैं विन करके आई हूँ क्राउन। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं बताऊं तो यहाँ पे फेवरेटिज्म या मैनिपुलेशन आपको टैलेंटेड मंच पे नहीं दिखा सकता। आपका जो टैलेंट है वो आपका कंसिस्टेंसी, आपका हार्डवर्क और आपकी ऑथेंटिसिटी है ना सर, मंच पे तो वही प्रेजेंट होगी। अगर आपको कोई फेवरेटिज्म भी कर देगा तो भी आप मंच पे कैसे प्रदर्शित करेंगे? तो अल्टीमेटली जो वर्क करता है वो आपका टैलेंट, आपका हार्डवर्क और आपकी कंसिस्टेंसी, यही वर्क करता है।
1: तो चलिए, अच्छा, तो इसका मतलब है आप ब्यूटी पेजेंट्स वगैरह में जाती रहती होंगी, तो कभी आपका कोई फंक्शन हो, हमारे रेडियो स्टेशन को जोड़ना चाहें तो हमें बिल्कुल जोड़िएगा, आपका इस तरह का कोई फंक्शन हो तो बताइएगा हमें।
0: जी, जरूर सर, बिल्कुल।
1: अच्छा, तो चलिए, आपकी इस कंसिस्टेंसी के नाम में और कमिटमेंट के नाम पे रुक के हम एक गाना सुन लेते हैं, और आपने जो ताज पहना है उसको याद करके एक गाना सुन लेते हैं, फिर आगे की बातचीत जारी रखते हैं।

0: हाँ रेणु जी, आप ये बताइए कि आपको बहुत सारे अवार्ड भी मिल सकते हैं, मिल चुके हैं, रिकग्निशन भी आपको बहुत सारे मिल चुके हैं, सोशल मीडिया में आप वीमेन एम्पावरमेंट और सोशल अवेयरनेस का भी बहुत काम कर रही हैं। कुछ इसमें से कोई ऐसा खास अवार्ड या सम्मान या रिकग्निशन जो आपके दिल के बहुत करीब है, कुछ उसके बारे में बताएंगी?
1: रिकग्निशन तो नहीं, पर लास्ट ईयर मैंने, अब यहाँ पे क्या, थोड़ा सा बच्चों को ट्रेन करना शुरू किया है और मैं बच्चों को भेजती हूँ पेजेंट्स में उनको मेंटोर करके। तो
0: अच्छा।
1: लास्ट ईयर जब मेरी भेजी हुई एक लड़की ने क्राउन जीता, तो वो जो अचीवमेंट था वो मेरे दिल के बड़ा करीब है। बाकी अवार्ड्स तो बहुत सारे मिल चुके हैं, सभी सम्मान के लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। लेकिन वो बच्ची ने जब जीत के मुझे फोन किया ना कि मैम थैंक यू, मैंने ये कर दिया, वो चीज मेरे दिल के बड़ा करीब है।
0: तो मेंटरिंग में आप किस तरह से सिलेक्शन करती है? मैं वैसे ही अब तक काफी पूछ रहा हूँ, बच्चियों को क्या कॉलेज स्कूल से पिक करती है, क्या करती है, हाउ डू यू गो अबाउट इट?
1: नहीं सर, जो कॉलेज स्कूल के बच्चे हैं जो अपने लिए कर पा रहे हैं उनके लिए तो बहुत सारी एकेडमीज हैं। ये जो बच्ची है ये हमारी, वैसे तो कहना नहीं चाहिए, अंडर प्रिविलेज ग्रुप की एक बच्ची थी जो हमारी बस्तियों में काम करती हैं, लेडीज जो हाउस होल्ड लेडीज हैं, इनकी एक बच्ची थी जो मुझसे कई साल से बड़ी इंस्पायर थी कि दीदी मुझे भी जाना है, चाहे मैं एक बार ही जाके आऊं पर मुझे ब्यूटी उसमें जाना है कंटेस्ट। मैं बच्ची में टैलेंटेड थी, उसमें टैलेंट था, लेकिन उसके पास इतना पैसा नहीं था, क्योंकि अगर आप किसी अच्छे पेजेंट से जुड़ते हैं तो उसकी रजिस्ट्रेशन फीस आपको अच्छे ही देने पड़ते हैं। तो बस उस बच्ची को मुझे लगा कि इसका इतना कॉस्ट तो मैं बचा ही सकती हूँ, तो मैंने अपने एक्सपीरियंसेस के बेस पे जितना मैंने अपनी तैयारी की थी वो सब तैयारी मैंने उसे यहाँ से करवा के भेजी थी।
0: That's very noble thought. I mean, I would say कि आप किसी अच्छी बड़ी अच्छी फैमिली की बच्ची को लेके उसको ग्रूम करना, ये तो एक जुदा बात हो गई, लेकिन आपने एक एक ऐसी मतलब अंडर प्रिविलेज और डाउन ट्रोडन फैमिली से किसी बच्ची को लेके और उसको गेट किया है, तो मेहनत भी ऑब्वियसली आपको ज्यादा करनी पड़ी होगी, लेकिन उसका जो नेचुरल टैलेंट है उसको उभार दिया हुआ आपने, ये तो बहुत बढ़िया बात है।
1: मैं मतलब थोड़ा रोकना चाहूंगी सर, मतलब पिछले कई सालों में जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है ना बस्ती के और अंडर प्रिविलेज बच्चों को लेके, अब मैंने उन बच्चों को टैलेंटेड बच्चा कहना शुरू कर दिया है। उन बच्चों में बिना किसी रिसोर्सेज के जो टैलेंट है ना सर, मतलब मेरा मन करता है कि अब हम उनको अंडर प्रिविलेज ना कहें, अब उनका नाम टैलेंटेड बच्चे निकाल दें।
0: नहीं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये भी तो आपका अंदर का टैलेंट है कि आपने उनको पिक करना शुरू किया, आपकी इच्छा हुई अंदर से उनको पिक करने की, अदरवाइज तो आपके सामने बहुत सारे लोग अपनी बेटियों को लेके आ जाते होंगे, लाइए इसको ग्रूम कर दीजिए, इसको ब्यूटी
1: जी
0: पेजेंट में भेजते हैं, ऐसे बहुत लोग आते होंगे
1: जी
0: आपके
1: जी हाँ, काफी लोगों ने किया जी।
0: पास, हाँ अप्रोच किया हो। चलिए अब थोड़े से एक दूसरे रोल के बारे में बता, आप एक मदर भी हैं, एक प्रोफेशनल भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, कैसे आप मैनेज करती हैं इतने सारे रोल्स को?
1: सर मैंने जैसा कि शुरुआत में कहा, अगर परिवार का साथ हो तो चीजें बहुत ही आसान हो जाती है। मेरी जो जर्नी रही है ना उसमें थ्रू आउट द मेरे परिवार का बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा है, बहुत ज्यादा साथ रहा है, तो मुझे बहुत ज्यादा मैनेजमेंट करने की तो जरूरत नहीं पड़ी। बस मैं अपनी प्रायोरिटी शुरू से तय करती हूँ और मेक श्योर करती हूँ कि मेरे परिवार का सपोर्ट हमेशा मेरे साथ रहे। फिर जब आपके घर वाले आपका साथ देने लगते हैं, आसपास के लोग साथ देने लगते हैं, तो जिम्मेदारियां आसान लगने लगती हैं।
0: ब्यूटीफुल। तो चलिए इसी जिम्मेदारी पे और इसी परिवार के साथ पे हम रुक के गाना सुनते हैं, बहुत छोटा सा पॉज देते हैं और फिर बकौल अमीन सयानी हम आखिरी पायदान पर आ गए हैं, और आपसे एक दो सवाल और फिर हम इसको रैप अप करते हैं।

0: हाँ रेणु जी, हमें पता लगा है आपको संगीत में म्यूजिक में भी काफी रुचि है, तो ये बताइए कि म्यूजिक का आपके जीवन में क्या एक जगह है, और आप जब तनाव में होती हैं तो संगीत आपको सुकून देता है, किस तरह के गीत आपको पसंद है, कुछ बताइए उसके बारे में।
1: जी सर, बिल्कुल। म्यूजिक मेरे लिए एक थेरेपी की तरह है। मुझे ये पॉजिटिविटी, पीस और एनर्जी देता है। मैं जब भी अकेले होती हूँ, मुझे सोलफुल म्यूजिक, मीनिंगफुल म्यूजिक सुनना बहुत पसंद है। पुराने मेलोडीज मेरे दिल को छू जाते हैं। मतलब मैंने लता मंगेशकर जी, रफीक साहब, मुकेश, इन सबको बहुत सुना है। और इन सबसे ज्यादा अगर मैं कहूँ तो वडाली ब्रदर्स के जो सॉन्ग हैं, मतलब उनकी मैं बहुत बड़ी फैन हूँ। जब मैं अकेली होती हूँ तो उनको सुनना एक अलग ही लेवल की डिविनिटी में आपको पहुंचा देता है।
0: अच्छा, तो अगर मैं फिर ये एक गुजारिश करूं आपसे कि आप कुछ गुनगुना दीजिए हमारे लिए, हमारे श्रोताओं के लिए, और कुछ अगर आपका कोई फेवरेट गाना हो उसको गुनगुनाना चाहें, या कुछ कोई भी एनीथिंग आप कुछ सुनाना चाहें तो यू मोस्ट वेलकम।
1: जी, वैसे तो वडाली ब्रदर मेरे फेवरेट हैं, पर एक गाना शुरू से मेरी जबान पे हमेशा रहता है। मैं वो थोड़ी सी दो पंक्ति आपको जरूर
0: जी
1: गा
0: जी
1: के
0: जी
1: सुनाना
0: जी
1: चाहूंगी।
0: जी जी
1: जिन

0: संग है जी।
1: ब्यूटीफुल। चलिए, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, लेकिन अगर रेणु जिंदल जी सा जज्बा हो तो वो जंग में बिल्कुल आप जीतते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो यही आप कुछ रेणु जी चलते चलते कुछ संदेश देना चाहें आज की महिलाओं और युवाओं के लिए, जो बड़े सपने तो देखते हैं लेकिन कॉन्फिडेंस उनमें उनको पूरा नहीं लगता है, कुछ उनके बारे में कहना चाहें।
0: जी, लास्ट में मैं अपने श्रोताओं को सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि खुद पे विश्वास रखिए, सपने देखने से मत डरिए। जिंदगी में मुश्किलें बहुत आएंगी और लोग रोकेंगे भी, लेकिन अगर आपका इरादा मजबूत है तो कोई मंजिल दूर नहीं। हमेशा याद रखिए कि आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका आत्मविश्वास और आपकी अच्छाई है।
1: तो श्रोताओं, आज की इस खास बातचीत में हमने जाना कि किस तरह एक महिला नारियों को निभाते हुए समाज सेवा, वुमेन एम्पावरमेंट, पर्सनल एक्सीलेंस तीनों क्षेत्रों में एक प्रेरणा बन सकती हैं। रेणु जिंदल जी ने हमें संदेश दिया कि असली सफलता सिर्फ मंच पर ताज जीतने में नहीं, बल्कि लोगों के जीवन में उम्मीद और मुस्कान लाने में है। रॉबिनहुड आर्मी के माध्यम से उनका सेवा भाव, महिलाओं को आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनाने की उनकी सोच, जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से जीने का उनका अंदाज सचमुच बहुत ही इंस्पिरेशनल है। रेणु जी, आपने अपने अनुभव, अपने विचार, अपने जीवन को इतनी खूबसूरत बातों से हमारे साथ साझा किए हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। आपने अपना समय दिया, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।
0: धन्यवाद आलोक जी, और बहुत बहुत धन्यवाद सभी श्रोताओं को हमारे साथ बने रहने के लिए।
1: तो हम कामना करते हैं कि आप इसी तरह समाज में सकारात्मक बदलाव लाती रहें और लोगों को प्रेरित करते रहें। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मैं आपका होस्ट आलोक कुमार आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।
2: दोस्तों, जिंदगी के रंग गीतों के संग के आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। कल एक और नए सज्जन और महिला हमारे साथ हाजिर होंगे आपके लिए मजेदार बातें और गीत लेकर। सुनना ना भूलिएगा।

दोस्तों, एक नए दिन की शुरुआत के लिए जोशो खरोश से भरे हुए मैं और आप ये दिन शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। आइए, आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में। बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में भी हम जानेंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जिया और दूसरों के लिए उन्होंने मिसालें कायम की। इन्हीं लोगों से प्रेरणा लेते हैं और ऐसे बहुत सारे गीत सुनते हैं जो हमें बस खुश कर देंगे, पूरे दिन के लिए तैयार कर देंगे, जोश से भर देंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को जोशो खरोश के साथ। इंसान और हिमालय में बहुत सारी समानताएं हैं। सबसे बड़ी समानता तो यही है कि दोनों सबसे ऊपर पहुंचना चाहते हैं और बस इसी की जद्दोजहद में इनके जीवन में तमाम तरह की उथल पुथल लगी ही रहती है। फिर भी दोनों रुकते नहीं हैं। दोनों की यही खूबी इन्हें एक दूसरे के करीब भी ले आती है और जोड़ भी देती है। जैसे ही आप हिमालय के नजदीक पहुंचेंगे, वैसे ही इस धरती के सबसे युवा प्राणी बियानी की आप और सबसे युवा पर्वत श्रृंखला हिमालय के बीच एक रोमायनी शुरुआत हो जाएगी। दोनों ही अभी विकसित होने की प्रक्रिया में हैं, इसलिए दोनों ही अब भी बढ़ रहे हैं। अपने चरम को पाने की कोशिश में दोनों की यात्रा जारी है और वो चक्र कभी थमेगा नहीं। हालांकि हिमालय के लिए अपनी चोटी या चरम को छूना आसान नहीं है। अपने विकास के इस प्रयास में वो विशाल पर्वत रोज टूटता है और इससे बड़े बड़े हिमस्खलन होते हैं। हिमनद बनते हैं, टूटते हैं, लेकिन इन तमाम घटनाओं और अवरोधों के बाद इसकी यात्रा में कभी ठहराव नहीं आता। साफ तौर से दिखने वाली ये सारी अफरा तफरी इस पर्वत श्रृंखला के बढ़ने और अपने चरम को छूने की कोशिश का ही एक नतीजा है। यही बात मनुष्य के साथ भी देखने को मिलती है। जब भी कोई आदमी आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो उसके जीवन में मुश्किलें तो देखो दोस्तों आती ही हैं। ये बेहद सांकेतिक है। पर्वत श्रृंखला के बढ़ने से हर रोज भूचाल, भूस्खलन और अन्य प्राकृतिक घटनाएं देखने को मिलती हैं। ठीक ऐसा ही हाल इंसान के जीवन का भी तो है। जब आप आगे बढ़ना चाहेंगे तो आपके जीवन में भूचाल आएंगे, मुश्किलें आएंगी और वो सारी मुश्किलें आपका पीछा करेंगी। तो जो लोग निष्क्रिय होते हैं, बस यूं ही आलस में पड़े रहते हैं और बढ़ना नहीं चाहते, उनके जीवन में ठहराव होता है। वैसे तो देखने को उनका जीवन औरों से बेहतर नजर आता है, लेकिन सच्चाई तो देखिए दोस्तों कुछ और ही है। बेकार बैठे रहने से या कुछ नहीं करने की ललक से जीवन को नीरस बना ही दिया जाता है। जीवन बहुत बोरिंग हो जाता है, बहुत सुस्त हो जाता है, जीवन बेजान सा हो जाता है। जो लोग अपने विकास के लिए निरंतर कोशिश करते हैं, उनके जीवन में तो देखो उथल पुथल होगी ही ना, और ऐसा होना जरूरी भी है, तभी इंसान विकास के लिए आगे बढ़ेगा। हिमालय में सबसे बड़ा हिमस्खलन कोई 5 करोड़ साल पहले हुआ था। तब से अब तक ये 5 मिलीमीटर की रफ्तार से धीरे धीरे हर साल ऊपर उठ रहा है। हालांकि महाद्वीप पर इसका विस्तार चौड़ाई में भले ही 5 सेंटीमीटर हर साल हो रहा हो, लेकिन ऊंचाई के मामले में ये 5 मिलीमीटर की सालाना दर से बढ़ रहा है। जीवन के साथ भी हमेशा यही होता है दोस्तों। आप धरातल पर कितना भी कुछ कर लीजिए, लेकिन इससे ऊंचाई तो थोड़ी सी ही बढ़ती है। ये सिद्धांत सब पर लागू है। फिर चाहे आप भौतिक सुख या कल्याण की खोज में जुटे हों या फिर आध्यात्म की तरफ घूम गए हों,

रेडियो टांटिया भील, आपके झाबुआ की आवाज। एक मूर्तिकार बहुत ही खूबसूरत मूर्तियां बनाता था। वो उन्हें बेचकर अच्छा पैसा कमा लेता था। जब मूर्तिकार का बेटा बड़ा हुआ तो वो भी मूर्तियां बनाने लगा। लोग उसकी मूर्तियों को बहुत पसंद करते, लेकिन जब भी वो कोई मूर्ति बनाता उसका पिता कोई ना कोई कमी निकाल देता। वो खुशी खुशी अपने पिता की सलाह पर अमल कर लेता। इस तरह लगातार सुधार से बेटे की मूर्तियां अपने पिता से भी ज्यादा अच्छी बनने लगी। मूर्तिकार कभी कभी अपने बेटे की मूर्तियों में कमियां निकाल ही देता था फिर भी, लेकिन उसके बेटे को ये अब अच्छा नहीं लगता था। एक दिन उसके सब्र ने जवाब दे दिया। वो बोला, पिताजी आप तो ऐसे कहते हैं जैसे आप बहुत बड़े मूर्तिकार हो। अगर आपको इतनी ही समझ होती तो आपकी मूर्तियां इतने कम दामों में ना बिकती। मुझे अब आपकी सलाह की कोई जरूरत नहीं है, मेरी मूर्तियां बिल्कुल ठीक हैं। इसके बाद पिता ने कमियां निकाल

चिल्लाना बंद कर दिया। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि लोग अब उसकी मूर्तियों की इतनी तारीफ नहीं करते जितनी पहले किया करते थे। उसकी मूर्तियों के दाम बढ़ने के बजाय कम होने लग गए और बिक्री भी बहुत घट गई। शुरू शुरू में उसको कुछ समझ नहीं आया। फिर वो अपने पिताजी के पास गया और उन्हें सारी बात बताई। उसके पिता ने कहा, बेटा मैं जानता हूं कि तुम्हारी जैसी मूर्तियां मैं नहीं बना सकता। ऐसा भी नहीं है कि मेरी सलाह की वजह से कभी तुम्हारी मूर्तियां बेहतर बनी हों, लेकिन जब मैं तुम्हारी मूर्तियों में कमियां दिखाता था तब तुम उसमें बेहतरी लाने की कोशिश करने लगते थे। बेटे वही कोशिश तुम्हारे कामयाब होने का बहुत बड़ा कारण थी, लेकिन जिस दिन तुम अपने काम से संतुष्ट हो गए बस तुम्हारी कामयाबी रुक गई। दोस्तों, ठीक इसी तरह संसार में कोई भी इंसान किसी भी काम में 100% उत्तम तो हो ही नहीं सकता। हर इंसान में कुछ ना कुछ कमी रह ही जाती है। बस हमें उस कमी को ही तो तलाशना है और उसे ठीक करने की कोशिश करनी है। इसी कमी की तलाश करने के लिए हमें असंतुष्ट होना सीखना होगा, तभी हम इस जीवन में आगे बढ़ पाएंगे।

पौष्टिक तत्वों की जरूरत होती है। उसी तरह से हमारे दिमाग को, हमारे मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए अच्छे विचारों की जरूरत होती है। इसलिए कहा भी गया है कि लगातार अच्छे विचारों को, अच्छे संगीत को सुनते रहिए, और जब आप सुनेंगे तो उनकी अच्छी पॉजिटिव सकारात्मक छवियां बनाएंगे अपने दिमाग में। तो दिमाग मेहनत करेगा, दिमाग की एक्सरसाइज होगी, व्यायाम होगा और वो स्वस्थ रहेगा। इसलिए दोस्तों रेडियो सुनते रहिए, ये चीज आपको किसी और माध्यम में नहीं मिलेगी। आइए दोस्तों, आज आपको मिलवाते हैं धीरेन सोलंकी से, जो एक युवा हैं और पशु पालक किसान हैं। दोस्तों कुदरत ने इस धरती पर जितने भी जीव पैदा किए हैं उसने उनमें कुछ ना कुछ उपयोगिता डाली। ये हम इंसानों की प्रॉब्लम है, हम इंसानों की कमी है जो उनकी अहमियत को नहीं देख पाते और किसी जीव को पूजने लगते हैं, किसी से नाराज हो जाते हैं और किसी का मजाक उड़ाते हैं। कम से कम उत्तर भारत में तो गधों को इज्जत की निगाह से तो नहीं देखा जाता। क्यों दोस्तों, गधे ही तो गधे ही होते हैं, है ना, ऐसा कहा जाता है। और तो और किसी की बेइज्जती करनी हो तो उसे गधा कह दिया जाता है। अब भला गधे जैसे जीव का इसमें क्या दोष है? यूं देखा जाए तो गधों से काम भी जम के लिया जाता है, लेकिन उन्हीं पर मजाक करते हुए मुहावरे भी बना दिए जाते हैं। लेकिन गुजरात के धीरेन सोलंकी के लिए गधी किसी नेमत से कम नहीं। इस जानवर ने महज 22 साल की उम्र में ही इन्हें करोड़पति बना दिया। जी हां, सुन के अजीब सा लगा होगा आपको, तो लीजिए सुनिए। धीरेन की इस कामयाबी ने यह साबित किया कि यदि आपके पास नया आइडिया हो, धैर्य हो और आगे बढ़ने का जज्बा हो तो गधी जैसा जानवर भी आपको मालामाल कर सकती है। आपको सुनकर हंसी आ रही होगी दोस्तों। गुजरात के पाटन जिले के मनुंद गांव में पैदा हुए धीरेन सोलंकी का सपना किसी निम्न मध्य वर्गीय परिवार से कुछ ज्यादा नहीं था। पिता अरविंद भाई सोलंकी चाहते थे कि बेटा पढ़ लिख कर किसी सरकारी स्कूल में मास्टर बन जाए तो परिवार की कुछ आर्थिक मदद हो जाएगी। धीरेन अपने परिवार और पिता की अपेक्षाएं समझते थे, उन्होंने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखी। विज्ञान संकाय से स्कूली पढ़ाई पूरी की, फिर उन्होंने प्राइमरी शिक्षक प्रमाण पत्र लिया, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा पास की और केंद्रीय विद्यालय संगठन इस तरह की सभी परीक्षाएं पास कर ली, लेकिन कोई स्थायी नियुक्ति, कोई नौकरी नहीं मिली। छोटी मोटी नौकरियां की, लेकिन उनसे क्या होता। साल 2020 में पड़ोस के प्रदेशों में आयोजित शिक्षक बहाली परीक्षाओं में भी बैठे वो, लेकिन हर जगह एक लंबा इंतजार था। करीब 6 महीने तक परिणामों का इंतजार करते करते उन्हें निराशा घेरने लगी। बेटे की चिंता पिता को भी परेशान करने लगी। अब जाहिर है कारोबारी बनने का गुजराती जज्बा जाग उठा। धीरेन के पिता ने कहीं पढ़ा कि केरल और कर्नाटक में गधी पालन कारोबार भी होता है। देश में गधी के दूध की मांग या उसके उपयोग के बारे में उतनी जानकारी तो किसी को नहीं थी, लेकिन मलेशिया, चीन और तुर्की जैसे देशों में इसकी बड़ी भारी मांग थी। अरे वाह, अरविंद भाई सोलंकी ने यह बात अपने बेटे को बताई। धीरेन तो इस आइडिया से चौंक गए। उन्होंने शिक्षक बनने के सारे सपने छोड़कर ऑनलाइन इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर दिया। अब तक उन्हें यह भी पता नहीं था कि भला इस दूध का क्या क्या उपयोग होता होगा। यहां तो भैंस गाय के दूध के 60 रुपए लीटर होने पर इतना हंगामा हो जाता है, तो गधी के 1 लीटर दूध की कीमत हजारों रुपए जानकर तो वो हैरान ही रह गए। दरअसल गधी के दूध में रोग प्रतिरोधी गुण बहुत होते हैं, लिहाजा कई दवाओं में इसका इस्तेमाल होता है। गाय के दूध से एलर्जी हो जाने वाले नवजातों के लिए भी ये किसी रामबाण से कम नहीं होता। फिर कई तरह के सौंदर्य उत्पादों में भी
इसकी भारी मांग

धीरेन के पास डंकी फार्म शुरू करने का कोई व्यवहारिक प्रशिक्षण भी नहीं था। सिर्फ पिता के हौसले और आत्मविश्वास की बदौलत उन्होंने साल 2022 में अपना डंकी फार्म शुरू किया। इसके लिए उन्होंने करीब 40 लाख रुपए का कर्ज उठाया। इस रकम से उन्होंने 20 गधी खरीदी और एक 30x40 फीट का शेड बनाकर तैयार किया जहां इन पशुओं को रखा जा सके। धीरेन ने सोचा था कि आज गधी खरीदी और कल से उसके दूध की बिक्री शुरू हो जाएगी, लेकिन गुजरात में तो इसकी कोई मांग थी ही नहीं और विदेश में इसे पाउडर के शक्ल में भेजा जाना था। पहले साल तो उन्हें बहुत घाटा हुआ, क्योंकि दूध को सुरक्षित रखना और उसे पाउडर में बदलने की तकनीक उनके पास थी ही नहीं। इस काम को करने वाली कंपनियों से करार करते करते और तालमेल बैठाते बैठाते साल भर निकल गया। उन्हें पहला ऑर्डर 50 किलोग्राम पाउडर का मिला। अमूमन 1 किलो पाउडर तैयार करने में 16 से 17 लीटर दूध लग जाता है। संजोग से उस वक्त उन्होंने 200 किलो पाउडर का भंडारण कर रखा था। 63,000 रुपए प्रति किलो के हिसाब से उन्हें भुगतान मिला। काम बस चल निकला। अब पीछे मुड़कर देखने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। ई कॉमर्स ने उन्हें ग्राहकों का एक विशाल फलक मुहैया करा दिया। आज उनके पास हलारी नस्ल की करीब 40 गधी हैं, जिनके दूध से धीरेन 3 लाख रुपए महीने की कमाई कर रहे हैं। उन्होंने मवेशियों की देखभाल के लिए 3 से 4 लोग भी रखे हुए हैं और अपने पिता के साथ खुद भी पूरी तरह जुटे रहते हैं। धीरेन की यह यात्रा उन हजारों लाखों नौजवानों को रास्ता दिखाती है जो अपना बेशकीमत वक्त तंत्र और शासन को कोसने में लगा रहे हैं। धीरेन अगर सोचते ही रहते कि गधी के दूध का कारोबार करने पर समाज उनकी क्या खिल्ली उड़ाएगा, तो वो आज जिस जगह है वहां कभी नहीं पहुंचते। खुद के रोजगार को अंतिम विकल्प के तौर पर देखने का नजरिया बदलने की जरूरत है दोस्तों, क्योंकि इससे सिर्फ अपनी भलाई नहीं होती बल्कि आप उसके विस्तार के साथ समाज और देश का भी भला करते हैं। बतौर शिक्षक बच्चों को शिक्षित करने का सुख धीरेन को अवश्य मिलता, मगर वो 4 लोगों को रोजगार नहीं दे पाते। आज वो एक शिक्षक के औसत तनख्वाह से कई गुना ज्यादा कमा रहे हैं। धीरेन सोलंकी की तरह जो भी अनूठी योजना के साथ आगे कदम बढ़ाएगा, कामयाबी तो दोस्तों उसे मिलेगी ही।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: जेलर ने पूछा, सुनो कल तुम्हें फांसी होगी, बताओ आखिरी इच्छा है कुछ? कैदी ने कहा, जी मैं तरबूज खाना चाहता हूँ। जेलर ने कहा, लेकिन ये तरबूज का तो मौसम ही नहीं है। कैदी ने कहा, कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर लूंगा। रेडियो टांटिया भील, आपके झाबुआ की आवाज।
2: जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख, कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख।

दोस्तों, जिस तरह हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अच्छे भोजन की जरूरत होती है, अच्छे पौष्टिक तत्वों की जरूरत होती है, उसी तरह से हमारे दिमाग को, हमारे मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए अच्छे विचारों की जरूरत होती है। इसलिए कहा भी गया है कि लगातार अच्छे विचारों को, अच्छे संगीत को सुनते रहिए, और जब आप सुनेंगे तो उनकी अच्छी पॉजिटिव सकारात्मक छवियां बनाएंगे अपने दिमाग में। तो दिमाग मेहनत करेगा, दिमाग की एक्सरसाइज होगी, व्यायाम होगा और वो स्वस्थ रहेगा। इसलिए दोस्तों, रेडियो सुनते रहिए, ये चीज आपको किसी और माध्यम में नहीं मिलेगी। ऐसा लिखा गया है कि सुदामा जी जब भगवान के यहां से चले तो भगवान ने उन्हें कुछ नहीं दिया। सम्मान तो किया लेकिन दिया कुछ नहीं। अब दूसरा कोई होता तो नाराज हो जाता कि मैं आपके यहां अब कभी नहीं आऊंगा। आप किस तरह के दोस्त हो? मैं तो गरीब ब्राह्मण हूं और मुझे कुछ भी नहीं दिया। मगर जैसे भगवान हैं, वैसे ही सुदामा भी भगवान हो गए, भले ही वो महल में नहीं रहते थे। ऐसा लिखा गया है कि ईश्वर को जानने वाला ईश्वर ही हो जाता है। सुदामा ब्रह्म को पहचानने वाले संत हैं, वो ब्रह्म के समान हो गए। उन्हें वही आनंद चित्त की अवस्था मिल गई, वही श्रद्धा की अवस्था मिल गई जो भगवान को मिली हुई है। तो सुदामा जी ने मांगा कुछ भी नहीं। आज का कोई होता तो हंगामा कर देता, खरी खोटी सुनाता, अनशन पर भी शायद बैठ जाता। सुदामा जी ने भी विचार तो किया कि भगवान ने कुछ दिया नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि भगवान गरीब हो गए हों। वैसे भगवान तो कभी गरीब नहीं हो सकते ना। संपूर्णता में जिनको सब कुछ मिल गया हो उन्हें ही तो भगवान कहा जाता है। भग का मतलब होता है पूरा ऐश्वर्य, पूरी अमीरी, धर्म संपूर्ण, वैराग्य संपूर्ण, ज्ञान संपूर्ण, सभी कुछ तो होता है भग का मतलब। भगवान को गरीबी कैसे आएगी? वो तो समग्र धर्मशाली, धनशाली हैं। क्यों? ऐसा तो नहीं कि कंजूस हो गए भगवान। फिर सुदामा जी ने सोचा कि ऐसा क्यों सोचें, भगवान तो परम उदार भी हैं, कल्याणकारी गुणों के समुद्र हैं, प्रेम, लगाव और शक्ति के समुद्र हैं। भगवान कभी पाप तो करते नहीं। जितने दुर्भाव हमारे मन में आते हैं दोस्तों, उनका मूल कारण पाप ही है। चाहे गुस्सा हो, लालच हो, द्वेष हो, सबके मूल में बैठा है क्या? पाप। सुदामा जी ने समाधान निकाला। अद्भुत भगवान की कृपा है। भगवान ने हमारे परित्याग को, हमारे को जो दिया, रोम रोम से, बाहर से भीतर तक हमारा समुदाय की सेवा के लिए जीवन दिया, उससे कहीं हम अलग ना हो जाएं, यही विचार किया होगा। कहीं हम भोगी ना हो जाएं, कहीं हम संतुष्ट ना हो जाएं, कहीं हमारा भजन छूट ना जाए, इसलिए भगवान ने नहीं दिया। कहीं हमारी विशिष्टता लुप्त ना हो जाए, गायब ना हो जाए, कहीं हम समाज के लिए जीना छोड़कर अपने लिए जीना शुरू कर दें, इसलिए भगवान ने हमें कोई भौतिक संसाधन नहीं दिया। अब ये विचारों की महान अवस्था है मित्रों, इससे बड़ा व्यवहार भला क्या होगा। सुदामा जी ने कितना बड़ा समाधान निकाल लिया। अब तो लोग कर्जा लेकर व्यक्तिगत संपत्ति बना लेते हैं, फिर दिवालिया घोषित करके गायब हो जाते हैं। बड़े बड़े शहरों में हजारों लोग पूर्ण संपत्तिवान होकर भी अपना दिवाला निकाल रहे हैं। ऐसे लोगों को कब और कैसे सुकून मिलेगा, कैसे शांति मिलेगी? कभी नहीं मिलेगी।

दोस्तों, रेडियो सुनने का एक और फायदा बताता हूं। रेडियो अच्छे सकारात्मक गीत संगीत और विचारों के साथ आपके दिमाग की आपके मस्तिष्क की व्यायाम शाला है। आप रेडियो बिना उसकी तरफ देखे हुए सुन सकते हैं। अपने काम करते रहिए और रेडियो सुनते रहिए, है ना मजेदार। रेडियो के साथ बड़े बड़े लक्ष्य हासिल करने के लिए बड़ी कोशिशें जरूरी होती हैं। क्यों, आप कोई भी एक भारी भरकम लड़ाई एक सुई की मदद से कर सकते हैं क्या? तलवार तो चाहिए ही होगी ना। हफ्तों महीनों और सालों की मेहनत की भी जरूरत हो सकती है। क्यों, आपको क्या लगता है कोई 3 साल का 4 साल का बच्चा नर्सरी क्लास छोड़कर सीधे पीएचडी कर सकता है क्या? साल दर साल मेहनत करते हुए आगे बढ़ता है वो, तब शायद 25-30 साल में वो पीएचडी तक पहुंचता है। क्या ये सालों की मेहनत नहीं हुई उस बच्चे की? इतने सालों के बाद जाकर उसे मुकाम हासिल होता है, बढ़िया नौकरी मिलती है या कोई अच्छा व्यवसाय चालू होता है और वो समाज में सफल कहलाता है। कई बार लोग ऐसे लक्ष्य तय कर लेते हैं जो उनकी क्षमता से बहुत ज्यादा होते हैं। देखिए, बुरा ना मानिएगा, कोई भी व्यक्ति कमजोर नहीं होता, लेकिन कोई बहुत ज्यादा पतला दुबला सा व्यक्ति अगर सोचने लगे कि मैं बॉडी बिल्डर बनूंगा, बनने को बन भी सकता है, लेकिन फिर भी हमें ये तो सोचना ही चाहिए ना कि हमारी क्षमता क्या है। हम गलत तरीके से कहीं अपनी क्षमता से ज्यादा का टारगेट तो नहीं ले बैठे। हम अपने लक्ष्यों पर कुछ समय तो मेहनत करते हैं, फिर कोशिशें छोड़ देते हैं क्योंकि वो हमारी क्षमता से परे हैं। जरूरी यह है कि आप सकारात्मक मानसिक नजरिया बनाएं और उसे कायम रखें।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: लड़की ने पूछा, सुनो ये गूगल मेल होता है या फीमेल? लड़का बोला, बेबी हर हालत में फीमेल होता है। लड़की बोली, क्यों? लड़के ने कहा, क्योंकि देखो अपना सेंटेंस पूरा करने से पहले ही वो उसका सजेशन और सब कुछ देना शुरू कर देता है।
2: दुख हो या सुख, जब सदा संग रहे ना कोई।

तो दोस्तों, इस जोश को, इस उत्साह को, इस खुशी को बनाए रखिएगा पूरे दिन। कल सुबह हम लोग फिर मुलाकात करेंगे एक नए जोश के साथ, नए उत्साह के साथ जिंदगी को जीने के लिए। मैं आपका दोस्त हूं समीर, कल मिलते हैं।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

और दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम के जो एक्टर हैं उनका नाम है अनिल कपूर। बेहद ही हंसमुख और हमेशा ही जवान दिखने वाले अनिल कपूर बेहद पॉपुलर एक्टर हैं बॉलीवुड के। तो लीजिए पेशे खिदमत है उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

आप हैं आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ। मनुष्य के शरीर के बारे में और मस्तिष्क के बारे में एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं दोस्तों। मनुष्य का मस्तिष्क, जो कि हमारा कंट्रोलर माना जाता है, जहां पर सारी पढ़ाई लिखाई अनुभव स्टोर होते हैं, आपको पता है वो किसी भी बात को सिर्फ पिक्चर्स में, छवियों में ही समझता है। मस्तिष्क के लिए शब्द कोई मायने नहीं रखते, सिर्फ छवियां, पिक्चर्स, फोटोज मायने रखती है। जब हम कहते हैं पेड़ तो मस्तिष्क एक पेड़ की छवि बनाता है। जब हम कहते हैं चिड़िया, हाथी, जंगल, जानवर, इंसान, तो मस्तिष्क सिर्फ छवियां बनाता है और उन्हीं को समझता है। इसलिए जब हम मोबाइल पर पिक्चर देखते हैं तो मस्तिष्क का काम तो हो गया ना, यानी कि मस्तिष्क चुपचाप बैठ जाता है, उसे छवि बनाने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि छवियां पहले से बनी बनाई हमें दिखाई देती हैं। लेकिन जब हम किसी चीज को सुनते हैं तो मस्तिष्क उन सुनी हुई चीजों पर छवियां बनाता है, यानी कि मस्तिष्क की कोशिकाएं यानी कि मसल्स काम करती हैं और हमारा दिमाग तेज होता जाता है। तो इसलिए दोस्तों रेडियो सुनते रहिए, क्योंकि मस्तिष्क उन सुनी हुई ध्वनियों पर, आवाजों पर छवि बनाता है और तंदुरुस्त रहता है। तो बने रहिए आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ।

मैं समीर बोल रहा हूं, आपका रेडियो दोस्त। बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों, अनिल कपूर जी एक पंजाबी हिंदू फैमिली में 24 दिसंबर 1956 को जन्मे थे और तब से लेकर आज तक बस हम सभी का मनोरंजन करते ही जा रहे हैं। लीजिए, पेश खिदमत है उन्हीं की फिल्म का ये गीत,

अपना सब कुछ तुम्हें दे दिया। अब अगर तुमने बेवफाई की तो खुदा कसम हम इन्हीं लहरों में डूब मरेंगे।

0: मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुआरा।
1: यार तुम्हारा कुत्ता तो टाइगर जैसा दिखता है, क्या खिलाते हो तुम इसको? बंता ने कहा, अरे भाई ये टाइगर ही है, ये प्यार व्यार के चक्कर में पड़कर इसकी शक्ल कुत्ते जैसी हो गई है।
2: ১৯৮০ के दशक में ढेर सारी फिल्में की अनिल कपूर ने, और हम सभी का भरपूर मनोरंजन किया अपने चुलबुले अंदाज में। लीजिए, हो जाए उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर। आप मेरे साथ है ना? अनिल कपूर जी ने बहुत सारी फिल्में प्रोड्यूस भी की, जिसमें बधाई हो बधाई, माई वाइफ्स मर्डर, गांधी, माई फादर जैसी फिल्में आती हैं।

मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुआरा। एक बार एक सब्जी वाला सब्जियों पर पानी छिड़क रहा था, छिड़कता जा रहा था। काफी देर हो गई तो ग्राहक ने गुस्से से बोला, सुनो अब अगर भिंडी होश में आ गई हो तो 1 किलो तौल दो।

अनिल कपूर जी थोड़ा बहुत गा भी लेते हैं, जैसे उनकी बॉलीवुड कॉमेडी चमेली की शादी में उन्होंने थोड़ा सा गाया भी था। तो लीजिए, पेशे खिदमत है उनकी ही फिल्म का ये गीत।

देखे कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर। आज के कलाकार अनिल कपूर जी की फिल्म का ये गीत।

तो दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

दोस्तों, आज के कलाकार प्रोग्राम के जो एक्टर हैं उनका नाम है जैकी श्रॉफ। जी हां, जैकी श्रॉफ जी का जन्म बॉम्बे में ही, जो कि आज की डेट में मुंबई है, हुआ था। इनका जन्म 1 फरवरी 1957 को हुआ था। लीजिए, पेशा खिदमत है उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

मैं समीर बोल रहा हूं, आपका रेडियो दोस्त। बने रहिए मेरे साथ। जैकी श्रॉफ जी ने 11वीं तक की पढ़ाई की और उसके बाद बस फिल्मों में आने की कोशिश में लग गए, और उसके बाद इतनी ढेर सारी फिल्में इन्होंने की कि बस मजा आ गया। इनकी शानदार पर्सनालिटी, इनके बोलने का अंदाज हम सभी को हमेशा याद रहता है। लीजिए पेशे खिदमत है उन्हीं की फिल्म का, उन्हीं पर फिल्माया हुआ ये गीत।

मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर। आप मेरे साथ है ना? कैसे हैं दोस्तों? आप हैं आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ। मनुष्य के शरीर के बारे में और मस्तिष्क के बारे में एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं दोस्तों। मनुष्य का मस्तिष्क, जो कि हमारा कंट्रोलर माना जाता है, जहां पर सारी पढ़ाई लिखाई अनुभव स्टोर होते हैं, आपको पता है वो किसी भी बात को सिर्फ पिक्चर्स में, छवियों में ही समझता है। मस्तिष्क के लिए शब्द कोई मायने नहीं रखते, सिर्फ छवियां, पिक्चर्स, फोटोज मायने रखती है। जब हम कहते हैं पेड़ तो मस्तिष्क एक पेड़ की छवि बनाता है। जब हम कहते हैं चिड़िया, हाथी, जंगल, जानवर, इंसान, तो मस्तिष्क सिर्फ छवियां बनाता है और उन्हीं को समझता है। इसलिए जब हम मोबाइल पर पिक्चर देखते हैं तो मस्तिष्क का काम तो हो गया ना, यानी कि मस्तिष्क चुपचाप बैठ जाता है, उसे छवि बनाने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि छवियां पहले से बनी बनाई हमें दिखाई देती हैं। लेकिन जब हम किसी चीज को सुनते हैं तो मस्तिष्क उन सुनी हुई चीजों पर छवियां बनाता है, यानी कि मस्तिष्क की कोशिकाएं यानी कि मसल्स काम करती है और हमारा दिमाग तेज होता जाता है। तो इसलिए दोस्तों रेडियो सुनते रहिए, क्योंकि मस्तिष्क उन सुनी हुई ध्वनियों पर, आवाजों पर छवि बनाता है और तंदुरुस्त रहता है। तो बने रहिए आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ।

जैकी श्रॉफ जी ने कुछ टेलीविजन शोज भी किए, जैसे लहरें, चित्रहार एंड मिसिंग। वहां भी इन्होंने अपनी कलाकारी की छाप छोड़ी। तो लीजिए, पेशे खिदमत है उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

0: मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुआरा।
1: भाई साहब, आपको पता है गूगल का जन्म कैसे हुआ? एक बार रजनीकांत सुबह सुबह उठे, उन्हें ख्याल आया कि अगर उनकी नॉलेज का 1% हिस्सा भी दुनिया को मिल जाए तो उनका भला हो जाएगा। बस गूगल का जन्म हो गया।

मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर। आप मेरे साथ है ना दोस्तों? आज के कलाकार प्रोग्राम के कलाकार जैकी श्रॉफ जी का ये गीत।

देखे कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर।

कैसे हैं दोस्तों, आप हैं आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ। मनुष्य के शरीर के बारे में और मस्तिष्क के बारे में एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं दोस्तों। मनुष्य का मस्तिष्क, जो कि हमारा कंट्रोलर माना जाता है, जहां पर सारी पढ़ाई लिखाई अनुभव स्टोर होते हैं, आपको पता है वो किसी भी बात को सिर्फ पिक्चर्स में, छवियों में ही समझता है। मस्तिष्क के लिए शब्द कोई मायने नहीं रखते, सिर्फ छवियां, पिक्चर्स, फोटोज मायने रखती है। जब हम कहते हैं पेड़ तो मस्तिष्क एक पेड़ की छवि बनाता है। जब हम कहते हैं चिड़िया, हाथी, जंगल, जानवर, इंसान, तो मस्तिष्क सिर्फ छवियां बनाता है और उन्हीं को समझता है। इसलिए जब हम मोबाइल पर पिक्चर देखते हैं तो मस्तिष्क का काम तो हो गया ना, यानी कि मस्तिष्क चुपचाप बैठ जाता है, उसे छवि बनाने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि छवियां पहले से बनी बनाई हमें दिखाई देती हैं। लेकिन जब हम किसी चीज को सुनते हैं तो मस्तिष्क उन सुनी हुई चीजों पर छवियां बनाता है, यानी कि मस्तिष्क की कोशिकाएं यानी कि मसल्स काम करती है और हमारा दिमाग तेज होता जाता है। तो इसलिए दोस्तों रेडियो सुनते रहिए, क्योंकि मस्तिष्क उन सुनी हुई ध्वनियों पर, आवाजों पर छवि बनाता है और तंत्र

तो दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज के

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा बहुत ही खास प्रोग्राम जहां शब्दों में एहसास है और हर शेर में दिल की बात। आज की इस महफिल में पेश है कुछ खूबसूरत गजलें जो आपके दिल को छू जाएंगी। आपके साथ हैं आपकी ही मेजबान, आपकी ही रेडियो दोस्त आरती जी। तो आइए शुरू करते हैं गजलों और सुरों का ये प्यारा सफर।
1: आज फिर दिल ने कहा, आओ भुला दे यादें। आज फिर दिल ने कहा, आओ भुला दे यादें। जिंदगी बीत गई और वही यादें ही यादें। जिस तरह आज ही बिछड़े हों, जिस तरह आज ही बिछड़े हों बिछड़ने वाले, जैसे एक उम्र के दुख याद दिला दे यादें। काश मुमकिन हो एक कागजी कश्ती की तरह, काश मुमकिन हो एक कागजी कश्ती की तरह खुद फरामोशी के दरिया में बहा दे यादें। भूल जाना भी तो एक तरह की नेमत है फराज, भूल जाना भी तो एक तरह की नेमत है फराज, वरना इंसान को पागल ना बना दे यादें। नमस्कार, आदाब। 90.8 FM पर रेडियो SN और रेडियो टांटिया भील के इस बेहद खास और आपके पसंदीदा प्रोग्राम अल्फाज से एहसास तक में मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त आरती रॉय। दोस्तों, पिछले हफ्तों में जब हमने अपनी रेडियो SN फैमिली के अज़ीज़ दोस्तों की फरमाइशों का सिलसिला शुरू किया था तो आप सबको बहुत पसंद आया और आप में से बहुत दोस्तों का भी दिल किया होगा कि आप ही हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। तो आपकी इसी ख्वाहिश का एहतराम करते हुए मैं फिर से लेकर हाजिर हूँ एक और फरमाइशी प्रोग्राम। आखिर जज्बातों और सुरों की इस आमेजिश यानी मिलाप को कैसे रोका जा सकता है। तो आज की इस मखमली शाम में टेलीफोन के ज़रिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारी फैमिली के 5 बेहद अनमोल रतन। आज हम पहले से नाम नहीं बताएंगे दोस्तों, बल्कि सुरों का ये सफ़र जैसे जैसे आगे बढ़ेगा इन नगीनों से आपकी मुलाकात होती जाएगी। तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आइए सीधे रुख करते हैं फ़ोन की तरफ और सुनते हैं कि आज हमारे पहले दोस्त हमसे कहाँ से जुड़े हैं और उनकी पसंद क्या है। सुनते हैं ये पहली कॉल और फिर गजल।
2: हेलो
3: हेलो हेलो राघवेंद्र, मैं SN रेडियो से आरती रॉय बात कर रही हूँ हमारे गजलों के प्रोग्राम अल्फाज से एहसास तक के लिए से।
2: वाह आरती जी, व्हाट अ सरप्राइज।
3: कैसा लग रहा है आपको, कैसे हैं आप?
2: मैं बहुत बढ़िया हूँ, वीक का शुरुआत है, बहुत अच्छा चल रहा है।
3: ओके राघवेंद्र, हम गजलों का फरमाइशी प्रोग्राम बना रहे हैं तो मैं अपने प्यारे दोस्तों से उनसे फ़ोन पे उनकी पसंद के बारे में जानकारी हासिल करना चाह रही थी तो मैंने आपका नाम चुना। तो आप हमें ये बताइए राघवेंद्र के आपका फेवरेट गजल सिंगर कौन है?
2: मेरा फेवरेट गजल सिंगर टॉप ऑफ द माइंड जगजीत सिंह साहब हैं।
3: ओके वेरी नाइस,
2: मैं कारण बता देता हूँ आपको।
3: हाँ जी बोलिए।
2: जब भी जगजीत साहब को मैं सुनता हूँ, और मैं क्रिकेट का बहुत बड़ा फैन हूँ, गानों का भी फैन हूँ, दिल्ली शहर के एक सज्जन है बहुत बड़े ग्रेट क्रिकेट प्लेयर है राहुल द्रविड़ साहब, उनकी बैटिंग ठहराव होती थी, नजाकत होती थी, वही बात मुझे जगजीत साहब की गायकी में नजर आती है, या दैट्स द वे आई सी इट, इट्स ऑलवेज सो नाइस।
3: वाओ वाओ, हमें जगजीत साहब की इस तरह की सिमिलैरिटी किसी ने नहीं आज तक बयां की होगी। दिस इज समथिंग वेरी अमेजिंग, वेरी अमेजिंग। एनीवेज, आपने बता दिया आपको ये किस लिए आपको जगजीत जी पसंद है। आप हमें ये बताइए हमारे दोस्तों को कि आपको उनकी गजल कौन सी सबसे ज्यादा पसंद है।
2: गजल वो है, होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या है। निदा फजली साहब ने लिखा है इस गाने को और जगजीत साहब ने बखूबी गाया है इसे। तो मुझे एक शब्द जो वो इस्तेमाल करते हैं, हम दोस्त कह ना पाए उनसे हाल दिल कभी और वो समझे नहीं, थोड़ा रोक करके बोलते हैं खामोशी क्या चीज है, वो इट्स जस्ट माइंड ब्लोइंग।
3: आप एक लाइन हमें गा के सुनाइए ना।
2: हम

0: खामोशी क्या चीज है।
1: बहुत खूब बहुत खूब, आप तो बहुत अच्छा गाते हैं राघवेंद्र, वेरी नाइस। तो चलिए दोस्तों, फिर राघवेंद्र की पसंद तो हमें पता चल गई, तो उनके साथ हम भी सुनते हैं होश वालों को खबर क्या जिंदगी क्या चीज है। राघवेंद्र जी की पसंद हम और आप सब मिलकर सुनते हैं।

0: वाकई होश वालों को क्या खबर कि जिंदगी क्या चीज है। जगजीत सिंह साहब की आवाज का जादू जब भी कानों में घुलता है रूह को सुकून ले जाता है। दोस्तों, ये थे बेंगलोर से हमारे दोस्त रागेश्वर देशमुख साहब, माफ कीजिएगा, राघवेंद्र साहब। सच कहूँ तो राघवेंद्र जी ने जो जगजीत सिंह साहब की गायकी की तुलना क्रिकेट के दी वॉल कहे जाने वाले राहुल द्रविड़ की बैटिंग से की है, वो अपने आप में एक नायाब तशबी यानी तुलना है और बेमिसाल नज़ीर यानी उदाहरण है। जैसे पिच पर राहुल द्रविड़ का वो गजब का ठहराव और हर स्ट्रोक की एक मुकम्मल लय होती थी, ठीक वैसी ही कंसिस्टेंसी और ठहराव जगजीत सिंह साहब की गायकी में भी है। जगजीत जी भी अगर आज होते और ये बात सुनते तो मुस्कुरा ही पड़ते यकीनन। राघवेंद्र जी, आपका बेहद शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, आइए आगे सुनते हैं, ये अगली आवाज भला किसकी है।
1: हेलो
2: हेलो हेलो
1: हेलो सना, दिस इज आरती रॉय फ्रॉम SN रेडियोज अल्फाज से एहसास तक प्रोग्राम से।
2: माय गॉड, वाओ, इट्स अ ग्रेट सरप्राइज। आरती जी, मैं आपके बहुत प्रोग्राम सुनती हूँ हमेशा,
1: इसीलिए मैंने आपको फोन किया है, क्योंकि आप गजलों की बहुत शौकीन लगती हैं और आप बहुत रेगुलर होती हैं, तो हम फरमाइशी प्रोग्राम बना रहे हैं सना, तो मुझे आपका ख्याल आया कि आपसे फोन करके पूछा जाए कि सना, आपका फेवरेट गजल सिंगर कौन है?
2: ओके जी, आरती जी, गजल दिलों को छू लेने वाला एक ऐसा संगीत प्रकार है कि जिसकी गहराई में लोग अक्सर डूब जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वहां से निकलना नामुमकिन है।
1: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सना, ये बताइए कि आपका फेवरेट गजल सिंगर कौन है?
2: जी मुझे तलत अजीज जी के गजलें बहुत पसंद है।
1: तलत अजीज, ओके, वेरी नाइस, मुझे भी बहुत पसंद है तलत अजीज। अच्छा सना, ये बताओ तलत अजीज की आपको कौन सी गजल सबसे ज्यादा पसंद है?
2: अपने ये जो है डैडी फिल्म की एक बहुत खूबसूरत सी गजल है, आई ना मुझसे मेरी पहली सी सूरत मांगे।
1: ओके, वेरी नाइस, बहुत सुंदर। और आपको ये गजल क्यों पसंद है इतनी सना?
2: क्योंकि आरती जी ना, इस गीत में इंसान के अकेलेपन के बदलते समय और रिश्तों के बाजार में बिकने का दर्द, ये जो है इसको बहुत गहराई से बयां किया गया है। इसकी खास बात अगर मैं बोलूँ ना आपको, तो ये एक्चुअल में सिंगिंग करने के लिए बहुत डिफिकल्ट सॉन्ग है, पर उसका प्रत्येक अंतरा अलग अलग अंदाज में गाया हुआ है, वो मुझे बहुत बहुत पसंद है। और ये बहुत ही प्यारी, प्रसिद्ध और बहुत भावुक, ऐसी रूह को छू लेने वाली गजल है, मुझे वो बहुत पसंद है।
1: बहुत सुंदर, बहुत बहुत नफीस आपकी पसंद है सना, और मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी पसंद जान के। तो चलिए फिर हम सब सुनते हैं मिलके आपकी पसंद की डैडी फिल्म की ये गजल, अपने दोस्तों को भी सुनाते हैं और आपको भी सुनाते हैं। ओके
2: जी, जरूर जरूर, थैंक यू।

0: वाह, अभी आपने सुनी तलत अजीज की ये बेहद सुंदर पेशकश। दोस्तों, ये थी हमारी SN फैमिली से सना शेख, जो कि एक कॉलेज में प्रोफेसर रही हैं और अभी हाल ही में इन्होंने रिटायरमेंट ली है। फ़ोन पर उनसे बातचीत करते हुए मुझे अंदाज़ा हो गया कि मराठी मौसीकी यानी संगीत और अदब पर उनकी कितनी पुख्ता पकड़ और गहरी समझ है। दोस्तों, आपने सुना सना जी ने कितनी बारीकी से नोट किया कि इस गज़ल के हर अंतरे को एक अलग ही अंदाज से गाया गया है, जो कि गाते वक्त काफ़ी मुश्किल होता है। वैसे दोस्तों, सना जी के शौहर आसिफ शेख साहब भी बहुत अच्छे गायक हैं, बहुत जल्दी हम उनसे भी बात करने वाले हैं। सना जी, आपका इस महफिल में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, आइए चलते हैं हमारी अगली मंजिल की तरफ और सुनते हैं कि कौन जुड़ा है हमसे फोन लाइन के उस पार। ट्रन ट्रन,
1: हेलो। हेलो मीना,
2: गुड आफ्टरनून।
1: हेलो मीना, दिस इज आरती रॉय फ्रॉम रेडियो SN
2: अल्फाज। आरती,
1: हाय। तो मैं गजलों के प्रोग्राम अल्फाज से एहसास से बात कर रही हूँ मीना
2: जी।
1: तो सिंस आप मेरे प्रोग्राम को सुनती हैं और मुझे मालूम है कि आपको गजलें बहुत अच्छी लगती हैं, तो मैं गजलों का एक फरमाइशी प्रोग्राम बना रही हूं। तो मैंने सोचा उन लोगों से फोन पे बात की जाए और उनकी पसंद जानी जाए और उनकी पसंद की गजलें प्ले की जाए, तो इसलिए मुझे आपका ख्याल आया और मैंने आपको फोन किया। तो आप ये बताइए मीना कि आपका फेवरेट गजल सिंगर कौन है?
2: फेवरेट गजल सिंगर मेरे जगजीत सिंह हैं, क्योंकि मैंने उनके साथ बहुत काम किया है। मैं HMV में काम करती थी एक जमाने में।
1: ओ वाह।
2: तो लगभग उनकी हर रिकॉर्डिंग और उनके हर रिकॉर्डिंग की प्रमोशन मैंने ही की है।
1: अरे वाह।
2: जितने भी HMV में रिकॉर्डिंग्स हुई हैं उनकी। लेकिन पहले पहले मेरा, मैं जब गजल से मुखातिब हुई वो 1974 में था, जब मेहदी हसन साहब इंडिया विजिट कर रहे थे।
1: अच्छा।
2: और उनका मतलब बंबई में एक बड़ा सा ऑडिटोरियम है षण्मुखानंदा, वहां पे उनका गजलों का प्रोग्राम था। तो मैंने घर में कहा कि एक्स्ट्रा क्लास है मेरे और मैं गजलें सुनने चली गई। मैंने कहा ये तो सुनना ही पड़ेगा। और तब जो मेरी मतलब क्या मोहब्बत हो गई गजलों से कहना चाहिए, क्योंकि मुझे शायरी अच्छी लगती है। एनी काइंड ऑफ पोएट्री आई जस्ट लव। उसमें थोड़ा वो क्या बोलते हैं, अतिशयोक्ति वाली बात होती है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है।
1: ओके ओके ओके। अच्छा,
2: तब से मैं सुनती आ रही हूँ।
1: हाँ, ठीक है मीना, आप ये बताइए कि आपके जगजीत सिंह जी, तो अब समझ में आ गया कि आप तो बहुत लकी हैं जो आप उनसे, उनको इतनी बार मिली होंगी और उनको रूबरू देखा होगा। और मुझे ये बताइए कि जगजीत सिंह साहब की कौन सी गजल आपको पसंद है और क्यों?
2: एक इबादत वाली गजल उन्होंने गाई है, दोनों ने मिलके, जगजीत चित्रा ने, मंजिल न दे चराग न दे हौसला तो दे।
1: वाह।
2: मुझे ये बेहद पसंद है।
1: ओके।
2: क्योंकि मैं खुद बड़ी प्रेयरफुल हूँ।
1: ओके, ओके, ओके।
2: और मैं मोहब्बत का वास्ता भी उस खुदा को ही देती हूँ।
1: वाह, क्या बात है।
2: हाँ जी, तो इसलिए मुझे वो गजल मेरी फेवरेट है।
1: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपके एहसास की हम कदर करते हैं। और तो सुनते हैं दोस्तों मीना अय्यर की पसंद पर उनकी बेहद खूबसूरत पसंद, और आप भी सुनिए हमारे साथ। तो

0: जहाँ बात उम्मीद और हौसले की हो, वहाँ इस नज़्म से आला कुछ हो ही नहीं सकता। दोस्तों, ये थी मुंबई से हमारी SN फैमिली की बेहद उम्दा और पैशनेट सिंगर मीना अय्यर जी। फ़ोन कॉल के दौरान पता चला कि मीना जी अध्यात्म और वेदांत की भी गहरी समझ रखती हैं और इसके लेक्चर ऑनलाइन जूम सेशन पर भी वो देती हैं। उनकी इस कहानी रूहानी पसंद ने हमारी आज की महफिल को एक अजब सा तज़फ़ुफ़ यानी रूहानी सुकून बख्शा है। मीना जी, आपका तहे दिल से शुक्रिया। तो चलिए सफ़र को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं कि अब हमारी इस SN फैमिली का कौन सा चेहरा अपनी फरमाइश के साथ लाइन पर है। ट्रन ट्रन ट्रन ट्रन।
1: हेलो
2: हेलो हेलो इंदु,
1: हाय। मैं कौन बोल रही हूँ?
2: मैं आरती रॉय बोल रही हूँ। मेरी आवाज नहीं पहचानती हो?
1: आरती दी पंचायत।

0: नहीं, एसएन रेडियो से अपने प्रोग्राम अल्फाज से एहसास तक से। ठीक है, कैसी हो इंदु?
1: मैं तो एकदम बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हो?
0: मैं भी ठीक हूँ इंदु। हम फरमाइशी प्रोग्राम बना रहे हैं और मैंने सोचा कि अपनी इंदु का भी फरमाइश का गजल इसमें प्ले किया जाए ताकि हमारे बाकी के दोस्त भी सुने। तो मुझे इंदु ये बताओ कि तुम्हारा फेवरेट गजल सिंगर कौन है?
1: ऐसे तो मैं पसंद करती हूँ, बहुत है ऐसे सिंगर्स गजल गाने वाले, लेकिन
0: कोई एक बताओ।
1: हाँ ज्यादा अच्छा लगता है मुझे गुलाम अली साहब का गजल।
0: ओके, वेरी नाइस वेरी नाइस। और गुलाम अली साहब की गजल कौन सी आपको सबसे ज्यादा पसंद है?
1: हाँ, गुलाम अली साहब का एक गजल है, दिल में एक लहर सी उठी है अभी,
0: अरे
1: ये
0: वाह,
1: वाला।
0: क्या खूबसूरत पसंद है आपकी, आपकी जैसे बिल्कुल।
1: मुझे
0: और इंदु, ये गजल आपको क्यों पसंद है?
1: गजल इतना सुंदर लगता है, इसमें बहुत वेरिएशंस है और ढेर सारा मूर्तियां है,
0: ओ,
1: और इसको गा रहा है गुलाम अली साहब,
0: अरे
1: तो
0: वाह,
1: इसमें तो स्पेशलिटी कुछ होगा ही ना। और
0: बिल्कुल
1: हाँ,
0: सही बोला।
1: इसीलिए मुझे अच्छा लग रहा है। हाँ
0: तो इंदु, क्या इस एक लाइन हमें सुनाओगे हमारे दोस्तों को? गा
1: हाँ
0: गा के
1: सुनाऊंगी
0: सुनाओ
1: जरूर।
0: सुनाओ।
1: हाँ, दिल में एक लहर सी उठी है अभी।
0: वाह।

0: क्या क्या गाती हो यार तुम, कैसे तुमने कैसे कैसे कर लेती हो तुम इतना अच्छा। उफ,
1: मैट्रिक में अच्छा गाती नहीं हो, आरटीडी हो जाता है,
0: बहुत सुंदर, बिल्कुल वैसे ही आपने वही मुर्कियां ली और उसी लहर से गाया, दैट इज सो स्वीट ऑफ यू। तो चलिए फिर आपकी पसंद पे और अपने दोस्तों के साथ मिलकर सुनते हैं, दिल में एक लहर सी उठी है अभी। ओके।

0: क्या बात है दोस्तों, उस्ताद गुलाम अली साहब की वो मखमली मुर्कियाँ और हरकतें और हमारी इंदु ने फोन पर हूबहू उसी पाकीजगी से इसे गाकर सुनाया। वाह दोस्तों, ये थी तीनसुखिया से हमारी आरके इंद्रानी और एसएन फैमिली की बेहद खास मेंबर, जिन्हें हम प्यार से इंदु बुलाते हैं। इंदु के गले में वाकई साक्षात सरस्वती का वास है। इतनी लाजवाब गायकी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया इंदु डियर। तो आइए दोस्तों, अब चलते हैं आज की महफिल की आखिरी कॉल की तरफ और देखते हैं कि शुरू के इस कारवां का आखिरी पड़ाव कौन सा है। तो सुनते हैं ये आखिरी कॉल। ट्रन ट्रन ट्रन ट्रन।
1: हेलो
2: हेलो रूपा।
1: हेलो आरती जी।
2: हाय हाउ आर यू डार्लिंग।
1: आई एम फाइन थैंक यू आरती जी। आरती जी
2: दैट इज सो स्वीट रूपा। We are going to make one for my hip program. Alpha se saas tak ke liye. So since you are very regular in my program and I know that you like ghazals also. So main kya rahi ki main Rupa ki pasand ki ghazal apne program mein play karun, apne doston ko sunau, hum sab sune. To Rupa aap ye bataiye ki aapka favorite ghazal singer kaun hai?
1: Mera favorite ghazal singer यानी गुलाम अली साहब।
2: गुलाम अली साहब मेरे भी बहुत फेवरेट गजल सिंगर हैं। आप ये बताएंगे कि इन साहब की आपको गजल कौन सी पसंद है सबसे ज्यादा?
1: सबसे ज्यादा यानी

0: मेरा
1: अरे वाह, ये
0: ये
1: गजल क्यों पसंद है आपको?
0: हाँ
1: ये गजल इतनी क्ों पसंद है आपको?
0: इतनी क्यों पसंद है? वैसा देखा जाएगा तो हम सब थोड़ा बहुत पागल होते हैं ना. हम सभी में कुछ ना कुछ पागलपन होता है ना. हम सब पागल ही हैं थोड़ा बहुत.
1: थोड़ा थोड़ा पागल हम सबका होता है, राइट?
0: हाँ, सब में एक दीवानापन होता है. सबका दिल दिल में थोड़ा पागलपन होता है ना, तो इसलिए पसंद आ गया होगा. और दूसरा कोई वजह है नहीं.
1: ओके, वेरी नाइस वजह, एक्चुअली आई लाइक
0: हाँ.
1: इट। बहुत सुंदर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा रूपा। तो आपके साथ चलिए फिर हम अपने दोस्तों को भी सुनाते हैं ये गजल, के उनका भी दिल पागल है या नहीं।
0: जरूर
1: ओके
0: होगा.
1: ओके ओके ओके

वाकई सुरों की ये आवारगी जब दिलों को छूती है तो इंसान अचानक थम सा जाता है। दोस्तों, जैसा कि आपने सुना, ये थी चेन्नई से हमारी बेहद वर्सेटाइल और खूबसूरत रूमानी दोस्त, हमारी SN फैमिली की रूपा जी, जो SN रेडियोज में तमिल के प्रोग्राम भी कंडक्ट कर चुकी हैं और हमारी इस महफिल की मुस्तकिल यानी रेगुलर सामिया यानी सुनने वाली हैं। रूपा जी, आप ही की तरह आपकी खूबसूरत फरमाइश का बेहद शुक्रिया। तो दोस्तों, बेंगलोर से शुरू हुआ ये सफ़र मुंबई से होता हुआ आसाम और फिर चेन्नई पर आकर रुका। हमारी रेडियो SN फैमिली के इन पांचों दोस्तों, रागेश्वर जी, राघवेंद्र जी, सना जी, मीना जी, इंदु और रूपा जी ने आज सुरों और जज्बातों का जो गुलदस्ता सजाया, उम्मीद है उसकी खुशबू आपके जहन में देर तक महकेगी। अब घड़ी की सुइयां हर रोज की तरह टिक टिक टिक कर रही हैं और कह रही हैं कि अब थम जाओ। तो कल फिर इसी वक्त कुछ नए अदबी अल्फाज और कुछ अनछुए एहसासों के साथ एक बार फिर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए सुनते रहिए 90.8 FM पर रेडियो SN एंड रेडियो टांटिया भील। अपनी रेडियो दोस्त आरती को अब दीजिए इजाजत। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और दुआओं में याद रखिएगा। शब खैर, शुभ रात्रि, रब राखा, फिर मिलेंगे।

दोस्तों, आपकी मेजबान आरती जी के साथ आज की हमारी गजलों भरी महफिल बस यहीं खत्म होती है। उम्मीद है ये गजलें, ये अल्फाज आपके दिल को पसंद आए होंगे। इसी तरह जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आरती जी फिर लौटेंगी नई गजलों और नई भावनाओं के साथ। नमस्कार।

0: रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांटिया भील रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान आपु रोज करहु वातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा एत्रे हमरता रेजो टांटिया भील नो रेडियो स्टेशन 90.8 FM।
1: किसान भाइयों एक बारी फिर था बहुत बहुत स्वागत करिए से तमार सबूनो रेडियो टांटिया भील 90.8 FM पर। किसान भाइयों आप जानिए है रेडियो टांटिया भील 90.8 FM नो यूं खेतीवाड़ी कार्यक्रम हमूने खेतीवाड़ी थी जोड़ेली घनी खरी महत्वपूर्ण जानकारियों आले है। किसान भाइयों ने रेडियो टांटिया भील 90.8 FM नो यो प्रयास है कि आप जो भी किसान भाई है तिना तक खेतीवाड़ी थी जोड़ेली महत्वपूर्ण जानकारियों ने तीन तक पुगाड़वानो यो एक प्रयास है ताकि हमारा जो किसान भाई है त्यो अपनी आजीविका ने मजबूत कर सके अपनी आजीविका ने और सुदृढ़ बना सके। तो किसान भाइयों हमने अपना किसानों ने इना कार्यक्रम की जरूरत केम पड़ी। किसान भाइयों आप सब जानिए हैं कि अपना जो प्रकृति है प्रकृति हर दिन बदलती जा रही है। हमने जेम के आपू अपना परदादा जेम खेती करते ला हेम हाव आपू हमने तीन तरीके थी हाव आपू खेती नहीं करी रहा है। तो किसान भाइयों कहीं ना कहीं समय ने हिसाब थी वातावरण ने हिसाब थी अगर आपू देखी तो पर्यावरण में जो बदलाव आ रहा है तेने हिसाब थी आप किसान भाइयों ने भी आ हर की आप खेती में बदलाव करीने कृषि करवानी जरूरत है। किसान भाइयों आपू जानिए है कि आज अगर आप देखिए तो खर्चो जो है अपना नो खर्चो भी अपना परिवार ने आप सलाड़वा जो खर्चो है त्यो भी दने दन बढ़तो जा रो है। तो किसान भाइयों कहीं ना कहीं अगर आपू अपना किसान भाई इन खेती ने समझी ने अगर असल तरीके थी खेती करूँ तो कहीं ना कहीं आप कम से कम लागत में आप वधु थी वधु फसल ली सकी। तो किसान भाइयों रेडियो टांटिया भील 90.8 FM ना योस संदेश है योस तीनों प्रयास है कि हमारा किसान जो है इना खेतीवाड़ी कार्यक्रम थी अलग अलग प्रकार की खेती करवानी जानकारी ने ले अलग अलग प्रकार करवानी खेती पद्धति ने समझे अने कहीं नी खेती हजू आपू करी सकी है इनी हंगली वातों ने समझे जाने परखे अने इनी खेती में भी आपड़ो रुख करे योस हमारो प्रयास है। किसान भाइयों आज ना इना कार्यक्रम में आपू चर्चा करवाना है आप देशी गाय ने ऊपर देशी गाय केम जरूरत है अने देशी गाय नो केतरा फायदा है हमारा किसान भाई हंगला किसान भाई एक न एक आपड़ पशु अपना घेर में राखी से आपू केम के आपड़ घेर जो काशा मकान है तिना लीपवा हरू आपू गोबर नो प्रयोग करिए से आपड़ सूला हलगावी आपड़ साणा बनावी है। तो अलग अलग प्रकार थी आपड़ किसान भाई बहुत असल तरीके थी जाने हैं कि खेतरों में अने आपड़ खेती हरू एक पशुनी जरूरत केतरी मान्यता है अपने खेतरों में कितनी जरूरत है अपना पशुनी ते बात भली भांति हमारो किसान भाई जाने है। ते किसान साथियों आजना इना कार्यक्रम में आपू देसी गाय ना बारा में जाणू देसी गाय की कितनी नस्लें हैं इन दूध नो हूँ फायदो है अन किकम अपनी आमदनी ने बढ़ावा हरू ये देसी गाय आपून कई ना तरीका थी आप फायदेमंद थी सके है। तो किसान भाइयों आजना इना कार्यक्रम की आपू आती शुरुआत करी है अन जानिए आजना कार्यक्रम में हजू भी महत्वपूर्ण जानकारियों ने साथ ही किसान भाइयों हम आशा करिए हैं कि आप जो भी किसान भाई है जो भी इना कार्यक्रम ने हमली रो है इना कार्यक्रम थी आपुन जो भी सीख मळे है तीनी सीख ने आपू अपनी तक सीमित नहीं राखवानी तीनी सीख ने आपू बाकी अपना पड़ोसी किसान भाइयों तक भी इनी सीख ने पुगाड़वानी आपू प्रयास करिए साथ ही तीन भी आपू बताड़ी सकी कि आपू एप्लीकेशन ना माध्यम थी इना रेडियो टांटिया भील 90.8 FM ना खेतीवाड़ी कार्यक्रम ने आपू हमली सकी अने आपण रेडियो पर भी इना 90.8 FM पर भी आपू इना खेतीवाड़ी कार्यक्रम ने हांजे 6-8 वागे तक हामली सकी। तो किसान भाइयों यो भी आपणो एक असल पहल है कि इनी पहल में तमु भागीदारी लो अने बीजा किसानों तक भी इनी जानकारी पुगाड़ो। तो किसान भाइयों तमारो वधु समय न लेते हुए आजना इना कार्यक्रम नी आपू शुरुआत करी है।
0: रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांटिया भील रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान आपू रोज करहू वाते खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा एत्रे हमरता रेजो टांटिया भील नो रेडियो स्टेशन 90.8 FM।
2: मैंने एक्सपेरिमेंट करवाए हैं पालेकर जी ने भी करवाए हैं, माइक्रोबायोलॉजी के डॉक्टर ने महीनों इस पर रिसर्च करने के बाद पाया, उन्होंने भैंस का भी गोबर लिया, हॉस्टन फ्रीजन जर्सी गाय का भी गोबर लिया, बैल का भी लिया, लेकिन जो भारतीय नस्ल की देसी गाय है, ओनली देसी गाय, साहिवाल, थारपारकर, राठी, गिर, हरियाणवी, कांकरेज, ये जो गाय हैं पूरे भारतवर्ष में जो जिन प्रांतों में परंपरा से चली आ रही, उनके गोबर गोमूत्र में यही कमाल है, बाकी कहीं नहीं मिला। तो हमने देसी गाय के गोबर गोमूत्र की जब रिसर्च करवाई तो गोमूत्र तो खनिज का भंडार मिला, और देसी गाय के एक ग्राम गोबर में 300 करोड़ से भी ज्यादा बैक्टीरिया जीवाणु पाए,
3: अच्छा,
2: जो अन्य किसी में इतने नहीं। तो हम क्या करते हैं जीवामृत बनाने के लिए, देसी गाय जो स्वस्थ है 24 घंटे में रात दिन में 8 से 10 किलो गोबर देती, 8 से 10 किलो गोमूत्र देती है। इस गोबर गोमूत्र को इस ड्रम में डाल दें पानी वाले में, और उसमें 1.5 से 2 किलो गुड़, 1.5 से 2 किलो किसी भी दाल का बेसन, और बड़े पेड़ के नीचे की एक मुट्ठी मिट्टी, और इसको लकड़ी के डंडे से क्लॉकवाइज घड़ी की सुई की तरह 5 मिनट सवेरे 5 मिनट शाम, कुल 5 दिन घोलना है। छठे दिन 1 एकड़ का खाद तैयार है।
3: अच्छा,
2: अब मिश्रा जी, दुनिया में 1 एकड़ का 6 दिन में खाद तैयार हो जाए कोई पद्धति नहीं, और हाँ, और इसमें साइंस क्या है वो सब किसान बंधुओं के लिए समझने की बात ये है कि देसी गाय के 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ जीवाणु हैं, तो 10 किलो गोबर में कितने होंगे, असंख्य होंगे,
3: बिल्कुल।
2: और मूत्र जो हो खनिजों का भंडार है, जो जमीन को तत्व चाहिए उनसे भरा पड़ा है। अब इन जीवाणुओं को खाने के लिए दाल का बेसन दे दिया हमने, वो प्रोटीन है
3: जी।
2: जब वो जीवाणु इस प्रोटीन को खाएंगे तो पुष्ट होंगे, बलवान होंगे, स्वस्थ होंगे, और गुड़ डालते तो मल्टीप्लाई होंगे, उनकी संख्या बढ़ेगी, और जो मिट्टी के जीवाणु हैं वो उनमें मिलके वो असंख्य संख्या में बढ़ेंगे, उनकी कोई गिनती नहीं, इतनी मात्रा में बढ़ते। अब इस घोल को हम 6 दिन से 12 दिन के बीच में स्प्रिंकल के द्वारा और ड्रिप के द्वारा या खुले पानी में पानी के साथ इसको छोड़ दें, एक ड्रम को 1 एकड़ में
3: जी।
2: तो ये पूरे खेत में फैल जाएगा। जब ये खेत में जाएगा तो ये वहां जामुन का काम करेगा, जैसे 1 क्विंटल दूध में 1 चम्मच दही डाल दें तो सारा दूध दही में बदल जाता है, ऐसे ही ये जीवाणु जामुन का काम पूरे खेत में जाके करेंगे, और मिट्टी के जीवाणुओं से मिलके अनेक तरह के बैक्टीरिया वहां पैदा होंगे, अनेक प्रकार के, और ये बैक्टीरिया ही वो हैं जो 78% नाइट्रोजन आकाश में है उसको ये खींचेंगे और ये पौधे की जड़ को देंगे। इसके अतिरिक्त हमें नाइट्रोजन, यूरिया, डीएपी बाजार की जरूरत ही नहीं, नंबर एक। नंबर दो, हमारी धरती में फास्फोरस, पोटास, जिंक, मैग्नीशियम, ये तत्व पहले से ही विद्यमान होते हैं
3: जी।
2: लेकिन ये सारे तत्व धरती में होते हुए अपने आप पौधे के भोजन का निर्माण नहीं करते।
4: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM, आपड़ो रेडियो, आपड़ी बातें।
2: उदाहरण के लिए, बहुत मोटा उदाहरण, हमारे घर में किचन रसोई है, सबके घर में रसोई में नमक भी है, तेल भी है, आटा भी है, दाल भी है, सब्जी भी है, सारी चीज हैं, लेकिन उससे अपने आप भोजन तो नहीं बनेगा,
3: अपने आप तो नहीं बन सकता जी।
2: सारी चीज है लेकिन भोजन नहीं बनेगा। भोजन कब बनेगा? जब हमारी माता बहन उठेगी, वो आटे को परात में डालेगी, पानी से गूंदेगी, चपाती बनाएगी, दाल उठाएगी, सब्जी काटेगी, छौंका लगाएगी, पकाएगी, तभी वो भोजन तैयार होगा खाने के लिए। बिल्कुल जो काम रसोई में हमारी माता बहन करती है, वही काम किसान के खेत में जीवाणु करता है। जो तत्व धरती में है, फास्फोरस है, जिंक है, पोटास है, मैग्नीशियम आदि जो तत्व हैं, वो गांठ बनाए पड़े हैं, उनसे उनको तोड़ के भोजन बनाने का काम पौधे के लिए जीवाणु करता है
3: जी।
2: तो धरती में जितना जीवाणु बढ़ेगा उतना धरती का ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा। लेकिन जो रासायनिक खेती है वो इन जीवाणुओं को मारने का काम करती है। तो यदि लंबे समय आप रासायनिक खेती करते जाएंगे तो आने वाली पीढ़ियों को हम बंजर जमीन बना के देंगे, कुछ नहीं पैदा होगा एक समय के बाद, बिल्कुल कुछ नहीं पैदा होगा। और इसका मैं एक उदाहरण देता हूं आपको। जो मित्र कीट हैं खेती में, किसान के बहुत बड़े मित्र हैं, उनमें एक केचुआ है, अर्थवर्म जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, वो सबसे बड़ा मित्र है। और ऐसे और भी कीट हैं जो मित्र का काम करते हैं। वो मोटा उदाहरण, आप एक खेत से एक केचुए को पकड़ो और यहां उसको लेके आओ, रखो और उसके ऊपर यूरिया डीएपी डाल दो, जिएगा या मरेगा?
3: नहीं जिएगा।
2: सीधा, इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा
3: जी?
2: वो मरेगा। और उसी के ऊपर गाय का गोबर डाल दो तो वो परिवार बढ़ाएगा,
3: बिल्कुल
2: वो स्वस्थ होगा, उसका भोजन मिलेगा। अब इतना स्पष्ट है किसान बंधु के लिए कि हम रासायनिक खेती के द्वारा उन मित्रों को मारने का काम कर रहे हैं। तो बताइए धरती का ऑर्गेनिक कार्बन गुणवत्ता, उसकी फर्टिलिटी कैसे बढ़ेगी? और इस बात को साइंटिस्ट

0: समझेंगे तभी बात बनेगी। और इसके मैं बड़े प्रबल उदाहरण दूंगा, अपने खेत के बिल्कुल प्रबल। इस समय भी हमारे ये मित्र कीट कुछ बचे हुए हैं और वो यूरिया डीएपी कीटनाशक से डरते हुए धरती में नीचे समाधि लिए बैठे हैं। यदि उनका भोजन उनको मिलेगा तो वो अब भी बेचारे अपना काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम नहीं संभले और यूं ही चलते रहे, उनका बीज ही नष्ट हो गया तो फिर जमीन बंजर बनेगी, विनाश का रास्ता दिखाई पड़ता है। एक मैं और मोटा उदाहरण आपको देता हूं। आप तो गांव में रहते हैं
1: जी।
0: मुझे अपार प्रसन्नता और गांव के लोगों के लिए काम करते हैं बहुत खुशी मेरे को हुई। जब किसान घर से अपनी गाय को खोलता है, खूंटे से गाय निकली घर से बाहर और कच्ची जगह पर वो चलती है और चलते हुए एक गोबर यहाँ किया, एक यहाँ किया, एक यहाँ किया और चली गई, ऐसा होता है ना
1: जी? बिल्कुल।
0: आप अब गांव में जाके ये अनुभव करना, वो जो गाय ने गोबर किया है ना, आप 3 दिन के बाद उस गोबर को उलट के देखना,
1: अच्छा,
0: उसके नीचे आपको 2-3 छेद मिलेंगे।
1: अच्छा,
0: उसके नीचे 2-3 छेद मिलेंगे। जो किसान बंधु सुन रहे हैं ना मेरे को, वो इस बात को एकदम स्वीकार करेंगे, ऐसा है। अब गाय ने जब गोबर किया तब छेद नहीं थे वहां, उस समय छेद नहीं था, लेकिन धरती में समाधि लिए जो मित्र जीव बैठे हैं उनको ऊपर उनका भोजन मिल गया, और उसकी गंध पाकर के धरती को फोड़ के वो ऊपर भोजन लेने के लिए आ गए। ऐसे ही जब हम जीवामृत खेत में डालते ना, जो मैंने बताया, और घन जीवामृत डालते हैं, तो ये अर्थवर्म 10 से 12 दिन के अंदर अंदर अपना काम शुरू कर देगा, धरती को फोड़ के एकदम काम शुरू करेगा। और ये जो केचुआ है ये अपने जीवन में हजारों बच्चों को जन्म देता है, और जब मरता है तो पौधे को खाद दे करके जाता है और नया परिवार बढ़ा के जाता है। और भारतीय केचुए में विशेषता क्या है, वो जो हमारा वर्मी कंपोस्ट वाला केचुआ तो विदेशी है, वो तो गोबर ही खाता है, हमारा केचुआ मिट्टी भी खाता है और गोबर भी लेता है, ये दोनों करता है। और ये काम कैसे करता है, ये देखिए, यूं जाता है और दूसरे छेद से आता, इस छेद से जाता, इससे आता, इससे जाता, इससे आता, जिस छेद से जाता उसे वापस नहीं आता, नया छेद बना के आता है। और ये 8-10 फीट तक जमीन में छिद्र बनाते हुए, कैसे छिद्र बनाता है, जब ये नीचे जाता है तो वर्मी वो शरीर से छोड़कर छेद को लीपते हुए जाता है, वो छेद जल्दी बंद नहीं होता
1: जी।
0: और धरती में जो खनिज है उनको खा के पेट से निकाल के पौधे की जड़ को देता, जिसमें अनेक प्रकार के पोषक तत्व हैं जो जमीन की फर्टिलिटी बढ़ाते हैं और पौधे की खुराक देने का काम करते हैं। ये काम करता अर्थपन।
2: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो, आपड़ी बातें।
0: अब जो छिद्र हैं उनसे ऑक्सीजन धरती को मिलता है, उसकी फर्टिलिटी बढ़ती है। और इसका कितना बड़ा काम ये करेगा कि जब आप प्राकृतिक खेती करेंगे, यूरिया डीएपी नहीं डालेंगे, कीटनाशक नहीं डालेंगे, तो ये अपना इतना परिवार बढ़ाएगा कि 1 एकड़ में मेरा खेत जो है उसमें कई लाखों की संख्या में केचुआ काम करता, कई लाख, और रात दिन काम करता, बिना पैसे का मजदूर है
1: जी।
0: वो सारी जमीन को मुलायम बना देता है, नीचे की जमीन को उलट देता, खनिज को नीचे को ऊपर दे देता, ये काम करता है। और जब लाखों केचुआ यही काम करते हैं तो पूरी धरती में छिद्रों का भंडार बनता, ऑक्सीजन से फर्टिलिटी बढ़ेगी, और जब वर्षा आएगी और चारों तरफ मेड़ है खेत के, सारा पानी इन छिद्रों के द्वारा धरती मां के पेट में चला जाएगा, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के लिए करोड़ों रुपए जो सरकार खर्च करती है उसकी कोई जरूरत नहीं। यदि सारी धरती पे प्राकृतिक खेती होगी तो ये बाढ़ आने की नौबत ही नहीं आएगी। अब बाढ़ आती कैसे है, जमीन को यूरिया डीएपी ने पत्थर बना दिया, सख्त कर दिया, मित्र जीव बचे नहीं, छेद उसमें है नहीं, बारिश बरसती है, पानी तेजी से बह करके नदी नालों में जाके बाढ़ आ जाती है, धरती में जाने नहीं पाता, वाटर लेवल डे बाय डे डाउन आ रहा है।
1: बिल्कुल,
0: तो ये विनाश का रास्ता यूं चल रहा है। दूसरा मिश्रा जी, जब ये तो हुई वर्षा का इलाज, पानी जाएगा तो वाटर लेवल ऊपर आएगा, और ये पानी भी कैसा है, स्टीलाइज पवित्र वर्षा जल, धरती में जाएगा तो पीने के लिए भी काम आएगा, खेती के भी काम आएगा, हमारा भूगर्भ भंडार जल का भरेगा। जब अकाल पड़ेगा, जून का महीना होगा, लूएं चलेंगी, बारिश होगी नहीं, ऐसे समय पौधा कैसे बचेगा? तो ये जो छिद्र बनाए है ना, जब धरती तपेगी तो नीचे तो पानी है ना, उसमें वाष्प बनेगी
1: जी।
0: जब वाष्प बनेगी तो वो वाष्प इन्हीं छिद्रों से ऊपर आके पौधे की जड़ की सिंचाई करेगी। अकाल में भी पौधा नहीं सूखेगा। और इसका उदाहरण क्या है, जंगल में जो नियम काम करता वही मेरे खेत में करना चाहिए। जंगल के पेड़ को यूरिया कौन देता है, डीएपी कौन देता है, कीटनाशक कौन देता है, पानी कौन देता है, लेकिन समय पर आकर के वो पेड़ फलों से लद जाते हैं। आप जंगल के किसी पेड़ के पत्ते को तोड़कर लैब में ले जाओ और उसको टेस्ट कराओ, एक तत्व की भी कमी नहीं मिलेगी। जब वहां ये नियम काम करता तो वही नियम हमारे खेत में भी करना चाहिए। इसका नाम है प्राकृतिक खेती। प्रकृति जो काम जंगल में करती वही काम खेत में होना चाहिए, इसका नाम प्राकृतिक कृषि है। तो इसका ये इतना बड़ा लाभ है। इसमें दूसरा, हमें खाद बनाते हैं ये तो जीवामृत है
1: जी।
0: एक है घन जीवामृत, वो क्या है, जब किसान के पास ज्यादा गोबर हो जाए, जीवामृत की जरूरत खेत में ना रहे, तो वो सूखी देसी गाय की एक क्विंटल गोबर की खाद धरती में थोड़ा उसको पीट के बारीक कर ले, उसमें यही चीजें डालनी जो आपने जीवामृत में डाली, उसमें 1.5 से 2 किलो गुड़, 1.5 से 2 किलो किसी दाल का बेसन, 1 मुट्ठी मिट्टी और 5-7 किलो गौमूत्र उसमें मिला के और पशुशाला के कोने पर रख दे, प्लास्टिक से ना ढके, जूट की बोरी से ढक दे, ये घन जीवामृत 6 महीने भी खराब नहीं होता।
1: अच्छा,
0: इसमें जीवाणुओं का भंडार बन जाएगा। जब किसान खेती बीजे तो उससे पहले डीएपी की तरह धरती में इसको डाल दे और उसके बाद बीजे। ये आप ज्यादा कम बढ़ा सकते हैं, कोई खतरा नहीं, 4 से 5 क्विंटल प्रति एकड़ डाल दें तो उत्पादन बहुत बढ़ेगा। और जीवामृत जो है, हर पानी जब देता किसान, हर पानी में जीवामृत छोड़ दे और 15-20 दिन में फसल के ऊपर 10 लीटर पानी में 2 लीटर जीवामृत डालकर उसका स्प्रे कर दे, तीसरे दिन फसल की रंगत बदलेगी। तो ये 2 तरह के हम खाद बनाते हैं। अब शुरू में जब हम रासायनिक से प्राकृतिक खेती में आएंगे तो धरती की ऑर्गेनिक कार्बन कम है, धरती बंजर कमजोर हो चुकी है, तो उसमें कीट पतंग आएंगे। उनके निदान के लिए मैंने एक पुस्तक लिखी प्राकृतिक कृषि, इसमें पूरा विवरण मैंने दिया है। उसमें हम नीमास्त्र, सूंठास्त्र, ब्रह्मास्त्र, अग्निअस्त्र, ऐसे कुछ कीटनाशक बनाते हैं प्राकृतिक, गाय मूत्र में नीम, धतूरा, आग, चिरायता, गिलोय, ऐसी जड़ी बूटियों को पका के रख लेते हैं और उसको पानी में 2 लीटर डाल के, 15-20 लीटर पानी में 2 लीटर डाल के टंकी से छिड़काव करेंगे तो कीट का भी इलाज हो जाएगा। और उसमें जो फंगस वगैरह आती तो खट्टी छाछ, कई कई महीने पुरानी खट्टी छाछ, उसको भी हम पानी में मिलाकर स्प्रे करते हैं तो वो पौधे को ताकत भी देगी और रोगों से भी बचाएगी। इसमें कुछ भी पैसा खर्च नहीं होगा, दोनों घर में किसान बना सकता है। और जब आपकी जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ जाएगा, ताकत उसकी बढ़ जाएगी, तो बीमारी आनी खत्म हो जाएंगी। मेरे 200 एकड़ खेत में कीटनाशक में छिड़कता ही नहीं, ये जो मैंने बताया इसकी भी जरूरत नहीं है। अब बीमारी आना ही बंद होगी मेरे खेत में, और ये जो छिड़काव है ये भी कम हो गए हैं। इतनी जमीन उर्वरक बन गई है कि उसमें मित्र कीटों ने अपना काम इतना कर दिया है कि अद्भुत काम उसमें शुरू हो गया। तो एक तो पद्धति खाद के रूप में तो ये है जीवामृत, घन जीवामृत, और इसके साथ एक है आच्छादन, मल्चिंग। जब हम फसल बोते हैं तो इस प्राकृतिक खेती में एक तो मल्टी क्रॉप करते हैं, एक ही फसल नहीं बोते, एक साथ हम कई कई फसलें बीज देते हैं। गेहूं बोझ दिया तो बीच में चना बो दो, चना उसमें नाइट्रोजन फिक्स करेगा। ऐसे हम एक समय पर अनेक तरह की फसल बोते हैं, और वो एक अब आ गई किसान को लाभ हो गया, मूल फसल बचत में, और ये दूसरी फसल खर्चा निकाल देती है उसका, तो इससे किसान की आय भी बढ़ेगी। और जितना धरती को ढक कर के हम रखेंगे उतना ही जमीन की और का ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा। अब ये जो मल्चिंग है वो क्या है, खेत का जो घास फूस है हम उसको आग लगाते, बिल्कुल नहीं जलाना चाहिए, इसे प्रदूषण भी बढ़ेगा और हमारे जो जीवाणु वो भी मरेंगे, मित्र जीव भी मरेंगे। हम क्या करते हैं, जो भी अवशेष जमीन में से निकलते हैं उनको काट के जब फसल बो दी, फसल को छोड़ के बाकी खाली जगह है उस पे उसको बिछाओ, उसके कितने जबरदस्त लाभ हैं वो किसान बंधु सुनेंगे। नंबर एक, जब हम धरती को ढक देंगे तो साइंटिस्ट भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि जब धरती का तापमान 35 डिग्री से ऊपर होता है तो धरती का ऑर्गेनिक कार्बन उड़ना शुरू हो जाता है, और वो आकाश में जाकर के वायु प्रदूषण ग्लोबल वार्मिंग को जन्म देता है। और हम उसे मल्चिंग करके ढकते हैं तो वो उड़ने नहीं पाता, जमीन की फर्टिलिटी को बढ़ाने का काम करता है, एक काम। नंबर दो इस मल्चिंग का लाभ है कि 50% पानी आपका बच जाएगा, 50% पानी सारे देश की धरती का निकलना बंद हो जाएगा। क्यों, जब हम इसको ढके रखेंगे तो ये जो मल्चिंग है ये आकाश में जो जलीय तत्व है उसको खींचती है और ये जमीन को देती है, तो जमीन की नमी जो है ना वो बनी रहती है,
1: बरकरार।
0: किसान बंधुओं से मेरा निवेदन है कि पौधे को पानी नहीं चाहिए, पौधे को नमी चाहिए, पौधे को पानी नहीं चाहिए, पौधे को नमी चाहिए, और इस मल्चिंग से वो नमी बनी रहेगी। कैसे बनी रहेगी वो किसान बंधु इसको भी समझेंगे। आप अपने खेत में कोई फसल काटते हैं और उसका एक गट्ठा बना करके खेत में डाल देते हैं, जून का महीना है, मई जून का महीना, लुएं चल रही हैं, चारों तरफ पानी कहीं है नहीं, तप रही है जमीन। ऐसे मौसम में जो गट्ठा आपका खेत में पड़ा हुआ है फसल का भार, जिसको बोलते हैं गट्ठा बोलते हैं, वो उस भार को उलट के देखें, उसके नीचे नमी मिलेगी। सब किसान इसको स्वीकार, ये नमी कहां से आई जब चारों तरफ सूखा पड़ा है। ये जो मल्चिंग है, अवशेष हैं, ये आकाश के जलीय तत्वों को खींच के जमीन को देते हैं। तो पानी की 50% 50% जरूरत ही कम हो जाएगी। दो लाभ हो गए। तीसरा लाभ,
3: किसान साथियों, हम लगातार खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को सुन रहे हैं। किसान साथियों, यहाँ पर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ रेडियो टाइम 90.8 FM के साथ छाबुआ की आवाज। रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांटिया भील, रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान, आपू રોજ કરું વાતે ખેતીના બારામાં અને કમાઈના બારામાં એત્રે હમળતા રહેજો ટાંટિયા ભીલનો રેડિયો સ્ટેશન 90.8 FM.

0: उसको अपनी मौत का खतरा है, वो इसलिए अंधेरे में काम करेगा, प्रकाश होते ही वो अंदर चुप बैठ जाता है। यदि किसान मल्चिंग करता, जमीन को ढकता है, तो वो केचवा जो है रात की तरह अनुभव करके मरने के भय उसका खत्म कर दिया, तो वो फिर रात और दिन काम करेगा,
1: डबल शिफ्ट,
0: वो डबल शिफ्ट पे आ जाएगा, डबल शिफ्ट करेगा, और वो किसान की जमीन को ऑक्सीजन भी देगा, खाद भी तैयार करेगा, और वो वर्षा जल का नीचे जाने का भी प्रबंध करेगा, और गर्मी में पेड़ को सूखने भी नहीं देगा। ये अद्भुत काम वो करेगा। और चौथा इसका लाभ क्या होगा कि जो जीवाणु हैं जो हमने गोबर से लिए थे, जिनको खाने के लिए हमने दाल का बेसन दिया था, अब धरती में वो आ गए तो क्या खाएंगे, उनको भोजन तो चाहिए। ये जो मल्चिंग है, घास फूस, ये उसका भोजन है, वो खाएंगे, ज्यादा काम करेंगे, पुष्ट रहेंगे, और इस सारी मल्चिंग को खा के खाद में बदल देंगे, इसको भी खाद में बदल देंगे। और अंतिम पांचवा इसका लाभ क्या है, जो किसान बहुत लेबर लगा करके घास निकालता खेत की, इसके बिछाने से खरपतवार पैदा ही नहीं होगा, क्योंकि उसको सूर्य की धूप नहीं मिलेगी, वो निकलेगा लेकिन पीला पड़ के वहीं खत्म हो जाएगा, उसका बीज ही नष्ट हो जाएगा।
1: अच्छा।
0: और ये खरपतवार की प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। तो ये प्राकृतिक खेती का दोनों तरफ से इस रूप में लाभ मिलता है। जब हम ये करेंगे तो इससे ऑर्गेनिक कार्बन, जो जमीन की फर्टिलिटी, वो बढ़ेगी। मैंने अपने खेत में, मेरे दो खेत थे, एक मैं 50, ये 100 एकड़ की मैंने जो बात की है
1: जी,
0: इसमें मैं प्राकृतिक खेती करता हूं। इसी के साथ बीच में एक पक्की सड़क से इधर हमारा 100 एकड़ का खेत था, जो मैंने भाड़े पे, लीज पे, ठेके पे किसानों को दिया हुआ था,
1: बटाई पे दिया,
0: बटाई पे दिया था। ये किसान बंधुओं के लिए बहुत बड़ा प्रमाण, इसे सुनना चाहिए और अनुभव करना चाहिए कि हम कहां जा रहे हैं। वो जो भाड़े पे, बटाई पे मैंने खेत दिया था, मतलब मैं इकट्ठा पैसा लेता था, बटाई पे नहीं कुछ लेता था मैं। मैंने फिक्स किया था कि मैं 30,000 रुपये पर एकड़ लूंगा, 40,000 रुपये पर एकड़ लूंगा, और मेरा खेत तुम्हारा हो गया। मिश्रा जी, अब से 3 बरस पहले वो सब किसान इकट्ठे होके आए मेरे पास, और उन्होंने कहा, जी हम आपका खेत नहीं लेंगे।
1: अच्छा।
0: छोड़ रहे। क्यों छोड़ रहे भाई? कि जी इसमें कुछ नहीं पैदा होता, हमारा तो खर्चा भी नहीं निकलता, हम तो इसने कर्जा ही बना दिए। मैंने कहा क्यों? कि जी होता ही नहीं पैदा। मैंने कहा मेरे ये खेत और ये तो इकट्ठे हैं, और जब मैंने जमीन दी थी तब नहीं होता था, कि तब तो बहुत पैदा होता था, अब नहीं होता।
1: अच्छा।
0: मैंने गांव के और लोग बुलाए, भाई ये लोग सत बोलते हैं कि झूठ बोल रहे हैं? उन्होंने कहा जी बिल्कुल सच कह रहे, कुछ नहीं होता इनमें, खर्चा नहीं निकलता इनका। उन्होंने छोड़ दिए मेरे खेत। मैंने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के कुरुक्षेत्र में जो डॉक्टर हरिओम की चर्चा की, उनको मैंने बुलाया, मेरे परिचय में भी थे, डॉक्टर साहब किसानों ने मेरा खेत छोड़ दिया और ये कह करके छोड़ा इसमें कुछ लाभ नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूं इसका? उन्होंने कहा जी ऐसे नहीं पता लगेगा, मैं इस पूरे खेत के मिट्टी के सैंपल लूंगा और इनको यूनिवर्सिटी की लैब में भेजूंगा, वहां से टेस्टिंग होने के बाद पता लगेगा भूमि की क्या स्थिति है। उन्होंने सैंपल ले लिए, सैकड़ों सैंपल लेकर भेज दिए। 1.5-2 महीने बाद रिपोर्ट आई, उन्होंने कहा किसी जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन 0.3 पाया, किसी का 0.4 पाया, किसी का 0.5, 0.5 से सब नीचे नीचे था
1: जी।
0: तो उन्होंने कहा जी ये किसान जो कह रहे बिल्कुल ठीक है, इस जमीन की फर्टिलिटी खत्म है, इसमें तो यूरिया डीएपी भरकम डालोगे तो कुछ होगा।

0: नहीं, कुछ नहीं होगा इसमें। मैंने कहा क्या करूं मैं, तो डॉक्टर हरिओम जी ने कागज पेन लेके लिखना शुरू किया, इतना यूरिया, इतना डीएपी, इतना पोटास, इतना जिंक, इतना फास्फोरस, ये और इसमें जो अवशेष होंगे फसल के वो इसी में काटने पड़ेंगे। जैसे धीरे धीरे सालों में ये बंजर हुई है, ऐसे कई सालों में जाके ये उपजाऊ बनेगी। मैंने कहा ये तो बड़ी चिंता का विषय, इतनी जमीन बर्बाद हो गई। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब ये तो बहुत लंबा रास्ता आपने बता दिया, मैं तो अपने ढंग से खेत करूंगा, आप क्या करोगे? मैं कहा ये जीवामृत घनजीवामृत डालूंगा। डॉक्टर हरिओम जी कहने लगे महाराज दुनिया बहुत आगे चली गई, साइंस का जमाना है, गोबर गोमूत्र से क्या बनेगा? साइंटिस्ट मैं हूं या आप हैं? जो मैं कहूं वो करो। मैंने कहा आप वाले कहने से तो ये बंजर हुई है जो इन लोगों ने किया है, तो आप क्या करेंगे? मैं कहा मैं यही करूंगा जो अपनी बाकी खेत में करता हूं, जीवामृत घनजीवामृत डालूंगा। वो कहने लगे इसे कुछ नहीं होगा, आपकी मर्जी, जमीन आपकी, मैंने अपना बता दिया राय, अब जो करना करिए, और वो चले गए।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM, आपरो रेडियो आपरी बातें।
0: मिश्रा जी 3 साल पहले उस बंजर जमीन में मैंने 5-5 क्विंटल घनजीवामृत डलवाया पर एकड़, और उसमें धान की रोपाई की। जब भी पानी देता तो जीवामृत का उसमें घोल छोड़ देता, और 15 दिन बाद जीवामृत का मैंने 10 लीटर पानी में 2 लीटर जीवामृत डाल के उसका छिड़काव शुरू किया
2: जी।
0: फसल लहलाने लगी।
2: अच्छा,
0: इतना बढ़िया हरा भरा खेत। मैंने डॉक्टर साहब को बुलाया, मेरे जानकार थे वो, मैं कहा एक बार आओ आपको करिश्मा दिखाता हूँ। तब उन्होंने 2-3 महीने के खेत को देखा तो उन्होंने कहा खेत तो वही है जिसे सैंपल लिए थे, लेकिन ये इतनी अच्छी फसल कैसे है? तुमने यूरिया डीएपी डाला होगा? मैं कहा ना, एक बूंद भी नहीं, यही डाला बस। तो उन्होंने कहा जब ये फसल कटे तो मेरे को तोल होगा तो मेरे को दिखाना
2: जी।
0: तो उस बंजर भूमि में पहले साल एवरेज 21 क्विंटल धान निकला मेरा, पहले वर्ष। और उसी चीज को मैंने बराबर चलाए रखा, अगले वर्ष उसी जमीन में एक ही साल के अंतर से 28 क्विंटल प्रति एकड़ धान निकला अगले वर्ष
2: जी।
0: अब वो कहने लगा कि भाई ये हो नहीं सकता, ये तो करिश्मा है। तो उन्होंने एक वर्ष के बाद उस मिट्टी के दोबारा सैंपल लिए, उनकी उत्सुकता बढ़ गई। वो भले आदमी है, आध्यात्मिक आदमी है, वो जिद्दी नहीं है, और उन्होंने कहा भाई यदि ये है तो ये तो बहुत
2: कुछ
0: क्रांतिकारी काम
2: है। जी जी।
0: तो उन्होंने उस पूरी जमीन के दोबारा सैंपल लेके फिर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार को भेजे और एक दो जगह भेजे, और वहां से फिर रिपोर्ट आई जिस जमीन का एक साल पहले 0.3, 0.4, 0.5 से नीचे ऑर्गेनिक कार्बन था, उस जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन एक साल में 0.7, 0.8 हो गया।
2: अच्छा।
0: वो कहने लगा हमारी साइंस में तो हो ही नहीं सकता। कभी आज भी पूरे देश का एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के साइंटिस्ट इस बात को मानेंगे नहीं, और वो ठीक है, क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि वो उनकी सिस्टम तो जीवाणु को मारने का काम करता है, उनका सिस्टम तो केचुए को मारने का काम करता है, मित्र कीट को मारने का काम करता है। जो जीव ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने का काम करते वो मार दिए तो ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा कैसे? वो तो ये काम करते हैं। अब हमने जब ये किया तो इससे तो ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने वाले जीव बढ़ गए, तो मेरा ऑर्गेनिक कार्बन एक ही साल में 0.3, 0.4, 0.5 से 0.7 और 0.8 पे गया। तो उसने कहा भाई कमाल हो गया, ये तो अजीब है। और आश्चर्य उनको तब हुआ जब तीसरे वर्ष उसी में 32 क्विंटल एवरेज से धान पैदा हुआ, 32 क्विंटल, और अभी एक महीना पहले ये अब की साल जो कटा है उन्हीं खेतों में 33 क्विंटल प्रति एकड़ पैदा हुआ। और अभी आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि हमारी गुजरात की 4 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं। जब हमारा धान खेत में खड़ा था, दूसरी फसलें खड़ी थी, चारों एग्रीकल्चर के वाइस चांसलर हमारे खेत में कुरुक्षेत्र गए।
2: अच्छा।
0: उन्होंने जाके देखा और ये अनुभव किया कि ऐसी फसल प्राकृतिक में हो सकती हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उन चारों ने स्वीकार किया। उसके बाद उन्होंने अपने और साइंटिस्ट वहां पर भेजे। तो अब मेरी जमीन का, अब उसी जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन अब करवाया है तो वो 0.8, 0.9 और 1 से भी ऊपर चला गया है।
2: अच्छा।
0: 1 से भी ऊपर चला गया। अब स्थिति ये पूरे खेत की हो चुकी है अभी जो किया। इसका एक और अंतिम उदाहरण मैं देता हूं। अब इन साइंटिस्ट में ये देख के आश्चर्य हुआ कि भाई ये कैसे इतना ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ सकता है। जितना ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा उतनी जमीन की गुणवत्ता बढ़ेगी, फर्टिलिटी बढ़ेगी, उसमें रोग भी नहीं आएंगे, हमारी जमीन में खुशबू आना शुरू हो गई। अभी पिछले दिनों वही डॉक्टर बलजीत सारन और उन लोगों की टीम ने एक एक्सपेरिमेंट नया किया। उन्होंने जिला कुरुक्षेत्र की अलग अलग तहसीलों में गए, वो उन तहसील के एक किसान के खेत से मिट्टी ली, दूसरे तहसील के किसान के मिट्टी ली, तीसरे से ली जो रासायनिक खेती करते थे
2: जी।
0: ऐसे 5 किसान उन्होंने लिए जो रासायनिक खेती करते थे, उनकी मिट्टी लेकर के वो आए और उन्होंने सारी 5 किसानों की मिट्टी को इकट्ठा मिला करके यूं मिला लिया और लैब में लेकर रिसर्च किया उस पे, तो उसकी 1 ग्राम मिट्टी में 30,05,000 जीवाणु मिले रासायनिक खेती में। फिर उन्होंने हमारे गुरुकुल कुरुक्षेत्र की मिट्टी को लिया 5 जगह से फिर उसको यूं ही मिलाया और लैब में लेके गए तो उसमें 161 करोड़ जीवाणु मिले।
2: अरे
0: 1 ग्राम मिट्टी में, हमारी 1 ग्राम में 161 करोड़ और रासायनिक में 30,05,000। अब आप ये साइंटिफिक आधार इससे बड़ा क्या होगा? साइंटिस्ट इस बात को तो मानेंगे जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन जितना ज्यादा होगा तभी वो फसल बढ़िया देगी। और ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने का काम मित्र जीव करते हैं, जीवाणु करते हैं, अब रासायनिक तो उनको मारने का काम करती है। और उसके बाद भी इस सिस्टम को जो ना माने तो ये तो किसान के साथ, बेचारे के साथ और लोगों के साथ बड़ी
2: बिल्कुल
0: नाइंसाफी है ना जी। तो ये इतने उदाहरण मोटे मोटे मैंने आपकी सेवा में दिए हैं, मोटी मोटी जानकारी दी है और इसका लाभ क्या होने वाला है जो मैं निवेदन करता हूं। कहने को ये प्राकृतिक खेती है लेकिन एक काम से अनेक लाभ और क्रांतिकारी काम क्या होगा, रासायनिक खेती ग्लोबल वार्मिंग को जन्म देती है और प्राकृतिक खेती ग्लोबल वार्मिंग को समाप्त करने का काम करती है। हवा हमारे अनुकूल बनेगी, पानी जल जीवन है, ये उसको वाटर लेवल को बढ़ाने का काम करेगी। और आज पानी पीने लायक नहीं बचा है, बोतल लिए घूमते हैं
2: जी जी।
0: प्राकृतिक खेती करेंगे तो उसमें जहर नहीं जाएगा तो हमारा पानी आने वाली पीढ़ियों को मिलेगा, स्वास्थ्य प्रदान करेगा। 2 लाभ। तीसरा, प्राकृतिक खेती से जमीन की फर्टिलिटी बढ़ेगी, आने वाली पीढ़ियों को उपजाऊ जमीन दे करके जाएंगे और रासायनिक से उनको बंजर जमीन देखे जाएंगे। चौथा, जो भारतीय नस्ल की देसी गाय है इसका नस्ल सुधार किया जाए और ये गाय चलती फिरती जीवाणुओं की फैक्ट्री है, यदि ये बचेगी तो इसका A2 दूध वो तो मानव के कल्याण पीने के काम आएगा और इसका गोबर गोमूत्र कृषि को बचाएगा, इस समय भारत सरकार 125,000 करोड़ रुपया वार्षिक यूरिया डीएपी पे सब्सिडी देती है। इतना बड़ा धन यदि देश के विकास में लगे तो देश कहां जाएगा?
2: बिल्कुल।
0: और ये 125,000 करोड़ नहीं, फिर किसानी से खरीदता है, ये 200,000 करोड़ का मामला है, और पेस्टिसाइड वो अलग है। कितना बड़ा एक चक्रव्यूह
2: बिल्कुल
0: चल रहा है, इससे निजात मिलेगी। और पांचवा इसका लाभ है कि जिस आहार को जहर वाले को खा के अस्पताल भरे पड़े, मैं सब बंधुओं से निवेदन करके पूछता हूं कि जब रासायनिक खेती नहीं थी 50-60 साल पहले, कोई कैंसर को जानता था? कोई डायबिटीज को जानता था? कोई हार्ट अटैक को जानता था? कोई हाइपरटेंशन को जानता था? ये इतने असाध्य रोग जिनके निदान के लिए अरबों रुपए के मेडिकल बनाए जा रहे हैं, इतना बड़ा सिस्टम खड़ा है,
2: जमीन
0: आदमी बीमार हो करके वहां पड़ेगा, काम नहीं कर पाएगा, परिवार दुखी पर बीमार दुखी, ये सारी से मुक्ति का रास्ता इसे मिलेगा। और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी किसानों की चिंता करें कि किसान खुशहाल हो, किसान उन्नत हो, उसकी आय बढ़नी चाहिए, ये वो विकल्प है जो किसान की आय बढ़ाने की दिशा में काम करेगा। और इसका एक प्रबल उदाहरण, मैं 4 वर्ष तक हिमाचल में भी गवर्नर रहा
2: जी।
0: अंतिम 2 साल में मैंने वहां प्राकृतिक खेती का अभियान शुरू किया। जब मेरे खेत में ये परिणाम आए तो मैंने सोचा इस राजभवन में बैठ के क्या करेगा, इन किसानों के लिए कुछ करना चाहिए। जब एक सिस्टम तूने प्रैक्टिकल कर लिया तो इनका भला होना चाहिए। मैं गांव में घूमना शुरू हुआ और मैंने किसानों को जोड़ना शुरू किया। अंत के 2 साल में मैंने 50,000 किसान प्राकृतिक खेती से जोड़ दिए।
2: अच्छा।
0: और इसको देख करके प्रदेश सरकार ने इसमें पूरी रुचि ली और उन्होंने एक अलग से विभाग स्थापित कर दिया, उसमें एक आईएएस अधिकारी रखे, एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लोन सोलन के डॉक्टर राजेश्वर चंदेल साइंटिस्ट इसमें रखे, और उन लोगों ने समझ के, और मैं लगातार उनसे संपर्क में हूँ। मेरे आने के बाद 1,00,000 किसान नए जोड़ दिए उन्होंने।
2: अरे
0: अब 1,50,000 किसान लगभग प्राकृतिक खेती करते हैं जहर मुक्त। और 12 अप्रैल को पिछली जो अप्रैल गई है इसमें चीफ सेक्रेटरी हिमाचल की अध्यक्षता में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अधिकारियों की बैठक हुई। उन्होंने पूछा भाई ये जो प्राकृतिक खेती आप करते हैं, जो आचार्य देवव्रत चला के गए थे, इसका कोई लाभ हुआ या हानि हुई? तो उन्होंने आंकड़े प्रस्तुत किए।
2: अच्छा।
0: कि इस खेती करने के बाद जो लोगों ने खेती की उनकी 27% इनकम बढ़ गई है। और 56% खेती की लागत कम हो गई। वहां के अमर उजाला अखबार ने इस न्यूज को छापा।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
0: यानी के 27% तो आय बढ़ गई और 56% लागत कम हो गई,
2: वो भी आय बढ़ गई।
0: और माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं किसान की आय दुगनी करने का अभियान चलाया, तो यदि दोनों को जोड़ दें तो डबल की ओर बढ़ गई कि नहीं?
2: बिल्कुल।
0: तो इस खेती में प्राकृतिक में लागत शून्य के बराबर हो जाती और उत्पादन कम होता नहीं, उत्पादन बराबर चलेगा और लागत घट जाएगी तो किसान की आय वैसे ही बढ़ गई।
2: बिल्कुल।
0: अब अंतिम बात मैं करता हूं, अभी जो मेरे खेत में धान की बात मैं करता हूं, 33 क्विंटल एवरेज पैदा हुई है और जो रासायनिक खेती करते हैं उनकी 28 से 30 क्विंटल प्रति एकड़ हुई है। अब रासायनिक वाले ने पानी से भी उसको भर के रखा, मैं पानी भी 50% दिया, उसके 10 से 12 हजार रुपए प्रति एकड़ खर्चाया, मेरा 1 हजार रुपए प्रति एकड़ खर्चाया। उसका उत्पादन 28 से 30 क्विंटल हुआ, मेरा उत्पादन 33 क्विंटल हुआ। अब और ये चीज जाके मेरे खेत में देख लो, आप वहां की मिट्टी टेस्ट कर दो, हमारी फसलों को जाके देख लो। और मजे की बात ये मिश्रा जी, आज कैंसर से कोई नहीं मरना चाहता, आज उपभोक्ता को ये पता लगे कि इस उत्पादन में जहर नहीं है तो वो उसे डबल कीमत में भी लेने को तैयार है।
2: बिल्कुल।
0: और इस समय गुजरात सरकार, हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, आत्मा एग्रीकल्चर, हमारे मनीष भारद्वाज जी जो सचिव हैं, मुख्यमंत्री जी, सब लोग, पूरी प्रदेश सरकार पूरे मनोयोग से इस पद्धति को जनमानस तक किसानों में पहुंचाने का अभियान चलाया। अभी हमने डांग जिला है, इस 19 नवंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं, हमारे कृषि सचिव महोदय, आत्मा के डायरेक्टर महोदय, सब ने उस जिले को प्राकृतिक जिला घोषित कर दिया। भारत का पहला प्राकृतिक जिला वो होगा,
2: यानी हर किसान प्राकृतिक खेती कर,
0: बिल्कुल, उसमें एक भी किसान नहीं बचेगा। वहां यूरिया, पेस्टिसाइड, डीएपी पे प्रतिबंध है, और उसके लिए प्रदेश सरकार ने सहयोग दिया उनको, 1 हेक्टेयर के लिए 1 हजार रुपया प्रति एकड़, वो 10 हजार रुपया प्रति एकड़, हाँ, इतना सहयोग देंगे ताकि उनका मनोबल आए, उनको दिक्कत ना आए, और ये काम शुरू कर दिया। और प्रदेश सरकार ने जो किसान, यहाँ 2 लाख किसानों ने प्राकृतिक खेती शुरू की, और वो जो देसी गाय किसान घर में रखता उसको 900 रुपया महीना प्रदेश सरकार गाय के रख रखाव के लिए दे रही है। तो ये काम यहाँ शुरू होने से किसानों में एक जागृति आई है। अभी हमने 6 दिन का एक शिविर आज ही संपन्न किया है, इस दिसंबर मास में 3-4 शिविर और लगाने हम जा रहे हैं। तो पूरे प्रदेश में प्रदेश सरकार ने एक अभियान चलाया है, और हम किसानों में ये विचार मजबूती से फैला रहे हैं, और हजारों लाखों जो किसान कर रहे हैं उनके जो अनुभव आने लगे बड़े संतोषजनक हैं, और वो बड़े उत्साहित हैं। तो ये कृषि जो है हमारी, ये प्राकृतिक है, जैविक नहीं, रासायनिक नहीं है। इस समय हमारे एग्रीकल्चर से जुड़े साइंटिस्ट कहते हैं कि जी ये खेती साइंटिफिक नहीं है, इस पर वो नहीं हुए हैं शोध, तो हम उनसे आग्रह करते हैं आप शोध करिए, हम तो आपको आह्वान करते हैं। वो उदाहरण देते हैं, लंका ने इस काम को शुरू किया जैविक को, वहाँ बड़ा उत्पादन कम हो गया, दिक्कत आ गई, बिल्कुल ठीक किया उन्होंने, जैविक किया इसलिए उत्पादन कम हुआ, उन्होंने प्राकृतिक नहीं किया इसलिए फेल हुए। प्राकृतिक करें, हमारे टी विजय कुमार चीफ सेक्रेटरी आंध्र प्रदेश रहे, आईएएस अधिकारी, वो हिमाचल आंध्र प्रदेश में पिछले 5-7 साल से इस खेती को करवाते हैं, 5 लाख से ज्यादा किसान उनके साथ जुड़े हुए हैं, और उन्होंने जहां पानी भी नहीं है वहां 3-3 फसल किसानों की शुरू हो गई इस प्राकृतिक, इसी पद्धति से। यदि ये सफल नहीं होती तो 1.5 लाख किसान हिमाचल में क्यों जुड़ता,
2: बिल्कुल,
0: यदि ये ना होती तो हमारे गुजरात में क्यों जुड़ता। 7-8 साल से जो आंध्र प्रदेश में करते हैं वो क्यों जुड़ते। जैविक कृषि को 30 साल से हम करते आ रहे उसे कोई नहीं जुड़ा, क्योंकि वो घाटे का सौदा है, उसमें उत्पादन पूरा होता नहीं, खर्चे कम होते नहीं। तो जैविक कृषि भिन्न है, प्राकृतिक कृषि भिन्न है। हम प्राकृतिक कृषि के अभियान को जनमानस तक पहुंचाने का अभियान चला रहे हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी, केंद्र के कृषि मंत्री जी ने भी संकेत दिया है कि आने वाले समय में इस कृषि को हम बढ़ाकर देश के किसान को खुशहाल बनाना चाहते हैं, और जमीन को फर्टिलिटी बचाना चाहते हैं, पर्यावरण बचे, पानी बचे, गाय बचे, और किसान की आय बढ़े, लोगों को स्वास्थ्य मिले। धन्यवाद।
2: बहुत ही अद्भुत, बहुत अद्भुत, और मुझे लगता है कि
1: है झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
2: मेरे मन में जो सवाल आ रहे थे आप स्वतः उनका जवाब देते चले जा रहे थे। मैं मन में मेरे श्रीलंका शब्द आया और आपने लंका कह दिया, तो इतने सरल तरीके से और इतने बहुत लूसिडली आपने बताया, बहुत धन्यवाद इसका। क्या जो भारत जैसे देश में जहाँ पर छोटी जोत के किसान हैं
0: जी,
2: उनके लिए भी इसका अर्थशास्त्र ठीक बैठता है?
0: इसमें मिश्रा जी, छोटे किसान के लिए तो ये वरदान है
2: जी।
0: कारण क्या है, छोटा किसान वो ट्रैक्टर रखेगा तो बड़ा उसको खर्चा बढ़ेगा, यदि वो गाय रखता है 2-2.5 एकड़ का है तो बैल से करेगा तो मजबूत भी रहेगा, स्वस्थ भी रहेगा, और घर में गाय होगी तो बच्चे दूध पिएंगे, और एक देसी गाय से तो 18-20 एकड़ से भी ज्यादा खेती हो सकती है। उदाहरण के लिए गाय दूध भले ही रोज ना दे, गोबर गोमूत्र तो प्रतिदिन देगी
2: जी,
0: और एक दिन के गोबर गोमूत्र से 1 एकड़ का खा तैयार है, तो 30 दिन के गोबर गोमूत्र से तो 30 एकड़ का तैयार है।
2: बिल्कुल,
0: तो ये तो इतना बड़ा उपकारी जीव है कि इसका उपयोग किया जाए तो छोटा किसान मल्टी क्रॉप करेगा, 1 एकड़ में जब 4-4, 5-5 तरह की फसल एक ही दम लेगा तो उससे उसकी इनकम बढ़ेगी।
2: बिल्कुल,
0: और ये जीवामृत घन जीवामृत जितना डालेगा इसका नुकसान ही कुछ नहीं है, इसका तो लाभ ही लाभ, फर्टिलिटी बढ़ती जाएगी। और आश्चर्य ये कि मेरे जो अपने खेत हैं इस साल उनमें केवल 1 बार जीवामृत देना पड़ा।
2: अच्छा,
0: 1 बार वो इतने बढ़ गए कि वो काटने पड़े हमें, पहले पशुओं को खिलाने पड़े, इतनी बढ़ गए वो, उनको खतरा था ये गिर जाएंगे और फल कमाएगा तो काटना पड़ा, इसलिए क्योंकि उस धरती का ऑर्गेनिक कार्बन 0.9 और 1 से ऊपर चला गया,
2: ऊपर चला गया जी,
0: बीमारी भी नहीं आनी आती, क्योंकि वो बीमारी वहां आएगी जहां कमजोरी होगी। अब ये जो कोरोना आया है, एक्सपर्ट्स क्या बोलते हैं, जिस आदमी की इम्यूनिटी जितनी स्ट्रोंग होगी वो लड़ाई लड़ेगा, जो इम्यूनिटी कमजोर हो मर जाएगा। जब धरती का ऑर्गेनिक कार्बन है तो उसकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रोंग है तो उसको बीमारी आएगी नहीं, जी धरती में यूरिया DAP से उसकी जान निकाल दी, बीमारी तो उसमें आएगी, जो एंटीबायोटिक रोज खाएगा वो कैसे बीमारी से लड़ेगा। तो वही स्थिति भूमि के साथ।
2: बिल्कुल, और ये कैंसर जो वगैरह, ये आपने बिल्कुल सही कहा, एक इत्तेफाक नहीं है कि अचानक
0: ना।
2: इतने सारे हम में से हर इंसान अपने आसपास किसी ना किसी को जानता है जो इससे जूझ रहा हो या जूझ चुका हो, और ये पिछले 8-10 सालों 10-15 साल की ही
0: इसी की देन है।
2: तो बहुत जो आप बात कर रहे हैं वो एकदम जुड़ के सेंस उसका।
0: मिश्रा जी, पंजाब के किसान ने सबसे ज्यादा यूरिया DAP और पेस्टिसाइड का प्रयोग किया। वहाँ भटिंडा एक जिला है
2: जी,
0: वहां से कैंसर ट्रेन प्रतिदिन बीकानेर के लिए चलती है, उसका नाम ही कैंसर
2: एक्सप्रेस जी जी जी,
0: यानी के पूरी भर के चलती, इतना कैंसर पहले कभी नहीं था। तो ये जो खान पान हमारा और स्लो पॉइजन पेस्टिसाइड यूरिया DAP जहर शरीर में जा रहा है उसके दुष्परिणाम।
2: और दूसरी तरफ जो कंज्यूमर है, जो उपभोक्ता है, एक ये तो किसान को फायदे हैं
0: जी,
2: और उपभोक्ता को
0: बहुत बड़ा। और इसी के लिए हमारे जो कृषि सचिव महोदय हैं, कृषि विभाग है, वो बराबर इस मिशन पे लगा है। अब हमने लगभग 100 FPO बनाए
2: जी,
0: और 1 FPO में 300 किसान जोड़ दिए। अब जो छोटा किसान है 2-2.5-4 एकड़ का, वो अपना उत्पाद बेचने जाता बड़ा उसको दिक्कत आती है, अब 300 किसान एक तरह की फसल इकट्ठी बेचेंगे तो उसका भाव उचित मिलेगा, उसकी जो पैसा मूल्य मिलेगा वो प्रॉपर मिलेगा, तो इस दिशा में भी लगातार प्रयास हैं, अनेक जगह संपर्क बनाते जा रहे हैं ताकि इसका किसानों को उचित दाम मिले और उनकी मार्केट की व्यवस्था बढ़िया बन सके। इस पे भी बराबर काम चल रहा है।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
3: किसान भाइयों आज ना इना कार्यक्रम मा खेतीवाड़ी ना इना कार्यक्रम मा आपुए एक विस्तार रूप मा जानियो है कि कम जो आपड़ी खेती आपु करी रहा है आपुए गाय ना गोबर थी लीन शुरुआत करेली अने हमने हमने आपुए हमलियो के जो रासायनिक खातर है यूरिया डीएपी वगैरह आपुए खेतरू मा नाखी नाखी ने तीनों दुष्प्रभाव केवो पड़ियो है तीनों उदाहरण भी आपुए जो कैंसर ट्रेन ना बारा मा हमलियो। तो किसान भाइयों कहीं ना कहीं इना कार्यक्रम थी आपुने ये जो सीख मिली है इनती आशा करूं है कि इना कार्यक्रम ना माध्यम थी आपुने जो भी सीख लेती है ते सीख आपू अपना पड़ोसी किसान भाई ने भी बताड़िए ने सबसे जरूरी है कि आपू अपना जीवन में उतारी के ये जो समस्या आवी रही है आवा वाला समय में जो समस्या हमने आपुए अधिकतर खात नाखी नाखी जो समस्या आपुए आर की मोटी कर नाखी है तीन समस्या नो निदान की कम थाई सके है तीना बारा में भी आपने आज ना कार्यक्रम में चर्चा करी है। तो किसान भाइयों आर की जरूरत है हमून एक बदलाव नी तो आशा करूं है कि आज ना इना कार्यक्रम ना माध्यम थी जो भी आपने शिक्षा ले दी है तीन आपू अपना खेतरों में जरूर तीनों प्रयोग करूँ अने बीजा किसान भाइयों ने भी इन बारा में बताड़ू। हमने समय थी गयो है तमारती विदा लेवानो तमारती फेर काल मुलाकात था है इना समय पर एतरे बनेला रो हमारी हाथे रेडियो टांटा भील 90.8 FM नी हाथे झाबवानी आवाज पर।
4: रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांटा भील रोज हांजे 6 થી 8 વાગે आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान आपू रोज करहू वाते खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा एत्रे हमलता रेजो टांटिया भील नो रेडियो स्टेशन 90.8 FM।
3: नमस्कार किसान भाइयों आशा करी है कि तमो सब हुई खुश हो है तंदुरुस्त हो है अने आपड़ो अने आपड़ी आपड़ा परिवार नो आपड़ी खेती नो आपड़ा वातावरण नो ध्यान असल तरीके थी राखी रहा है। किसान भाइयों रेडियो टांटिया भील 90.8 FM झाबवानी आवाज आपड़ी हरू खेतीवाड़ी कार्यक्रम ने माध्यम थी खेतीवाड़ी थी जोड़ेली घणी खरी जानकारियों ने आपड़ी तक पुगाड़वानो प्रयास करे है। किसान भाइयों आपड़ा नो झाबवाना जेतरा भी आपड़ा मनकू है त्या अधिकतर तेना नो मेन आजीविका नो जो स्त्रोत है त्यो आपड़ खेती ही है। तो किसान भाइयों कहीं ना कहीं आपू देखी त्या हमारे किसान भाई ली दिन कई नी फसलों नी ही खेती कर रहे है। तो रेडियो टांटिया भील 90.8 FM नो यही प्रयास है कि हमारा किसान भाई है वो सिर्फ अपन खेतर ने देखी ने खेती करवानी तरीको नहीं अपनावे बल्कि खेतर ने अलावा भी घनी खरी एवी खेती है जी आपू करी सकी है तो तिनमा हूँ लागे कि कम करी सके अन आपू वाते भी करूँ कि अलग अलग किसान जो समृद्ध किसान है जो थोड़ा सा स्मार्ट किसान है त्या कि कम अलग अलग प्रकार थी काम करी ने तीनों लाभ ली रहा है आप खेती नो लाभ ली रहा है। अगर हमारा किसान भाई अगर आपू जवानी बात करिए तो अपना किसान भाइयों का सबूक डगरा है तो किसान भाई हमने जो जैविक खाद है जीवा अमृत है मटका खाद है ये सारी यह हंगड़ा खातरों जो मांग है वो धीरे धीरे बढ़ी रही है क्योंकि के आपू जानी है कि आपू जो रासायनिक यूरिया वगैरह नो प्रयोग करी है अपना खेतरों में तिनी वजह थी आप खेतरों की जगह जो है धीरे धीरे भट्टाती जा रही है। तो किसान भाइयों आहार की आपू कोशिश करवानी जरूरत है आपू एक प्रयास करवानी जरूरत है कि आपू आप प्रकृति ने भी बसाड़ी साथ ही अगर हमारे कन अलग अलग प्रकार ना साधन है जैसे कि पशु है तो पशु ना आपू तिना अलग अलग प्रकार ना खाद आपू बनाई सकी पर आप किसान भाइयों ने इन्हीं जानकारी नहीं मिले कि यूं खाद कम बनावानु है तो इन्हीं विधियों ने हिकवाहरू आप कृषि विज्ञान केंद्र है तो कृषि विज्ञान केंद्र की मदद थी आपू अलग अलग प्रकार ना जो खातर है त्यू बनावा सकी હીકી શકી સાથી જો ભી જૈસે કે અભી આપું સાંભળી રહ્યા કે આપણી જગ્યા જો ભટાઈ રહી હે અલગ અલગ પરિવર્તન અમારી દવાઈઓ આપું ફસલોમાં નાખી તીન તો અલગ અલગ પરિવર્તન આવે હે તો તેની પરિવર્તનની પુષ્ટિ આપણ કાંતી મળે તેની પરિવર્તનની પુષ્ટિ જો હે આપણા વૈજ્ઞાનિક હે અલગ અલગ અલગ અલગ સંસ્થાઓના અલગ અલગ જિલ્લાના જે વૈજ્ઞાનિક હે કે આપણી જે ભી વાત હે ત્યાં કિસાનો તક પુગાડે અને ત્યાં રિસર્ચ કરે તેની ખોજ કરે ખોજ કરીને તેની બાદ માલમ પડે કે એ હમણે એની દવાથી એ તકલીફ આવી રહી હે ફસલોમાં કઈની દવા નાખવી જોવે ફસલોમાં કેટલી દવા નાખવી જોવે આદિ જાણકારીઓ આપણ એના ખેતીવાડી કાર્યક્રમના માધ્યમથી મળે તો કિસાન ભાઈઓ હું આશા કરી હે કે તમે રોજ આપણા એના કાર્યક્રમને સાંભળી રહ્યા અને સાથે અમને અસર લાગે છે કે કંઈના કંઈના કિસાન ભાઈ અમારી તક ફોનના માધ્યમથી તેના સવાલ હુદા મોકલાવે હે તો અમુક કોશિશ કરી હે કે આપણે જો કેવીકી હે કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર હે તેના માધ્યમથી તેના જ્યાં બી સવાલ હે જેનાની જે બી તકલીફે હે તેમાં કિકમ હું કરવું જોવે અગર આપણા ફસલોના પત્તા કોડાઈ રહ્યા હે યા આપણી ફસલોમાં ફૂલો નહીં આવી રહ્યા હે તો તેના સેવા સમય પર આપણું આપણો કિસાન શું કરી શકે તેના બારામાં બી આપણું આપણે કેવીકીના વિશેષજ્ઞથી આપણું ચર્ચા કરી શકી અને આપણી જો ખેતી હે આપણું આપણો જો હાનિ થઈ રહી હે તેની બી આપણું વસાડ કુછ હદ તક આમ આપણું તેને વસાડી શકીએ તો કિસાન ભાઈઓ આજના એના કાર્યક્રમમાં આપણું વાત કરું વેસે તો ઘણી પ્રકારની ખેતીઓ થાય હે લેકિન આજ આપણું વાત કરું કે મોટા અનાજની ખેતી ક્યાં આવતી હે હા કિસાન ભાઈ આપણું વાત કરું કે જો મોટું અનાજ કુનાન કે મોટું અનાજ વહી અનાજ હે જો કે આપણ પૂર્વજ જે હતા ત્યાં કરતા આવતેલા તો હમણે જો આપણ મક્કી હે જ્વાર હે બાજરા હે ઓર બી અલગ અલગ જો મોટા અનાજ હે તેમાં શું છે કે અધિકથી અધિક પૌષ્ટિક આહાર હે એ અનાજમાં આપણું કમથી કમ રાસાયણિકમાં બી અનાજ આરામથી પાકી જાય હે તો એના અનાજમાં ઘણી ખરી પૌષ્ટિક તત્વો હે તો તેના અનાજને બી આપણે લેવાનું અને એની ખેતી કેમ કરવાની ઓર સાથે આપણું યું જાણવું કે હમણે એના મોટા અનાજની બજારમાં જો માંગ બળી રહી હે વો કેટલી માંગ હે અગર આપણ માલમ પડે કે કંઈના કંઈની સબ્જીની કંઈની કંઈની ફસલની માંગ કેટલી બળી રહી હે તેના હિસાબથી આપણે ખેતી કરી શકીએ ને અધિકથી અધિક મુનાફો લઈ શકીએ તો કિસાન ભાઈઓ આજના એના કાર્યક્રમની આપણે આથી શરૂઆત કરી હે અને આજના એના કાર્યક્રમમાં હજુ જાણવું કે કેમ આપણે કઈની કઈની પ્રકારની કૃષિ કરીને આપણું વધુથી વધુ ફાયદો લઈ શકીએ અને કિસાન ભાઈઓ હું આશા બી કરી હે કે આપણું જો બી જાણકારી આપણું મળી રહી હે એની જાણકારીને આપણું આપણા સાથી કિસાનને બી વતાડીએ સાથી કિસાનને બી આપણું વતાડીએ કે ભૈયા એ જાણકારી આપણ ખેતીવાડી કાર્યક્રમ આપણ રેડિયો ટાંડિયા ભીલ 90.8 FM માધ્યમથી આવે હે તો એના કાર્યક્રમને સાંભળીને જે બી આપણી ખેતરમાં સમસ્યાએ હે જો બી અલગ અલગ પ્રકારની બીમારીઓ આપણા ખેતરોમાં આપણી ફસલોનું આવે હે તેનથી આપણું કિકમ વસી શકીએ અને કમથી કમ પૈસા કિકમ લગાડી કેમ કે આજના સમયમાં આપણું દેખીએ તો ખેતરોમાં ઘણા પૈસા લાગી રહ્યા તો તેની આગળ લાગત જો હોય તેને આપણું કિકમ કમ કરી શકીએ તો કિસાન ભાઈઓ આજના એના કાર્યક્રમની આપણું શરૂઆત કરીએ
4: રેડિયો સ્ટેશન 90.8 FM ટાંટિયા ભીલ રોજ સાંજે 6-8 વાગે આપણી સમસ્યા અને આપણો સમાધાન આપું રોજ કરું વાતે ખેતીના બારામાં અને કમાઈના બારામાં એત્રે હમળતા રહેજો ટાંટિયા ભીલનો રેડિયો સ્ટેશન 90.8 FM
5: से पहले मैं आपसे मोटे अनाजों के बारे में जानना चाहूंगी अक्सर हम इस समय सुन रहे हैं और काफी जोर दिया जा रहा है मोटे अनाजों को लेकर तो क्या अहमियत है इनकी हमारे आहार का हिस्सा ये बने ये क्यों जरूरी है
6: देखिए अगर हम बात करें आज से मतलब 30 साल पहले की
5: जी
6: तो हमारे देश में जो खेती होती थी मोटे अनाज की खेती होती थी मोटे अनाज मैं बताना चाहूंगी क्या क्या हमारे हैं मक्का है आपका जौ है रागी ज्वार है बाजरा है रागी है कोदो है और भी छोटे अनाज हैं जो इनकी
5: श्रेणी
6: में आते हैं
5: बिल्कुल
6: तो इन्हीं की खेती हमारे यहाँ पे होती थी पर 60 के दशक के बाद क्या हुआ कि हम जैसे चावल और गेहूं की खेती करने लगे और इनको हम भूल गए एक तरीके से
5: जी।
6: तो अब इसका दोबारा से चलन क्योंकि विश्व इसकी वैश्विक मांग इतनी ज्यादा हो रही है कि मोटे अनाज का हमें अपने भोजन में शामिल करना चाहिए क्योंकि ये पोषणता की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है
5: जी।
6: तो इसीलिए अब इन पे इतना ध्यान दिया जा रहा है कि मोटे अनाजों को भी अपने हम भोजन में शामिल करें, गेहूं चावल के साथ साथ। हमें ये नहीं कि एक ले लिया तो दूसरे को हटा दिया, हमें इन सबको सम्मिलित करके चलना है। तो हम एक अपना कहते हैं ना, जो बात करते हैं कि अगर हमें, क्योंकि विविधीकरण ही एक तरीके का ये है, और विविधीकरण से ही आपकी जो दुगनी आय की जो हमारा सपना है वो भी पूरा हो सकता है। तो इसलिए इसकी महत्वता और बढ़ जाती है मोटे अनाज का हमारे भोजन में और हमारी खेती में इस्तेमाल होना।
5: बिल्कुल, तो काफी महत्ता है मोटे अनाजों की और इसके प्रसंस्करण से किसान किस तरह से दोहरा लाभ ले सकते हैं, इसके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं एक रिपोर्ट पर।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो, आपड़ी बातें।

0: पोषक तत्वों से भरपूर मोटे अनाज न सिर्फ आपकी सेहत को दुरुस्त करते हैं बल्कि किसानों की आमदनी को दोगुना करने में भी मददगार साबित होते हैं। हमारे यहाँ मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में मोटे अनाजों की खेती की जाती है। इनके अलावा ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में भी मोटे अनाज उगाए जाते हैं। सरकार मोटे अनाजों की खेती और इसके प्रसंस्करण को बढ़ावा दे रही है। मोटे अनाजों में बाजरा, ज्वार, रागी, कांगनी, कोदो, कुटकी, जीना, सावा, ब्राउन टॉप मिलेट, टेफ्र मिलेट और फोनियो मिलेट आते हैं। लोगों के खान पान की आदतों में आए बदलाव और स्वास्थ्य कारणों से मोटे अनाजों से बनाए जा रहे खाद्य उत्पादों की मांग भी तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में मोटे अनाजों का प्रसंस्करण कर कई तरह के उत्पाद बनाए जा सकते हैं। जौ, बाजरा और रागी से बिस्किट, चिप्स और नमकीन बना सकते हैं। मोटे अनाज से छोटे बच्चों के लिए भी भोजन बनाया जा सकता है। मोटे अनाज में मूल्य संवर्धन करके इनसे रोटियां भी बनाई जा सकती हैं और इन रोटियों को करीब 6 महीने तक इस्तेमाल किया जा सकता है। ज्वार से चॉकलेट, मफिन्स, पानी पूरी, बर्फी और समोसा बना सकते हैं तो बाजरे से मुठिया, लड्डू और रागी से बालूशाही और पकौड़ी बनाई जा सकती है। इस तरह मोटे अनाज का प्रसंस्करण करके आप कई तरह के उत्पाद बनाकर अपनी आमदनी में इजाफा कर सकते हैं।
1: जी हाँ, तो ये रिपोर्ट आपने देखी। आइए अब आगे बढ़ते हैं बातचीत को आगे बढ़ाते हुए, अगले मेहमान का रुख करते हैं। डॉक्टर श्रीवास्तव, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आज हम लाभकारी कीटों की बात करने जा रहे हैं, तो ये कौन से लाभकारी कीट हैं, इनके बारे में बताएं, क्योंकि कीट का जिक्र आते ही किसानों को एक दहशत सी हो जाती है क्योंकि फसलों को काफी नुकसान होता है कीटों से, लेकिन कुछ कीट लाभकारी भी होते हैं, तो वो कौन से कीट होते हैं बताएं।
2: जी बिल्कुल, हमेशा ये सोचते हैं कि किसान कि अगर खेती बाड़ी करनी है तो हमेशा एक हानिकारक कीटों की बात करते हैं
1: जी।
2: लेकिन दूसरी बात ये है कि अगर हम हमेशा खेती बाड़ी में कीड़ों की समस्या की बात करते हैं तो कीड़ा एक इकोसिस्टम है, एक पर्यावरण है। जैसे हर जगह पर हर तरह के प्राणी होते हैं, हर पेड़ पर कई तरह के जीव रहते हैं, उसी तरह से हर इकोसिस्टम में, हर खेत में हर तरह के कीड़े रहते हैं। उनमें कुछ कीड़े ऐसे होते हैं जो कि परभक्षी कीट होते हैं, कुछ ऐसे कीट होते हैं जो कि परागण क्रिया में बहुत मददगार होते हैं। अगर हम उन सभी कीटों को हटा देंगे तो क्या होगा कि जिनको हम हानिकारक कीट समझ रहे हैं वो मर जाएंगे, तो उनकी अनुपस्थिति में जो हमारे उपयोगी कीट है वो भी मर जाएंगे और हमारी जो आमदनी है उस पर असर पड़ेगा, क्योंकि हम लगातार जहर वाले जो पेस्टिसाइड है वो डालते जा रहे हैं, जहर बढ़ा रहे हैं। यानी आमदनी की दुगना करने की बात करें, लेकिन अगर हमारे खर्चे बढ़ते रहेंगे क्योंकि पेस्टिसाइड बहुत महंगे आते हैं, और दूसरा हमारा जो पर्यावरण है वो भी दूषित होता जाएगा, और जो भी प्रोड्यूस हम पैदा कर रहे हैं वो भी हमें खाने में जहरीला होगा, यानी कि हम मानव शरीर के स्वास्थ्य के प्रति भी लापरवाही बरत रहे हैं। और दूसरा, जब हम बात करते हैं कि हमें आमदनी दुगनी करनी है, दुगनी कैसे करेंगे, तो हमारे पास बहुत सारे लाभकारी कीट है। जैसे अभी आप बता रहे थे कि खेती करनी चाहिए मंडुए की और जितने भी हमारे फॉर्मुलेट्स है ना
1: जी।
2: अभी हम खेती के साथ में मधुमक्खी पालन करते हैं तो हमारे साथ एक साथ दो इनकम के जरिए होंगे। और दूसरा, अगर हम रेशम कीट पालन करते हैं तो हम रेशम उद्योग आगे बढ़ा सकते हैं
1: जी।
2: परागण कीटों की हम जो बात करें, अगर फूलों वाली कोई भी फसल है, चाहे वो सरसों है यानी कि तिलहन है, दालें हैं, फल है, सब्जी है, अगर परागणकर्ता कीट वहां भ्रमण नहीं करेंगे तो फूलों में क्रिया नहीं होगी और परागण क्रिया नहीं होगी, उसकी अनुपस्थिति में कोई भी फल पैदा नहीं होगा, तो समझिए डायरेक्ट लॉस है
1: जी। बिल्कुल डॉक्टर श्रीवास्तव, आपने बहुत अच्छी बात कही है कि जो कीट है वो हानिकारक ही नहीं होते हैं बल्कि कई कीट लाभकारी भी होते हैं, ये उत्पादकता के लिए भी अहम है और इसके साथ ही किसानों की आमदनी को भी बढ़ा सकते हैं, तो इनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं एक रिपोर्ट पर।
0: कीटों का नाम सुनकर अक्सर हमारे दिमाग में फसलों के नुकसान की बात ही आती है, लेकिन ऐसा नहीं है। सभी कीट फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले नहीं होते। कुछ कीट

0: फसलों के दोस्त भी होते हैं, जिन्हें मित्र कीट कहा जा सकता है, और खेती में इनका अपना एक अलग महत्व होता है। बता दें कि विश्व की लगभग 90% जंगली फूलों वाली पौधों की प्रजातियां परागण के लिए कीट पतंगों और जानवरों पर निर्भर करती हैं। विश्व की करीब 75% से ज्यादा खाद्य फसलों और वैश्विक कृषि भूमि का 35% परागण इनसे जुड़ा हुआ है। इस तरह से ये कीट पतंगे जैव विविधता में अहम भूमिका निभा रहे हैं। मधुमक्खी की बात करें तो मधुमक्खियों का परागण फसल उत्पादन के लिए एक महत्वपूर्ण कारक होता है। मधुमक्खियां काफी फसलों में पराग कण के रूप में काम करती हैं, जिससे बीज उत्पादन में वृद्धि होती है। बीज बड़े हो जाते हैं, बीजों के कारण बीजों की सुगंध, फलों में सुगंध और पोषक तत्व, विभिन्न फसल के पौधों में वृद्धि, हरे चारे का उत्पादन, फूलों में नॉक्टर्स और तेल बीज फसलों में तेल की मात्रा बढ़ जाती है। करीब 80% फसलें क्रॉस परागण पर निर्भर हैं, जिनमें अन्य कीटों के साथ साथ मधुमक्खियों का योगदान सबसे ज्यादा रहता है। बता दें कि चेरी, बादाम, अंगूर, लीची, मूली, खीरा, प्याज, सरसों और कपास फसलों का उत्पादन केवल मधुमक्खी परागण के कारण 50% से ज्यादा बढ़ जाता है। मधुमक्खियों के अलावा पतंगे भी फूलों के बीच पराग को ढोने का काम करते हैं। अन्य कीट परागणकों में ओवलेट मॉथ, अंडरविंग मॉथ और जियोमीटर मॉथ शामिल है।
1: तो ये रिपोर्ट आपने देखी। आइए एक बार फिर से डॉक्टर श्रीवास्तव का रुख करते हैं और इन मित्र कीटों के बारे में जानते हैं। डॉक्टर पूनम श्रीवास्तव, हमें मित्र कीटों के बारे में और भी जानकारी दें कि कौन कौन से होते हैं ये मित्र कीट और किस तरह से इनके लिए एक अनुकूल वातावरण बनाया जा सकता है।
2: देखिए, मित्र कीटों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जरूरी ये बात है कि हम पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कम करें
1: जी।
2: हम हमेशा खेती बाड़ी की उपज को बढ़ाने की बात करते हैं, बहुत सारे फर्टिलाइजर, बहुत सारे पेस्टिसाइड हानिकारक कीटों के लिए करते हैं, पर उन हानिकारक कीटों के साथ साथ हमारे जितने भी परभक्षक कीट है वो भी बढ़ जाते हैं
1: जी।
2: अगर परभक्षक कीट खत्म हो जाएंगे तो फिर कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि हमें जहर डालना ही पड़ेगा। तो हमें जब भी हम किसी भी फूलों वाली कोई भी फसल या सब्जी उगा रहे हैं और वो फूलों की अवस्था में है तो कोई भी कीटनाशक को नहीं डालना चाहिए
1: जी।
2: दूसरा, बॉर्डर लाइन जितनी भी होती है वहां पर जो घास होती है वो मित्र कीटों को बढ़ावा देती है। तो अगर हम कहें संरक्षण हमें करना चाहिए तो हमें उन कीटों का संरक्षण आसानी से कर सकते हैं
1: जी।
2: साथ ही में बहुत से लोग मधुमक्खी पालते हैं, तो अगर मान लीजिए आपकी सरसों लगी, जैसे अभी आने वाले समय में सरसों का सीजन आने वाला है, जो अर्जी वैरायटीज है उत्तरा वो अभी शुरू हो जाएंगी, अक्टूबर में आना शुरू हो जाएंगे, तो जहां भी ये खेती बाड़ी है मधुमक्खी के बक्से रखे हैं तो किसानों को उसको बढ़ावा देना चाहिए
1: जी,
2: ताकि उनकी पैदावार बढ़े। आपको आश्चर्य होगा कि अगर हम परागणकर्ता कीटों को अपने खेतों में आने देंगे या हमारे खेत के 3 किलोमीटर के दायरे में कोई भी परागणकर्ता कीट है तो उससे उपज 2 से 4 गुना बढ़ सकती है।
1: बिल्कुल, तो ये महत्व है परागणकर्ता कीटों की। इसके बारे में और भी विस्तार से जानेंगे आपसे आगे डॉक्टर श्रीवास्तव। इस
3: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो, आपड़ी बातें।

0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: किसान भाइयों, हमने आपू एक सुंदर सू प्यारू सू गीत ने सांभ्यू। इना गीत ने बाद आपू अपनी जो खेतीवाड़ी कार्यक्रम नो चर्चा है तेनी चर्चा ने आगे बढ़ाता जाइन जानिए हजू महत्वपूर्ण बातों ने कि कम हजू आपू अपनी खेती ने कि कम सुधारी सकी, साथ ही जो अलग अलग सरकार की योजनाएं हैं तीनों भी लाभ आपू कि कम उठाड़ी सकी।
2: बहुत, क्योंकि कोई भी काम करने के लिए पूंजी की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है
3: जी।
2: तो इसमें हाँ, सरकार की तरफ से अनुदान की है आपका, जैसे हमारा खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय ही बनाया हुआ है, उनकी तरफ से अनुदान आपको मिल सकता है। पर आपका अनुदान का आपका राशि देखने की, अगर आपका आप एक छोटी इकाई लगाना चाहते हैं तो उसके लिए भी अनुदान की अलग सुविधा है। जैसे खादी ग्राम उद्योग है, वहां से आपको छोटी इकाई के लिए मिल सकता है। बड़े उद्योग के लिए जाते हैं तो हमें खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के उद्योग से ये जो है मदद मिल सकती है। और यही नहीं, आपके नजदीकी जो भी बैंक हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, वहां पे भी आपकी कई योजनाएं हैं बैंक की। आपको 50,000 रुपए से लेके 10 लाख तक का वो लोग ऋण देते हैं, और कम मतलब ब्याज दरों पे, खासकर किसानों के लिए, हमारी किसान महिलाओं के लिए, ताकि वो अपना कोई काम शुरू कर सके। तो आप किसी भी योजना से इसके जो आपका जो आपने ऋण लेना है, इकाई शुरू करनी है, तो आप लाभ उठा सकते हैं।
3: बिल्कुल। और इस योजना का लाभ उठाने के लिए प्रक्रिया क्या है डॉक्टर रितु?
2: ये सबका थोड़ा सा अलग अलग है। जैसे मंत्रालय की बात करें तो आपको वहां पे जो भी आप काम एक शुरू कर रहे हैं उस पे आपने काम शुरू करना, एक तो वो भी मंत्रालय ने किया है कि एक जिला एक उत्पाद
3: जी, बिल्कुल।
2: तो उस योजना के तहत भी आप कर सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। तो उसमें आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, मतलब पंजीकृत करना पड़ेगा उस वेबसाइट पे, और फिर वहां पे आप उनको एक प्रोजेक्ट बना के देना होगा, और फिर आपको जो भी जरूरत होगी उसके हिसाब से आपका इंटरव्यू लिया जाएगा और आपको अनुदान मिल जाएगा। ऐसे ही बैंक में, अगर आपके पास में बैंक है तो आप बैंक में भी जाके भी अपना, आपको कार्य रूप तो देना पड़ेगा कि आप क्या करना चाहते हैं, क्या क्या उसमें मशीनों की आवश्यकता पड़ेगी और मशीनों से आप क्या क्या फायदा ले सकते हैं। तो ये आपको उनके कार्य रूप एक देना पड़ेगा ताकि वो उसके हिसाब से आपको ऋण दे सके।
3: बिल्कुल। खाद्य प्रसंस्करण से जुड़ी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। और डॉक्टर ऋतु, आपने बताया जैसे मोटे अनाज जो है वो बहुत ज्यादा पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, पौष्टिक होते हैं, ऐसे में जबकि हम इस देश में कुपोषण की समस्या से भी जूझ रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि कुपोषण से जंग में ये एक अहम हथियार का की जो भूमिका है वो निभा सकता है?
2: बिल्कुल निभा सकते हैं। कभी अगर पिछले साल 2021 के अगर आंकड़ों की बात करें कुपोषण की, तो लगभग हमारे देश में 33 लाख बच्चे जो है कुपोषण से ग्रसित है, और इसका जैसे जस्ट हाफ आधे बच्चे मतलब गंभीर रूप से कुपोषण से ग्रसित हैं
3: जी।
2: तो एक ये बहुत बड़ी ढाल का काम आपका कर रहा है मोटे अनाज, क्योंकि इनमें ऐसे कई पौष्टिक तत्व हैं जो कि हमारे और अनाज में नहीं मिलते
3: जी।
2: जैसे अगर हम बात करें खनिज की, तो खनिज आपके कैल्शियम की, जो कि हड्डियों के लिए बच्चों के बढ़वाने में बहुत आवश्यक होता है, गर्भवती महिला को आवश्यक होता है क्योंकि उसको अपने लिए और अपने बच्चे के लिए देना होता है, अगर वो उसको नहीं मिलता है भोजन से तो वो उसको खुद कमजोर होगी, आगे जो उसका आने वाला बच्चा होगा वो कमजोर होगा। तो ऐसे हमारे मोटे अनाज जैसे आपका रागी है, रागी कैल्शियम

0: बाजरा, जौ, मक्का, इन सब में बहुत अच्छे से पाया जाता है। ज्वार और बाजरा, इनमें तो बहुत अच्छी मात्राएं पाया जाता है
1: जी।
0: तो अगर इनका इस्तेमाल होगा तो ये जो कुपोषण की समस्या है ये हमारी काफी हद तक इसे निजात पा सकते हैं। बस जरूरत है इनको अपने भोजन में, हमें अपने भोजन में शामिल करने की।
1: जी बिल्कुल। और धारणा ये है कि जो मोटे अनाज है स्वाद में शायद आपको इतने अच्छे ना लगे, तो ऐसे में खाद्य प्रसंस्करण की भूमिका और बढ़ जाती है, क्योंकि इससे जो जो उत्पाद है वो और ज्यादा स्वादिष्ट बन जाते हैं। तो कैसे बनते हैं, किस किस तरह के उत्पाद है, इसके बारे में विस्तार से बातचीत करेंगे। साथ
2: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
3: किसान भाइयों, हाँ बापू, चर्चा करिए कि जो आपड़ मक्की है, ज्वार है, बाजरा है, इन्हें इना हांगड़ा अनाजू ने मोटा अनाज केम के अन इनो हूँ फायदो है। अन हाव अगर आप देखी कि हाव जो बाजारों में इनी मांग जो बढ़ी रही है वो कि कम बढ़ी रही है।
0: मोटे अनाज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी खेती में हमें ज्यादा मेहनत या मशक्कत नहीं करनी पड़ती।
1: अच्छा,
0: ये आपके बड़े कहेंगे कठोर फसलें हैं, आपके विषम परिस्थितियों में भी उग जाते हैं, यानी कि इनको पानी की आवश्यकता कम होती है, यानी जहाँ सूखा है जहाँ सूखा आपका क्षेत्र होता है वहां पे आप इसकी खेती कर सकते हैं, तो इसीलिए इनको मोटा अनाज कहा जाता है, मतलब रफ एंड टफ।
1: जी,
0: तो
1: पानी वाली जो जगह है
0: हो सकते हैं,
1: क्षेत्र है वहां पर भी इसकी खेती की जा सकती है।
0: वर्षा आधारित, जहाँ पे वर्षा निर्भर रहते हैं वहां पे भी कर सकते हैं। तो और तो जलवायु के हमारे उस पे आधार पे, मतलब बहुत अच्छे, जो हम बात करते हैं अपने क्लाइमेट रेजिलिएंट की, तो उसमें ये बहुत फिट बैठते हैं, मतलब हमारे लिए कहेंगे कि सुटेबल है, तो इसलिए इनको मोटा अनाज कहा जाता है
1: जी।
0: और जैसे बात करें कि किसानों के लिए कैसे फायदेमंद हो सकता है, जैसे किसान भाई बात करें आपके गेहूं और चावल की, इनकी पैदावार में हमें मतलब 120 से 150 दिन लग जाते हैं, जबकि आप मोटे अनाज की आप खेती करते हैं तो ये 70 से 100 दिन में तैयार हो जाता है।
1: अच्छा,
0: तो और साथ ही साथ जैसे आपने गेहूं अनाज से फसल को लेके बेचा, पर आपने मोटे अनाज में आपको एक तो खाद्य के रूप में आप जो मिल रहा है आपको उपज खाद्य में ले सकते हैं, दूसरा जो आपका बचत बचता है वो चारे में जाता है, तीसरा आप ईंधन में।
1: अच्छा।
0: और फिर इसके औद्योगिक इस्तेमाल भी हैं, स्टार्च बनाने में, जैसे मक्का है स्टार्च इंडस्ट्री के लिए बहुत उपयोगी है।
1: अच्छा।
0: वहां सबसे मेन आपका मक्का ही मांग की जाती है। आपका और भी चीजें हैं, इंडस्ट्रियल उत्पाद है जो कि हमारे जैसे जौ है, इसका अल्कोहल में काम होता है, उसमें भी इस्तेमाल होता है। तो ये काफी औद्योगिक दृष्टि से देखा जाए तो एक विविधीकरण के लिए रास्ता खोलते हैं मोटे अनाज हमारी खेती में, तो इसीलिए किसानों के लिए इनकी खेती महत्वता और अनाज के साथ महत्व रखती है।
1: बिल्कुल डॉक्टर, तो आप बता रही थी कि किस तरह से जो किसान हैं उनके लिए मोटे अनाजों की खेती बेहद लाभकारी हो सकती है, एक तो कठोर परिस्थितियों में भी इनकी खेती की जा सकती है और इसके कई तरह के उत्पाद भी बनाए जा सकते हैं और इसके इस्तेमाल कई जगहों पर है, तो आमदनी का जो जरिया है किसानों के लिए वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। अब इनके खाद्य प्रसंस्करण पर आते हैं, जैसा कि मैंने कहा था कि जो मोटे अनाज है लोगों की धारणा है कि खाने में इसके उतना स्वाद नहीं है, तो ऐसे में बताएं कि प्रसंस्करण की महत्ता कितनी है, खासतौर पे बच्चों के लिए आपने बताया कि बहुत ये महत्वपूर्ण है, तो कैसे उनके लिए दिलचस्प बनाया जाए।
0: जी, तो जैसे पहले जैसे मोटे अनाज का हमारे खाने में खिचड़ी, रोटी, दलिया इनके रूप में होता था, पर अब जैसे क्योंकि पौष्टिकता की दृष्टि से ये काफी अच्छे हैं और सभी को, सभी वर्ग के लिए बहुत अच्छे मदद है, और खासकर बच्चों और महिलाओं के लिए बहुत जरूरी, तो बच्चों में इसका खान पान कैसे, मतलब इसका बढ़ाया जाए कि बच्चे इसको पसंद करें, तो कई प्रकार के इसके उत्पाद अब बनने लग गए हैं, मतलब नाश्ते के रूप में, आपका उपमा के रूप में सूजी इनकी बन जाती है, और आपका इनका बिस्किट जो कि बच्चे बहुत पसंद करते हैं, बिस्किट भी नहीं, हम जैसे बाजरे का, हमारा ये उत्तरी भारत का जो क्षेत्र है बाजरे का क्षेत्र है, तो यहाँ पे बाजरे का प्रसंस्करण में हमने बाजरे के बिस्किट पे प्रशिक्षण आयोजित किया था, तो एक महिला ने ये उद्योग शुरू किया, तो 15 प्रकार के उन्होंने बिस्किट बनाए, तो उसमें बच्चों के लिए भी बिस्किट बनाए, और वो खासकर बच्चों के लिए, बच्चों द्वारा बहुत पसंद किया, क्योंकि उसमें थोड़ा सा चॉकलेट डाल दिया गया।
1: अच्छा।
0: तो बच्चों को स्वाद में बहुत अच्छा आया, तो यही इन मोटे अनाज का ब्रेड, आपका केक, इस तरीके से उत्पाद है, और यही नहीं है, जैसे हमारा नूडल्स वगैरह आते हैं वो भी इनसे बन जाते हैं, पास्ता जो अगर हम विदेशी खाने पे जाएं तो पास्ता भी बनता है इस मोटे अनाज से, तो इसकी मशीन भी आ गई है, और हमारा एक संस्थान है हैदराबाद में इसी का, कदन्य फसलों, इनको मोटे अनाज को हम कदन्य फसलें ही बोलते हैं, तो हैदराबाद में इसका संस्थान है जो इन्हीं सभी फसलों पे काम करता है और उसके

0: प्रसंस्करण पे भी काम करता है, क्योंकि जैसे बात हम कर रहे हैं प्रसंस्करण की कि खेती में आपको तभी फायदा होगा कि अगर आपने जब उसको कोई नया रूप दे दिया, खाली अनाज को निकाल के बेचने से ज्यादा फायदा नहीं है, आपने अगर अनाज का मूल्य संवर्धन कर दिया, वैल्यू एडिशन कर दिया, तभी आपको फायदा मिलेगा। बाजरा का दाम जैसे देख रहे थे कि 1500 से 2000 के रूप में जाता है क्विंटल पर, वही अगर बाजरा बिस्किट जाएंगे तो वो आपको 4 गुना तक ज्यादा चला जाएगा। तो ये मूल्य संवर्धन भी हो जाएगा, एक कुपोषण की जो हमारी समस्या है वो भी कम हो जाएगी, और हमारे जो स्वास्थ्य है वो भी, उसमें भी लोगों में सुधार आएगा।
1: बिल्कुल।
2: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें
1: करना चाहूंगी और रेशम कीट पालन के बारे में आपसे जानना चाहूंगी।
3: जी, अगर हम लाभकारी कीटों की बात करें तो पहला आता है मधुमक्खी पालन और दूसरा है रेशम कीट पालन।
1: जी।
3: बहुत सारे जितने भी हमारे दक्षिण भारत के राज्य हैं वहाँ सभी लोग, ज्यादातर लोग रेशम कीट पालन करते हैं, और सरकार की विभिन्न योजनाएं भी हैं इस बारे में कि किस तरह हम आमदनी को बढ़ावा दें। तो हमारे सेंट्रल सिल्क बोर्ड बैंगलोर में स्थित है, ये हेडक्वार्टर है, और उसकी कई सारी रीजनल स्टेशन है जो हर स्टेट के हर डिस्ट्रिक्ट में उपस्थित है। तो जो भी कोई अगर रेशम कीट पालन करना चाहता है तो अपने निकटवर्ती जो भी हमारा रेशम कीट पालन केंद्र है वहां से संपर्क करके अंडे ले सकता है, अंडे या फिर लार्वा ले सकता है, और हर जगह उनको आसानी से पाला जा सकता है। इसमें बहुत ज्यादा खर्चा नहीं होता, मतलब बहुत से लोग तो एक छोटे से कमरे में रेशम कीट पालन कर सकते हैं, और ये काम बहुत आसान है और महिलाएं इसे बहुत अच्छे से कर सकती हैं। तो अगर कोई भी किसान अगर चाहता है कि खेती बाड़ी के साथ में हम आमदनी का एक और जरिया रखें तो रेशम कीट पालन एक बहुत अच्छा जरिया हो सकता है, इसको सब अपनाना चाहिए, और इसमें बहुत सारी स्कीमें भी वर्तमान में चल रही है।
2: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: तो ऋतु, आपसे जानना चाहूंगी कि आपने बताया कि किस तरह से कई तरह के उत्पाद मूल्य संवर्धन करके मोटे अनाजों के बनाए जा सकते हैं, तो इसको बनाने के लिए या फिर इसको एक व्यवसाय का रूप देने के लिए क्या किसानों को उससे पहले प्रशिक्षण ले लेना चाहिए, और इससे उन्हें कितना लाभ होगा?
0: जी बिल्कुल, क्योंकि जैसे मोटा अनाज हम अभी तक पारंपरिक खाने में इस्तेमाल करते थे, पर अगर हम और जो नए उत्पाद है, जैसे हम बात कर रहे हैं कि बेकरी के जैसे बिस्किट है, ब्रेड है, या पास्ता है, नूडल्स है, ये सब बनाना है, तो ये नई चीजें हैं, तो इनकी मशीनें भी हैं, तो इसके लिए बहुत आवश्यक है प्रशिक्षण लेना, और प्रशिक्षण के लिए आपके पास कृषि विश्वविद्यालय हैं, या हमारे जैसे मैंने बताया कि हैदराबाद में संस्थान है वहां, या नजदीकी है तो कृषि विज्ञान केंद्र, आप यहां पे संपर्क करके प्रशिक्षण कार्यक्रम ले सकते हैं, या अगर वो वहां पे नहीं होता फला कृषि विज्ञान केंद्र में तो वो आपको संस्थान में भी नॉमिनेट करके भेज सकते हैं ताकि आप प्रशिक्षण ले लें, क्योंकि इसकी मशीनी कैसी है। और सबसे बड़ी आती है कि मोटे अनाज को आप सीधा, जैसे कुछ अनाज जैसे बाजरा है, इसको हम सीधा इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि ये आपको पचने में थोड़ा भारी होता है, क्योंकि इसकी जो ऊपरी परत होती है उसपे मतलब कहेंगे कि पोषक तत्व विरोधी एक परत होती है, तो उसको हटाना पड़ता है, तो उसके लिए कई चीजें, छोटी छोटी चीजें, जैसे आप अंकुरण कर लें, उसको भिगो के रख लें, या पॉपिंग यानी कि जैसे पॉपकॉर्न बनते हैं पॉपिंग कर लें, या उसको चपटा करके फ्लेकिंग बोलते हैं वो कर लें, तो उससे वो जो पोषक विरोधी तत्व है वो हट जाते हैं। तो ये कुछ क्रियाएं हैं जो कि करनी पड़ती हैं इस्तेमाल करने से पहले, ऐसे ही मक्का में भी करना पड़ता है, तो ये इन सब चीजों के लिए आपको प्रशिक्षण लेने की आवश्यकता होती है, क्योंकि आप सीधे ही उत्पाद बनाएंगे और कुछ मतलब उत्पाद ठीक नहीं निकले तो उससे पहले जरूरी है कि एक जानकारी ले लें, और ताकि फिर उसको उद्यम में आए।
1: बिल्कुल। आपने बताया कि कई तरह के मशीनों का भी उपयोग होता है इसमें, इसके बारे में कुछ और हमें जानकारी दें।
0: जी, जैसे आपका प्रोसेसिंग की जो प्रसंस्करण की मशीन है, जैसे आपकी इनकी ग्रेडिंग, क्योंकि दाने बहुत छोटे होते हैं इनकी, आप हाथ से नहीं कर सकते, तो इनकी ग्रेडिंग की मशीन आती है जिसमें दानों की छटाई हो जाती है, फिर इनकी मिलिंग, जैसे आटे के रूप में करना है तो वो मशीन आती है, फिर पॉपिंग की मशीन आती है जिसमें ये पॉपकॉर्न की तरह फूल जाते हैं, और फिर एक आपका एक अच्छा हेल्दी कहेंगे स्वस्थ नाश्ता या एक अच्छा एक स्नैक के रूप में उभर के आता है, तो इस तरीके से ये इनकी मशीन भी आ गई है। तो ये और जो इन मशीनों का इस्तेमाल जो है, और जो हमारी हैदराबाद की संस्था उन्होंने बनाई है मशीनें, तो उनके संपर्क करके ली जा सकती हैं हमारे, और जैसे बताया कि ऋण लेकर हम सारी मशीनें नहीं खरीद सकते तो इसमें अनुदान की आवश्यकता होती है, तो ये ऋण लेकर इन मशीनों का इस्तेमाल करके अपर यहाँ ये चीज तब करें जिस क्षेत्र में जो अनाज आपका मोटा अनाज हो रहा है, जैसे ज्वार का क्षेत्र है तो ज्वार के संबंधित मशीन ही लें, बाजरे का क्षेत्र बाजरा प्रसंस्करण संबंधित मशीन ही लें, मक्का का है तो मक्का प्रसंस्करण संबंधित मशीन ही लें, तभी उसका इस्तेमाल सही से हो पाएगा।
1: बिल्कुल, आइए अब आगे बढ़ते हैं और जाना आपने कि किस तरह से जो मोटे अनाज है उनका आप प्रसंस्करण कर सकते हैं और उसके लिए बेहतर होगा कि आप पहले प्रशिक्षण ले लें और तमाम जानकारियां हासिल कर लें और उसके बाद इस व्यवसाय की शुरुआत करें।
2: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आप रेडियो आपकी बातें।

0: पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: ब्रेक के बाद एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है किसान साथियों आपका खेती बाड़ी कार्यक्रम में। आप सुन रहे हैं मोटे अनाज की खेती और मित्र कीटों को लेकर महत्वपूर्ण जानकारियों को। तो किसान साथियों यहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां अभी तक हमने ली है, साथ ही और जानकारियां हम लेंगे एक्सपर्ट के माध्यम से। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों को मोटे अनाज और मित्र कीट से संबंधित।
2: में रेशम कीट पालन के बारे में आपने हमें जानकारी दी, अगर इसके बारे में किसान कुछ और जानना चाहते हैं या प्रशिक्षण लेना चाहते हैं तो उन्हें कहां संपर्क करना चाहिए?
3: देखिए, हर ब्लॉक में हर डिस्ट्रिक्ट में CRC यानी चौकी रेयरिंग सेंटर, सेंट्रल सिल्क बोर्ड ने अपनी संस्थाएं अपने केंद्र स्थापित कर रखे हैं। तो आप अपने किसी भी नजदीकी संस्था में जाके संपर्क कर सकते हैं, वो आपको अंडे भी दे देंगे और बच्चे भी दे देंगे और पूरा प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जाता है और आप आसानी से उसको शुरुआत कर सकते हैं। कहाँ करना चाहते हैं ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे अगर किसी भी राज्य में करना चाहते हैं तो वहां पे कौन सी फसल आप लेंगे, जैसे अगर हम असम की बात करें तो वहां का मूगा सिल्क, आपने सुना होगा कि मूगा सिल्क की साड़ियां मेखला चादर वगैरह बनती है। तो अगर असम या हमारे जितने भी नॉर्थ ईस्ट यानी झारखंड हुआ, उड़ीसा हुआ, वेस्ट बंगाल हुआ, यहाँ करना चाहते हैं तो इरी सिल्क वॉर्म यानी कि जो कैस्टर पर रहता है और मूगा सिल्क वॉर्म जो सोमन स्वाल, क्योंकि जहां पर भी उसके पेड़ होंगे होस्ट जिस पर हम पालेंगे कीड़ों को, यानी जो रेशम कीट के कीड़े होंगे उनको पालने वाले पेड़ों का होना भी आवश्यक है। तो पहले तो आप हम ये देखेंगे कि हमें कहाँ पे करना है और किस रेशम कीट को करना है। एक्चुअली दो तरह के रेशम कीट हैं, एक तो होता है जंगली और दूसरा होता है पालतू वाला।
1: चलिए इसी के साथ हम काफी समय से मोटे अनाज की खेती को लेकर काफी बातें कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम अपने एक्सपर्ट से जानना चाहेंगे कि हमें मोटे अनाज की कौन कौन सी फसलें लेनी चाहिए, इससे कौन सी फसलों में हमें अधिक लाभ हो सकता है।
2: बिल्कुल डॉक्टर ऋतु।
4: हाँ, मोटे अनाज में आपका ज्वार है, बाजरा है, रागी है, मक्का है, जौ है, कोदो है, सवा है, ये आपके सब मोटे अनाज में आती हैं
2: जी।
4: तो आपके यहाँ पे ये जैसे ज्वार और बाजरा की खेती आप कर सकते हैं, मक्के की भी खेती आपके यहाँ पे हो सकती है, तो आप इसमें प्रसंस्करण की संभावनाएं दे सकते हैं अपने क्षेत्र में।
2: जी जी बिल्कुल। मक्के की बात की आपने, मक्के में किस तरह से प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन के विकल्प है किसानों के पास, बताएं
4: जी। जैसे मक्का है, जैसे बात करें अगर इसमें पोषणता की दृष्टि से, तो मक्का आपका जो आता है प्रोटीन से भरपूर होता है
2: जी,
4: ठीक है। और खासकर पीली मक्का की बात करें तो उसमें विटामिन ए काफी मात्रा में होता है जो कि हमारी आंखों की रोशनी के लिए बहुत जरूरी होता है। तो पोषण के साथ साथ इसमें रेशा बहुत होता है हमारे, जो कि हमारे खाने में जरूरत है। तो अगर इस बात करें इसके प्रसंस्करण की, तो मक्की का आटा बनता है, पर मक्की के आटे में थोड़ा सा ये दिक्कत कि वो थोड़े दिन के लिए ही रह पाता है, पर प्रसंस्करण तकनीक आ गई है, बहुत छोटी सी तकनीक है जिसका इस्तेमाल करके इस आटे की अवधि हम जो है लंबे समय तक, जैसे हम गेहूं का आटा रखते हैं वैसे ही हम इसको रख सकते हैं। फिर इसी आटे से, मक्की के आटे से आप कई प्रकार के उत्पाद बना सकते हैं, जैसे हम रोटी तो हो ही गई, पर आपका इसी मक्की के आटे से सूजी आपका बन जाता है, इसी मक्के से आप दलिया बना सकते हैं, उस दलिया से आप अन्य जो बच्चों के लिए शिशु आहार जो हम कहते हैं वो बना सकते हैं। और इसके अलावा आपका मक्की का कई उत्पाद, लड्डू है आपका, फिर केक है, बिस्किट है, ये सब उत्पाद भी इससे मक्के से आपके बन सकते हैं और बन रहे हैं। अभी सरकार ने ये भी किया है कि कई राज्यों में मिड डे मील जैसे बच्चों के लिए जाता है तो उनमें भी इन अनाजों का इस्तेमाल करवाना शुरू कर दिया है ताकि बच्चों को पोषण से सुरक्षित रखा जा सके।
0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
4: जैसे बाजरे के बिस्किट के लिए आपको जो हमारी बेकिंग सिकाई की मशीन आती है जिसमें हमारे केक वगैरह बनते हैं, वो आपको लेना होगा। मशीन आपके अलग अलग प्रकार की आती है, मतलब कहेंगे क्षमता के आधार पे आती है कि आपने 30 किलो बेक करना है, 40 किलो बेक करना है, 20 किलो बेक करना है, तो उसके आधार पे ये मशीनें आती हैं और ये बिजली से भी चलती हैं, ईंधन से भी चलती हैं।
2: अच्छा,
4: तो आपको अगर ये जैसे बाजरे के मशीन आप कह रहे हैं कि कहाँ से आप ले सकते हैं शायद, है ना?
2: जी जी।
4: तो आपने जैसे प्रशिक्षण सबसे पहले आप इसमें लीजिएगा, किसी भी आप कृषि विश्वविद्यालय या कृषि विज्ञान केंद्र या कोई संस्था ऐसी हो तो वहां से आप ले, और आपको खादी विलेज जो खादी ग्राम उद्योग है उनका एक योजना है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, उसमें आप इसमें इस योजना के तहत आप अप्लाई करें कि आप इस यूनिट को लगाना चाहते हैं। उन मशीनों के आपको नाम लिखने हैं, क्योंकि इसमें आपका सिर्फ मशीन बेकिंग के नहीं, आपको इसमें बिस्किट जो है हमारा आटा गूंद के बनता है तो उसकी गूंदने की मशीन आती है, वो गूंदने के लिए मशीन चाहिए होती है। फिर थोड़ा आपको सामान टेबल है, कटिंग के लिए आपको चाहिए कटर चाहिए होते हैं, और आकार देने के लिए अलग नाप वो आते हैं, ये आपको सब लेने पड़ेंगे। फिर पैकिंग आती है, तो ये सारा इकाई लगाने के लिए आपको खादी ग्राम उद्योग से भी ऋण मिल सकता है, पर आप पहले प्रशिक्षण ले लें, और उसी प्रशिक्षण में आपको मशीनों की जानकारी और उनके एड्रेस या पता वो वहीं पे आपको पता लग जाएंगे।
0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM, आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: किसान साथियों, चलिए रुक करते हैं रेशम कीट के ऊपर, कैसे ये रेशम कीट रेशम को बनाता है, क्या उसमें क्या खासियत होती है जो रेशम बना देता है, और कैसे बनाता है, हम इसका पालन कैसे करते हैं, और क्या क्या किन किन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए आदि जानकारियों को लेते हैं इसमें, आइए लेते हैं इसमें एक्सपर्ट की राय।
3: देखिए, सबसे पहले तो बात अगर हम करेंगे तो कौन सी वैरायटी और कौन सी ब्रीड, अगर हम रेशम कीट पालन की बात करें तो आपने ली कहाँ से है और आपके जगह के अनुकूल होनी चाहिए। दूसरा, लेते समय हमें ध्यान रखना है कि जो भी स्ट्रेन या वैरायटी हम ले रहे हैं, जो भी जिस भी प्रजाति का ले रहे हैं, उसमें बीमारियों से लड़ने की क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि सेरिकल्चर यानी कि सिल्क फॉर्म रेयरिंग यानी रेशम कीट पालन में जो सबसे बड़ी समस्या आती है बीमारी की, और वो होती है कि हम साफ सफाई का अच्छे से ख्याल नहीं रखते हैं, तो उसमें कई बार बैक्टीरिया वायरस की बीमारी आ जाती है। तो जब भी सीआरसी जो भी हमारे चौकी रेयरिंग सेंटर्स होते हैं, हम उनसे बच्चे लेते हैं और उनको लेकर आकर हम उन्हें पालना शुरू करते हैं। फीडिंग ट्रेज होती है, उसमें हम मलबरी यानी शहतूत की पत्तियों को देते हैं उन्हें खाने।

0: के लिए, तो उनके अकॉर्डिंगली हमें चलना पड़ता है। और एक बार में, अगर एक दिन में जब हम रेशम की पालन करते हैं, तो जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है उसके खाने की रिक्वायरमेंट भी उसी के अनुसार बढ़ती है। तो एक दिन में हमें लगभग 3 से 4 बार खाना उनको देना पड़ता है। तो जब हम पत्तियां खिला रहे होते हैं, तो जैसे अगर नया बच्चा है तो उनको जो ऊपर की पत्तियां होती है, कोमल पत्तियां होती है, वो खिलानी होती है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है तो उसको हम बड़ी पत्तियां देते हैं जो कि मैच्योर लीव्स होती हैं। पर हर बार इस बात का ख्याल रखना होता है, क्योंकि हम फीडिंग ट्रेस में जो खाने वाली प्लेट्स होती है उसमें हम बच्चा और खाना दोनों रख रहे होते हैं, और उनका एक्सक्रीटा भी, मल भी उसी में होता है। तो हमें साफ सफाई का समुचित प्रबंधन करना होता है। और जब रेशम कीट का बड़ा बच्चा हो जाता है, सूरी बड़ी हो जाती है, और वो कोया यानी कि जो कुकून होता है सिल्क का, रेशम का बनाना शुरू करती है, तो उसको हम अलग लेकर जो माउंटेज होते हैं, जिसे वुडन में अगर कहें लकड़ी के बने तो चंद्रिका जिसे कहते हैं, उसके अनुसार हम उस बच्चे को वहां शिफ्ट करते हैं, ताकि वो गोल गोल घूमकर, एट के आकार का घूमकर रेशम बनाना शुरू करता है। रेशम कहाँ से आता है? जो लार्वा होता है उसके मुंह में एक तरह की ग्रंथियां होती है, जिसे हम सिल्क ग्लैंड कहते हैं। वो सिल्क अपने मुंह से निकालकर अपने पूरे शरीर के चारों तरफ लपेटना शुरू करता है, और एक तरह से फाइनली कुकून बन जाता है। अब उस कुकून को हम मार्केट में लेके आते हैं। अगर आपने अच्छा खाना खिलाया है रेशम कीट को, तो अच्छा कुकून बनेगा। और दो तरह के कुकून होते हैं, या तो यूनिवोल्टिन, बाइवोल्टिन और मल्टीवोल्टिन। तो मार्केट में उसके जो कुकून का मार्केट लगता है, पूरी मंडियां लगती है, और अगर अच्छा कुकून है तो अच्छी मार्केट की प्राइस आपको मिलेगी।
1: बिल्कुल किसान साथियों, अभी आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी को यहाँ पर हासिल किया। आपने जाना कैसे एक पालतू रेशम की कीट होती है, और जंगली भी रेशम की कीट पाई जाती है, तो इसका हमें कैसे देख रेख करना चाहिए, कैसे हम इसका पालन कर सकते हैं, और कैसे इसकी ट्रेनिंग दी जाती है, आदि महत्वपूर्ण जानकारियों को जाना। साथ ही यहाँ पर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ रेडियो टांटिया भीर 90.8 FM में।
2: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो, आपड़ी बातें।

0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आप रेडियो आपकी बातें।
1: ब्रेक के बाद एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं किसान साथियों आपका खेती बाड़ी कार्यक्रम में। आप सुन रहे हैं मोटे अनाज से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को, साथ ही रेशम पालन से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को। किसान साथियों, जानकारियों को आगे बढ़ाते हुए आइए लेते हैं कुछ और एक्सपर्ट की राय। यहाँ पर हमारे किसान का सवाल है कि जो हमारी बाजरे की फसल है वो कौन से समय में लेना ज्यादा फायदेमंद हो सकती है। इसको बारिश के समय में लेना ज्यादा फायदेमंद हो सकती है या इसे हम गर्मी के समय में ले सकते हैं, तो यहाँ पर हम जानना चाहेंगे एक्सपर्ट की राय।
2: इसकी फसल के बाजरे की बात करें तो बरसात के समय, इस समय ये बिजाई का समय बहुत उपयुक्त है आपका बाजरे के लिए। इस हफ्ते तक भी अगर आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, और इसकी क्योंकि अक्टूबर तक आपकी आप इसकी कटाई कर लेंगे तो इसमें उपज आपकी ज्यादा अच्छी होगी। क्षेत्र है तो वहां के लिए जो किस्म है बाजरा की वो ही आप लगाएं। वैसे आप बाजरा की ऐसी किस्में भी आ गई जिसको हम बायो फोर्टिफाइड किस्में कहते हैं, तो वो भी काफी आ रही। बायोफोर्टिफाइड का मतलब इनमें कुछ ऐसे पोषक तत्व और डाल दिए गए हैं जिनकी इससे गुणवत्ता और बढ़ जाए। तो ऐसे ही कई किस्में आ रही हैं, बाजरा में भी ऐसी कई किस्में आई हैं, तो आप इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप ये आपके क्षेत्र में आप ये लगा सकते हैं। बायोफोर्टिफाइड किस्म है 1200 AHB 1200 FE। आप ये महाराष्ट्र की निकली हुई किस्म है विश्वविद्यालय की, कृषि विद्यापीठ की, तो वहाँ आप ये किस्म भी ले सकते हैं, लगा सकते हैं।
0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आप रेडियो आपकी बातें।
2: मक्के की खेती आप दो बार कर सकते हैं, एक अभी जो अभी फसल आ गई और फिर एक सर्दियों में भी आप कर सकते हैं। दो समय में ले सकते हैं, जैसे मध्य प्रदेश से हैं तो आप दो बार कर सकते हैं। और मक्का जैसे आपका इस क्षेत्र के आधार पे ही आप किस्म लेंगे। एक मक्का में हमारे वैज्ञानिकों ने यह भी जात किया क्वालिटी प्रोटीन मक्का, यानी कि जो प्रोटीन की जो गुणवत्ता है उस मक्के में बहुत अच्छी है, जो क्योंकि हमें प्रोटीन सभी खाद्यों में मिल जाता है पर अच्छा क्वालिटी का गुणवत्ता वाला प्रोटीन है वो हमें इस क्वालिटी प्रोटीन मक्का के किस्म मिल जाता है। तो वहां उस क्षेत्र के लिए भी इसके किस्में होंगे, उनको लगाएंगे तो और आपको फायदा होगा। इसी में आपका प्रसंस्करण से अगर आप जुड़ जाएंगे मक्के के प्रसंस्करण से तो आपको कहेंगे डबल, यानी कि दुगना आपको हो सकता है। तो आप उसी के प्रसंस्करण में भी आ सकते हैं। कई उत्पाद जैसे हमने पहले ही बताए, तो बेकरी के अगर उद्योग में जाते हैं तो आपको ब्रेड बिस्किट केक वगैरह लेके जा सकते हैं। अगर आप नाश्ते वाले उसमें चाहते हैं तो आप बढ़िया भी है आपके हैं, नमकीन वाले स्नैक्स हैं, मिक्सचर हैं, चिड़वा भी इसका बनता है मक्की का, मतलब चपटा जैसे कॉर्नफ्लेक्स जैसे आते हैं वही आपका है। और चिड़वा आपका कच्ची मक्का को मशीन से प्रेस कर दिया जाता है और हल्का भून लिया जाता है, तो एक चिड़वा का स्नैक, एक नमकीन स्नैक बन सकता है।
3: अगर आप कई तरह के जो उत्पाद है वो किसान बना सकते हैं, मूल्य संवर्धन की जो संभावनाएं हैं इसमें बहुत ज्यादा है। आइए आगे बढ़ते हैं और बातचीत को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर पूनम श्रीवास्तव, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि लाभकारी कीटों में एक अहम कीट लाख कीट भी है, इसके बारे में हमें कुछ जानकारियां दें।
4: जी बिल्कुल, लाख हमने बात की थी मधुमक्खी की क्योंकि शहद मिलता है
3: जी,
4: रेशम कीट की थी क्योंकि रेशम के कपड़े हम सिल्क की साड़ियां पहनते हैं
3: बिल्कुल,
4: और आपने कई बार देखा होगा कि पंजाबी में चूड़ा और बंगाली लोग एक स्पेशली कड़ा पहनते हैं, तो लाख जो लाख का बना होता है, और हमारी जितनी भी गोल्ड की ज्वेलरी होती है ज्वेलरी उसमें लाख का प्रयोग किया जाता है। तो लाख जो है वो कहाँ से मिलता है, वो एक कीड़े से मिलता है, एक ऐसा कीड़ा जो पेड़ के ऊपर रहता है और अपने ऊपर एक कवर बना के चलता है। उस कवर, वो जो कवर होता है उस कवर को हम जो ट्विक्स होती है हम छीलते हैं फिर उसे पीसते हैं और छान के हम लाख बनाते हैं। और लाख के कीड़े जंगलों में बहुत सारे पेड़ों पर रहते हैं, और लाख के लिए एक विशेष संस्थान है हमारा रेजिन का जो कि झारखंड रांची में उपस्थित है नमकुम नामक जगह पर। तो जो लोग लाख में करते हैं, जो लोग रूरल हैं, जो ग्रामीण हैं, जंगलों के आसपास रहते हैं, वो ऐसी ऐसी शाखाओं को कलेक्ट कर सकते हैं जिनपे की लाख कीड़ा रहता है और उसे आसानी से प्रोसेस करके हम लाख को बेच सकते हैं। कई तरह के लाख बिकता है मार्केट में, जैसे कच्चा लाख हुआ, प्रोसेस लाख हुआ, और उसकी आसान प्रक्रिया है और इसको भी एक रोजगार का बहुत ही उत्तम साधन अपनाया जा सकता है।
3: बिल्कुल, अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मोटे अनाज का मनाने जा रहे हैं और भारत के ऊपर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है इसकी अगुवाई करने की, तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे?
2: जी, ये बहुत अच्छा हमारी सरकार ने पहल लिया कि हम पहले तो हमने 2018 में देश का बताइए मिलेट का साल मनाया था, पर 2023 में हमारी सरकार ने विश्व में इसको प्रचार करने के लिए, ताकि इसकी मांग जैसे लोगों में बढ़े, जानकारी मिले कि हाँ इसका इस्तेमाल जो हमारे पोषण के लिए बहुत जरूरी है, सिर्फ यही नहीं कि कुपोषण के लिए, हमारे अच्छे बच्चे हमारे शहरीकरण की वजह से हमारी कई बीमारियां, आपकी कैंसर जैसी बीमारियों से लड़ने की क्षमता है इन मोटे अनाजों में। कैंसर आपका आपका हृदय के संबंधित रोगियों में आजकल आप देख रहे हो कि दिमागी जो मेंटल डिप्रेशन की बात कर रहे हैं उसको भी कम करने की क्षमता है इन अनाजों में, इसलिए इस पे जोर देने के लिए हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया 2023 को, और ये बहुत अच्छी पहल है और इससे लगता है कि हमारे देश में लोग विश्व में जानेंगे कि मोटे अनाज की खेती करने वाला देश क्या क्या मतलब कर सकता है इस क्षेत्र में।
3: जी डॉक्टर ऋतु, आपने लगातार हमें मोटे अनाजों के बारे में बहुत ही अहम जानकारियां दी, आपका बहुत बहुत जी।
0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM, आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: किसान भाइयों, आज ना इना खेतीवाड़ी कार्यक्रम में आप घनी खरी महत्वपूर्ण बातों ने बारा में चर्चा करी, खासकर आप देखी कि आप जो मोटू अनाज है जीना अनाज ने आप भूली गेला अने जीना अनाज नहीं आप इतनी असल तरीके थी खेती नहीं करता, केम के हंगला किसान भाई जाने हैं कि हमने जो अभी पैसा है कपा है सोयाबीन में आप रुपया मे तो तीना लाभ में आप घना खरा किसान अपनी जो पारंपरिक खेती है तिने आप भूली गेला, जबकि हमने अगर आप देखी तो घना खरा सोरा है त्या बाजरो बाजरा नहीं ओळखे, आप कोदरा नहीं ओळखे, कूरी नहीं ओळखे, अगर आप अलग अलग प्रकार धान भी मेल दी तो हमारा ना सोरा जो हमने नी जो पीढ़ी है तो हमने आजकल इना धान ने ओळखेज नहीं, आजकल ना सोरा जो है अधिकतर गहू नो रोटो खाए, अतरे गहूँ है अपन मक्की है, तेने अलावा दूसरी फसल ने थोड़ा सा इतने ध्यान था मतलब असल तरीके से ओळखे नहीं है। तो किसान भाइयों, आज ना इना कार्यक्रम में आप हम लोग केम के आप जो ये मोटू अनाज है इनकी कैंसर तक ने लड़वानी शक्ति अगर है तो हम कहीं ना कहीं अपने किसान भाइयों ने अपनो रुख पासो अपने पारंपरिक अनाज की तरफ करवानी जरूरत है, और अपना डहा डहा भी बात करे है कि अपना कोदरा जे इतना पौष्टिक है कि भागेलो डगरो भी एक हफ्ता में उभो थी जाए, 7 दिनों में पासो बैठो थी जाए, तो कहीं ना कहीं अगर आप देखी तो आप जो पुरानू अनाज है जो वगर खातरन अनाज है और कम पानी में पाकवावाड़ू अनाज है, भले कहीं भी थाय पानी पड़े कि नहीं पड़े, आप आप यूँ अनाज कि कम भी करें पासो इतनी फसल आल दे तो एवं अनाज ने आप खेती करवानी जरूरत है। आप जानी है कि इनमें उत्पादन घणो कम है और इनकी मांग भी घनी कम है, लेकिन हमने किसान भाई धीरे धीरे आप देखी कि जैसे कि हमने घोषणा थी है कि 2023 से ये मोटे अनाज का मोटे अनाज के रूप में आप इन मनावा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं हम इनो लाभ जरूर मिले है। तो किसान साथियों, इन्हीं हाथे आज ना इना कार्यक्रम में बस इतरूस तमारथी फिर काल मुलाकात था है इना समय पर, तहां तक बनेला रो हमारी हाथे रेडियो टांटाबिल 90.8 FM नी हाथे।

संगीत की इस महकती हुई शाम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका दोस्त समीर, और चलिए मिलते हैं एक और उभरते हुए कलाकार से, एक नए टैलेंट से। कौन है ये, क्या है ये, इनके बारे में जानते हैं और इनके गीतों का मजा लेते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हमारे आपके ही आज के कलाकार प्रोग्राम को।

दोस्तों लीजिए, फिर से हाजिर हैं हम एक नए टैलेंट, एक नई प्रतिभा, एक नए सिंगर और एक नए म्यूजिशियन के साथ। आज जो हमारे प्रोग्राम में, आज के कलाकार प्रोग्राम में हमारे साथ हैं, उनका नाम है डॉक्टर मीना। बाकी की बातचीत हम डॉक्टर मीना से ही करेंगे, उनके बारे में जानेंगे, उनके गीत सुनेंगे, बहुत बहुत आनंद आएगा। चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को डॉक्टर मीना के ही गाए हुए इस प्यारे से गीत से।

0: थैंक यू सो मच डॉक्टर मीना, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत स्वागत है. यू आर मोस्ट वेलकम इन अवर प्रोग्राम.
1: थैंक यू, आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर. बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के साथ. मैं आपको इस रेडियो प्रोग्राम को शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आपने मुझे ये मौका दिया, और रेडियो झाबुआ के श्रोताओं को मैं सबसे पहला नमस्कार करना चाहूंगी. तो शुरू करते हैं.
0: थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच. हमने आपका गीत सुन भी लिया, लोगों को, हमारे श्रोताओं को, हमारे दोस्तों को पता भी चल गया कि किस तरह के इवनिंग, किस तरह की म्यूजिकल इवनिंग, किस तरह की आज शाम हमें संगीत सुनने को मिलने वाला है. शुरू करते हैं इस छोटे से सवाल से कि मैम आप कहाँ रहती हैं, उस जगह के बारे में हमें कुछ इंटरेस्टिंग बात बताइए ना.
1: मैं पुणे की रहने वाली हूँ, और जैसे हम मराठी में बोलते हैं कि पुणे तिथे काय उणे, मतलब पुणे में किसी चीज की कोई कमी नहीं है.
0: वाओ,
1: इट इज अ कल्चरल कैपिटल, वहाँ एजुकेशनल हब है, संतों की बस्ती है, शिवाजी राजे और पेशवे का इतिहास है. तो वहाँ पे हम मतलब शनिवार वाड़ा का नाम आपने सुना ही होगा अगर आपने बाजीराव मस्तानी फिल्म देखी होगी.
0: जी जी
1: और ओशो आश्रम है, फिर वहाँ पे बाल गंधर्व रंग मंदिर है जहाँ पे म्यूजिक के प्रोग्राम्स होते हैं, नाटक होते हैं, और खाने पीने के तो पूछो ही मत. मतलब चितले की बाकरवड़ी से लेकर वैशाली की सेवपुरी, गार्डन का वड़ा पाव, गुडलक कैफे, बेडेकर मिसल पाव, यू नेम इट एंड इट्स देयर. कोरेगांव पार्क में नाइट लाइफ तो बहुत बढ़िया. और पुनेरी पाटे के बारे में तो आपने शायद सुना ही होगा, दुनिया भर में प्रसिद्ध होते हैं.
0: अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग,
1: बहुत अच्छा.
0: मुझे जहाँ पर आपने सारे के सारे फूड जॉइंट्स के बारे में बताया और डिशेस के बारे में बताया, बस मुझे याद आ गया वहाँ का स्पेसिफिकली चितले बंधु की जो बाखरवाड़ी है, दैट इज माय फेवरेट. और ऑफ कोर्स दगड़ू सेठ के दर्शन करने के बाद हम लोग हमेशा चितले बंधु की वो बाखरवाड़ी जरूर जरूर लेने जाते थे. अमेजिंग दोस्तों, आपने सुना हाउ ब्यूटिफुली मीना मैम डिस्क्राइब्ड द प्लेस वेयर शी लिव्ड, शी लिव्स, फैंटास्टिक. तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं एक और बहुत ही प्यारा सा गीत मैम की ही आवाज में.

0: बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत ही प्यारा गीत मैम। आगे बढ़ते हुए छोटा सा मासूम सा सवाल, बचपन में चलते हैं। अब बचपन मासूमियत से भरा हुआ होता है, आप बचपन में क्या बनना चाहती थी?
1: एक्चुअली कैसा होता है ना कि तभी जब लड़की होती है तो बोले डॉक्टर बनेगी, लड़का हुआ तो बोले इंजीनियर बनेगा। उससे ना तो बचपन से वो ही अपने सर पे मारा जाता है कि डॉक्टर ही बनेगी, मेरी बेटी तो डॉक्टर ही बने। तो क्या बनना चाहते ये सोचने का शायद टाइम ही नहीं मिलता। लेकिन पहले से मुझे गाने का शौक था और मैं बाथरूम सिंगर थी और चाहती थी कि कभी तो दुनिया के सामने अपनी आवाज पेश कर सकूं, और आज मुझे वो मौका मिल रहा है, मैं बहुत खुश हूं इसमें।
0: वाओ वाओ, थैंक यू सो मच मैम। ये सौभाग्य हमारा है। हमें ऊपर वाले ने पता नहीं कहां से ये मैसेज मिला कि आप सब लोगों की हमें सेवा करनी है, आप सब लोगों को हमें सामने लाना है। तो बस ये काम हो रहा है और आई एम रियली हैप्पी। एंड हमारी पूरी टीम, मैं और नितिन बहुत बहुत अच्छा महसूस करते हैं जब हम लोग आपकी सिंगिंग सुनते हैं। और आभार और शुक्रिया आप लोगों का है जो आप हमें अपनी गीत और संगीत से नवाज रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत मीना मैम का।

0: फैंटास्टिक, बहुत ही प्यारी गायकी मैम.
1: थैंक यू.
0: अपने बचपन की कोई प्यारी सी याद के बारे में बताइए.
1: तभी तो ज्यादा गाना सुनना भी घर में अलाउड इतना करते नहीं थे, बोलते कि नहीं डॉक्टर बनना है तो ज्यादा गाना इसमें ये करना नहीं. फिर भी मैं अमीन सयानी जी का प्रोग्राम सुनती थी चद्दर में चुपके से ट्रांजिस्टर लगा के रात में.
0: वाह.
1: और मेरे साथ मेरी बहन संगीता, वो भी चुपके से हम दोनों चद्दर में गाने सुनते करते. और वो बहुत मीठा गाती थी, बहुत ही प्यारा गाती थी. अनफॉर्चुनेटली वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसका पसंद का गाना ओ मेरे सपनों के सौदागर आज भी मेरे कानों में गूंजता है. वो मेरी सबसे बड़ी प्यारी याद है बचपन की. और ये गाना अगर चाहे तो मैं आप लोगों को सुना, अगर मुझे मौका मिले तो जरूर सुनाऊंगी.
0: एब्सोल्युटली मैम, एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच. बहुत ही प्यारी सी याद और बहुत रेस्पेक्टफुल याद मैं कहूंगा. और बिल्कुल मैम, आपका हुक्म सर आंखों पर, ये प्यारा सा गीत आप ही की आवाज में, आप ही की इस बहुत ही प्यारी दोस्त को डेडिकेटेड है. चलिए दोस्तों, सुनते हैं यही प्यारा सा गीत.

0: मैम, आगे बढ़ते हुए आपसे बहुत ही मजेदार सा सवाल पूछना चाहूंगा। चलिए थोड़ा सा मजे करते हैं। आपका सबसे पसंदीदा खाना क्या है और क्यों? क्योंकि आप तो ऐसी जगह रहते हो जहां पर खाने के तमाम तमाम डिशेस स्टॉल्स अवेलेबल है, सो व्हाट प्रिसाइसली डू यू लाइक इन ईटिंग?
1: एक्चुअली मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप मुंबई में हूँ, कोलाबा में।
0: ओके,
1: तो कोलाबा में समंदर के बीच में मेरा घर था, तीनों बाजू से समंदर और एक रास्ता, और सामने मछली पकड़ते थे लोग, टोकरी घर आ जाती थी और फ्रेश फिश मुझे घर पे मिलता था, और वो खाके ही मैं बड़ी हुई। तो वो फिश मेरी बचपन से आदत पड़ गया, वो मेरा सबसे पसंदीदा खाना है।
0: अरे वाह, अमेजिंग अमेजिंग, टोटली ऑर्गेनिक एंड टोटली फ्रेश, क्या बात है।
1: Yes.
0: बहुत सुंदर। तो दोस्तों, आपने सुना, आई सिंसियरली होप एंड प्रे टू गॉड कि आप सब लोगों को भी इसी तरह की ऑर्गेनिक एंड फ्रेश चीजें खाने को मिलें। तो चलिए सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

0: बहुत बहुत प्यारा गीत। मैम दिस इज इंटरेस्टिंग, ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, मुझे ये पूछना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इससे जो भी कलाकार हमारे सामने हैं जिनसे मैं बात कर रहा हूं उनकी पर्सनालिटी को समझने में हमें बहुत मदद मिलती है। ऐसा कौन सा गीत है, कौन सा गाना है जो आपकी पर्सनालिटी को पूरी तरह से डिस्क्राइब करता हो, बयान करता हो, आपकी पर्सनालिटी को सूट करता हो?
1: बाप रे, ये सबसे मुश्किल सवाल लगता है मुझे। एक तो खुद की तारीफ कैसे करूं, बोलो। तो
0: डोंट वरी मैम,
1: मैं तो
0: ऊपर वाले ने सबसे अच्छा क्रिएशन मुझे बनाया है। I am the best creation. Of course, आप जब इस बात को कहेंगी तो आप भी ऐसे ही कहेंगी that I am the best creation. So, everyone, हर एक सिंगल इंसान इस दुनिया में जो ईश्वर ने बनाया है वो बेस्ट है। तो इसलिए अपनी तारीफ करने में जरा सा भी मत हिचकिए, कॉन्फिडेंट रहिए और अपनी तारीफ खुल के कीजिए।
1: तो मैं दो गानों से मेरी खुद के बारे में बताना चाहूंगी। एक तो मैं कहूंगी, भोली सी सूरत आंखों में मस्ती दूर खड़ी शर्माए आए हाय,
0: वाह
1: ये एक मुझे डिस्क्राइब करेगा।
0: ओके।
1: और दूसरा, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया,
0: क्या बात है,
1: हर फिक्र को धुएं में उड़ा। मतलब मैं सिगरेट की बात नहीं कर रही हूँ, मैं कहती हूँ कि
0: okay,
1: फिक्र को मतलब नहीं करते हुए आप चलते चलिए, बस यही। मैं ऐसे कुछ इतना टेंशन लेती नहीं हूँ, बस बिंदास चलती हूँ, यही मेरा पर्सनालिटी है।
0: नाइस, वेरी नाइस। हमारे सभी दोस्तों को, हमारे सुनने वालों को अब ये पता चल रहा होगा कि मीना मैम किस तरह की इंसान हैं, किस तरह की शख्सियत है, उनकी पर्सनालिटी क्या है, उनसे हमें दोस्ती करके क्या क्या मिल सकता है, कितना आनंद मिल सकता है। एक अच्छी कंपनी, एक अच्छी इंटेलिजेंशिया, बहुत बहुत खूब। तो चलिए दोस्तों, एक और प्यारा सा गीत सुनते हैं मीना मैम की आवाज़ में।

0: बहुत ही बढ़िया मैम। अगला सवाल भी थोड़ा सेंसिटिव है, बहुत मजेदार है, और वो भी आपको अपने बारे में जानने में मदद करेगा। वो ये कि अपने किसी सबसे अच्छे दोस्त के बारे में हमें बताइए कि वो आपका सबसे अच्छा दोस्त भला क्यों है।
1: एक्चुअली दोस्त तो बहुत है, मतलब उनके किस किस का नाम लूं ऐसे हो जाता है। मैं बहुत सारे म्यूजिकल ग्रुप्स है, जैसे क्रिएटिव म्यूजिकल है, सितारों की दुनिया है, म्यूजिक रॉपर, सब मेरे अच्छे दोस्त है। वी आर द बेस्ट ग्रुप है, पावर वॉक ग्रुप है जिनके साथ मैं सुबह वॉक पे जाती हूँ, मेरे कॉलेज है फ्रेंड्स, स्कूल के फ्रेंड्स है, मेरे कॉलोनी की फ्रेंड्स है, मेरे प्रोफेशनल फ्रेंड्स है, मतलब किस किस का नाम और किसके बारे में। मेरे लिए तो अच्छा दोस्त वही है जो दिल से सच्चा हो, जैसे अंदर से हो वैसे ही ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल कोई मुखौटा नहीं। और एक्चुअली ऐसे मुझे बचपन में जैसे मैंने अपनी सिस्टर को देखा था और वही रूप में अपनी बेटी में भी देखती हूँ, वो भी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है जो जिसके साथ मैं सब कुछ शेयर करती हूँ। तो बस मैं उनके लिए भी एक गाना डेडिकेट करना चाहूंगी, मेरी बेटी के लिए जिसको वो बहुत अच्छा लगता है, गलिया वाला सॉन्ग,
0: बहुत खूब बहुत खूब।
1: बेटी के लिए
0: दोस्तों आपने सुना एक फ्रेंड की क्या डेफिनेशन है, क्या परिभाषा है, और मैम मीना मैम किस किस तरह के फ्रेंड्स को अपने आसपास रखना चाहती हैं। फ्रेंड्स की डेफिनेशन और परिभाषाएं करीब करीब यूनिवर्सली एक जैसी ही होती हैं, लेकिन इसका जो फीलिंग है, इसकी जो भावना है, वो बहुत ही प्यारी होती है। ये एक इंडिविजुअल इंसान महसूस ही कर सकता है, इसको डिस्क्राइब करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो चलिए दोस्तों सुनते हैं ये प्यारा सा गीत जो मीना मैम की बेटी को डेडिकेटेड है, जो कि इनकी एक बहुत अच्छी दोस्त हैं।

0: बहुत खूब, बहुत ही प्यारा गीत। तो मैम आगे बढ़ते हैं, क्या आपका कोई निक नेम है, कोई ऐसा नाम जो आपके दोस्त या परिवार वाले आपको प्यार से बुलाते हो?
1: एक्चुअली जब मैं पैदा हुई तो अक्षर आया था य। सब लोग सोचते थे कि य से क्या नाम रखे इसका, कोई बोलता था युगल किशोरी, कोई बोलता था युगल कुंडली। फाइनली मेरी नानी जो थी ना, उसने बोला कि अरे इसकी आंखें है ना फिश की तरह है, मीनाक्षी जैसे ना आंखें। तो फिर तो मीना छोटा करके मीना ही रख दिया। तो अभी इतना छोटा नाम तो उसको और क्या निक नाम बोले, तो बस मुझे मीना ही बुलाते गए और वही, तो कोई दूसरा नाम नहीं, मुझे मीना ही मेरा नाम है।
0: तो आपका निकनेम भी मीना ही रहा। ऑलराइट।
1: हाँ।
0: और क्यों, तो जाहिर से बात है आपकी नानी जी ने ये नाम आपको दिया, बहुत cool।
1: वहां भी फिश आ गया, देखो फिश की तरह आंखें और फिश मेरा फेवरेट फूड।
0: क्या बात है, क्या बात है। तो दोस्तों चलिए एक और प्यारा सा गीत सुनते हैं मीना मैम की आवाज में।

0: बहुत बढ़िया। वैसे मैम यूं ही पूछना चाहूंगा, आप गलत ना समझिएगा, लेकिन अगर आपको अब अपना नाम बदलने का मौका मिले तो आप बदलेंगे क्या? और अगर बदलेंगे तो क्या नाम चाहेंगे कि आप रखें?
1: नहीं, मैं वेरी हैप्पी विथ माय नेम, मीना बहुत अच्छा नाम है और मैं वही रखना चाहूंगी।
0: वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत खूबसूरत। मैंने ये सवाल बहुत बहुत सारे लोगों से पूछा है और मजेदार वाली बात है, मुझे आज तक की डेट में कोई भी ऐसा नहीं मिला जिसने कहा हो कि मैं अपना नाम बदलना चाहता हूँ। मुझे याद है मैंने अपने बेटे से भी ये सवाल पूछा था जब वो 5th class में था, क्योंकि वहां पर हम लोग सर्टिफिकेट में नाम चेंज कर सकते हैं। उसने भी उतनी छोटी उम्र में कह दिया था कि नहीं, मुझे मेरा नाम पसंद है और मैं उसको नहीं बदलूंगा। अमेजिंग दोस्तों, आपने सुना? गौर कीजिएगा अपने नाम की तरफ, कितना प्यारा सा नाम है वो, उसका मतलब क्या है। तो चलिए सुने एक प्यारा सा गीत मीना मैम की ही आवाज में।

0: मीना मैम, आगे बढ़ते हुए ये पूछना चाहूंगा कि आपका पसंदीदा रंग कौन सा है और क्यों? मैम, ये सवाल में दरअसल मैं इसलिए पूछता हूं, मेरे सुनने वालों को कभी ऐसा लगता होगा कि ये बहुत नॉर्मल रूटीन सा सवाल है, लेकिन हमारी प्रकृति में चारों तरफ रंग बिखेरे हैं ऊपर वाले ने, और हम किसी एक रंग को पसंद करते हैं, उसका मतलब समझते हैं, उसके बारे में लगातार विचार करते हैं, तो हमारी पर्सनालिटी पर उस रंग का असर आता है। मुझे याद है अमिताभ बच्चन ने एक एडवर्टीजमेंट किया था एशियन पेंट्स का, जिसमें जो पंच लाइन थी उस एडवर्टीजमेंट की वो थी कि रंग जो है वो हमारी भावनाओं को दर्शाते हैं। तो एक माँ के प्यार का रंग अलग होता है, एक बेटी के प्यार का रंग अलग होता है, एक दोस्त के प्यार का रंग अलग होता है, एक प्रेमिका के प्यार का रंग अलग होता है, एक पिता के प्यार का रंग अलग होता है। ये सब अलग अलग रंग हैं। आपकी पर्सनालिटी पे जो रंग सूट करता है उससे हमें पता चलता है कि आप कौन हैं, क्यों हैं, कैसे हैं, और आपको भी मालूम पड़ता है। तो आपका पसंदीदा रंग कौन सा है और क्यों?
1: मुझे नीला रंग बहुत पसंद है, जो कि आकाश का कलर है, विस्तृत, अनछुआ सा, आभासी, एक ड्रीम वर्ल्ड में वो मुझे ले जाता है। बहुत कूल फीलिंग देता है, आंखों को बहुत ठंडक पहुंचाता है, और वो जब भी मैं आकाश को देखती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पापा और मेरी बहन मुझे वहां से देख रही है, तो मुझे वो और भी अट्रैक्ट करता है। तो नीला रंग मुझे बहुत पसंद है।
0: बहुत खूब, बहुत प्यारी बात बताई आपने मैम, बहुत प्यारी बात। दोस्तों, आप भी विचार कीजिए, और ये तो विचार करने वाली बात हो ही गई कि कोई रंग हमें क्यों पसंद आता है। कारण उसके बहुत सारे हो सकते हैं, इंडिविजुअली हम डिफरेंट डिफरेंट कारणों को या रीजंस को अपना सकते हैं, विचार कर सकते हैं, दिल से लगा सकते हैं। तो चलिए सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत डॉक्टर मीना की आवाज में।

0: अब हम हमारे प्रोग्राम की उस जगह पर आ गए हैं जहां पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि नए सिंगर्स के लिए और एमेच्योर्स के लिए और हमारे सुनने वालों के लिए कोई संदेश दीजिए, कोई मैसेज दीजिए उनको।
1: सबसे पहले तो मैं रेडियो टनटैप ही टीम का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी जिन्होंने मुझे मौका दिया। झाबुआ की आवाज आज के कलाकार कार्यक्रम के आप आरजी समीर जी और असिस्टेंट डायरेक्टर नितिन राज जी का मैं शुक्रिया करना चाहूंगी। शीतल वारपे जिसने मुझे आपसे जोड़ा है उसका शुक्रिया। और मैं क्रांतिकारी शहीद पूज्य टंट्या मामा को भी नमन करती हूँ जो इंडियन रॉबिनहुड माने जाते थे।
0: yes.
1: और आपने अपने रेडियो चैनल को इसका नाम देकर उनको एक सही श्रद्धांजलि दी है। और झाबुआ के श्रोताओं को मेरा नमस्कार। और जाते जाते मैं सबसे इतना ही कहूंगी कि हर मिनट कोई ना कोई इस दुनिया को छोड़ के जाता है। हम सब बिना जाने इस कतार में खड़े हैं और जब तक जान है क्यों ना इन पलों को हम जी भर के जी ले, अपना कीमती समय किसी के लिए दे, खुशियां बांटे, अपनी आवाज सुनाए, औरों को सुने, किसी की मुस्कुराहट का कारण बने। और उलझने तो सबको आती है लेकिन उसके उससे भी बाहर निकल के प्यार बांटे ताकि जाते समय आपको कोई पछतावा ना हो। और आंखों की डॉक्टर हूं तो एक बात जरूर कहूंगी कि आंखें मूल्यवान होती है, उसका ख्याल रखना, रेगुलरली जांच करवाना ना भूलना। और रही बात संगीत की तो वो तो अपना हर लम्हा साथ देती है, दुख में भी सुख में भी कोई भी गीत दिल को हमेशा तसल्ली देता है। तो संगीत की शिक्षा लेके रियाज करने से जो आनंद मिलता है वो परम आनंद है। सो नेवर स्टॉप लर्निंग, दैट विल बी माय सेइंग। थैंक यू वेरी मच।
0: अमेजिंग अमेजिंग, बहुत क्रिस्प, बहुत मीनिंगफुल, बहुत गहरे मैसेजेस। दोस्तों आप लोगों ने सुना, बहुत प्यारे मैसेजेस जो हम अपनी जिंदगी में उतार सकते हैं, उन्हें जी सकते हैं। बहुत सीधी सी बात है, संगीत से जुड़े रहने से भी बहुत बहुत बहुत सारी हमारी परेशानियां रिजॉल्व हो सकती हैं। और मिलके चलिए, जाहिर सी बात है हम सामाजिक प्राणी हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़कर ही चलना है। तो रात को 9 बजे से 10 बजे तक संगीत सुनिए ना, फिर बड़े प्यार से सोइए। थैंक यू सो मच डॉक्टर मीना मैम, मेरा बहुत बहुत
1: और एक बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब मैं 12 साल के बाद जब इंडिया वापस आई तो इसलिए आई थी कि मेरे हस्बैंड ने स्वदेश मूवी देखा था और उनका जो प्यार स्वदेश के लिए जाग उठा जिसे हम वापस आ गए। और उसके बाद में मैंने ये संगीत क्षेत्र में थोड़ा प्रवेश किया, सुरेश पत्की जी से थोड़ा जो कुछ भी सीखा आज वो बेस दे के मुझे कहीं ले जा रहा है जो मुझे अच्छा लग रहा है। तो आई एम वेरी हैप्पी टू बी बैक इन माय ओन कंट्री, माय ओन मिट्टी। मेरी मिट्टी के कुछ भी मुझे बड़ी पसंद आ रही है।
0: बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत प्यारी बात। थैंक यू सो मच मैम, आपके गीत सुने, आपसे बातें की, बहुत मजा आया। थैंक यू,
1: थैंक यू।
0: दोस्तों अगर आप भी आज के कलाकार प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, आना चाहते हैं, गाना चाहते हैं, नए टैलेंट्स के इस ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो हमें कांटेक्ट करें। नंबर है 9656517317। ये है 9656517317। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बेहद शानदार गायकी, बेहद शानदार टैलेंट, एक और हसीन संगीत और गीत से भरी हुई शाम के लिए कल फिर हाजिर हो जाऊंगा एक नए टैलेंट के साथ। सुनना ना भूलिएगा।

नमस्कार दोस्तों, कला सिर्फ रंगों, सुरों या शब्दों का नाम नहीं है, बल्कि ये उन भावनाओं की भाषा है जो सीधे दिल तक पहुंचती है। और जब एक कलाकार अपनी कला के माध्यम से दुनिया से संवाद करता है तो वो सिर्फ मनोरंजन नहीं करता, बल्कि प्रेरणा भी देता है। इसी प्रेरणा और रचनात्मकता के सफर में आपका स्वागत है आज के कलाकार के इस प्रोग्राम में। आइए ना, मिलते हैं उन प्रतिभाओं से

0: जो अपने हुनर, मेहनत और सपनों से आज की दुनिया को और खूबसूरत बना रहे हैं। मैं हूं आपका दोस्त समीर और आप सुन रहे हैं आज के कलाकार। वीना नायक मैम आज की टैलेंट है, आज की गायिका है, आज की प्रतिभा है, आज के कलाकार के इस बहुत ही खूबसूरत से एपिसोड में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और उससे भी ज्यादा प्यार से, रेस्पेक्टफुली मैं वीना मैम की आभार प्रकट करते हुए उनका स्वागत करता हूं, उनका वेलकम करता हूं। वीना मैम प्लीज हम सभी के मुखातिब होइए, हम सब जानने के लिए बेताब हैं आप कौन हैं, कहाँ हैं, क्या करती हैं, प्लीज हमें बताइए ना।
1: धन्यवाद। और मैं कनाडा में कहना चाहूंगी कि एलआरगे नमस्कार। तो मैं बेंगलुरु से हूँ और और पूछिए।
0: ओके आप बेंगलोर से हैं डेफिनेटली, वो तो खैर हमारा सौभाग्य है क्योंकि 90% आज की डेट में टैलेंट्स बेंगलोर से हमारे पास आ रहे हैं और बहुत मजा आ रहा है। और बड़ी मजेदार वाली बात ये भी है दोस्तों, आप सभी को मालूम भी है, हम बहुत जल्द बेंगलोर में हमारा आज के कलाकार प्रोग्राम होने वाला है और हम सबको मौका मिलेगा एक दूसरे से मुलाकात करने का। लेकिन वीना मैम आप क्या करती हैं, आई मीन व्हाट डू यू डू, और थोड़ा सा अपने बारे में थोड़ा सा बताइए।
1: एक्चुअली मैं रेलवे में कार्यरत हूँ।
0: ओके।
1: सो साउथ वेस्टर्न रेलवे के बैंगलोर डिवीजन में मैं काम करती हूँ और मेरी पैदाइश एक्चुअली मुंबई की है। उस टाइम मेरे पापा लखनऊ में आरडीएसओ में, वो रेलवे में ऑफिसर थे, रिटायर्ड एज चीफ इंजीनियर फ्रॉम वेस्टर्न रेलवे। तो हमारे काफी ट्रांसफर हुए, शायद इसीलिए मेरी हिंदी भी काफी अच्छी है क्योंकि मैं नॉर्थ में ही पड़ी बली।
0: That's nice.
1: So, Yes. तो हम लोग लखनऊ थे कुछ अरसे और उसके बाद फिर अहमदाबाद और फिर अजमेर में काफी लंबा वक्त वहां पे गुजारा और फिर पापा अहमदाबाद से रिटायर हुए, शादी मुझे बेंगलुरु ले आई, तो तब से यही हूँ।
0: बहुत खूब। अजमेर अजमेर तो मतलब वो इसलिए कि मेरे दिमाग में अटक गया मैम क्योंकि 35 साल मैं जयपुर रहा और अजमेर तो मतलब 1.5 घंटे 2 घंटे का रास्ता है जयपुर से, इतना ज्यादा जाया करते थे हम।
1: यस।
0: तो अजमेर सुन के बड़ा अच्छा सा लगता है, दैट्स वेरी नाइस। और उसके बाद आपने बताया कि आप लखनऊ में, वाह, मतलब लखनऊ की तो लैंग्वेज ही इतनी प्यारी है। उसके बाद आप अहमदाबाद भी रहे, बहुत खूब
1: जी।
0: दोस्तों आपने जाना कि यूं तो वीना मैम बेंगलोर में है लेकिन उनकी आवाज की जो खनक है, उनकी आवाज, उनकी डिक्शन, उनका प्रोनंसिएशन, हिंदी की जो इतनी साफ सुनाई दे रही है हम लोगों को, इस वजह से क्योंकि वो इन जगहों पर रही और जाहिर सी बात है लोकल लैंग्वेज बात की होगी, लोकल लोगों से बातचीत करते होंगे तो बहुत कुछ पिकअप हम लोग कर ही लेते हैं। बहुत खूब। तो चलिए शुरू करें ना इस प्यारे से प्रोग्राम को वीना मैम के ही गाए हुए इन गीतों से और उसके बाद और बातें करेंगे वीना मैम से, आइए सुनते हैं।

0: बहुत खूब। चलिए मीना मैम, आपको और बेहतर समझने के लिए आपके बचपन में चलते हैं। मुझे अपने बचपन की कोई बहुत ही प्यारी सी शरारत के बारे में बताइए ना, जो आपने की हो। वैसे बच्चे बहुत शरारतें करते हैं, लेकिन फिर भी कोई एक आध शरारत आपको याद रह गई होगी, थोड़ा बताइए ना, मजा आएगा।
1: नहीं, ऐसी कोई शरारत मुझे याद नहीं है एक्चुअली।
0: अरे ये क्या बात हुई मैम, कोई
1: ना मैं बहुत टॉमबॉयज थी, मतलब ऐसे ही बहुत बहुत ही खेलती कूदती थी। सो पढ़ाई में भी काफी होनहार थी और खेलकूद में भी बहुत आगे थी, तो बहुत जिमनास्ट वगैरह मतलब हर चीज में पार्टिसिपेट करती थी।
0: दैट्स नाइस, ओके।
1: तो पतंगे भी उड़ाई है मैंने।
0: अरे वाह।
1: तो यस,
0: तो कभी तो कोई शरारत की होगी, किसी लड़के को पीट दिया होगा, साइकिल चला के गिर गई होंगी या साइकिल भेड़ दी होगी, कुछ तो किया होगा।
1: हाँ, मतलब एक बार कुछ मैं लॉन्ग साइकिलिंग वगैरह करती थी, तो कुछ लेने सामान लेने चली गई थी, तो आई यूज टू रेस विद मतलब बस, वहां जो लोकल बस जो AMTS बस चलती हैं, तो उनके साथ मैं रेस करती थी
0: उत्तर की।
1: तो यस, तो फिर एक बार मतलब ड्राइवर हमारे घर में भी आए और फिर पापा को बता के गए कि आपकी बेटी को बताएं कि ऐसा ना करें। सो मेबी आई वाज 8-9 इयर्स उस वक्त। सो
0: मैं सच कहूंगा वीना मैम, सच बता रहा हूँ, और दोस्तों सब लोग, आप लोग भी सुन रहे होंगे, दो ऑफकोर्स आप लोग वीना मैम से बात नहीं कर रहे हैं अभी राइट नाउ, लेकिन सचमुच मतलब ये जबरदस्त शैतानी वाली हरकत वीना मैम की रही है, बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स। सोचिए ना, 8 साल की उम्र में वो बस के साथ रेस लगा रही थी, दैट टू ऑन साइकिल, बस के साथ। अरे भाई, स्कूटर के साथ लगा लेते, मे बी कार के साथ लगा लेते, मे बी किसी दूसरे साइकिलिस्ट, बस के साथ हद हो गई, मतलब शैतानी एट द मोस्ट, क्या बात है, बहुत खूब। लेकिन आपको कभी चोट वोट नहीं लगी ना इस बारे में?
1: नहीं।
0: आप सोच के देखो दोस्तों, मतलब बस ड्राइवर उनके घर आ गया ये बतलाने के लिए कि इसे रोकिए, मतलब वो हार जाता होगा ना बेचारा बार बार, तो इसे रोकिए, ऐसा ना करें।
1: नहीं नहीं, नाउ आई कैन अंडरस्टैंड कि मतलब दिक्कत होती ना उनको, हाँ डेंजरस, उनको लग गया कभी गाड़ी के नीचे नहीं आ जाए।
0: ये उनकी उनको लगता होगा यार, छोटी सी लड़की बेचारी, अभी ये मुसीबत हो जाएगी, आ जाएगी।
1: यस यस यस।
0: दोस्तों अपने बचपन की जरा शरारतें याद करके देखो, क्या इतनी आउटरेजियस कोई हरकत आप लोग ने की थी क्या? चलिए विचार कीजिए, सोचिए, तब तक हम लोग वीना मैम के गाए हुए इन गीतों का आनंद उठाएं, एंड देन सर्टेनली विल कम बैक टू टॉक मोर विद मीना मैम।

0: बहुत खूब,
1: बहुत ही बढ़िया गायकी वीना मैम, क्या बात है। अच्छा आपने बताया आपने अभी अभी आपने कहा ना कि आप तो टॉम बॉय थे, जाहिर से बात है बहुत बोल्ड, आपने सभी सभी तरीके के स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया, पतंग उड़ाना, बस के साथ रेस लगाना वगैरह वगैरह, लेकिन क्या हमेशा से कोई ऐसा एक डर आपके मन में रहा जो आज भी अंदर बैठा हो, कोई ऐसा डर बचपन से चालू हुआ हो और आज भी अंदर बैठा हो? देखो मैम, इस क्वेश्चन को पूछने का मेरा पर्पस और कुछ भी नहीं है, किसी और गलत तरीके की मेमोरी को जगाना मेरा पर्पस नहीं है, पर्पस सिर्फ इतना सा है कि शायद आप आज अपने आप को पहचान पाए और उस चीज को कह दें तो शायद आप आजाद हो जाएं उस डर से।
2: नहीं, एक्चुअली हमारा बाद में ट्रांसफर हो गया था अहमदाबाद से अजमेर में, और वहां का माहौल कुछ अलग है, राइट। तो फिर मेरा खेलकूद वगैरह बंद हो गया, मतलब जैसे थोड़े बड़े भी हो गए उसके बाद से, तो बस स्कूल जाना, घर आना, बस इतना ही, फिर घर के कंपाउंड में खेलना, वहां तक सीमित रह गया। तो उसके बाद से कुछ ऐसा, मतलब अभी भी मुझको ऐसा लगता है कि मैं कहीं भी अकेले जाना पसंद नहीं करती। मुझे लगता है कि मेरे साथ कोई हो, कम से कम एक बच्चा हो या कोई सहेली हो, कोई तो साथ में हो, कहीं जाना हो तो आई वुड मैं प्रेफर करती हूँ किसी के साथ में जाना, यहाँ वहाँ अकेले जाना मुझे नहीं पसंद।
1: ओके,
2: तो वैसे वो डर नहीं है, बट दैट्स द माय प्रेफरेंस।
1: आई गेट इट, आई अंडरस्टैंड दैट।
2: यस,
1: बिल्कुल ठीक बात है दोस्तों। इस तरीके के कोई भी छोटे मोटे डर कभी बचपन में हम लोगों को रह जाते हैं, अब वो किसी वातावरण की वजह से हो सकते हैं, किसी व्यक्ति विशेष की वजह से हो सकते हैं, किसी मूवी, किसी म्यूजिक, या फिर कोई क्लास, मतलब हमारी पढ़ाई लिखाई की किसी परफॉर्मेंस की वजह से, बहुत सारी वजहें हो सकती हैं। तो उस चीज को निकाल देना अपने दिमाग से बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि वो कुछ ना कुछ इमोशनल चार्ज लेकर बैठा रहता है और हमको ड्रेन करता है, इसलिए वी शुड लेट इट गो, जाने देना हमारे लिए बेहतर होता है। बहुत बढ़िया। चलिए दोस्तों, आप भी अपने किसी भी इस तरीके के एप्रीहेंशन को, मैं इसको डर नहीं कहूंगा, एक छोटा सा एप्रीहेंशन, उसे निकाल फेंकिए और इन गीतों का मजा लीजिए, एंड देन विल कम बैक।

0: बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर गीत। चलो मैम आगे बढ़ते हुए आपके संगीत के बारे में भी हम अभी अभी बात करेंगे, उससे पहले थोड़ा सी आपकी पर्सनालिटी को समझने में मजा आ रहा है और मुझे बार बार ऐसा लगता है कि जब आप बताएंगे ना तो आपको अपने ही जिंदगी में झांकने का एक और मौका मिल जाता है, ठीक है ना?
1: जी बिल्कुल, यस।
0: तो वीना मैम, आज तक की जिंदगी में सबसे बड़ा सबक आपने क्या सीखा है?
1: मैंने ये सीखा है कि हमेशा आगे चलना चाहिए, पॉजिटिव विचारों के साथ चलना चाहिए, और जो भी सबक सीखते हैं उसे याद रखना चाहिए और उसे चिपक के नहीं रहना चाहिए, मतलब नेगेटिविटी में नहीं जाना चाहिए।
0: ओके,
1: दैट इज व्हाट आई कैन से, यस।
0: अब देखो मैम, अक्सर कहा जाता है ना कि गलतियों से हम सीखते हैं, करेक्ट?
1: बिल्कुल, यस।
0: लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि गलतियां नहीं करनी चाहिए। तो जब हम गलती करेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे?
1: जी, इट्स अ पैराडॉक्स, यस।
0: तो मुझे तो ऐसा लगता है गलतियां करनी चाहिए क्योंकि तभी तो हम सीखेंगे, दैट्स द इजीएस्ट वे ऑफ लर्निंग। गलती करी, गिर पड़े, तो अब हम संभल के चलेंगे। गलती करी, हाथ जल गया, तो अब हम संभल के रोटी पकाएंगे, है ना?
1: Yes.
0: पर चलो, जो कुछ भी है हमें जिंदगी में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमारा एनवायरनमेंट, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं या वक्त गुजरता है, बहुत सारी चीजें। मैंने कई बार अपने पीछे उसमें कहा भी, पंक्चुअलिटी इज वन थिंग जो मैंने सीखी, उससे कितना नुकसान हो जाता है। एक मिनट कहते हैं ना, वो एक मिनट का मीनिंग उस बंदे से पूछिए जो रेलवे स्टेशन पहुंचा और एक मिनट पहले उसकी ट्रेन निकल
1: गई, है ना? यस यस बिल्कुल।
0: उसके लिए एक मिनट का मतलब समझिए, पूछिए, है ना?
1: वाह,
0: चलो दोस्तों, थोड़ी सी विचार करने वाली बात है। कोशिश करते हैं भाई, गीत संगीत एक मेडिटेशन की तरह होता है, मजे लेना तो एक बात हो गई, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ हमें अपनी जिंदगी को समझना भी बहुत जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हुए हम इन गीतों का आनंद उठाएं, फिर वापस आए मैम के पास।

0: बहुत बढ़िया गायकी। वीरा मैम चलिए अपने संगीत के बारे में आप बताइए हमें। आप नंबर वन कब से गा रही हैं, कब से आपने गाना गाना शुरू किया?
1: मैंने एक्चुअली बचपन से ही गाना शुरू किया। एक्चुअली मैंने मम्मी की